एफएम बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का धर्मशाला केंद्र है। आज बुधवार है, शक संवत 1948 के वैशाख मास की 30वीं तिथि, तदनुसार 20 मई सन 2026। इस समय सुबह के 5:58 और 35 सेकंड हुए हैं। अब हमारी आज की प्रसारण सभा आरंभ होती है।

0: आकाशवाणी का ये धर्मशाला केंद्र है FM बैंड 103.4 MHz पर। सुबह के 6 बजने को है अब आकाशवाणी दिल्ली से समाचार रिले किए जाएंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं आकर्षिता सिंह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 देशों की यात्रा के अंतिम चरण में इटली पहुंच गए हैं। राजधानी रोम में हवाई अड्डे पर प्रधानमंत्री मोदी का भव्य स्वागत किया गया। श्री मोदी की ये 2 दिन की यात्रा भारत और इटली के बीच व्यापार, निवेश और तकनीकी नवाचार के क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग को मजबूत करेगी। इटली में भारत की राजदूत वाणी सर्राजू राव ने कहा कि इस यात्रा से दोनों देशों के बीच आगामी वर्षों में प्रतिभा के आदान प्रदान तथा नवाचार और गतिशीलता के क्षेत्रों में सहयोग बढ़ने की उम्मीद है। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में आयोजित 3rd भारत नॉर्डिक सम्मेलन को संबोधित किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि नॉर्डिक देशों के साथ भारत की भागीदारी को पर्यावरण अनुकूल प्रौद्योगिकी और नवाचार रणनीतिक भागीदारी के स्तर पर ले जाने का निर्णय लिया गया है।
2: आज हमने भारत और नॉर्डिक संबंधों को ग्रीन टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का स्वरूप देने का निर्णय लिया है। इस ग्रीन टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप से हम आइसलैंड की जियो थर्मल और फिशरीज, नॉर्वे की ब्लू इकोनॉमी और आर्कटिक और सभी नॉर्डिक देशों की मैरिटाइम और सस्टेनेबिलिटी की एक्सपर्टीज भारत के स्केल के साथ जोड़कर पूरे विश्व के लिए एक बेहतर भविष्य सुनिश्चित करेंगे।
1: पश्चिम बंगाल सरकार ने महिलाओं के सामाजिक आर्थिक

0: महिलाएं पात्र हैं। कलकत्ता उच्च न्यायालय के आदेश के बाद पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्य सरकार में आरक्षण के लिए अन्य पिछड़ा वर्ग की 66 श्रेणियों को अधिसूचित किया है। इसके अलावा अन्य पिछड़ा वर्ग ए का 10% और अन्य पिछड़ा वर्ग बी का 7% आरक्षण रद्द कर दिया गया है। कलकत्ता उच्च न्यायालय आरजी कर दुष्कर्म हत्या मामले में आगे की जांच के लिए पीड़िता के अभिभावकों और केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई की आवेदन पर कल सुनवाई करेगा। पीड़िता के अभिभावकों ने अपराध की आगे की जांच के लिए उच्च न्यायालय में याचिका दायर कर मामले में एक से अधिक व्यक्तियों के शामिल होने का दावा किया है। भारतीय रेल ने ब्रॉड गेज नेटवर्क का 99.6% विद्युतीकरण पूरा कर महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। इस वर्ष मार्च तक ब्रॉड गेज रेलवे लाइन का 69,873 किलोमीटर से अधिक मार्ग विद्युतीकृत हो चुका था। इस उपलब्धि के साथ भारत ने यूरोपीय संघ, ब्रिटेन और अमेरिका सहित कई प्रमुख देशों को पीछे छोड़ दिया है। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो शनिवार से भारत की 4 दिन की यात्रा पर रहेंगे। ये उनकी पहली भारत यात्रा होगी। अमेरिकी विदेश विभाग ने बताया कि श्री रूबियो कोलकाता, आगरा, जयपुर और नई दिल्ली की यात्रा करेंगे। नई दिल्ली स्थित अमेरिकी दूतावास ने बताया कि श्री रूबियो 26 मई को क्वाड समूह की बैठक में शामिल होंगे। क्वाड समूह में ऑस्ट्रेलिया, जापान और अमरीका शामिल हैं। नई दिल्ली के प्रधानमंत्री संग्रहालय में आज से महात्मा गांधी का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से संचालित 3D अवतार आगंतुकों के लिए खोल दिया गया है। आगंतुक महात्मा गांधी के 3D अवतार के साथ संवाद कर सकेंगे और अत्याधुनिक तकनीक के माध्यम से बापू की आत्मा को जीवंत कर सकेंगे। संग्रहालय का ये तीसरा AI संचालित इंटरैक्टिव होलो बॉक्स होगा। IPL क्रिकेट में राजस्थान रॉयल्स ने लखनऊ सुपर जायंट्स को 7 विकेट से हरा दिया। इस जीत के साथ राजस्थान की प्लेऑफ में पहुंचने की संभावना बनी हुई है। पहले बल्लेबाजी करते हुए लखनऊ सुपर जायंट्स ने निर्धारित 20 ओवर में 5 विकेट पर 220 रन बनाए। जवाब में राजस्थान रॉयल्स ने 5 गेंद शेष रहते ही लक्ष्य हासिल कर लिया। वैभव सूर्यवंशी ने 93 रन की शानदार पारी खेली। उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। प्रतियोगिता में आज कोलकाता नाइट राइडर्स का मुकाबला मुंबई इंडियंस से होगा। ये मैच कोलकाता में शाम 7:30 बजे से शुरू होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: FM बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का धर्मशाला केंद्र है। सुबह के 6:05 हुए हैं। लीजिए सुनिए चिंतन।

जो लोग आपके सामने दूसरों की बुराई करते हैं, सच मानिए वो लोग दूसरों से आपकी बुराई भी करते होंगे। बुरा करना ही गलत नहीं है, अपितु बुरा सुनना उससे भी गलत है। अगर बुरा करना घातक है तो बुरा सुनना पातक है, इसलिए हमें दोनों से बचने का प्रयास करना चाहिए। बुराई को सुनना, बुराई को चुनना वैसा ही है जैसे हम कोई दुष्कर्म कर रहे हैं, और अगर हम बुराई सुनना पसंद करते हैं तो उसका हमारे जीवन में स्वतः ही प्रवेश होने लगता है। इसलिए अपने जीवन में अच्छे कर्म करिए, अच्छी बातें सुनिए और बुरी और बुराई से दोनों से बचिए। बुरा जो देखन मैं चला, बुरा ना मिलिया कोई, जो दिल खोजे आपना, मुझसे बुरा ना कोई।

ईश्वर इस जगत के कण कण में विद्यमान है, हम उन्हें देख नहीं सकते, लेकिन यदि हम ईश्वर को देखने का प्रयास करते हैं तो सिर्फ भक्ति के माध्यम से, ध्यान के माध्यम से हम उन तक पहुंच सकते हैं।

जब मनुष्य ईश्वर को देखता है तो वह उसे मनुष्य रूप में देखता है। इसी प्रकार अन्य प्राणी भी ईश्वर को अपनी अपनी कल्पना, अपने अपने रूप के अनुसार देखते हैं। और ईश्वर की सत्ता कई भागों में बंटी हुई है, लेकिन सही भाव वही है जब हृदय में भक्ति जागृत होती है।

आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से अभी आप सुन रहे थे भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना। सुबह के 6:40 हुए हैं। लीजिए अब सुनिए श्री रामचरित मानस कांड।

सीता जी की माता के मन में संशय पैदा हुआ कि देखने में सुकुमार बालक राम उस प्रचंड धनुष को कैसे तोड़ सकेंगे। इस पर राम जी के महत्व को जानने वाली एक चतुर सखी ने रानी को समझाया, हे रानी, तेजस्वी व्यक्ति देखने में छोटा हो सकता है, किंतु वो वस्तुतः छोटा नहीं होता। मतवाले गजराज को छोटा सा अंकुश अपने वश में कर लेता है। ब्रह्मा, विष्णु, शिव और सभी देवता जिस मंत्र के वश में हैं, वो भी तो अत्यंत छोटा होता है। इसलिए देवी, संदेह त्याग दीजिए। सखी के वचन सुनकर रानी की उदासी मिट गई और विश्वास बढ़ गया। उधर उसी समय श्री रामचंद्र जी को देखकर सीता जी भयभीत हृदय से विभिन्न देवताओं से विनती करने लगीं। अपने हृदय की बढ़ती व्यग्रता को पहचान कर सीता जी सकुचा गईं और सोचने लगीं कि यदि तन मन वचन से मेरे चित्त की श्री रघुनाथ जी के चरणों में अनुरक्ति है तो वे मुझे अवश्य अपनाएंगे। प्रभु की ओर देखकर सीता जी ने निश्चय कर लिया कि या तो वे श्री राम को ही वरेंगी अथवा स्वयं का अस्तित्व ही समाप्त कर देंगी।

अभी आप सुन रहे थे श्री रामचरित मानस कान, आकाशवाणी का ये धर्मशाला केंद्र है। सुबह के 6:50 हुए हैं। लीजिए प्रस्तुत है हमारे केंद्र से आज प्रसारित और रिले होने वाले कार्यक्रमों का विवरण। सुबह 7:10 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम सुप्रभात, और कार्यक्रम में आज विशेष के साथ ही हम जानकारी देंगे विश्व मधुमक्खी दिवस के बारे में, और साथ ही कार्यक्रम में बात करेंगे सुमित्रा नंदन पंत की जयंती के बारे में। इसके साथ ही पर्यावरण के अंतर्गत आज जानकारी दी जाएगी कौआ पक्षी के बारे में, और पर्यटक स्थल श्री रेणुका जी के बारे में कार्यक्रम में जानकारी लेकर आएंगे हम। लोकगीतों पर आधारित कार्यक्रम शुभ प्रयाग सुनिएगा सुबह 7:40 पर, और एक ही फिल्म से इस कार्यक्रम में प्रातः 8:30 पर हम आपको सुनवाएंगे साल 1995 में आई फिल्म राजा के नगमे। गीतांजलि कार्यक्रम सुनिएगा सुबह 9:00 और 10:00 का समय है फिल्म संगीत का। हिमाचली गीतों और लोकगीतों का आनंद उठाइए सुबह 10:30 पर, और प्रातः 11:05 पर हम प्रसारित करेंगे कव्वालियाँ। 11:30 का समय है NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग का।

0: प्रादेशिक समाचार आप सुना करते हैं आकाशवाणी के शिमला केंद्र से सुबह 9:20 पर, 11:00, दिन में 3:00, शाम 6:00 और 7:45 पर। समाचार प्रभात 8:00, मॉर्निंग न्यूज 8:15 पर, समाचार संध्या 8:45 पर और न्यूज एट 9 रात 9:00 आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले की जाएंगी। विविध भारती के कार्यक्रम सुनिएगा दिन में 1:10 पर, जो आकाशवाणी मुंबई से रिले किए जाएंगे। सैनिकों के लिए ये कार्यक्रम आप सुनेंगे दिन में 12:00। दोपहर 12:30 का समय है कार्यक्रम घर परिवार का। कार्यक्रम में बात करेंगे विश्व मधुमक्खी दिवस के बारे में, साथ ही समय का सदुपयोग कैसे किया जाए इस विषय पर भी कार्यक्रम में बातें होंगी। और साथ ही हम आपको जानकारी देंगे गैस का रखरखाव कैसे करें इस विषय पर। और खान पान के अंतर्गत आज हम आपको बताएंगे शाही पनीर बनाने की विधि के बारे में। शाम 5:10 पर सुनिएगा भजन और 5:30 का समय है कार्यक्रम युवा मंच का। सदाबहार संगीत का आनंद उठाइए शाम 6:06 पर। मौजा गराइंदिया ये कार्यक्रम सुनिएगा शाम 6:30 पर। कार्यक्रम में बात करेंगे पशुओं के लिए चारा प्रबंधन इस विषय पर। शाम 7:10 का समय है कार्यक्रम किसान वाणी का। कार्यक्रम में मृदा परीक्षण और फसल विविधीकरण के बारे में बात की जाएगी। मिले जुले गीतों का कार्यक्रम सबरस रात 8:00 और रात 8:30 का समय है देशगान का। एक ही कलाकार ये कार्यक्रम आप सुनेंगे रात 9:15 पर। कार्यक्रम में गीतकार वायु श्रीवास्तव के लिखे हुए गीत हम आपको सुनवाएंगे। और रात्रि 9:30 पर कार्यक्रम चर्चा का विषय है आकाशवाणी दिल्ली से रिले किया जाएगा। रात 10:00 सुनिएगा उपशास्त्रीय संगीत और 10:30 पर आनंद उठाइए पुराने फिल्मी गीतों का। कार्यक्रम रहेगा चित्रपट संगीत। तो ये था कार्यक्रम विवरण। आकाशवाणी का ये धर्मशाला केंद्र है। सुबह के 6:55 होने को हैं। अब आकाशवाणी दिल्ली से समाचार रिले किए जाएंगे।
1: एम आकाशवाणी संप्रति वार्ता श्रूयंताम प्रवाचक डॉक्टर गणेश हेगड़े। अथ वार्ता। भारतम तथा नॉर्वे, स्वीडन, डेनमार्क, फिनलैंड, आइसलैंड इत्येते देशाः मिलित्वा स्वद्विपक्षीय सम्बन्धं हरित प्रौद्योगिकीं नवाचार रणनीतिक सहयोगं च सुदृढीकर्तुं विचार विमर्शान् कृतवन्तः। प्रधानमंत्री श्री मोदी ह्यः नॉर्वे देशस्य राजधान्याम् ओस्लो नगरे तृतीय भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलने भागं गृहीत्वा नॉर्डिक देशानां नेतृभिः सह संयुक्त पत्रकार सम्मेलनं संबोधयन् घोषणामेतां कृतवान्।
2: आज हमने भारत और नॉर्डिक संबंधों को ग्रीन टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का स्वरूप देने का निर्णय लिया है। इस ग्रीन टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप से हम आइसलैंड की जियो थर्मल और फिशरीज, नॉर्वे की ब्लू इकोनॉमी और आर्कटिक और सभी नॉर्डिक देशों की मैरिटाइम और सेंसिटिविटी में एक्सपर्टीज को, सस्टेनेबिलिटी की एक्सपर्टीज को भारत के स्केल के साथ जोड़कर पूरे विश्व के लिए एक बेहतर भविष्य सुनिश्चित करेंगे।
1: प्रधानमन्त्रिणा मोदिना प्रोक्तं यत् विगत दशवर्षेषु भारतस्य नॉर्डिक देशानां च द्विपक्षीय व्यापारः प्रायः चतुर्गुणं वर्धितः वर्तते।
2: 10 वर्षों में हमारा बायलेटरल ट्रेड लगभग 4 गुना बढ़ा है। नॉर्डिक देशों के इन्वेस्टमेंट फंड भी भारत की रैपिड ग्रोथ में अहम साझेदार बन रहे हैं। पिछले 1 दशक नॉर्डिक देशों से भारत में निवेश में लगभग 200% की बढ़ोतरी हुई है। तेजी से बढ़ते ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट ने भारत की ग्रोथ स्टोरी में तो योगदान दिया ही है, साथ ही नॉर्डिक देशों की अर्थव्यवस्थाओं में भी बहुत सकारात्मक

0: व्यापक भूमिका निभाई है और हजारों नए जॉब्स क्रिएट किए हैं।
1: प्रधानमंत्री पुष्टिं कृतवान् यत् भारतस्य नॉर्डिक देशानां च सम्बन्धाः व्यापार आर्थिक सहयोगेन अथ भारत यूरोपीय संघस्य मुक्त व्यापार संधिभिः सह सद्यः एव सम्पन्न व्यापार संधिभिः नूतन स्वर्णयुगे प्रविष्टाः सन्ति। अस्मिन् अवसरे वदन्तः नॉर्वे, स्वीडन, आइसलैंड, फिनलैंड, डेनमार्क इत्यादि देशानां प्रधानमन्त्रिणः लोकतन्त्रस्य मूल्यानां नियमाधारित वैश्विक व्यवस्थायाः अद्यतन परिवर्तमान विश्वस्य बहुपक्षीय संस्थासु तत्कालीन परिष्कारस्य च प्रतिबद्धतां पुनरुक्तवन्तः। प्रधानमंत्री मोदी पञ्चराष्ट्रयात्रायाः पञ्चमे अन्तिमे च चरणे इटली देशस्य राजधानीं रोम नगरं आगतवान्। भारतस्य समृद्धकला परंपरायाः उत्सवे भव्य सांस्कृतिक संध्यायाः कार्यक्रमे संपूर्ण यूरोपतः भारतीय शास्त्रीय संगीतकाराः नर्तकाः च भागं गृहीत्वा प्रधानमन्त्रिणः मोदिनः स्वागत सत्कारस्य साक्षिणः अभवन्। लोकसभायाः अध्यक्ष ओम बिरला निगम विधि संशोधन विधेयक 20-26 इत्यस्य कृते संयुक्त समितिं घटितवान्। लोकसभा सांसद सुधीर गुप्ता समितेः अध्यक्षरूपेण नियुक्तः वर्तते। समितौ लोकसभायाः 21 सदस्याः विनोद श्रीधर तावडे, सुजीत कुमारः, उज्ज्वल निकाम इत्येतैः सह राज्यसभायाः 9 सदस्याः कमलजीत सहरावत, बैजयंत पांडा, डॉक्टर निशिकांत दुबे इत्येतैः सह निम्न सदनस्य सदस्याः च सन्ति। भारतीय रेलवे विद्युतीकरणस्य दिशि महत्वपूर्ण कार्यं कुर्वन् 99.6% विद्युत् संपर्कं प्राप्नोति, यद्धि 370-89,000 किलोमीटर तः अधिकं यावत् प्राप्तम् अस्ति। अस्मिन् वर्षे मार्च मासपर्यन्तं भारतेन व्यावहारिकरूपेण स्वस्य ब्राड्गेज जालस्य पूर्ण विद्युत्करणं प्राप्य यूरोपीय संघस्य, युनाइटेड किंग्स, अमेरिका संयुक्त राज्यस्य च प्रमुख रेल व्यवस्थाभ्यः अग्रेस्थितं वर्तते। मणिपुरस्य अपर प्रमुख वस्त्र वाणिज्य उद्योग सचिवः अनुराग वाजपेयी इत्यनेन उक्तं यत् राज्य सर्वकारः राज्यस्य समृद्धानि वस्त्र हस्तकरघा परम्पराणि प्रवर्तयितुं अन्ताराष्ट्रिय विपणिषु निर्यातं कर्तुं च कार्यं कुर्वन् अस्ति। IPL इति 20-20 क्रिकेट लीग प्रतिस्पर्धायां अद्य सायं 7:30 कोलकाता नाइट राइडर्स दलं कोलकाता नगरे मुंबई इंडियंस दलं सम्मुखीकरिष्यति इति वार्ताः।
2: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नॉर्वे, स्वीडन, नीदरलैंड और संयुक्त अरब अमीरात की यात्रा समाप्त कर इटली पहुंच गए हैं। नॉर्वे की 2 दिन की यात्रा के दौरान श्री मोदी ने नॉर्वे के प्रधानमंत्री जोनास गहर स्टोरे के साथ द्विपक्षीय बैठक की। हमारी संवाददाता ने बताया है कि 3रे भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन में भी प्रधानमंत्री ने भाग लिया।
3: ओस्लो दौरे में हुए बहुपक्षीय और द्विपक्षीय बैठकों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हरित परिवर्तन, नीली अर्थव्यवस्था, जहाज निर्माण, स्वास्थ्य और रक्षा जैसे क्षेत्रों में निवेश के लिए नॉर्डिक देशों को आमंत्रित किया। नेताओं ने पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले सहित सभी प्रकार के आतंकवाद की स्पष्ट और कड़ी निंदा की। सारे प्रधानमंत्रियों ने भारत नॉर्डिक देशों के सहयोग को और गहरा करने की अपनी प्रतिबद्धता दोहराई। अगला शिखर सम्मेलन फिनलैंड में हेलसिंकी में आयोजित किया जाएगा। संगीता गोडबोले, आकाशवाणी न्यूज, ओस्लो, नॉर्वे।
2: रोम हवाई अड्डे पर प्रधानमंत्री मोदी का भव्य स्वागत किया गया। यात्रा के दौरान भारत और इटली के बीच व्यापार, निवेश और तकनीकी नवाचार के क्षेत्रों में समझौता होने की संभावना है। इटली में भारत की राजदूत वाणी सर्राजू राव ने कहा कि इस यात्रा से दोनों देशों के बीच नवाचार और गतिशीलता के क्षेत्रों में सहयोग बढ़ने की उम्मीद है। इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी ने नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में 3रे भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि नॉर्डिक देशों के साथ भारत की भागीदारी को पर्यावरण अनुकूल प्रौद्योगिकी और नवाचार रणनीतिक भागीदारी के स्तर तक ले जाने का निर्णय लिया गया।
0: इस ग्रीन टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप से हम आइसलैंड की जियोथर्मल और फिशरीज, नॉर्वे की ब्लू इकोनॉमी और आर्कटिक और सभी नॉर्डिक देशों की मैरिटाइम और सस्टेनेबिलिटी की एक्सपर्टीज भारत के स्केल के साथ जोड़कर पूरे विश्व के लिए एक बेहतर भविष्य सुनिश्चित करेंगे।

0: नेटवर्क का 99.6% विद्युतीकरण पूरा कर महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। इस वर्ष मार्च तक ब्रॉडगेज रेलवे लाइन का 69,873 किलोमीटर से अधिक मार्ग विद्युतीकृत हो चुका है। इस उपलब्धि के साथ भारत ने यूरोपीय संघ, ब्रिटेन और अमेरिका सहित कई प्रमुख देशों को पीछे छोड़ दिया है। नई दिल्ली के प्रधानमंत्री संग्रहालय में आज से महात्मा गांधी का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से संचालित 3D अवतार आगंतुकों के लिए खोल दिया जाएगा। आगंतुक महात्मा गांधी के 3D अवतार के साथ संवाद कर सकेंगे और अत्याधुनिक तकनीक के माध्यम से बापू की आत्मा को जीवंत कर सकेंगे। इससे पहले सरदार वल्लभ भाई पटेल और पूर्व राष्ट्रपति APJ अब्दुल कलाम के AI संचालित होलोबॉक्स स्थापित किए जा चुके हैं। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो शनिवार को भारत की 4 दिन की यात्रा पर नई दिल्ली पहुंचेंगे। अमेरिकी विदेश मंत्रालय ने बताया कि श्री रूबियो कोलकाता, आगरा और जयपुर भी जाएंगे। श्री रूबियो 26 मई को क्वाड समूह की बैठक में शामिल होंगे। क्वाड समूह में भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान और अमरीका शामिल हैं। राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी ने सेना खेल नियंत्रण बोर्ड के अंकित और रेलवे के जयेश पाटिल पर 3 साल का प्रतिबंध लगा दिया है। दोनों खिलाड़ी डोपिंग जांच में विफल रहे थे। अंकित ने 69वीं राष्ट्रीय क्रॉस कंट्री चैंपियनशिप में 3रा स्थान और पाटिल ने 5वां स्थान प्राप्त किया था। आरोपों को स्वीकार करने के बाद दोनों खिलाड़ियों के प्रतिबंध की अवधि में 1 साल की कमी कर दी गई है। IPL क्रिकेट में राजस्थान रॉयल्स ने लखनऊ सुपर जायंट्स को 7 विकेट से हरा दिया। राजस्थान ने 221 रन का लक्ष्य 7 विकेट के नुकसान पर 5 गेंद शेष रहते हासिल कर लिया। वैभव को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। इससे पहले लखनऊ सुपर जायंट्स ने निर्धारित 20 ओवर में 5 विकेट पर 220 रन बनाए थे। प्रतियोगिता में आज कोलकाता नाइट राइडर्स का मुकाबला मुंबई इंडियंस से होगा। ये मैच कोलकाता में शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। उत्तर प्रदेश भीषण लू की चपेट में है। प्रदेश में बढ़ता तापमान हर दिन नए रिकॉर्ड बना रहा है। बांदा में तापमान लगातार 3रे दिन 48.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी द न्यूज रेड बाय अभिषेक मुखोपाध्याय। Prime Minister Narendra Modi arrived in Rome last night on an official visit to Italy. Mr. Modi was received at the airport by Italy's Deputy Prime Minister and Minister of Foreign Affairs and International Cooperation, Antonio Tajani. Mr. Modi will hold talks with his Italian counterpart, Giorgia Meloni, and President Sergio Mattarella and discuss with them ways to boost India-Italy cooperation. Indian Ambassador Vani Sarraju Rao said the PM's visit would provide an important opportunity to address issues related to the mobility and welfare of the Indian community. She expressed optimism that the movement of Indian students, currently around 5,000 in Italy, as well as academicians and researchers, is likely to increase in the near future. Before arriving in Rome, the Prime Minister was in Oslo, Norway, where he participated in the 3rd India-Nordic Summit. This is the final leg of his 5-nation tour. Earlier yesterday, Indian Nordic nations comprising Norway, Sweden, Denmark, Finland and Iceland elevated the bilateral ties to a green technology and innovation strategic partnership. Mr. Modi made the announcement while addressing a joint press meet with leaders of Nordic nations after attending the 3rd India-Nordic summit in the Norwegian capital Oslo.
2: आज हमने भारत और नॉर्डिक संबंधों को ग्रीन टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का स्वरूप देने का निर्णय लिया है। इस ग्रीन टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप से हम आइसलैंड की जियोथर्मल और फिशरीज, नॉर्वे की ब्लू इकोनॉमी और आर्कटिक और सभी नॉर्डिक देशों की मैरिटाइम और सेंसिटिविटी में एक्सपर्टीज को, सस्टेनेबिलिटी की एक्सपर्टीज को भारत के स्केल के साथ जोड़कर पूरे विश्व के लिए एक बेहतर भविष्य सुनिश्चित करेंगे।
1: Prime Minister Modi said investments from Nordic countries in India rose by 200% in the past decade. Prime Minister Modi affirmed that the relations between India and the Nordic countries are set to usher in a new golden era with the recently concluded trade agreements including trade and economic partnership and India-EU free trade deal. The West Bengal government has notified the Annapurna Yojana to provide assured monthly financial assistance of 3,000 rupees to women for the socio-economic upliftment. The scheme introduced by the Department of Women and Child Development and Social Welfare will come into

हर सुबह नई रोशनी नए ख्वाब लाती है, सपनों को पूरा करने की एक नई राह दिखाती है और जीवन की हर सुबह एक नया अवसर है। इसे अपनाओ और अपनी खुशियों को चारों तरफ बिखेर दो। जी श्रोता, और सबसे अच्छी दिन की शुरुआत तभी हो सकती है अगर आप कारण बनते हैं किसी की मुस्कान का। कार्यक्रम सुप्रभात में आप सबका स्वागत है। आज का अंक आप सुनेंगे वंदना रैना के साथ, और हम भी आपकी मुस्कान का कारण बनना चाहेंगे और आपकी सुबह को खूबसूरत बनाना चाहेंगे इस गीत के साथ।

जी श्रोताओं, ये खूबसूरत सा गीत आपने सुना फिल्म परिचय से किशोर कुमार की आवाज में। और इस गीत के बाद अब रुख करते हैं कार्यक्रम में जानकारियों की तरफ। तो सबसे पहले हम इतिहास की ओर चलेंगे और बात करेंगे आज विशेष की। साल 1929 से शुरुआत कर रहे हैं। आज ही के दिन राजकुमार शुक्ल का निधन हुआ था। वे स्वतंत्रता सेनानी और चंपारण सत्याग्रह के प्रमुख लोगों में से एक थे। साल 1932 में भारत के स्वाधीनता संग्राम में गरम दल के नेता और क्रांतिकारी विचारों के जनक विपिन चंद्र पाल का निधन हुआ 20 मई को। आज ही के दिन साल 1995 में रूस द्वारा मानव रहित अंतरिक्ष यान का सफल प्रक्षेपण किया गया। और साल 2001 में अफगानिस्तान में तालिबान ने हिंदुओं की अलग पहचान के लिए ड्रेस कोड बनाया। बीस मई सन 2011 को मध्य प्रदेश के बीना में हजारों करोड़ की लागत से बनी ऑयल रिफाइनरी देश को समर्पित की गई। ये भारत पेट्रोलियम लिमिटेड ओमान ऑयल कंपनी और मध्य प्रदेश के सरकार के प्रयासों से बनी विश्व स्तरीय परियोजना है। और साल 2011 में आज ही के दिन झारखंड की पर्वतारोही प्रेमलता अग्रवाल ने दुनिया के सबसे ऊंचे पर्वत शिखर माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली सबसे उम्रदराज भारतीय महिला होने का गौरव हासिल किया। और आज के दिन उन्होंने साल 2011 में पर्वतारोहण के क्षेत्र में एक नया इतिहास रचा था।

कश्मीर की कली इस फिल्म में श्रोताओं आपने सुना मोहम्मद रफ़ी और आशा भोसले को, और इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सुप्रभात आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से, और आपने ट्यून किया है 103.4 मेगाहर्ट्ज। श्रोताओं, 20 मई सन 1900 को जन्म हुआ सुमित्रा नंदन पंत का, जो कि हिंदी साहित्य में छायावाद युग के प्रमुख स्तंभ और प्रकृति के सुकुमार कवि माने जाते हैं। उनका बचपन का नाम था गोसाई दत्त, लेकिन बाद में पढ़ाई के दौरान उन्होंने अपना नाम सुमित्रा नंदन पंत रख लिया, और उनकी 28 से अधिक प्रकाशित कृतियों में कविता, नाटक और निबंध शामिल हैं। और उनकी रचना चिदंबरा के लिए उन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार और रचना कला और बूढ़ा चांद कृति के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला। और इसके अलावा हिंदी साहित्य में उनके योगदान के लिए भारत सरकार ने उन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया, और उनका निधन हुआ 28 दिसंबर सन 1977 को।

श्रोताओं, अपने दैनिक जीवन में अगर हम बात करें अपने भोजन की, तो इसमें मौजूद लगभग एक तिहाई फसलें और फल मधुमक्खियों के परागकणों पर निर्भर हैं। लेकिन कीटनाशकों के अत्यधिक प्रयोग से, वनों की कटाई से और इसके साथ ही जलवायु परिवर्तन के कारण मधुमक्खियों की प्रजातियां जो हैं वो विलुप्त होने की कगार पर हैं। और ये जीव पर्यावरण और मानव जीवन को स्वस्थ रखने में बहुत ही अहम कड़ी है। इसीलिए इस दिशा में लोगों को जागरूक करने के लिए हर साल 20 मई के दिन हम मनाते हैं विश्व मधुमक्खी दिवस। और अपने सुनने वालों को हम ये बता दें कि पहली बार ये दिन मनाया गया साल 2018 में, और ये दिन पारिस्थितिकी तंत्र को संतुलित रखने, खाद्य सुरक्षा बनाए रखने और इसके साथ ही जैव विविधता में मधुमक्खियों के महत्वपूर्ण योगदान के बारे में लोगों में जागरूकता बढ़ाता है।

और श्रोताओं, कार्यक्रम सुप्रभात में अब हम बात करने जा रहे हैं हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिले में स्थित एक शांत धार्मिक पर्यटन स्थल के बारे में, जो कि समुद्र तल से 672 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। और ये स्थान है श्री रेणुका जी। ये जगह अपनी प्राकृतिक सुंदरता और पौराणिक महत्व के लिए जानी जाती है और यहाँ पर हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी प्राकृतिक झील रेणुका झील है और इसका आकार सोई हुई महिला जैसा दिखता है। इसके साथ ही धार्मिक आस्था के कारण यहाँ पर बोटिंग करते समय नंगे पांव रहना पड़ता है और झील के पास ही भगवान परशुराम की माता और महर्षि जमदग्नि की पत्नी रेणुका जी का मंदिर है। उसके साथ ही परशुराम जी का मंदिर भी है और इसके साथ ही झील के पास स्थित चिड़ियाघर पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र है, जहां पर आप कई वन्य जीव देख सकते हैं। और दीपावली पर्व के बाद यहां पर 5 दिनों का अंतर्राष्ट्रीय रेणुका मेले का आयोजन भी किया जाता है, जो रेणुका जी और परशुराम जी के मिलन के प्रतीक के रूप में मनाया जाता है। और यहां जाने का सबसे अच्छा समय मार्च से जून और सितंबर से नवंबर महीने तक का है।

और श्रोताओं, कार्यक्रम सुप्रभात के अंतिम पड़ाव पर पर्यावरण के अंतर्गत अब हम बात करने जा रहे हैं कौआ पक्षी के बारे में, जिसे हम क्रो भी कहते हैं। और ये एक बेहद बुद्धिमान, चतुर और सर्वभक्षी पक्षी है, जो कि कॉर्वस प्रजाति से संबंधित है। और एंटार्क्टिका को छोड़कर ये दुनिया के लगभग हर कोने में पाया जाता है। कौए का रंग चमकदार काला और गहरा सलेटी होता है और इसकी आवाज़ तेज और कर्कश होती है। ये झुंड में रहते हैं और इनके झुंड को मर्डर कहा जाता है। और इनका जीवन काल 10 से 15 साल तक का होता है। और इन्हें प्राकृतिक सफाई कर्मी भी कहा जाता है। और पितृ पक्ष के दौरान इन्हें भोजन करवाना बेहद शुभ माना जाता है। और इसके साथ ही ऐसी मान्यता भी है कि अगर घर में सुबह कौआ बोले तो इसका मतलब कोई मेहमान आने वाला है। जी श्रोताओं, आज के सुप्रभात के अंक में बस इतना ही। चलते चलते अपने सभी श्रोताओं के लिए ये गीत हम सुनवाते हैं और लौटते हैं अगले कार्यक्रम के साथ।

कार्यक्रम सुप्रभात श्रोताओं, आप सुन रहे थे आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से। लीजिए प्रस्तुत है लोकगीतों पर आधारित कार्यक्रम शुभ प्याग।

0: innovation built into every arrival. This May, drive home your favorite Nexa car and unlock new possibilities.
1: Meet the Maruti Suzuki Fronx, the SUV that's big on style and smart on value. With its bold design and spacious comfort, it's built to impress every single day.
0: And now, it's yours at an effective price of just Rs. 6.70 lakh.
1: Yes, Rs. 6.70 lakh. Valid till 31st May. Don't miss out. Visit your nearest Nexa showroom and bring home your Fronx today.
0: Hurry, offers for a limited time only. TNC apply.
2: Nexa.
3: मई धमाका आ गया है, आप घर लाए बोल्ड और स्टाइलिश मारुति सुजुकी ब्रेजा। इफेक्टिव प्राइस सिर्फ 7.66 लाख से शुरू। पावरफुल परफॉर्मेंस, प्रीमियम फीचर्स और ट्रस्टेड सेफ्टी, सब कुछ स्टाइलिश मारुति सुजुकी ब्रेजा में। साथ ही पाइए टोटल बेनिफिट्स अप टू 60,000।
4: तो इंतजार कैसा, दिस में ड्राइव होम हैप्पीनेस। आज ही विजिट करें अपने नियरेस्ट मारुति सुजुकी एरिना शोरूम। टीएनसी अप्लाई।
5: श्रोताओं, कार्यक्रम शुभ प्रयाग में अगला लोकगीत लीजिए, सुनिए अशोक कुमार की आवाज में।

श्रोताओ, आकाशवाणी का ये धर्मशाला केंद्र है। सुबह के 8 बजने को हैं। अब आपको लिए चलते हैं आकाशवाणी के दिल्ली स्टूडियो, जहां से आप सुनेंगे समाचार।

0: मेरा एक जिद्दी पड़ोसी है, पूरी कॉलोनी ने सोलर पैनल लगवा लिए हैं, पर वो मानने को तैयार ही नहीं था कि सच में बिल जीरो आ सकता है। मैंने कहा, बेटा नाम ही है पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। फिर एक एक करके सबका बिजली बिल जीरो आने लगा, तब बोला अब लगवा ही लेता हूँ। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
1: हर घर सूर्य घर।
2: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज रोम में इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी से वार्ता करेंगे। दोनों नेता भारत पश्चिम एशिया यूरोप आर्थिक गलियारे के लिए सहयोग बढ़ाने पर चर्चा और वर्ष 2025 से 2029 तक संयुक्त रणनीतिक कार्रवाई योजना की समीक्षा करेंगे। पश्चिम बंगाल सरकार 25 से 60 वर्ष की महिलाओं के लिए प्रतिमाह 3,000 रुपये की आर्थिक सहायता वाली अन्नपूर्णा योजना 1 जून से शुरू करेगी। एक राष्ट्र एक चुनाव की संयुक्त संसदीय समिति ने कहा, लोकसभा और विधानसभा चुनाव एक साथ कराने से लगभग 7,00,000 करोड़ रुपए की बचत और भारत के सकल घरेलू उत्पाद में 1.6% की वृद्धि होगी। नागर विमानन महानिदेशालय ने इस वर्ष के शुरू में तकनीकी गड़बड़ी के बाद एयर इंडिया के बोइंग 787-8 विमान के ईंधन नियंत्रण स्विच की आगे की जांच के आदेश दिए। और आईपीएल क्रिकेट में राजस्थान रॉयल्स ने लखनऊ सुपर जायंट्स को 7 विकेट से हराया। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज रोम में इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी से वार्ता करेंगे। दोनों नेता भारत पश्चिम एशिया यूरोप आर्थिक गलियारे के लिए सहयोग बढ़ाने पर चर्चा और वर्ष 2025 से 2029 तक संयुक्त रणनीतिक कार्रवाई योजना की समीक्षा करेंगे। इस यात्रा के दौरान दोनों देशों के बीच व्यापार, रक्षा, परिवहन, समुद्री सुरक्षा, बंदरगाह संबंधी सहयोग और स्वच्छ ऊर्जा सहित प्रमुख क्षेत्रों में समझौतों पर हस्ताक्षर होने की संभावना है। इटली से हमारी संवाददाता की रिपोर्ट।
3: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज क्विरिनल पैलेस में इटली के राष्ट्रपति सर्जियो मत्तारेला से मुलाकात करेंगे, जहां उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर प्रदान किया जाएगा। आज के कार्यक्रमों में प्रतिनिधि मंडल स्तरीय वार्ताएं, प्रेस वक्तव्य, समझौता

0: रात्रि भोज का आयोजन किया। अनंतारा प्लाजो नायदी होटल पहुंचने पर प्रवासी भारतीय समुदाय ने श्री मोदी का उत्साहपूर्वक स्वागत किया। प्रधानमंत्री मोदी ने भी गर्मजोशी से समुदाय के सदस्यों से हाथ मिलाया। हाल के वर्षों में भारत इटली संबंधों में अभूतपूर्व प्रगति हुई है और अब ये संबंध निर्णायक मोड़ पर पहुंच गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी के संयुक्त लेख में दोनों नेताओं ने कहा है कि दोनों देशों के बीच संबंध सौहार्दपूर्ण मित्रता से विकसित होकर एक विशेष रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक पहुंच गए हैं। इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी ने नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में तीसरे भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि नॉर्डिक देशों के साथ भारत की भागीदारी को पर्यावरण अनुकूल प्रौद्योगिकी और नवाचार रणनीतिक भागीदारी के स्तर तक ले जाने का निर्णय लिया गया है।
1: इस ग्रीन टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप से हम आइसलैंड की जियो थर्मल और फिशरीज, नॉर्वे की ब्लू इकोनॉमी और आर्कटिक और सभी नॉर्डिक देशों की मैरिटाइम और सस्टेनेबिलिटी की एक्सपर्टीज भारत के स्केल के साथ जोड़कर पूरे विश्व के लिए एक बेहतर भविष्य सुनिश्चित करेंगे।
0: नॉर्वे की दो दिन की यात्रा के दौरान श्री मोदी ने नॉर्वे के प्रधानमंत्री जोनास गहर स्टोरे के साथ द्विपक्षीय बैठक की। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
2: ओस्लो दौरे में हुए बहुपक्षीय और द्विपक्षीय बैठकों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हरित परिवर्तन, नीली अर्थव्यवस्था, जहाज निर्माण, स्वास्थ्य और रक्षा जैसे क्षेत्रों में निवेश के लिए नॉर्डिक देशों को आमंत्रित किया। नेताओं ने पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले सहित सभी प्रकार के आतंकवाद की स्पष्ट और कड़ी निंदा की। सारे प्रधानमंत्रियों ने भारत नॉर्डिक देशों के सहयोग को और गहरा करने की अपनी प्रतिबद्धता दोहराई। अगला शिखर सम्मेलन फिनलैंड में हेलसिंकी में आयोजित किया जाएगा। संगीता गोडबोले, आकाशवाणी न्यूज, ओस्लो, नॉर्वे।
0: केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने जिनेवा में 19वीं विश्व स्वास्थ्य सभा में सभी के लिए स्वास्थ्य कल्याण, डिजिटल स्वास्थ्य नवाचार और वैश्विक स्वास्थ्य एकजुटता के लिए भारत की प्रतिबद्धता दोहराई है। वैश्विक स्वास्थ्य का पुनर्निर्माण एक साझा दायित्व विषय पर आयोजित सभा में श्री नड्डा ने संपूर्ण सरकार और संपूर्ण समाज के दृष्टिकोण पर आधारित सभी के लिए स्वास्थ्य कल्याण की दिशा में भारत की प्रगति का उल्लेख किया।
3: India is accelerating towards universal health coverage.
4: भारत गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवा तक पहुंच का विस्तार करके सभी के लिए स्वास्थ्य कल्याण की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। इसके लिए हमने 185,000 आयुष्मान आरोग्य मंदिर स्थापित किए हैं। इसके अलावा हम महामारी की तैयारियों और आपातकालीन राहत के लिए मजबूत और सुदृढ़ सार्वजनिक स्वास्थ्य बुनियादी ढांचा विकसित करने के लिए प्रतिबद्ध हैं।
3: Pandemic preparedness and emergency responses.
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं।
5: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा, अटल पेंशन योजना, मोदी जी का संकल्प।
6: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
5: अब तक इस योजना से 8,85,00,000 से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित 3 गारंटीड फायदों के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
0: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। पश्चिम बंगाल सरकार ने महिलाओं के सामाजिक आर्थिक उत्थान के लिए 3,000 रुपये की मासिक वित्तीय सहायता की अन्नपूर्णा योजना अधिसूचित कर दी है। महिला और बाल विकास तथा समाज कल्याण विभाग की ये योजना 1 जून से प्रभावी होगी। एक रिपोर्ट।
4: इस योजना के अंतर्गत राशि पात्र लाभार्थियों के आधार से जुड़े बैंक खातों में प्रत्यक्ष लाभ अंतरण के माध्यम से भेजी जाएगी। इस योजना के लिए 25 से 60 वर्ष की महिलाएं पात्र हैं। पात्र महिलाएं आयकर का भुगतान नहीं करती हों और किसी भी स्थायी सरकारी नौकरी में कार्यरत न हो। नए आदेश के अनुसार लक्ष्मी भंडार योजना के सभी वर्तमान लाभार्थी स्वतः ही अन्नपूर्णा योजना में स्थानांतरित हो जाएंगे। नए आवेदकों के लिए अन्नपूर्णा योजना का ऑनलाइन पोर्टल 1 जून 2026 को शुरू किया जाएगा। कल्याण लाहा की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से अर्जुन शर्मा।
0: एक राष्ट्र एक चुनाव पर गठित संयुक्त संसदीय समिति ने कहा है कि लोकसभा, विधानसभा और स्थानीय निकाय चुनाव एक साथ कराने से करीब 7,00,000 करोड़ रुपए की बचत हो सकती है। इससे देश के सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि दर में 1.6% की बढ़ोतरी हो सकती है। समिति के अध्यक्ष और लोकसभा सांसद पीपी चौधरी ने कल शाम गुजरात के गांधीनगर में पत्रकारों को ये जानकारी दी।
7: मैं जो इनपुट मिला है उसमें हमने और कहा इसको और इम्प्रूव करो, और एक रोल मॉडल के रूप में हम पूरे देश में सारे सरकार को हम भेजेंगे भाई इस रूप में आप हमें अपनी रिपोर्ट प्रिपेयर करके

0: जैसे इंडस्ट्रीज डिपार्टमेंट करें, इंडस्ट्रीज में क्या लॉस होता है, प्रोडक्शन का कितना लॉस होता है, लेबर एक तरह से दूसरे तरह माइग्रेट करती है, सबको का अपनी रिपोर्ट प्रिपेयर करें और उसका संकलन करके आगे दे सके।
1: नागर विमानन महानिदेशालय ने एयर इंडिया के बोइंग 787-8 विमान के ईंधन नियंत्रण स्विच की जांच मूल उपकरण निर्माता केंद्र पर महानिदेशालय के अधिकारियों की उपस्थिति में करने का निर्देश दिया है। महानिदेशालय के अनुसार एयर इंडिया के बोइंग 787-8 विमान का संचालन इस वर्ष 2 फरवरी को लंदन के हीथ्रो हवाई अड्डे से बेंगलुरु के लिए उड़ान AIC-132 संचालित करने के बाद रोक दिया गया था। एक रिपोर्ट।
2: यह कार्रवाई पायलट डिफेक्ट रिपोर्ट में दर्ज एक प्रविष्टि के बाद की गई थी। इसमें कहा गया था कि बायां ईंधन नियंत्रण स्विच थोड़ा सा दबाने पर रन से कट ऑफ स्थिति में फिसल जाता है और चयनित स्थिति में ठीक से लॉक नहीं होता है। महानिदेशालय ने कहा कि एयर इंडिया ने मूल उपकरण निर्माता की निर्धारित प्रक्रियाओं के अनुसार और महानिदेशालय के अधिकारियों की उपस्थिति में ईंधन नियंत्रण स्विच का निरीक्षण और कार्यात्मक परीक्षण किया। निरीक्षण परिणामों और उपलब्ध साक्ष्यों की समीक्षा के बाद निष्कर्ष निकाला गया कि ईंधन नियंत्रण स्विच यांत्रिक रूप से डिजाइन के अनुसार कार्य कर रहा था और इकाई को सेवा योग्य घोषित किया। हालांकि महानिदेशालय ने निगरानी के अंतर्गत निर्देश दिया है कि ईंधन नियंत्रण स्विचों का भविष्य में निरीक्षण किया जाए। अनुपम की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से कृष्णकांत।
1: भारतीय रेल ने ब्रॉड गेज नेटवर्क का 99.6% विद्युतीकरण पूरा कर महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। इस वर्ष मार्च तक ब्रॉडगेज रेलवे लाइन का 69,873 किलोमीटर से अधिक मार्ग विद्युतीकृत हो चुका था। इस उपलब्धि के साथ भारत ने यूरोपीय संघ, ब्रिटेन और अमेरिका सहित कई प्रमुख देशों को पीछे छोड़ दिया है। नई दिल्ली के प्रधानमंत्री संग्रहालय में आज से महात्मा गांधी का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से संचालित 3D अवतार आगंतुकों के लिए खोल दिया जाएगा। आगंतुक महात्मा गांधी के 3D अवतार के साथ संवाद कर सकेंगे और अत्याधुनिक तकनीक के माध्यम से बापू की आत्मा को जीवंत कर सकेंगे। और अब खेल समाचारों के साथ हैं आनंद पाठक।
3: IPL क्रिकेट में राजस्थान रॉयल्स ने कल रात लखनऊ सुपर जायंट्स को 7 विकेट से हरा दिया। इसके साथ ही राजस्थान की प्लेऑफ में पहुंचने की संभावना भी बनी हुई है। राजस्थान रॉयल्स ने 221 रन का लक्ष्य 7 विकेट के नुकसान पर 5 गेंद शेष रहते हासिल कर लिया। वैभव सूर्यवंशी ने 93 रन की शानदार पारी खेली। वैभव को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। प्रतियोगिता में आज कोलकाता नाइट राइडर्स का मुकाबला मुंबई इंडियंस से होगा। यह मैच कोलकाता में शाम 7:30 बजे से शुरू होगा। वरिष्ठ भारतीय क्रिकेटर विराट कोहली ने भारतीय हॉकी खिलाड़ियों के फिटनेस स्तर की सराहना करते हुए इसे खेल के लिए समर्पण की पहचान बताया है। कोहली ने कहा कि क्रिकेटरों की फिटनेस भारतीय हॉकी खिलाड़ी की फिटनेस के 15% के बराबर भी नहीं है। सैफ महिला फुटबॉल चैंपियनशिप 2026 के लिए भारतीय दल की पहली सूची की घोषणा कर दी गई है। यह प्रतियोगिता इस महीने की 25 तारीख से 6 जून तक गोवा में आयोजित की जा रही है। उधर राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी ने सर्विसेज स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड के अंकित और रेलवे के जयेश पाटिल पर 3 वर्ष का प्रतिबंध लगा दिया है। दोनों खिलाड़ियों का डोपिंग टेस्ट पॉजिटिव आया था। अंकित ने राष्ट्रीय क्रॉस कंट्री चैंपियनशिप में 3रा स्थान जबकि पाटिल ने 5वां स्थान प्राप्त किया था। दोनों खिलाड़ियों ने आरोपों को स्वीकार कर लिया जिसके परिणाम स्वरूप उनकी अयोग्यता अवधि में 1 वर्ष की कमी हुई है।
1: और अब बात मौसम की। मौसम विभाग ने उत्तर प्रदेश में अगले 2 दिन भीषण गर्मी का रेड अलर्ट जारी किया है। प्रदेश में बढ़ता तापमान हर दिन नए रिकॉर्ड बना रहा है। एक रिपोर्ट।
4: राज्य के बुंदेलखंड इलाके का बांदा जिला लगातार 3रे दिन भी देश का सबसे गर्म क्षेत्र बना हुआ है, जहां अधिकतम तापमान 48.2 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया। राज्य के अन्य हिस्सों में भी भीषण गर्मी से राहत नहीं मिली है और कई स्थानों पर दिन का अधिकतम तापमान 44 से 47 डिग्री सेल्सियस के बीच बना हुआ है और रात के समय भी तापमान 30 डिग्री के आसपास पहुंच रहा है। पारा बढ़ने से आम जनजीवन पर तो असर पड़ा ही है, पशु पक्षी भी सबसे ज्यादा प्रभावित हुए हैं। मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों के लिए राज्य में भीषण लू का रेड अलर्ट जारी किया है। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
1: मध्य प्रदेश भी भीषण गर्मी की चपेट में है। राज्य में पहली बार पारा 47 डिग्री तक पहुंच गया है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध है। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं आकर्षिता सिंह।
5: धन्यवाद विशाल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नॉर्वे यात्रा लोक सत्य सहित कई अखबारों में है। भारत नॉर्वे के बीच अंतरिक्ष हेल्थ डिजिटल क्षेत्रों सहित 12 समझौते। भारत नॉर्डिक समिट में पीएम मोदी के शब्द नवभारत टाइम्स में है। आतंकवाद पर हो एक रुख, कोई समझौता नहीं, कोई दोहरा मापदंड नहीं। प्रधानमंत्री मोदी की इटली यात्रा पर दोनों देशों के प्रधानमंत्रियों का साझा लेख दैनिक जागरण में है। रणनीतिक साझेदारी के युग में भारत और इटली शीर्षक से छपे लेख के अनुसार भारत का तेजी से बढ़ता नवाचार तंत्र और कुशल पेशेवरों की बड़ी संख्या तथा इटली की उन्नत औद्योगिक क्षमता दोनों देशों के सहयोग को स्वाभाविक और रणनीतिक सहयोगी बनाती है। आवारा कुत्तों पर सर्वोच्च न्यायालय का आदेश सभी अखबारों के मुख्य पृष्ठ पर है। हिंदुस्तान की सुर्खी है, खूंखार कुत्तों को सजाए मौत। शीर्ष न्यायालय ने कहा, बच्चों और बुजुर्गों के जीवन को भाग्य के भरोसे नहीं छोड़ सकते। राजस्थान पत्रिका ने सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी को दिया है, भयमुक्त जीवन लोगों का अधिकार। नक्सलवाद की तरह 3 वर्ष में हर केस खत्म करने का लक्ष्य, गृहमंत्री अमित शाह का ये बयान दैनिक भास्कर में है।
1: धन्यवाद आकर्षिता। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज रोम में इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी से वार्ता करेंगे। दोनों नेता भारत पश्चिम एशिया यूरोप आर्थिक गलियारे के लिए सहयोग बढ़ाने पर चर्चा और वर्ष 2025 से 2029 तक संयुक्त रणनीतिक कार्रवाई योजना की समीक्षा करेंगे। पश्चिम बंगाल सरकार 25 से 60 वर्ष की महिलाओं के लिए प्रतिमाह 3,000 रुपए की आर्थिक सहायता वाली अन्नपूर्णा योजना 1 जून से शुरू करेगी। एक राष्ट्र एक चुनाव की संयुक्त संसदीय समिति ने कहा, लोकसभा और विधानसभा चुनाव एक साथ कराने से लगभग 7 लाख करोड़ रुपए की बचत होगी। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
6: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। Good morning, I am Abhishek Mukhopadhyay. The headlines. Prime Minister Narendra Modi to hold talks with his Italian counterpart Giorgia Meloni in Rome today. Two leaders to discuss ways to boost cooperation on India-Middle East-Europe Economic Corridor and review Joint Strategic Action Plan 2025-2029. West Bengal government to roll out Annapurna scheme providing 3,000 rupees per month to women aged 25 to 60 years from June 1st. Joint Parliamentary Committee on One Nation, One Election says simultaneous Lok Sabha and Assembly elections can save nearly 7 lakh crore rupees and increase India's GDP growth by 1.6%. DGCA orders further inspection of fuel control switch of an Air India Boeing 787-8 aircraft following technical snag earlier this year. And in IPL cricket, Rajasthan Royals beat Lucknow Super Giants by 7 wickets in Jaipur. Prime Minister Narendra Modi arrived in Rome last night on an official visit to Italy. Mr. Modi was received at the airport by Italy's Deputy Prime Minister and Minister of Foreign Affairs and International Cooperation, Antonio Tajani. Later, Italian Prime Minister Giorgia Meloni hosted a dinner in honour of Mr. Modi. After the dinner, PM Modi reached Anantara Palazzo Nayadi Hotel, where a jubilant and cheering Indian diaspora welcomed him. Mr. Modi will hold talks with his Italian counterpart, Giorgia Meloni, President Sergio Mattarella, and discuss with them ways to boost India-Italy cooperation. PM Modi's visit will focus on how to boost India-Italy cooperation, especially focusing on the India-Middle East-Europe Economic Corridor, IMEC. The Joint Strategic Action Plan 2025-2029 will also be reviewed. Mr. Modi will also be visiting the headquarters of the Food and Agriculture Organization, FAO, and strengthening India's commitment to multilateralism as well as global food security. A correspondent covering the Prime Minister's visit has filed this report.
7: Prime Minister Narendra Modi will call on the President of Italy, Sergio Mattarella, at the Quirinal Palace today, where he will be accorded a guard of honor. The day's engagements include delegation-level talks, press statements, exchange of memoranda of understanding, bilateral meetings, and a visit to the Food and Agriculture Organization. Prime Minister Modi will also plant a Morus nigra black mulberry tree, a species that symbolically connects India and Italy through its culinary, medicinal, and agricultural significance. This is Suparna Bhatia from Rome.
6: Earlier yesterday, Indian Nordic nations comprising Norway, Sweden, Denmark, Finland, and Iceland elevated the bilateral ties to a green technology and innovation strategic partnership. Mr. Modi made the announcement while addressing a joint press meet with leaders of Nordic nations.

0: after attending the third India Nordic summit in the Norwegian capital Oslo.
1: आज हमने भारत और नॉर्डिक संबंधों को ग्रीन टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का स्वरूप देने का निर्णय लिया है। इस ग्रीन टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप से हम आइसलैंड की जियोथर्मल और फिशरीज, नॉर्वे की ब्लू इकोनॉमी और आर्कटिक और सभी नॉर्डिक देशों की मैरिटाइम और सेंसिटिविटी में एक्सपर्टीज को, सस्टेनेबिलिटी की एक्सपर्टीज को भारत के स्केल के साथ जोड़कर पूरे विश्व के लिए एक बेहतर भविष्य सुनिश्चित करेंगे।
0: प्राइम मिनिस्टर मोदी सेड इन्वेस्टमेंट्स फ्रॉम नॉर्डिक कंट्रीज इन इंडिया रोज बाय 200% इन द पास्ट डेकेड।
1: 10 वर्षों में हमारा बायलेटरल ट्रेड लगभग 4 गुना बढ़ा है। नॉर्डिक देशों के इन्वेस्टमेंट फंड भी भारत की रैपिड ग्रोथ में अहम साझेदार बन रहे हैं। पिछले एक दशक नॉर्डिक देशों से भारत में निवेश में लगभग 200% की बढ़ोतरी हुई है। तेजी से बढ़ते ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट ने भारत की ग्रोथ स्टोरी में तो योगदान दिया ही है, साथ ही नॉर्डिक देशों की अर्थव्यवस्थाओं में भी बहुत सकारात्मक भूमिका निभाई है और हजारों नए जॉब्स क्रिएट किए हैं।
0: Prime Minister Modi affirmed that the relations between India and the Nordic countries are set to usher in a new golden era with the recently concluded trade agreements, including trade and economic partnership and India-EU free trade deal. A correspondent covering the Prime Minister's visit to Norway has filed this report from Oslo.
2: A joint statement released after the third India-Nordic summit outlines the areas of shared goals and vision of India and the five Nordic countries. They decided to elevate their relations to a green technology and innovation strategic partnership. This reflects their shared commitment to sustainability, innovation and green growth. They encouraged collaboration in research, innovation and talent mobility. In the multilateral and bilateral engagements during his Oslo visit, Prime Minister Narendra Modi invited Nordic investments in areas such as green transition, blue economy, shipbuilding, health and defense. In light of the India-EU FTA and TEPA agreement, he conveyed India's keenness for stronger economic and commercial ties with the Nordic region. On the global issues, the leaders together advocated for rules-based world order and reformed multilateral system. They underlined the importance of de-escalation in the conflict regions. The leaders unequivocally and strongly condemned terrorism, including the terrorist attack in Pahalgam. The Prime Ministers reaffirmed their commitment to further deepen the India-Nordic cooperation. The next India-Nordic summit would be held in Helsinki, Finland. Sangeeta Godbole, Akashwani News, Oslo, Norway.
0: West Bengal government will roll out Annapurna scheme providing 3,000 rupees per month to women aged 25 to 60 years from June 1st. The money will be credited directly through direct benefit transfer, DBT, into the Aadhaar-linked bank accounts of eligible beneficiaries. To qualify for the scheme, women must be aged between 25 and 60 years, must not be paying income tax, and must not hold any permanent government employment or receive a regular salary pension from the state, central, statutory, panchayat, municipal, local bodies, or government-aided educational institutions. Under the new order, all existing beneficiaries of the Lakshmir Bhandar scheme will be automatically migrated to the Annapurna Yojana. For new applicants, an online portal for the Annapurna Yojana will launch on June 1st, 2026. The Joint Parliamentary Committee, JPC, on One Nation, One Election has said the simultaneous Lok Sabha, Assembly and local body elections can save nearly 7 lakh crore rupees, improve governance efficiency and increase India's GDP growth by up to 1.6%. Addressing a press conference in Gandhinagar, JPC Chairperson P.P. Chaudhary said India had followed a synchronized election system until 1967 when Lok Sabha and the State Assembly elections were conducted together. He said the cycle was disturbed after the premature dissolution of 7 state assemblies in 1968 and later during the emergency period. Gradually, elections across states went out of synchronization. Mr. Chaudhary said several institutions, including the Election Commission, the Law Commission and parliamentary committees, had over the years recommended simultaneous elections.
3: सारी परिस्थितियों को देख करके हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी की दूरदृष्टि
4: प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी कॉन्स्टिट्यूटेड एन 8 मेंबर कमेटी अंडर द लीडरशिप ऑफ आवर फॉर्मर प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद द कमेटी आल्सो बेनिफिटेड फ्रॉम द गाइडेंस ऑफ होम मिनिस्टर अलोंग विद हिम एनके सिंह हु इज एन इकोनॉमिस्ट एंड गुलाम नबी आजाद हु इज अ प्रोमिनेंट लीडर विद वास्ट पॉलिटिकल एक्सपीरियंस फॉर पार्ट ऑफ इट दैट कमेटी सबमिटेड इट्स रिपोर्ट टू द गवर्नमेंट विच रिकमेंडेड दैट साइमल्टेनियस इलेक्शन

श्रोताओं, कार्यक्रम एक ही फिल्म से में आज हम बात कर रहे हैं संजय कपूर और माधुरी दीक्षित के अभिनय से सजी ब्लॉकबस्टर फिल्म राजा की। और इस फिल्म में उनके सह कलाकार थे परेश रावल, मुकेश खन्ना, दिलीप ताहिल, रीता भाडुरी और हिमानी शिवपुरी। और ये फिल्म रिलीज हुई 2 जून सन 1995 को और अपने समय की एक बहुत बड़ी हिट फिल्म साबित हुई।

0: the SUV. That's big on style and smart on value. With its bold design and spacious comfort, it's built to impress every single day.
1: And now, it's yours at an effective price of just Rs. 6.70 lakh.
0: Yes, Rs. 6.70 lakh. Valid till 31st May. Don't miss out. Visit your nearest Nexa showroom and bring home your fronts today.
1: Hurry, offers for a limited time only. TNC apply. Nexa.
2: जल्दी टिफिन पैक करो राजू, मोबाइल छोड़ो।
3: अरे दीदी, वो बैंक का नंबर चाहिए, रिफंड ही नहीं आया। मिल गया, अब भी कॉल करता हूँ दीदी।
2: बिना नंबर जांचे अक्सर जालसाज बैंक की नकली वेबसाइट और फर्जी नंबर से पैसों की धोखाधड़ी करते हैं।
3: तो फिर सही नंबर
2: बैंक की ऑफिशियल वेबसाइट या तो कार्ड।
3: आपने तो बचा लिया दीदी।
2: काम से नहीं।
4: RBI कहता है,
5: सही वित्तीय बर्ताव करे आपका बचाव।
0: Inspiration built into every arrival. This May, drive home your favorite Nexa car and unlock new possibilities.
1: Meet the Maruti Suzuki Grand Vitara, where strong hybrid technology meets premium comfort and safety. Now at an effective price starting from just Rs. 9.72 lakhs.
0: Yes, Rs. 9.72 lakhs. Offer valid till 31st May. Own this style icon at an EMI of just Rs. 899 per month.
1: Experience luxury with a panoramic sunroof, ventilated seats, 360-degree view camera, heads-up display and 6 airbags as standard.
0: Hurry, limited stock available. Visit your nearest Nexa showroom. PNC apply.
6: Nexa.
7: जी श्रोताओं, फिल्म राजा की सफलता का एक बहुत बड़ा कारण था नदीम श्रवण का संगीत और समीर के बोल, और इस फिल्म के लिए माधुरी दीक्षित को बेस्ट एक्ट्रेस का स्क्रीन अवार्ड भी मिला था। तो चलिए सुनवाते हैं राजा फिल्म से कार्यक्रम का ये अंतिम गीत सिर्फ आपके लिए। आप इंजॉय कीजिए ये गीत और बने रहिए आकाशवाणी धर्मशाला के संग, और हम कुछ ही पलों में वापिस आएंगे अगले कार्यक्रम के साथ जो है गीतांजलि।

श्रोताओं, एक ही फिल्म से ये कार्यक्रम आप सुन रहे थे आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से। सुबह के 9 बजे हैं। लीजिए प्रस्तुत है फिल्म संगीत का कार्यक्रम गीतांजलि। नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी धर्मशाला और मैं हूं आपकी रेडियो दोस्त वंदना रैना। दोस्तों, कहते हैं इंसान की पहचान उसके नाम से होती है, लेकिन याद सिर्फ उसके चेहरे से होती है।

जी श्रोताओ, एक चेहरा जो बचपन की याद दिलाता है, एक चेहरा जो माँ की ममता जैसा सुकून देता है, और एक चेहरा ऐसा भी होता है जिसे देखकर दिल खुद ब खुद मुस्कुरा उठता है। तो आज का गीतांजलि कार्यक्रम में संगीत का सफर समर्पित है उन मुस्कुराते हुए चेहरों को, प्यार भरे चेहरों को, और उन चेहरों को जो हमारी जिंदगी की सबसे खूबसूरत याद बन जाते हैं।

ये खूबसूरत सा गीत आपने सुना किशोर कुमार की आवाज में फिल्म सागर से, और कुछ गीत सिर्फ सुने नहीं जाते, महसूस किए जाते हैं। दोस्तों, किसी का चेहरा अगर दिल में उतर जाए तो फिर हर जगह वही नजर आता है, किताबों में, ख्वाबों में, और कभी कभी तो बारिश की बूंदों में भी। तो अब सुनिए वो गीत जो प्यार के खूबसूरत एहसास को बयान करने वाला है।

दोस्तों, चेहरे की खूबसूरती सिर्फ रंग या शक्ल से नहीं होती, उसकी असली चमक तो मुस्कान में होती है। एक प्यारी सी स्माइल जो किसी का पूरा दिन भी बदल सकती है और किसी मौसम को खुशनुमा भी बना सकती है। तो कार्यक्रम का अगला गीत कुछ ऐसे ही एहसास लेकर आया है।

श्रोताओं, कार्यक्रम गीतांजलि का शेष भाग आप सुनेंगे 9:20 पर, और सुबह के 9:18 हो चुके हैं। थोड़ी ही देर में आपको लिए चलते हैं आकाशवाणी शिमला के स्टूडियो, जहां से आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार।

0: तो बल खाते।
1: गांव है हमारी पहचान, हमारा गांव है हमारा अभिमान। आइए मिलकर दें इसके विकास में अपना योगदान।
2: हम सब ने ठाना है कि 100% मतदान के लक्ष्य को पाना है।
1: पंचायत चुनाव आ रहे हैं, जहां आपका हर ईमानदारी से दिया गया वोट तय करता है गांव की दशा और दिशा, साथ ही बनता है गांव के विकास का आधार।
2: तो 26, 28 और 30 मई को होने वाले पंचायत चुनाव में बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले और अपने परिवार और आस पास के हर वोटर को मतदान के लिए प्रेरित करे।
1: राज्य निर्वाचन आयोग, हिमाचल प्रदेश द्वारा जारी।
3: नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप विनोद कुमार से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। राज्यपाल का युवाओं से खेलों को समर्पण और जुनून के साथ अपनाने का आह्वान। प्रदेश में पंचायती राज संस्थाओं के लिए निर्विरोध चुने गए 10,854 पदाधिकारी। पंचायत चुनाव के लिए चुनाव प्रचार जोरों पर, उम्मीदवार मतदाताओं को रिझाने के लिए कड़ी धूप में बह रहे हैं पसीना। केंद्रीय विश्वविद्यालय धर्मशाला में अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस और विश्व पर्यावरण दिवस के उपलक्ष्य में संगोष्ठी कल। और प्रदेश में भीषण गर्मी का दौर जारी, फिलहाल राहत की उम्मीद नहीं। और अब समाचार विस्तार से। राज्यपाल कविंदर गुप्ता ने युवाओं से खेलों को समर्पण और जुनून के साथ अपनाने का आह्वान किया है। राज्यपाल जम्मू में इंडिया ओपन राष्ट्रीय शूटिंग प्रतियोगिता में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले दो युवा निशानबाजों को सम्मानित करने के मौके पर बोल रहे थे। राज्यपाल ने कहा कि कम आयु में इन खिलाड़ियों की उपलब्धियां उनकी असाधारण प्रतिभा, कठोर परिश्रम और दृढ़ संकल्प का परिचायक है। उन्होंने कहा कि निरंतर अभ्यास और दृढ़ इच्छा शक्ति से राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सफलता प्राप्त की जा सकती है। राज्यपाल ने यह भी कहा कि हमारे युवा खिलाड़ी देश का भविष्य है और उनकी उपलब्धियां उन युवाओं के लिए प्रेरणा का स्रोत है। कविंदर गुप्ता ने कहा कि हमें खेल संस्कृति को बढ़ावा देने और प्रतिभाशाली खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने की आवश्यकता है। प्रदेश में पंचायती राज संस्थाओं के लिए होने जा रहे चुनाव में 10,854 पदाधिकारी निर्विरोध चुन लिए गए हैं। राज्य निर्वाचन आयोग के अनुसार इनमें 85 पंचायत समिति सदस्य, 176 ग्राम पंचायत प्रधान, 286 उप प्रधान और 10,307 वार्ड सदस्य शामिल है। इसके अलावा 131 ग्राम पंचायतें पूरी तरह से निर्विरोध निर्वाचित हुई है। आयोग ने कहा कि निर्विरोध निर्वाचन के बाद अब इन पदों पर मतदान नहीं होगा और इससे चुनावी खर्च और प्रशासनिक प्रक्रिया का बोझ कम होगा। आयोग ने कहा कि शेष पदों के लिए 26, 28 और 30 मई को निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार मतदान होगा। पंचायतों के चुनाव परिणाम मतदान के तुरंत बाद घोषित कर दिए जाएंगे, जबकि पंचायत समितियों, जिला परिषदों और 4 नगर निगमों के चुनाव परिणाम 31 मई को घोषित किए जाएंगे। इस बीच प्रदेश में पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव के लिए प्रचार जोरों पर है। उधर कांगड़ा जिला में पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव के लिए जिला प्रशासन ने सभी तैयारियां पूरी कर ली है। जिला निर्वाचन अधिकारी व उपायुक्त कांगड़ा हेमराज बैरवा ने कहा कि चुनाव प्रक्रिया को निष्पक्ष, पारदर्शी और शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न करवाने के लिए व्यापक प्रबंध किए गए हैं। उन्होंने कहा कि जिले की करीब 850 पंचायतों के लिए होने वाले चुनाव में 12,00,000 से अधिक मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकेंगे। उपायुक्त ने कहा कि जिले में 330 मतदान केंद्रों को संवेदनशील घोषित किया गया है। इन केंद्रों पर सुरक्षा के विशेष प्रबंध किए जाएंगे।
4: पूरा जो मतदान की पूरी प्रक्रिया है वो निष्पक्ष हो, पारदर्शी हो और स्मूथ हो, इसकी दिशा में हमारे सभी SDMs, BDOs और तहसीलदार ये लोग इसमें लगे हैं। हमने सेक्टर ऑफिसर्स एंड सेक्टर मजिस्ट्रेट्स भी इसके अंदर डिप्लॉय किए हैं और हमारा प्रयास यही रहेगा कि जो हमारी पोलिंग हो वो स्मूथ तरीके से हो। उसके बाद जो काउंटिंग है वहाँ पर हम एंटायर प्रोसेस को वीडियोग्राफ करें या वेबकास्टिंग के माध्यम से कवर करें।
3: प्रदेश सरकार में उप मुख्य सचेतक केवल सिंह पठानिया ने दावा किया है कि नगर निकाय चुनाव में राज्य की जनता ने प्रदेश सरकार के 3 साल के कार्यकाल पर भरोसा जताया है और सरकार द्वारा किए गए विकास कार्यों पर मुहर लगाई है। पठानिया ने शिमला में पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि कांग्रेस ने प्रदेश भर में 47 नगर निकायों में से 29 में जीत दर्ज की है, जबकि भाजपा को केवल 16 निकायों में ही जीत मिली है। हिमाचल प्रदेश केंद्रीय विश्वविद्यालय 21 और 22 मई को शाहपुर परिसर में दो दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन करेगा। ये संगोष्ठी अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस और विश्व पर्यावरण दिवस के संदर्भ में आयोजित की जा रही है। विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर सत्य प्रकाश बंसल ने कहा कि इस संगोष्ठी में देश विदेश के वैज्ञानिक, शोधकर्ता और विशेषज्ञ भाग ले रहे हैं। उन्होंने कहा कि संगोष्ठी से प्राप्त शोध निष्कर्षों और सुझावों को उचित मंचों के माध्यम से सरकार तक पहुंचाया जाएगा, ताकि नीति निर्माताओं को पर्यावरण और आपदा प्रबंधन से जुड़े मामलों में बेहतर और सुरक्षित निर्णय लेने में मदद मिल सके।
0: हमारा जो एनवायरनमेंट विभाग है मध्य प्रदेश केंद्रीय विश्वविद्यालय का, एक अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी आयोजित करने का किया है। दो दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन शाहपुर में 21 और 22 मई को, क्योंकि हमारा 21 को इंटरनेशनल डे फॉर बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी ऐसा करके है, और वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे 5 जून को होता है, तो हम इसके संदर्भ में ये इकट्ठी दो दिन की एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन करने जा रहे हैं। इसका मुख्य रूप से जो थीम रहेगा वो सस्टेनेबिलिटी, क्लाइमेटिक एडॉप्शन और डिजास्टर मैनेजमेंट।
3: ताजा समाचारों के लिए आप हमारे फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज शिमला, एक्स हैंडल @AIRNews_शिमला और यूट्यूब चैनल AIR शिमला न्यूज को फॉलो कर सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी शिमला से प्रसारित किए जा रहे हैं। हिमाचल प्रदेश नशा निवारण के पूर्व संयोजक व सलाहकार ओपी शर्मा ने कहा है कि प्रदेश सरकार राज्य में नशा रोकने में विफल रही है। ओपी शर्मा ने शिमला में एक पत्रकार वार्ता में आरोप लगाया कि कांग्रेस सरकार राज्य में नशा खत्म करने में गंभीर नहीं है और प्रदेश में डार्क वेब जैसे खतरनाक टूल के माध्यम से नशे की आपूर्ति हो रही है। उन्होंने कहा कि केवल पुलिस के भरोसे नशे को खत्म नहीं किया जा सकता, इसके लिए समाज का सहयोग और जागरूकता जरूरी है। ओपी शर्मा ने यह भी आरोप लगाया कि प्रदेश सरकार ने नियमों को दरकिनार कर नशा निवारण बोर्ड का गठन किया है और इसमें राजनीतिक व्यक्ति को संयोजक बनाया गया है।
5: नशा निवारण बोर्ड का आज तक एक बैठक नहीं हुई, क्या कारण है? इस प्रदेश की जनता ये जानना चाहती है, जब लाखों रुपए खर्च किए जा रहे हैं तो ऐसा क्या हुआ कि नशा निवारण बोर्ड की आज तक बैठक कन्वीनर कम एडवाइजर ने, सलाहकार महोदय ने, या जो सदस्य सचिव हैं एक्साइज एंड टैक्सेस के जो मेंबर सेक्रेटरी हैं, उन्होंने इस नशा निवारण बोर्ड की बैठक को क्यों नहीं किया? मैंने यह विषय माननीय राज्यपाल महोदय के समक्ष भी उठाया है।
3: केंद्र सरकार द्वारा शुरू किया गया राष्ट्रव्यापी HPV टीकाकरण अभियान कुल्लू जिला में भी शुरू हो गया है। ये टीका किशोरियों को सर्वाइकल कैंसर से बचाएगा। इस अभियान के तहत 14 से 15 वर्ष तक की बालिकाओं को HPV का टीका लगाया जाएगा। अधिक ब्यौरे के साथ हमारे कुल्लू जिला संवाददाता।
6: महिलाओं को सर्वाइकल कैंसर से बचाने हेतु भारत सरकार द्वारा राष्ट्रव्यापी HPV टीकाकरण अभियान शुरू किया गया है। कुल्लू जिला में भी ये अभियान शुरू हो चुका है तथा जिला में इसके तहत 39,089 किशोरियों को टीका लगाने का लक्ष्य रखा गया है। अभी तक इस अभियान के तहत 1,630 किशोरियों को टीका लगाया जा चुका है। इस अभियान का मुख्य उद्देश्य 14 से 15 वर्ष तक की बालिकाओं को सर्वाइकल कैंसर से बचाना है, परंतु बीते दिनों सोशल मीडिया में इस वैक्सीन संबंधी कुछ भ्रामक अफवाहें फैलाई गई, जिस पर चिकित्सा अधिकारी कुल्लू डॉक्टर रणजीत सिंह ने स्पष्ट किया कि वैक्सीन पूरी तरह से सुरक्षित है तथा भविष्य में ये किशोरियों को सर्वाइकल कैंसर जैसी जानलेवा बीमारियों से बचाएगी। उन्होंने 14 वर्ष पूर्ण कर रही किशोरियों के परिजनों से अपील की है कि वे अपनी बेटियों का HPV टीकाकरण जरूर करवाएं तथा ये पूर्णतः निःशुल्क है। इस बारे में ज्यादा जानकारी अपने नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र में जाकर ली जा सकती है। आकाशवाणी के लिए कुल्लू से आशीष शर्मा।
3: प्रदेश में मई की गर्मी ने लोगों को बेहाल कर दिया है। मंगलवार को प्रदेश में इस साल का अब तक का सबसे गर्म दिन रहा और मैदानों से लेकर पहाड़ों तक लोगों को जबरदस्त गर्मी का सामना करना पड़ा। मौसम विभाग के पूर्वानुमानों के अनुसार आने वाले दिनों में भी भीषण गर्मी से राहत की उम्मीद नहीं है। विभाग ने आज भी प्रदेश में कुछ स्थानों पर लू चलने का अलर्ट जारी किया है। एक रिपोर्ट।
7: मौसम विभाग के अनुसार प्रदेश के कई हिस्सों में दिन का तापमान सामान्य से 3 से 6 डिग्री सेल्सियस तक अधिक दर्ज किया गया है। शिमला और मनाली जैसे ठंडे शहरों में भी लोगों को दिन भर गर्मी और उमस का सामना करना पड़ रहा है। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला ने आज और कल भी दो जिलों कांगड़ा और सोलन में लू चलने का येलो अलर्ट जारी किया है। वहीं कल 21 मई को कुछ जिलों चंबा, कांगड़ा और कुल्लू में आंधी व बिजली गिरने का भी येलो अलर्ट जारी किया गया है, जबकि 22 मई को चंबा, कांगड़ा, कुल्लू, मंडी और शिमला में अधड़ बारिश व बिजली चमकने की संभावना है। 23 व 24 मई को मैदानी क्षेत्रों में मौसम साफ रह सकता है, जबकि मध्यम व ऊंचाई वाले इलाकों में हल्की बारिश की संभावना है। 25 मई को एक बार फिर से प्रदेश में मौसम का मिजाज बदलेगा और बारिश होने की संभावना मौसम विभाग की तरफ से जताई गई है, जिससे लोगों को गर्मी से कुछ हद तक राहत मिलने की उम्मीद है। आकाशवाणी समाचार के लिए शिमला से योगराज शर्मा।
3: और अब एक नजर अखबारों की सुर्खियों पर। आज समाचार पत्रों ने अलग अलग खबरों को प्रमुखता दी है। अमर उजाला की सुर्खी है, हिमाचल में 176 प्रधान 286 उप प्रधान समेत 10,854 पंचायत प्रतिनिधि निर्विरोध निर्वाचित। प्रदेश हाईकोर्ट के हवाले से पंजाब केसरी लिखता है, तबादले के खिलाफ याचिका दायर करने से रोकना न्याय प्रशासन में हस्तक्षेप या बाधा डालने के समान। दैनिक जागरण की एक खबर है, परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स में छठे स्थान पर पहुंचा हिमाचल। मुख्यमंत्री के हवाले से हिमाचल दस्तक लिखता है, महिलाओं को ब्यूटी पार्लर बुटीक के लिए मिलेगा 3 लाख का ऋण। हिमाचल के 4 जिलों में चली लू शीर्षक से दिव्य हिमाचल लिखता है, ऊना में 43.4 डिग्री तक पहुंचा पारा, अगले 48 घंटों के लिए हीट वेव का अलर्ट। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर, राज्यपाल का युवाओं से खेलों को समर्पण और जुनून के साथ अपनाने का आह्वान। प्रदेश में पंचायती राज संस्थाओं के लिए निर्विरोध चुने गए 10,854 पदाधिकारी। पंचायत चुनाव के लिए चुनाव प्रचार जोरों पर, उम्मीदवार मतदाताओं को रिझाने के लिए कड़ी धूप में बाह रहे हैं पसीना। केंद्रीय विश्वविद्यालय धर्मशाला में अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस और विश्व पर्यावरण दिवस के उपलक्ष्य में संगोष्ठी कल। और प्रदेश में भीषण गर्मी का दौर जारी, फिलहाल राहत की उम्मीद नहीं। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं सुबह 11 बजे। नमस्कार।
8: आकाशवाणी का ये धर्मशाला केंद्र है, एफएम बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। सुबह के 9:30 हुए हैं, श्रोताओं लीजिए सुनिए कार्यक्रम गीतांजलि।
9: आकाशवाणी एट 90 साल की आवाज, दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल। पुरानी यादें, नया जोश है, देश का रेडियो अब भी बॉस है। आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल।

0: डीजल क्यों चूज कर रहे हैं जब स्मार्टर ऑप्शन है यही। इंट्रोड्यूसिंग नई मारुति सुजुकी अरीना की विक्टोरियस SCNG सेगमेंट फर्स्ट अंडर बॉडी CNG टैंक के साथ 27.02 किलोमीटर पर किलोग्राम तक का माइलेज, मतलब ज्यादा सेविंग्स कम खर्चा। और अब विक्टोरियस खरीदने पर पाए एक्सचेंज बोनस अप टू 50,000, तो देर किस बात की। आज ही अपने नियरेस्ट मारुति सुजुकी अरीना डीलरशिप विजिट कीजिए। मारुति सुजुकी SCNG, स्मार्टर फ्यूल स्मार्टर यू। टीएनसी अप्लाई।
1: श्रोताओ, FM 103.4 MHz पर आप सुन रहे हैं कार्यक्रम गीतांजलि अपनी रेडियो दोस्त वंदना रैना के साथ। और दोस्तों, आज का ये गीतांजलि कार्यक्रम है चेहरा स्पेशल, जहां हर गीत किसी न किसी एहसास का आईना बनकर सामने आ रहा है। और आपने कभी गौर किया है दोस्तों, कुछ चेहरे वक्त के साथ बदल जाते हैं लेकिन उनसे जुड़ी हुई यादें कभी नहीं बदलती। पुरानी तस्वीरें जब भी हाथ में आती हैं तो चेहरे नहीं, पूरा वक्त ही वापस लौट आता है।

दोस्तों, फिल्म धर्मात्मा से ये गीत आपने सुना किशोर कुमार की आवाज में। और प्यार जब सच्चा हो तो इंसान भीड़ में भी सिर्फ एक ही चेहरा ढूंढता है। और कार्यक्रम का अगला गीत उसी एहसास को बेहद खूबसूरती से बयान करता हुआ

दोस्तों, आजकल के समय में मोबाइल में हजारों तस्वीरें होती हैं, लेकिन पहले लोग एक तस्वीर को सालों संभाल कर रखते थे, क्योंकि उस तस्वीर में सिर्फ एक चेहरा नहीं, उनकी पूरी दुनिया बसती थी।

1942 अ लव स्टोरी, इस फिल्म का गीत आपने सुना कुमार सानू की आवाज में। दोस्तों, अगर आपको किसी एक चेहरे को हमेशा के लिए याद रखने का मौका मिले तो वो चेहरा किसका होगा? माँ का, दोस्त का, या फिर किसी खास इंसान का? सोचिएगा जरूर। और तब तक हम सुनते हैं 90 के दशक का वो शानदार गीत जिसे हमने लिया है फिल्म बाजीगर से, और इस गीत को गाया है आशा भोसले और विनोद राठौर ने।

दोस्तों, चेहरे बदलते हैं, वक्त बदलता है, लेकिन कुछ मुस्कानें हमेशा दिलों में रह जाती हैं। तो मुस्कुराते चेहरों और खूबसूरत गीतों से सजे इस सफर में आज का आपका और हमारा साथ बस यहीं तक, और आपको सुनवाते हैं कार्यक्रम की अंतिम प्रस्तुति। अनाड़ी फिल्म से ये गीत है, उदित नारायण का गाया हुआ।

रंग तेरा। श्रोताओं, आज के गीतांजलि कार्यक्रम में अब आपसे अलविदा लेते हुए बस इतना ही कहेंगे। अपनों के चेहरे पर मुस्कान बनाए रखिए, क्योंकि दुनिया की सबसे खूबसूरत चीज है एक सच्ची मुस्कान। और आपको ये भी बता दें कि इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता हैं जितेंद्र पाल सिंह। और अब अपनी रेडियो दोस्त वंदना रैना को दीजिए इजाजत। नमस्कार, लेकिन आप जुड़े रहिए आकाशवाणी धर्मशाला के साथ।

फिल्म संगीत सुनने वाले हमारे सभी श्रोताओं को आपकी रेडियो दोस्त मीनाक्षी की प्यार भरी नमस्ते। कुमार सानू और अलका याग्निक के स्वरों में लीजिए सुनिए फिल्म कुछ कुछ होता का है ये गीत। और फिल्म के बोल लिखे हैं समीर अंजान ने और गीत संगीत से सजाया है जतिन ललित ने।

0: मधुर है ये मीठी वाणी, नाम है इसका आकाशवाणी।
1: आकाशवाणी का मनोरंजन संसार छुए सबके दिल के तार।
2: सुबह से रात तक रहता है हमारे अंग संग, इसीलिए तो रंगे हैं हम इसके रंग।

0: छूटे ना हर दिन कोई जानकारी, इसीलिए तो है हर किसी को प्यारी।
1: भक्ति संगीत के साथ करता है भाव विभोर, बांधे हुए है सबके दिल की डोर।
2: ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे।
0: सदाबहार गीतों का संगम, थामे है हर दिल की धड़कन।
1: फिर आती युवाओं की बारी, मनोरंजन के साथ मिलती हर जानकारी।
0: किसानों का तो नाता जुड़ा इससे, सुनते जानकारियां और नए नए किस्से।
1: महिलाओं का भी अपना संसार, लेकर आती हैं घर परिवार।

0: आकाशवाणी धर्मशाला के विशेष कार्यक्रम आप और हम आपके विचारों, सुझावों और शिकायतों के लिए समर्पित है।
1: यदि आप आकाशवाणी धर्मशाला के कार्यक्रमों के संबंध में अपनी राय, सुझाव या शिकायत हमें भेजना चाहते हैं तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं या पत्र भी लिख सकते हैं।
0: ईमेल का पता है dharmshala@gmail.com। पत्र भेजने का पता है आकाशवाणी धर्मशाला, कार्यक्रम अनुभाग, धर्मशाला, हिमाचल प्रदेश।
1: आपके सुझाव हमारे लिए बहुमूल्य हैं और हमें अपने कार्यक्रमों को और भी बेहतर बनाने की प्रेरणा देते हैं।
0: तो देर किस बात की, अपने विचार हम तक अवश्य पहुंचाइए,
1: क्योंकि आप और हम में आपकी आवाज़, आपके विचार हैं सबसे महत्वपूर्ण।

अलका याग्निक और बाबुल सुप्रियो की आवाजों में लीजिए सुनिए फिल्म चोरी चोरी चुपके चुपके का ये गीत। शब्द रचना समीर की है और सुरों से सजाया है अनु मलिक ने।

धर्मशाला केंद्र से एफएम बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। फिल्म परदेस का ये गीत आपको सुनवा रहे हैं। आवाजें हैं कुमार सानू और अलका याग्निक की, गीतकार आनंद बख्शी और संगीतकार हैं नदीम श्रवण।

0: मई धमाका आ गया है। अब घर लाए बोल्ड और स्टाइलिश मारुति सुजुकी ब्रेजा। इफेक्टिव प्राइस सिर्फ 7.66 लाख से शुरू। पावरफुल परफॉर्मेंस, प्रीमियम फीचर्स और ट्रस्टेड सेफ्टी, सब कुछ स्टाइलिश मारुति सुजुकी ब्रेजा में। साथ ही पाइए टोटल बेनिफिट्स अप टू 60,000।
1: तो इंतजार कैसा, दिस में ड्राइव होम हैप्पीनेस। आज ही विजिट करें अपने नियरेस्ट मारुति सुजुकी एरीना शोरूम। TNC अप्लाई।
2: आखिर में सुनिए फिल्म दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगा का ये गीत। गीत को गाया है आशा भोंसले और अभिजीत भट्टाचार्य ने। बोल लिखे हैं आनंद बख्शी ने और संगीत दिया है जतिन ललित ने।

एफएम बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का धर्मशाला केंद्र है। 10:30 हुए हैं, अब आप सुनेंगे हिमाचली गीत और लोकगीतों का ये कार्यक्रम। कार्यक्रम की शुरुआत कर रहे हैं इस लोक भजन से, जिसे गाया है करनैल राणा ने।

0: Inspiration built into every arrival. This May, drive home your favorite Nexa car and unlock new possibilities.
1: Meet the Maruti Suzuki Grand Vitara, where strong hybrid technology meets premium comfort and safety. Now at an effective price starting from just Rs. 9.72 lakhs.
0: Yes, Rs. 9.72 lakhs. Offer valid till 31st May. Own this style icon at an EMI of just Rs. 899 per month.
1: Experience luxury with a panoramic sunroof, ventilated seats, 360-degree view camera, heads-up display and 6 airbags as standard.
0: Hurry, limited stock available. Visit your nearest Nexa showroom. PNC apply.
1: Thanks.
2: पॉडकास्ट और वायरल रील्स के शोर में सोचो असली ओजी कौन है। बॉस रेट्रो इज द न्यू कूल और इंडिया का सबसे पहला ट्रेंड सेटर है अपना आकाशवाणी। वही सुकून वाली वाइब, म्यूजिक और सॉलिड इन्फो पूरे 90 सालों से नॉन स्टॉप ट्रेंडिंग। ट्यून इन करो क्योंकि लेजेंड्स कभी आउटडेटेड नहीं होते। आकाशवाणी 90 ईयर्स से इंडिया की ओरिजिनल आवाज।

0: Inspiration built into every arrival. This May, drive home your favorite Nexa car and unlock new possibilities.
1: Meet the Maruti Suzuki Grand Vitara, where strong hybrid technology meets premium comfort and safety. Now at an effective price starting from just Rs. 9.72 lakhs.
0: Yes, Rs. 9.72 lakhs. Offer valid till 31st May. Own this style icon at an EMI of just Rs. 899 per month.
1: Experience luxury with a panoramic sunroof, ventilated seats, 360-degree view camera, heads-up display and 6 airbags as standard.
0: Hurry, limited stock available. Visit your nearest Nexa showroom. PNC apply.
2: Nexa.
3: डीजल क्यों चूज कर रहे हैं जब स्मार्टर ऑप्शन है यही। इंट्रोड्यूसिंग नई मारुति सुजुकी अरीना की विक्टोरियस एससीएनजी सेगमेंट फर्स्ट अंडर बॉडी सीएनजी टैंक के साथ 27.02 किलोमीटर पर किलोग्राम तक का माइलेज, मतलब ज्यादा सेविंग्स कम खर्चा। और अब विक्टोरियस खरीदने पर पाए एक्सचेंज बोनस अप टू 50,000, तो देर किस बात की। आज ही अपने नियरेस्ट मारुति सुजुकी अरीना डीलरशिप विजिट कीजिए। मारुति सुजुकी एससीएनजी, स्मार्टर फ्यूल स्मार्टर यू। टीएनसी अप्लाई।
4: अंकुश संदल की आवाज में लीजिए, सुनिए अब ये लोकगीत।

0: पहली कार, पहली आजादी, पहली खुशी, अब और भी सुरक्षित।
1: नई मारुति सुजुकी ऑल्टो केडन, अब 6 एयरबैग स्टैंडर्ड के साथ, ESP, हिल होल्ड और रिवर्स पार्किंग सेंसर और अरीना सेफ्टी शील्ड।
0: अब पाइए स्पेशल ऑफर्स अप टू 52,100, साथ ही 3 साल या 1,00,000 किलोमीटर की वारंटी, इजी EMI, बेस्ट इन क्लास माइलेज ऑन पेट्रोल 24.9 किलोमीटर पर लीटर एंड CNG 33.40 पर किलोमीटर। आज ही अपने नजदीकी मारुति सुजुकी अरीना विजिट करें। TMC अप्लाई।
2: हिमाचली गीतों के सफर में आखिर में लीजिए कुशल कुमार की आवाज में, सुनिए ये गीत।

अभी आप सुन रहे थे हिमाचली गीतों और लोकगीतों पर आधारित कार्यक्रम आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से एफएम बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। 11 बजने को हैं, अब आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी के शिमला केंद्र से।

0: के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज रोम में इटली के प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी से वार्ता करेंगे। दोनों नेता भारत पश्चिम एशिया यूरोप आर्थिक गलियारे के लिए सहयोग बढ़ाने पर चर्चा और वर्ष 2025 से 2029 तक संयुक्त रणनीतिक कार्रवाई योजना की समीक्षा करेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि इस यात्रा के दौरान दोनों देशों के बीच व्यापार, रक्षा, परिवहन, समुद्री सुरक्षा, बंदरगाह संबंधी सहयोग और स्वच्छ ऊर्जा सहित प्रमुख क्षेत्रों में समझौतों पर हस्ताक्षर होने की संभावना है।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज क्विरिनल पैलेस में इटली के राष्ट्रपति सर्जियो मत्तारेला से मुलाकात करेंगे, जहां उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर प्रदान किया जाएगा। आज के कार्यक्रमों में प्रतिनिधि मंडल स्तरीय वार्ताएं, प्रेस वक्तव्य, समझौता ज्ञापनों का आदान प्रदान, द्विपक्षीय बैठकें और खाद्य एवं कृषि संगठन का दौरा शामिल है। प्रधानमंत्री मोदी मोरस निग्रा ब्लैक मलबरी का पौधा भी लगाएंगे। ये एक ऐसी प्रजाति है जो अपने पाक, औषधीय और सांस्कृतिक महत्व के कारण भारत और इटली को प्रतीकात्मक रूप से जोड़ती है। रोम से सुपर्णा भाटिया।
0: प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि वे इटली की प्रधानमंत्री के साथ होने वाली बैठक को लेकर उत्सुक हैं। उन्होंने आशा व्यक्त की कि दोनों के बीच बातचीत में मुख्य रूप से भारत इटली संबंधों को मजबूत करने पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि रोम पहुंचने पर उन्हें प्रधानमंत्री मेलोनी के साथ रात के खाने पर मिलने का अवसर मिला, जिसके बाद उन्होंने मशहूर कोलोसियम का दौरा किया। उन्होंने कहा कि दोनों नेताओं ने कई विषयों पर अपने विचार साझा किए। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज सियोल में दक्षिण कोरिया के रक्षा मंत्री आन ग्यू बैक से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने क्षेत्रीय शांति, स्थिरता और तकनीकी सहयोग में साझा प्रतिबद्धता व्यक्त की। उन्होंने भारत दक्षिण कोरिया रक्षा, रक्षा उद्योग और रणनीतिक सहयोग को और मजबूत करने पर चर्चा की। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री सिंह ने कहा कि दोनों देशों ने रक्षा साइबर सहयोग को बढ़ावा देने के लिए समझौतों का आदान प्रदान किया। ये समझौता ज्ञापन भारत के राष्ट्रीय रक्षा महाविद्यालय, कोरिया राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय और संयुक्त राष्ट्र शांति स्थापना सहयोग के बीच हुआ। इससे पहले श्री राजनाथ सिंह ने राष्ट्र की सेवा में सर्वोच्च बलिदान देने वाले वीर सैनिकों को श्रद्धांजलि दी। पश्चिम बंगाल सरकार ने महिलाओं के सामाजिक आर्थिक उत्थान के लिए 3,000 रुपये की मासिक वित्तीय सहायता की अन्नपूर्णा योजना अधिसूचित कर दी है। महिला और बाल विकास तथा समाज कल्याण विभाग की ये योजना 1 जून से प्रभावी होगी। एक रिपोर्ट।
2: इस योजना के अंतर्गत राशि पात्र लाभार्थियों के आधार से जुड़े बैंक खातों में प्रत्यक्ष लाभ अंतरण के माध्यम से भेजी जाएगी। इस योजना के लिए 25 से 60 वर्ष की महिलाएं पात्र हैं। पात्र महिलाएं आयकर का भुगतान नहीं करती हों और किसी भी स्थायी सरकारी नौकरी में कार्यरत ना हो। नए आदेश के अनुसार लक्ष्मी भंडार योजना के सभी वर्तमान लाभार्थी स्वतः ही अन्नपूर्णा योजना में स्थानांतरित हो जाएंगे। नए आवेदकों के लिए अन्नपूर्णा योजना का ऑनलाइन पोर्टल 1 जून 2026 को शुरू किया जाएगा। कल्याण लाहा की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से अर्जुन शर्मा।
0: एक राष्ट्र एक चुनाव पर गठित संयुक्त संसदीय समिति ने कहा है कि लोकसभा, विधानसभा और स्थानीय निकाय चुनाव एक साथ कराने से करीब 7 लाख करोड़ रुपए की बचत हो सकती है। इससे देश के सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि दर में 1.6% तक की बढ़ोतरी हो सकती है। समिति के अध्यक्ष और लोकसभा सांसद पीपी चौधरी ने कल शाम गुजरात के गांधीनगर में पत्रकारों को ये जानकारी दी। नागर विमानन महानिदेशालय ने एयर इंडिया के बोइंग 787-8 विमान के ईंधन नियंत्रण स्विच की जांच मूल उपकरण निर्माता केंद्र पर महानिदेशालय के अधिकारियों की उपस्थिति में करने का निर्देश दिया है। महानिदेशालय के अनुसार इस वर्ष 2 फरवरी को लंदन के हिथ्रो हवाई अड्डे से बंगलुरु के लिए उड़ान AIC-132 संचालित करने के बाद एयर इंडिया का बोइंग 787-8 विमान का संचालन रोक दिया गया था। मौसम विभाग ने उत्तर पश्चिम भारत में भीषण

5 मिनट हुए हैं, अब आप सुनेंगे कवालियां। फिल्म अमर अकबर एंथनी से अब ये कवाली आपको सुनवा रहे हैं। इसे गाया है मोहम्मद रफ़ी ने।

जरा अपनी सूरत दिखा दे समा खूब सूरत बना दे, नहीं तो तेरा नाम लेके तुझे कोई इल्जाम देके तुझको इस महफिल में रुसवा ना कर दूं रुसवा।

हंसी हंसी है आज सबसे बड़ा नजराना, यार के हंसते ही

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कवालियां। हम आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से बोल रहे हैं, एफएम बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। 11:30 हुए हैं। अब आपको सुनवाते हैं एनसीईआरटी प्रायोजित कार्यक्रम उमंग।

0: दंग।
1: CIET प्रस्तुत करता है
0: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: स्वागत है आप सभी श्रोताओं का कार्यक्रम उमंग में। मैं हूँ विमलेश, नमस्कार।
3: और मैं हूँ अजीत। नमस्कार श्रोताओं, कस्बा बराड़ा, जिला अम्बाला हरियाणा से रवि कुमार राहुल, रंजीत कौर, जयप्रकाश राहुल, प्रियंका, नूर, नमन, सिमरत, गुरकीरत राहुल और गुरशब्द सिंह जी ने सुविचार भेजा है। लिखते हैं,
2: आप कौन हैं, आपकी क्षमताएं क्या हैं और आपके संस्कार क्या हैं? इन सब का निर्धारण आपके द्वारा किए गए कार्यों के संचय से होता है। आपकी सफलता, आपका व्यवहार और आपके कार्यों का समाज पर प्रभाव ही वो स्वर है जो आपकी अनुपस्थिति में भी आपकी पहचान की घोषणा करता है।
3: बहुत बहुत धन्यवाद आपके सुंदर विचार के लिए। आइए अब सुनते हैं श्रोताओं के नाम और उनके संदेश। तो पहला संदेश हमें मिला है राधेनगर अकोला महाराष्ट्र से राजेश पी कारिया जी का। लिखते हैं,
2: 14 अप्रैल 2026 का उमंग प्रोग्राम बेहद पसंद आया, जिसमें आपने हाथ से लिखने की आदत के बारे में बताया। ये सही है कि इस डिजिटल युग में हाथ से लिखना बहुत कम हो गया है। ऐसे तो हाथ से लिखने से बहुत से फायदे हैं, जैसे कि याददाश्त तेज होती है, दिमाग शांत होता है, रचनात्मकता बढ़ती है, एकाग्रता सुधरती है, समझ गहरी होती है और हाथ की कसरत भी होती है।
3: आपका बहुत बहुत धन्यवाद आपके सुंदर संदेश के लिए। अगला संदेश हमें मिला है ग्राम नागर कोहरा, जिला राजनांदगांव छत्तीसगढ़ से। संदेश भेजने वाले हैं बबलू साहू, जामुन देवी साहू, पूजा, प्रेम, दुष्यंत, प्रांजल, समीक्षा और बेबी आराध्या साहू।
2: केंद्रपाड़ा उड़ीसा से देशदीप दास जी।
3: और चंडीगढ़ से सतीश अनेजा और बिमला अनेजा।
2: कृष्णा पार्क दिल्ली से याकूब आसमा फकीर, यूसुफ आसमा फकीर, असलम आसमा फकीर और अकरम आसमा फकीर।
3: आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद संदेश भेजने के लिए। आप सबका स्वागत है श्रृंखला ये भी जानिए में। तो आइए श्रोताओं, सुनते हैं इस श्रृंखला की अगली कड़ी। श्रोताओं, जैसा कि आप जानते हैं, इस सप्ताह हम चर्चा कर रहे हैं वर्षा वन यानी रेन फॉरेस्ट की।
2: जी,
3: तो विमलेश जी अब श्रृंखला को आगे बढ़ाते हैं।
2: जी जी जी, श्रोताओं, कल हमने ली थी वर्षा वन की सामान्य जानकारी। आगे हम आज चर्चा करेंगे क्षेत्रफल के आधार पर दुनिया के प्रमुख वर्षा वनों की। तो करते हैं शुरुआत अमेजन वर्षा वन से।
3: जी जरूर श्रोताओं, आपने टीवी चैनलों में अमेजन वर्षा वन के रोमांचकारी दृश्यों को जरूर देखा होगा। समाचार पत्रों या अन्य संचार माध्यमों के द्वारा भी इसके बारे में कुछ न कुछ जानकारी तो अवश्य प्राप्त की होगी।
2: जी,
3: आइए इसके बारे में थोड़ा और विस्तार से जानते हैं।
2: श्रोताओं, अमेजन वर्षा वन दुनिया का सबसे बड़ा वनस्पति और जीव समृद्ध वर्षा वन है। ये लगभग 55 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है और हाँ, इसे समुद्र के बाद पृथ्वी का सबसे बड़ा फेफड़ा भी कहा गया है।
3: ऐसा इसलिए कहा गया है श्रोताओं कि धरती की कुल ऑक्सीजन का लगभग 20% ऑक्सीजन हमें इसी वर्षा वन से मिलता है।
2: जी,
3: जहाँ तक इसके स्थान की बात है तो यह दक्षिण अमेरिका या लैटिन अमेरिका में फैला हुआ है, मुख्य रूप से ब्राजील में,
2: लेकिन इसके कुछ भाग पेरू और कोलम्बिया में भी फैले हुए हैं। यहाँ भारी वर्षा होती है लगभग 2000 मिलीमीटर प्रति वर्ष से भी अधिक।
3: और श्रोताओं, जहाँ तक इसमें पाए जाने वाले जीव जंतुओं की बात है, यहाँ उनकी लाखों प्रजातियाँ पाई जाती हैं। जानते हैं कुछ दुर्लभ और रोचक जीवों के नाम। तो सबसे पहला जीव है जगुआर। जी हाँ, अमेजन वन का सबसे बड़ा शिकारी, पानी में तैरने और शिकार करने में माहिर।
2: दूसरा है गोल्डन मंकी, बिल्कुल सोने के सुनहरे रंग का दिखाई पड़ता है, केवल अमेजन के जंगलों में ही मिलता है। एक और विशेष मेंढक यहाँ मिलता है, उसे पॉइजन डार्ट फ्रॉग भी कहते हैं। ये बेहद चमकीले रंग वाला मेंढक होता है। इसकी त्वचा में जहरीला पदार्थ होता है जिसे छूते ही तबीयत बिगड़ सकती है, यहाँ तक कि मृत्यु भी हो सकती है। पुराने समय में यहाँ के आदिवासी लोग युद्धों में इस जहर का इस्तेमाल तीरों पर करते थे।
3: और आपने श्रोताओं एनाकोंडा सांप के बारे में तो अवश्य ही सुना होगा। ये दुनिया का सबसे लंबा और भारी सांप है जो पानी में रहता है और बड़े जानवरों का शिकार करता है।
2: एक और चींटी की अनोखी प्रजाति यहाँ पाई जाती है जिसे बुलेट एंट कहते हैं। ये दुनिया की सबसे दर्दनाक डंक वाली चींटी है। कहते हैं इसके डंक मारने पर भाला मारने या तीर लगने जैसा दर्द होता है।
3: तो ये थी कुछ रोचक वन्य जीवों की जानकारी। श्रोताओं, अमेजन का जंगल यह औषधीय वनस्पतियों का बहुत बड़ा भंडार है।
2: जी,
3: आइए अब जानते हैं कुछ रोचक तथ्य अमेजन वर्षा वन के बारे में। तो विमलेश जी।
2: जी जी जी, एक सबसे रोचक तथ्य ये है कि अमेजन वर्षा वन ज्यादातर अमेजन नदी के क्षेत्र में फैला हुआ है। ये दुनिया का सबसे बड़ा नदी तंत्र है। मालूम है श्रोताओं, वैसे दुनिया की सबसे लंबी नदी नील नदी है, लेकिन जल की मात्रा के दृष्टिकोण से दुनिया की सबसे बड़ी नदी अमेजन है। एक रोचक तथ्य आपको बता दें कि अमेजन नदी में पुल नहीं के बराबर है। लेकिन ऐसा क्यों?
3: ऐसा इसलिए कि भारी वर्षा के कारण अमेजन नदी उफान से भरी रहती है। इसका कोई निश्चित तटबंध नहीं है। कभी कभी
2: इसकी धारा पतली हो जाती है तो कभी कभी बहुत चौड़ी, कभी 2 किलोमीटर ही रहती है तो कभी कभी 10 किलोमीटर तक चौड़ी हो जाती है। इसलिए यदि यहाँ पुल भी बनाए जाते हैं तो लंबे समय तक नहीं टिकते, क्योंकि दुविधा ये रहती है कि पुल की लंबाई या चौड़ाई कितनी रखनी है।
3: इसलिए यह तय पाया गया श्रोताओं कि अमेजन नदी में पुलों से बेहतर नौकायन ही है, और नौकायन कब हो इसका निर्णय नदी के उफान या पानी के कम होने पर किया जाता है।
2: जी तो श्रोताओं, ये थी हमारी आज की जानकारी अमेजन वर्षा वन के बारे में। अब सुनिए आज का प्रश्न आज की ही जानकारी से।
3: तो आज का प्रश्न है, अमेजन नदी पर पुल क्यों नहीं बनाए जाते हैं। प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए,
2: अमेजन नदी पर पुल क्यों नहीं बनाए जाते हैं।
3: 8800440559 यानी हमारे IVRS नंबर पर, और audio@cieet.nic.in यानी हमारे ईमेल पर आप अपने संदेश और प्रश्नों के उत्तर भेज सकते हैं।
2: एक्स, इंस्टा, फेसबुक और लिंक्डइन पर भी आप CIET NCERT को फॉलो कर सकते हैं।
3: और श्रोताओं, अब बारी है हमारे शैक्षिक कार्यक्रमों की, तो आइए सबसे पहले सुनते हैं कार्यक्रम द क्रो।
2: एक प्रसिद्ध लोक कथा पर आधारित ये कार्यक्रम कक्षा 2 की अंग्रेजी की पाठ्य पुस्तक में मुद्रित है, जिसके द्वारा ये संदेश दिया गया है कि हमें तुरंत किसी की प्रशंसा से प्रभावित नहीं होना चाहिए, लेकिन तथ्यों की जाँच कर लेनी चाहिए और प्रशंसा सच में की जा रही है या नहीं ये भी जाँच लेना चाहिए।
4: CIET NCERT presents the series Singing the Poem. Under this series, let us listen to the program The Crow.
5: Hello children.
6: Hello ma'am.
7: Hello ma'am.
5: Hello, hello. How are you all?
6: We are fine ma'am.
8: I am fine ma'am.
9: How are you ma'am?
5: I am good. Thank you so much Vanya. All right. So children, today I am going to share something with you. Are you ready?
6: Yes, ma'am.
8: Yes, ma'am.
5: All right. You all know that pets are special members of our family, isn't it?
6: Yes, ma'am.
10: Pets are so lovely.
5: Right, Soham.
11: Ma'am, I have a dog. It loves me so much.
5: Riddhi, that's very good. But how do you know that your dog loves you?
11: Ma'am, when I come back home, it leaps and jumps around me with happiness.
5: Wow, that's good. And what about you, Navya?
12: Ma'am, my dog shakes its tail at me.
5: Oh, that's lovely. You have a very nice dog. I'm very happy that you love pets. All right. What about you, Lavish?
13: Ma'am, when I come home, my cat jumps and sits on my lap.
5: Oh, that's so exciting, isn't it?
6: Yes, ma'am.
5: All right. So, we spoke about our animals. What about birds? Do you like birds?
6: Yes, ma'am.
5: Can you name some birds?
14: Sparrow.
5: Okay, Vanya. Good. That's a beautiful small bird. Okay, Soham, you tell.
15: Peacock. It dances so well. It looks so pretty.
5: Yes, peacock is a colorful bird.
16: Ma'am, parrot.
5: Oh, yes. Parrot is a mimic bird. But, children, you have missed a bird. Do you know which bird is missing?
17: Any guesses?
5: Okay, I'll give you a clue. It calls... Absolutely right. Children, I remember a lovely story of a crow. Would you like to listen?
6: Yes, ma'am.
18: It will be fun.
5: So, I'll narrate the poem. Repeat after me. There once was a crow. He was black.
6: As you know.
5: How to be beautiful. He wanted to know. Colorful feathers. He wanted to grow. He found one peacock feather. He stuck it. In his tail. Then he found another. He picked up. All without fail. He stuck them. In his wings. Put one on his head. I am now beautiful.
6: I am now beautiful.
5: He danced and said.
6: He danced and said.
5: The other crows laughed at him.
6: Laughed at him.
7: Oh, what a fool you are.
6: Oh, what a fool you are.
7: You are beautiful in black.
6: You are beautiful in black.
7: We love you.
6: We love you.
7: For what you are.
6: For what you are.
5: So children, now listen to the same poem in a lovely song.
6: Okay.

0: पर एक दिन जब वो स्कूल से लौटा तो
1: दीदी
2: दीदी
1: अरे राजू स्कूल से आ गए तुम।
0: हाँ दीदी।
1: अरे ये तुम्हारे हाथ में इतने सारे फूल कहाँ से आए?
0: दीदी सामने के बगीचे में कुछ फूल लगे थे मुझे अच्छे लगे तो मैंने तोड़ लिए।
1: ये क्या राजू, कल पड़ोस के माली काका भी तुम्हारी शिकायत कर रहे थे, कह रहे थे कि तुमने उनके बगीचे में लगे पौधे उखाड़ दिए, क्या ये सच है राजू?
0: दीदी वो तो मैंने।
1: राजू पौधों में भी जान होती है, पता है ना तुम्हें?
0: हाँ दीदी ये तो मैंने पढ़ा है मगर।
1: मगर क्या? अच्छा अब इधर आओ, ये देखो दीवार पर लटकी ये तस्वीर, ये तुम्हारे बचपन की है ना?
0: हाँ दीदी ये तस्वीर तब की है जब मैं बहुत छोटा सा था, अब तो मैं कितना बड़ा हो गया हूँ।
1: बिल्कुल ठीक, उसी तरह पौधे भी बढ़ते हैं, हमारी तरह पौधों को भी भोजन और पानी की जरूरत होती है।
0: भोजन और पानी?
1: हाँ राजू तुम ऐसा क्यों नहीं करते एक पौधा लगाओ?
0: हाँ दीदी ये तो बहुत अच्छा रहेगा। कल मैं एक पौधा लगाऊंगा।
1: अरे कल क्यों, आज शाम को जब दादाजी बगीचे में घूमने जाएंगे तो तुम भी उनके साथ जाना पौधा लगाने।
0: ये ठीक है दीदी।

0: अच्छा तो राजू बेटा तुम पौधा लगाना चाहते हो?
1: जी दादाजी।
0: देखो बेटा उसके लिए ये जगह ठीक है, यहाँ अच्छी धूप भी आएगी। चलो बेटा पहले ये कंकड़ पत्थर हटाकर ये जगह साफ कर देते हैं।
1: अब ठीक हो गया।
0: राजू बेटा ये लो खुरपी और इस जगह पर एक छोटा सा गड्ढा खोदो, पर ध्यान रखना कहीं खुरपी हाथ में ना लग जाए।
1: अच्छा दादाजी अभी खोदता हूँ, नई खुरपी दीजिए।
0: हाँ ये लो बेटा, इतनी देर में मैं तुम्हारे लिए माली काका से पौधा ले आता हूँ।
1: जी

0: वाह, ये पौधा कितना सुंदर लग रहा है।
1: देखा बेटा, ये पौधा माली काका तुम्हारे लिए खुद लेकर आए हैं। क्यों माली काका, मैं सच कह रहा हूँ ना?
2: हाँ राजू बेटा, इस पौधे को गड्ढे में रखकर इसकी जड़ों को मिट्टी से ढक दो और उसमें पानी डाल दो।

0: मालिका का, ये तो मैंने कर दिया।
1: शाबाश राजू बेटा, शाबाश।
0: मगर ये तो बताओ मालिका का, ये कौन सा पौधा है?
2: बेटा ये गेंदे का पौधा है।
0: गेंदे का पौधा?
2: जी।
0: गेंदे का पौधा तो सामने वाले बगीचे में भी है, पर उस पर तो कितने सारे फूल लगे हैं।
2: फूल तो बेटा एक दिन इस पौधे पर भी आएंगे।
1: हाँ राजू बेटा, पर उसके लिए तुम्हें बहुत लगन और मेहनत से इसकी देखभाल करनी होगी।
2: हाँ।
0: देखभाल? वो कैसे?
2: देखो बेटा, मैं तुम्हें समझाता हूँ। तुम्हें रोज पौधे को पानी देना होगा और कभी कभी खाद भी डालनी होगी।
0: अच्छा।
2: और पौधे के आसपास की उगी हुई जो घास होती है ना, उसको हटाना होगा।
0: ये तो मैं जरूर करूँगा।
2: हाँ तो ठीक है बेटे। अच्छा आज तो अब बस।
1: राजू बेटा
0: जी?
1: अच्छा अब घर चलें?
0: जी धन्यवाद मालिका का।
2: अरे बेटा
1: चलो बेटा
2: जी।
0: चलिए दादाजी।

0: अरे हाँ, लगता है बागीचे में गया होगा।
1: पता नहीं लड़के को क्या हो गया है, जब से इसने पौधा लगाया न खाने की चिंता न खेलने की।
0: जब देखो बागीचे में जाकर पौधे की देखभाल में लगा रहता है।
2: देखो दीदी, उस पौधे में कितने सारे फूल लगे हैं।
3: हाँ, कितने सुंदर लग रहे हैं। अच्छा राजू, क्या मैं एक फूल तोड़ लूं?
2: नहीं दीदी, मैंने इतनी मुश्किल से गड्ढा खोदा, पौधा लगाया, खाद डाली और रोज पानी से सींचा, और अब ये फूल आ गए हैं तो आप इसे तोड़ना चाहती हैं? दीदी, कितने सुंदर लग रहे हैं ये फूल, आप क्यों तोड़ोगी भला?
3: शाबाश राजू, लगता है तुम समझ गए।
2: हाँ दीदी,
3: मेहनत से लगाए हुए पौधे से अगर कोई एक भी फूल तोड़ ले तो कैसा लगेगा?
2: दीदी, ये तो बहुत ही गलत काम है, अब मैं ऐसा कभी नहीं करूँगा। खाद डाली और रोज पानी से सींचा, और अब ये फूल आ गए हैं तो आप इसे तोड़ना चाहती हैं? दीदी, कितने सुंदर लग रहे हैं ये फूल, आप क्यों तोड़ोगी भला?
3: शाबाश राजू, लगता है तुम समझ गए।
2: हाँ दीदी,
3: मेहनत से लगाए हुए पौधे से अगर कोई एक भी फूल तोड़ ले तो कैसा लगेगा?
2: दीदी, ये तो बहुत ही गलत काम है, अब मैं ऐसा कभी नहीं करूँगा।

0: अभी आपने सुना कार्यक्रम एक पौधा राजू का, और अब हमारा आज का उमंग कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। तो अपने मित्र अजीत
1: और विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ कल तक के लिए आज्ञा दीजिए।
0: नमस्कार, नमस्कार।

0: उमंग
1: सीआईईटी प्रस्तुत करता है
0: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: अभी आप सुन रहे थे एनसीईआरटी द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से।

सैनिक भाइयों जय हिंद। फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम लेकर हाजिर हैं हम और कार्यक्रम की शुरुआत कर रहे हैं पैगाम फिल्म के इस गीत के साथ, जिसे गाया है मन्ना डे ने।

0: आकाशवाणी एट 90।
1: आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सैनिकों के लिए आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से। लीजिए सुनिए कार्यक्रम का अगला गीत जो हमने लिया है फिल्म कच्चे धागे से, और इस गीत में आवाजें हैं लता मंगेशकर और कुमार सानू की।

कार्यक्रम में अब हम आपको सुनवाने जा रहे हैं शान और हेमा सारदेसाई का गाया हुआ गीत फिल्म जमीन से। गीतकार हैं समीर, संगीतकार हैं हिमेश रेशमिया।

कार्यक्रम का अगला गीत लीजिए सुनिए दे दना दन फिल्म से। इस गीत में आवाजें हैं राहत फतेह अली खान और सुजैन डिमेलो की, और संगीत दिया है प्रीतम ने।

कार्यक्रम में अब हम आपको सुनवा रहे हैं सोनू निगम और श्रेया घोषाल की आवाज़ों में गरिमा वाहल का लिखा हुआ गीत। संगीतकार हैं विकी प्रसाद और फिल्म का नाम है टॉयलेट, एक प्रेम कथा।

कार्यक्रम के अंत में लीजिए सुनिए आतिफ असलम का गाया हुआ ये गीत फिल्म टाइगर जिंदा है से। इस गीत को संगीतबद्ध किया है प्रीतम ने।

सैनिकों के लिए फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम आप सुन रहे थे आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से। दिन के 12:30 हुए हैं। लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम घर परिवार।

सारी बातें संग गीतों की बहार, बढ़िया खान पान और आप सभी सखियों का प्यार, इसी से बनता है हमारा कार्यक्रम घर परिवार। तो इस कार्यक्रम को सुनने वाली हमारी सभी श्रोता सखियों को आपकी रेडियो सखी मीनाक्षी की नमस्ते। स्वागत है आप सभी का आपके सपने कार्यक्रम में, जहां हमें भी अक्सर ये इंतज़ार रहता है कि कब हम अपनी सखियों से ढेरों बातें करें। तो आज कार्यक्रम में सबसे पहले बात करते हैं आज के इस खास दिन की। सखियों, आज 20 मई है और ये सिर्फ एक तारीख नहीं है, बल्कि हमारी पृथ्वी की सबसे छोटी लेकिन सबसे मेहनती मित्रों को ये दिन समर्पित है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं मधुमक्खियों की, क्योंकि आज विश्व मधुमक्खी दिवस है। तो बहुत बहुत शुभकामनाएं हमारी सभी श्रोता सखियों को आज के इस खास दिन की। एक छोटी सी मधुमक्खी पूरे विश्व की खाद्य सुरक्षा का 75% काम संभाल रही है। सेब, आम, बादाम, शिमला मिर्च, कद्दू, सरसों और भी बहुत कुछ, यानी कि हमारी थाली में जो कुछ भी रंग बिरंगा और पौष्टिक है उसमें इनकी मेहनत छुपी है। बिना मधुमक्खियों के हमारी दुनिया का स्वाद और रंग दोनों ही फीके पड़ जाएंगे। आज का ये खास दिन स्लोवेनिया के महान मधुमक्खी वैज्ञानिक एंटोन जांसा के जन्मदिन पर मनाया जाता है। उन्होंने 18वीं सदी में ही मधुमक्खी पालन को वैज्ञानिक तरीके से आगे बढ़ाया। उनके प्रयासों और स्लोवेनिया सरकार की पहल से वर्ष 2017 में संयुक्त राष्ट्र ने 20 मई को आधिकारिक विश्व मधुमक्खी दिवस घोषित किया। साल 2018 से ये दिन पूरे विश्व में धूमधाम से मनाया जा रहा है। लेकिन खुशी के साथ एक चिंताजनक बात ये भी है कि आज ये मधुमक्खियां खतरे में हैं। कीटनाशक दवाओं का अंधाधुंध इस्तेमाल, प्लास्टिक प्रदूषण, जंगलों की कटाई और जलवायु परिवर्तन की वजह से दुनिया भर में मधुमक्खियों की संख्या तेजी से घट रही है। अगर ये मधुमक्खियां नहीं रही तो सिर्फ शहद ही नहीं, हमारी आने वाली पीढ़ियों की थालियां भी खाली हो जाएंगी। लेकिन अभी भी समय है, हम सब मिलकर इस बारे में बहुत कुछ कर सकते हैं, जैसे कि घर की छत, बालकनी या बगीचे में मधुमक्खी के अनुकूल फूल हमें लगाने हैं, जैसे कि सूरजमुखी, गुलाब, गेंदा, तुलसी, चमेली, नींबू, अजवाइन इत्यादि। केमिकल वाले कीटनाशकों का इस्तेमाल हमें कम करना है। शुद्ध स्थानीय शहद खरीदकर मधुमक्खी पालकों को हमें प्रोत्साहित करना है। स्कूलों में बच्चों को मधुमक्खियों के महत्व के बारे में बताना है। अगर संभव हो तो घर की छत या बगीचे में मधुमक्खी बॉक्स भी हम लगवा सकते हैं। मधुमक्खियां जितनी ज्यादा होंगी, हमारे फल उतने ही ज्यादा मीठे होंगे। सखियों, मधुमक्खी पालन न सिर्फ पर्यावरण बचाता है बल्कि किसानों की आय भी बढ़ाता है। तो आज विश्व मधुमक्खी दिवस के अवसर पर हम सबको ये संकल्प लेना है कि मधुमक्खियों को बचाना है, ताकि हमारा भविष्य भी सुरक्षित रहे। और जब भी किसी फूल पर मधुमक्खी को बैठे देखना है तो उसे मारना नहीं है, बल्कि शुक्रिया जरूर करना है, क्योंकि वो सिर्फ शहद ही नहीं बना रही बल्कि हमारे जीवन का आधार बना रही है। तो बहुत सी बातें हमें अभी आपसे करनी है, लेकिन फिलहाल हम अपनी बातों को देंगे थोड़ा सा विराम और साथ में मिलकर सुनेंगे ये खूबसूरत सा गीत।

0: आकाशवाणी धर्मशाला के विशेष कार्यक्रम आप और हम आपके विचारों, सुझावों और शिकायतों के लिए समर्पित है।
1: यदि आप आकाशवाणी धर्मशाला के कार्यक्रमों के संबंध में अपनी राय, सुझाव या शिकायत हमें भेजना चाहते हैं तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं या पत्र भी लिख सकते हैं।
0: ईमेल का पता है dharmshala@gmail.com। पत्र भेजने का पता है आकाशवाणी धर्मशाला, कार्यक्रम अनुभाग, धर्मशाला, हिमाचल प्रदेश।
1: आपके सुझाव हमारे लिए बहुमूल्य हैं और हमें अपने कार्यक्रमों को और भी बेहतर बनाने की प्रेरणा देते हैं।
0: तो देर किस बात की, अपने विचार हम तक अवश्य पहुंचाइए,
1: क्योंकि आप और हम में आपकी आवाज, आपके विचार हैं सबसे महत्वपूर्ण।
2: गीत और विज्ञापन के बाद फिर से स्वागत है हमारी सभी श्रोता सखियों का कार्यक्रम घर परिवार में, जहां अब हम बात करेंगे समय के सदुपयोग कर। सखियों, हमारा समय बेहद कीमती है, एक बार अगर निकल गया तो वापस नहीं आता। समय का सदुपयोग करने से जीवन में सफलता, संतुलन और खुशी मिलती है। सबसे पहले तो हमें ये समझना है कि हमारा काम देरी से क्यों होता है या फिर हो ही नहीं पाता। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हम ये सोचती हैं कि अभी हमारे पास इसे करने के लिए काफ़ी समय है और इसे हम बाद में कर लेंगी, या फिर कल करती हूँ, अभी थोड़ा आराम कर लूँ, या फिर थोड़ी देर फ़ोन पर कुछ देख लूँ। और हमारी यही छोटी छोटी बातें हमारे सपनों को मार रही हैं। इसलिए फैसला हमें खुद करना है कि हम समय का सदुपयोग कैसे करें। इसके लिए सबसे पहले तो हमें अपना एक स्पष्ट लक्ष्य बनाना है, क्योंकि बिना लक्ष्य के यात्रा करना उस नाव की तरह है जिसे कभी किनारा नहीं मिल पाता। इसके लिए हर रात सोने से पहले हमें अगले दिन के 3 सबसे ज़रूरी काम एक कागज़ पर लिखने हैं। दूसरी बात ध्यान देने वाली ये है कि जो काम सोचा है उस पर 1 घंटा फोकस करना है, फोन को दूर रखना है ताकि कोई बाधा या डिस्ट्रैक्शन ना हो। बीच बीच में 5-5 मिनट की ब्रेक हम ले सकती हैं, लेकिन जो काम सोचा है उसे अच्छे से पूरा करना है। हमारी ये तकनीक पढ़ाई, काम, किसी भी व्यवसाय में कमाल का काम करेगी। और तीसरी बात ध्यान देने वाली है कि हमारे 80% नतीजे सिर्फ 20% कामों से आते हैं। उन्हीं 20% कामों पर हमें अपना सबसे ज़्यादा समय लगाना है। और चौथी बात जो सबसे ज़रूरी भी है कि जिसमें सबसे ज़्यादा हम समय व्यर्थ में गवाती हैं उसे उचित दूरी बनाने की कोशिश हमें करनी है। जैसे कि सोशल मीडिया, रील्स, अनचाहे व्हाट्सएप ग्रुप, इन सब में ज़्यादा उलझकर हम अपना कीमती समय कब गवा देती हैं हमें पता ही नहीं चलता। साथ ही इस बात पर भी ध्यान देना है कि हर समय हर किसी के लिए मौजूद यानी अवेलेबल नहीं रहना है, खासकर ऐसे लोगों के लिए जो सिर्फ अपनी ज़रूरत के हिसाब से हमसे मिलते हैं। ऐसे लोगों को हमें ना कहना सीखना है और अपने समय को निर्धारित लक्ष्य पर लगाना है। किसी भी काम को कल पर नहीं छोड़ना है। सखियों, समय प्रबंधन कोई सख्त नियम नहीं है बल्कि आदत है। समय का सदुपयोग ही जीवन का सदुपयोग है। तो बातें अभी और भी हैं, लेकिन फिलहाल हम अपनी बातों को देंगे थोड़ा सा विराम, क्योंकि वक्त हो रहा है इस खूबसूरत से गीत को सुनने का। तो आइए साथ में मिलकर सुनते हैं ये प्यारा सा गीत।

0: जल्दी टिफिन पैक करो। राजू मोबाइल छोड़ो।
1: अरे दीदी वो बैंक का नंबर चाहिए, रिफंड ही नहीं आया है। मिल गया, अब भी कॉल करता हूँ दीदी।
0: बिना नंबर जांचे अक्सर जालसाज बैंक की नकली वेबसाइट और फर्जी नंबर से पैसों की धोखाधड़ी करते हैं।
1: तो फिर सही नंबर
0: बैंक की ऑफिशियल वेबसाइट या तो कार्ड।
1: आपने तो बचा लिया दीदी।
0: काम से नहीं।
2: RBI कहता है
3: सही वित्तीय बर्ताव करे आपका बचाव।
4: गीत और विज्ञापन के बाद फिर से स्वागत है हमारी सभी श्रोता सखियों का कार्यक्रम घर परिवार में, और जहां आप साझा करेंगे घरेलू जानकारी गैस के रखरखाव पर। सखियों हर दिन हम चूल्हे पर चाय रोटी बनाती हैं, लेकिन क्या आप जानती हैं कि हमारी रसोई में एक ऐसा साइलेंट बॉम्ब भी बैठा हो सकता है? जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ LPG गैस सिलेंडर की। तो सबसे पहले बात करते हैं कि गैस का सही रखरखाव और सुरक्षा कैसे करें ताकि घर हमेशा सुरक्षित रहे। सबसे पहले तो हमें ये समझना है कि गैस जब लीक होती है तो कोई रंग नहीं होता, लेकिन उसकी महक हमें चेतावनी देती है। अगर गैस की तेज गंध आ रही हो तो हमें तुरंत सावधान हो जाना है। सिलेंडर हमेशा सीधा और हवादार जगह पर रखना है। चूल्हे के एकदम नीचे बेड के पास या बंद अलमारी में भी नहीं रखना है। सिलेंडर और चूल्हे के बीच कम से कम 6 इंच की दूरी होनी चाहिए। हर नया सिलेंडर लगाते समय लीकेज की जांच जरूर करें। हर 2 से 5 साल के बीच में सिलेंडर पाइप जरूर बदलनी है, और हमेशा ISCI मार्क वाली पाइप ही हमें लेनी है। रात को सोने से पहले और घर से बाहर जाते समय रेगुलेटर जरूर बंद करना है। सिलेंडर पर लिखी टेस्टिंग डेट जरूर चेक करनी है, और 5 साल पुराना सिलेंडर इस्तेमाल नहीं करना है। बच्चों को सिलेंडर से दूर रखना है, और चूल्हे का बर्नर हर हफ्ते साफ करना है, क्योंकि सुरक्षा की आदत ही खुशहाल परिवार की शुरुआत है। तो सखी बहुत सी बातें आज हमने की, और बातों के बाद अब समय हो गया रसोई घर में रुक करने का, जहाँ आज मैं बनाने जा रही हूँ पालक पनीर, जो कि खाने में बेहद स्वादिष्ट होता है और बड़ी जल्दी बनकर तैयार हो जाता है। तो इसके लिए मैंने 250 ग्राम के करीब पालक को उबाल लिया है, और अच्छे से उबालने के बाद उसे पनीर लिया है 250 ग्राम, और पनीर के छोटे छोटे टुकड़े हम काट लेंगे, और टुकड़ों में काटने के बाद अब हम इसका तड़का तैयार करेंगे। इसके लिए मैंने कढ़ाई ली है और गैस को ऑन किया है। अब हम कढ़ाई में 2 चम्मच तेल डाल देंगे, सरसों का तेल। डालने के बाद 1 चम्मच जीरा, चुटकी भर हींग, अच्छे से उसे पका लेंगे, और फिर डाल देंगे पालक को। पालक के साथ हम पनीर के कुछ टुकड़े डाल देंगे, ऊपर से डालेंगे स्वाद अनुसार नमक और हरी मिर्च टुकड़ों में कटी हुई, ऊपर से डाल देंगे गरम मसाला और थोड़ी देर पकने देंगे। पकने के बाद हमारा ये जो पालक पनीर है वो बनकर बिल्कुल तैयार है खाने के लिए। तो आप भी ज़रूर बनाइए, खुद भी खाइए और परिवार में भी सबको खिलाइए। तो खान पान के बाद अब करवाते हैं आपका मनोरंजन इस खूबसूरत से गीत के साथ।

इसी गीत के साथ सखियों समय हो गया आपसे विदा लेने का, तो मुझे यानी मीनाक्षी को दीजिए कार्यक्रम संपन्न करने की अनुमति। नमस्कार।

0: परिवार। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम घर परिवार। हम आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से बोल रहे हैं, एफएम बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। दोपहर के 1 बजने को है। अब आकाशवाणी दिल्ली से पहले हिंदी में समाचार और 1:05 पर अंग्रेजी में समाचार रिले किए जाएंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज रोम में इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी से वार्ता करेंगे। दोनों नेता भारत पश्चिम एशिया यूरोप आर्थिक गलियारे के लिए सहयोग बढ़ाने पर चर्चा और वर्ष 2025 से 2029 तक संयुक्त रणनीतिक कार्रवाई योजना की समीक्षा करेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि प्रधानमंत्री की यात्रा के दौरान दोनों देशों के बीच व्यापार, रक्षा, परिवहन, समुद्री सुरक्षा, बंदरगाह संबंधी सहयोग और स्वच्छ ऊर्जा सहित प्रमुख क्षेत्रों में समझौतों पर हस्ताक्षर होने की संभावना है।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज क्विरिनल पैलेस में इटली के राष्ट्रपति सर्जियो मत्तारेला से मुलाकात करेंगे, जहां उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर प्रदान किया जाएगा। आज के कार्यक्रमों में प्रतिनिधि मंडल स्तरीय वार्ताएं, प्रेस वक्तव्य, समझौता ज्ञापनों का आदान प्रदान, द्विपक्षीय बैठकें और खाद्य एवं कृषि संगठन का दौरा शामिल है। प्रधानमंत्री मोदी मोरस निग्रा ब्लैक मलबरी का पौधा भी लगाएंगे। ये एक ऐसी प्रजाति है जो अपने पाक, औषधीय और सांस्कृतिक महत्व के कारण भारत और इटली को प्रतीकात्मक रूप से जोड़ती है। रोम से सुपर्णा भाटिया।
1: प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि वो इटली की प्रधानमंत्री के साथ होने वाली बैठक को लेकर उत्सुक हैं। उन्होंने आशा व्यक्त की कि दोनों के बीच बातचीत में मुख्य रूप से भारत इटली संबंधों को मजबूत करने पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। प्रधानमंत्री ने इटली के प्रसिद्ध चित्रकार जियाम पावलो टोमासिट्टी की भारतीय संस्कृति पर किए गए कार्यों की सराहना की है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा है कि कलाकार ने इटली के रोम दौरे में वाराणसी पर बनी अपनी विशेष पेंटिंग प्रस्तुत की। प्रधानमंत्री ने कहा कि श्री टोमासिट्टी का भारतीय संस्कृति के प्रति प्रेम 4 दशक से अधिक पुराना है। एक अन्य पोस्ट में श्री मोदी ने भारतीय नृत्य शैलियों के प्रति 5 इतालवी कलाकारों के प्रेम की भी प्रशंसा की। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज सियोल में दक्षिण कोरिया के रक्षा मंत्री आन ग्यू बैक से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने क्षेत्रीय शांति, स्थिरता और तकनीकी सहयोग में साझा प्रतिबद्धता व्यक्त की। उन्होंने भारत दक्षिण कोरिया रक्षा, रक्षा उद्योग और रणनीतिक सहयोग को और मजबूत करने पर चर्चा की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री सिंह ने कहा कि दोनों देशों ने रक्षा साइबर सहयोग को बढ़ावा देने के लिए समझौतों का आदान प्रदान किया। केंद्रीय उपभोक्ता मामलों के मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा है कि सरकार स्मार्ट विनियमन और उत्तरदायी शासन के माध्यम से बाजार में निष्पक्षता बढ़ाकर नियामक बोझ को कम करने के लिए प्रतिबद्ध है। विश्व मापन दिवस के अवसर पर वर्चुअल रूप से आयोजित एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए श्री जोशी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये परिकल्पना की है कि भारतीय उत्पादों की गुणवत्ता वैश्विक मानकों और पर्यावरण के अनुकूल होनी चाहिए। देश ने आत्मनिर्भर भारत पहल के अंतर्गत स्वदेशी रक्षा क्षमताओं को मजबूत करने की दिशा में एक और महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO ने अनमैन्ड एरियल व्हीकल लॉन्च प्रिसीजन गाइडेड मिसाइल ULPGM-V3 के अंतिम विकास परीक्षण को सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है। ये देश के रक्षा क्षेत्र के लिए एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। पंजाब पुलिस ने दुबई स्थित एक अंतर्राष्ट्रीय मादक पदार्थ तस्करी मॉड्यूल का भंडाफोड़ किया है, जो सीमावर्ती राज्य पंजाब और राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में मादक पदार्थों की तस्करी के लिए अबुधाबी से काम कर रहा था। पुलिस ने 14 किलोग्राम मादक पदार्थों के साथ 2 तस्करों को गिरफ्तार किया है। चीन के राष्ट्रपति शी चिनफिंग और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने आज बीजिंग में द्विपक्षीय संबंधों, ईरान यूक्रेन संघर्ष और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार सहित प्रमुख वैश्विक मुद्दों पर बातचीत की। ये बैठक अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की चीन यात्रा के कुछ ही समय बाद हुई है। इस बैठक में उन्होंने शी चिनफिंग से क्षेत्रीय और वैश्विक घटनाक्रमों पर चर्चा की थी। अमेरिका के राष्ट्रपति अगले महीने फ्रांस में आयोजित होने वाले G7 शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। पश्चिम एशिया संघर्ष को लेकर अमेरिका और कई यूरोपीय सहयोगियों के बीच बढ़ते तनाव के बीच ट्रंप इस सम्मेलन में हिस्सा ले रहे हैं। आईपीएल क्रिकेट में आज कोलकाता नाइट राइडर्स का मुकाबला मुंबई इंडियंस से होगा। ये मैच कोलकाता में शाम 7:30 बजे शुरू होगा। कल रात राजस्थान रॉयल्स ने लखनऊ सुपर जायंट्स को 7 विकेट से हरा दिया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: दिस इज आकाशवाणी द न्यूज रेड बाय अनुजा कुमार। Prime Minister Narendra Modi will hold talks with his Italian counterpart Giorgia Meloni and President Sergio Mattarella and discuss with them ways to boost India-Italy cooperation. PM Modi's visit will focus specially on the India-Middle East-Europe Economic Corridor. The Joint Strategic Action Plan 2025 to 2029 will also be reviewed. Mr. Modi will also be visiting the headquarters of the Food and Agriculture Organization, strengthening India's commitment to multilateralism as well as global food security. Earlier today, PM Modi said that he is

ये गाना जब खत्म हो जाता है तो लगता है अरे ये तो खत्म हो गया। इतना दिल की गहराई तक पहुंचने वाला गाना, मदन मोहन जी की ये आवाज और इस गाने को ज्यादा ऊंचाई पर ले जाती है ये आवाज। एक श्रोता लिखते हैं कि दस्तक राजेंद्र सिंह बेदी ने निर्देशित की थी और ये उन्हीं के लिखे एक नाटक पर आधारित फिल्म थी। इसके अलावा एक और श्रोता हैं जो लिखते हैं कि 1 मई को सुरीला सफर कार्यक्रम का पहला एपिसोड आपने किया था और अब आप इस कार्यक्रम में दूसरी बार आ रहे हैं। इसके अलावा एक और श्रोता हैं जिन्होंने लिखा है कि दस्तक फिल्म के लिए संजीव कुमार और जया भादुड़ी को नेशनल अवार्ड दिया गया था। भाई जया जी इस फिल्म में कहाँ थी? मैं आपको बताता हूं, दस्तक फिल्म के लिए नेशनल अवार्ड मिला था संजीव कुमार को, रेहाना सुल्तान को बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिला था, मदन जी को बेस्ट म्यूजिक डायरेक्टर का अवार्ड मिला था, और एक शानदार अवार्ड था कमल बोस को बेस्ट सिनेमेटोग्राफर का अवार्ड। इसके अलावा एक और श्रोता है जो कहते हैं कि बी आर इशारा को अवार्ड मिला था, ये तो समझ में नहीं आया। चलिए आगे बढ़ते हैं। गुलमोहर शब्द का जो दूसरा गाना आपने सुनाया वो मैं पहली बार सुन रही हूँ। जी हाँ, बहुत ज़्यादा चर्चित गाना नहीं है। इसके अलावा सही उत्तर कई श्रोताओं ने दिए हैं, नेशनल अवार्ड वाले जो दस्तक फिल्म से जुड़े हुए हैं। ये बताइए कि जिस भी शहर, जिस भी इलाके, जिस भी मोहल्ले में आप रहते हैं, किस किस के इलाके में गुलमोहर और उसके अलावा अमलतास इस समय बहुत खिल रहा है, बहुत ज़्यादा खिल रहा है। अमलतास की झालरें कितनी खूबसूरत होती हैं। अगर कमेंट बॉक्स में आप फूल अमलतास की तस्वीर भी अगर आपके आसपास है वो कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकें तो भी बड़ा अच्छा लगेगा। और गुलमोहर और अमलतास से आपको कितना लगाव है? इसके अलावा चंपा, इन तमाम फूलों पौधों के बारे में हमें ज़रूर बताइएगा। और आपने अपने घर में, अगर आप फ्लैट में रह रहे हैं या अगर आप ज़मीन पर आपका घर है, तो अपने बगीचे में कौन कौन से पौधे और फूल लगा रखे हैं, इसका भी जिक्र ज़रूर कीजिएगा। कुछ और कमेंट पढ़ते हैं। एक श्रोता है कि व्यस्त होने के कारण मैं देर से इस कार्यक्रम में शामिल हुआ हूँ। इसके अलावा एक और श्रोता है जो ये लिख रहे हैं कि आज गाने पर्वत सागर किनारा गुलमोहर नदी पंछी जैसे शब्दों पर आएंगे। बिल्कुल सही है। एक श्रोता लिखते हैं कि गुलमोहर की टहनियों पे ख्वाब सा बिछ गया है, दिल हमारा आज फिर से इश्क में गिर गया है। और इसके अलावा एक श्रोता और हैं जो ये लिख रहे हैं कि गुलमोहर शब्द वाला जो गुलजार साहब का गाना है उसका अंदाज़ा तो लगभग सभी श्रोताओं ने लगा लिया था। और भी तमाम श्रोताओं के कमेंट्स हैं जो हम आगे चलकर पढ़ेंगे, क्योंकि अब हो गए हैं 1:17 और विविध भारती पर गूंज रहा है ये गाना। तब तक आप बताइए कि आपने अपने घर में कौन कौन से पौधे लगा रखे हैं और आपके गमलों में कौन से फूल खिल रहे हैं।

इतना इंटेंस गाना है कि दिल की गहराइयों में उतर जाता है। बहुत सारे श्रोताओं ने ये लिखा है कि आपने गुलमोहर और अमलतास की तस्वीर तो मंगा ली, लेकिन विविध भारती के फेसबुक पेज पर जो कमेंट हम करते हैं उसमें तस्वीर पोस्ट करने का ऑप्शन नहीं दिख रहा है। मैं इस बात से वाकिफ नहीं था, मुझे पता ही नहीं था कि यहाँ तस्वीर पोस्ट करने का ऑप्शन नहीं। कोई बात नहीं, आपने कोशिश की, आप सभी का धन्यवाद। एक श्रोता लिखती है कि हमारे घर में बोगनविलिया बहुत रंग के खिले हैं और इसके अलावा गुलाब के बहुत सारे फूल हैं। एक और श्रोता हैं जिन्होंने तुलसी का पौधा लगा रखा है और उनका फेवरेट फूल गुलाब है। वो कहती हैं कि हमारे शहर में गुलमोहर नहीं दिखता, लेकिन यात्रा करते समय रास्ते में जब गुलमोहर दिखता है तो बहुत अच्छा लगता है। एक और श्रोता हैं जो कहते हैं कि मॉर्निंग वॉक करते हुए मोहल्ले में गुलमोहर, अमलतास, पलाश और कचनार के बड़े बड़े पेड़ जब दिखते हैं तो बहुत सुकून मिलता है। इसके अलावा एक और श्रोता है जो लिखती हैं कि गुलमोहर और अमलतास के बहुत खूबसूरत पेड़ हमारे घर के आसपास हैं। एक और श्रोता है जिन्होंने गुलाब, जूही, रात की रानी और शेवंती लगा रखा है। एक श्रोता है जिनका कहना है कि गर्मी होने पर भी इनके यहाँ गुड़हल और गुलाब में बहुत फूल आ रहे हैं। और इसके अलावा अमलतास के पेड़ बहुत सारे श्रोताओं के शहरों में और उनके मोहल्लों में हैं। एक और श्रोता है जो कहते हैं कि मेरे घर पर आसो पालव, जासूद, बारामासी, गिलोय, तुलसी और ग्रीन टी लगे हुए हैं। इसके अलावा एक और श्रोता है जो कहते हैं कि हमारे यहाँ जहाँ हम रहते हैं वहाँ गुलमोहर बहुत ज़्यादा खिला हुआ है। एक और श्रोता छत्रपति संभाजी नगर से लिख रहे हैं कि हमारे शहर में बहुत गुलमोहर हैं। एक और श्रोता हैं जिनके आसपास गुलमोहर और अमलतास के बहुत सारे पेड़ हैं और अमलतास के पीले पीले फूल और गुलमोहर के लाल लाल फूल बहुत सुंदर दिख रहे हैं। एक और श्रोता है जो कहती है मेरा पूरा पटना शहर अमलतास, गुलमोहर के पेड़ों से भरा हुआ है और पार्क में चंपा भी खिले हुए हैं जिन्हें देखना बहुत अच्छा लगता है। एक और श्रोता है जिन्होंने मनी प्लांट लगा रखा है। इसके अलावा एक और श्रोता है जो कहते हैं कि मेरे एक दोस्त के घर में बहुत सारे गुलमोहर के पेड़ हैं। एक और श्रोता कहते हैं कि हमारे यहाँ सड़क के दोनों तरफ अमलतास के वृक्ष लगे हैं और इनके पत्ते इस ऋतु में झड़ जाते हैं और उसके पीले वृक्षों से पीले फूलों से वृक्ष सज जाता है, बड़ा ही सुंदर दिखता है। कितने श्रोताओं ने गुलमोहर, अमलतास, सेवंती, चंपा, इन तमाम फूलों की बातें लिखी हैं। ये फूल कितने दिल के हमारे करीब होते हैं। अब आगे एक गाना आएगा जो फौरन नहीं आएगा, बल्कि इसके बाद दूसरे या तीसरे नंबर पर हम जो गाना बजाएंगे उसमें नदी की बात करेंगे। आपके आसपास कौन सी नदी है और उस नदी के किनारे कौन सी ऐसी जगह है जहां आपको वक्त बिताना बहुत अच्छा लगता है? किस नदी के किनारे वक्त बिताना आपको बहुत ज्यादा पसंद है, ये बात लिखिएगा। शगुन फिल्म की हीरोइन कौन थी ये भी बता सकते हैं आप।

जैसे कि आप जानते हैं, विविध भारती हर महीने करता है अपनी एक महफिल सृजन भारती। इस बार सृजन भारती लेकर आ रहा है लोक संगीत की भीनी खुशबू और कुछ दिलचस्प बातों का गुलदस्ता। और ये कार्यक्रम होगा एक मुक्ताकाशी रंगमंच पर। 21 मई शाम 6:30 पर लोक संगीत और कुछ दिलचस्प बातों से सजा रंगारंग कार्यक्रम। आयोजन स्थल है ज्ञान सागर मुक्ताकाशी ऑडिटोरियम रघुनाथ टावर के सामने, देवीदास लेन बोरीवली पश्चिम मुंबई। प्रवेश बिल्कुल मुफ्त, आप सभी खुद आएं और अपने दोस्तों को लेकर आएं। भाई सृजन भारती के इस आयोजन के बारे में हमने आपको सूचना दी, मुंबई के जो श्रोता हैं वो जरूर आएं कल शाम 6:00। एक बेहतरीन आयोजन और विविध भारती के सभी साथियों से मिलने का और सेल्फी लेने का मौका तो होगा ही होगा इस आयोजन में। तो जो मुंबई और आसपास के श्रोता हैं, अगर संभव है आपके लिए तो ज़रूर आइएगा। और इसके अलावा बहुत सारे श्रोताओं के कमेंट आ गए, मैं तो नर्मदा जी के किनारे महेश्वर घाट पर समय बिताना चाहूँगी, देवी अहिल्या की राजधानी में। ये एक श्रोता का कमेंट है। एक और श्रोता राजस्थान से हैं, कहते हैं कि बहुत ज़्यादा गर्मी है और इतनी भीषण गर्मी में भी जो पेड़ हरा सघन छोटी पत्तियों से आच्छादित रहता है और मरुभूमि के सभी जीव जंतुओं को घनी छाया और भोजन देता है, इसकी फलियों से सुप्रसिद्ध और स्वादिष्ट सांगरी की सब्जी बनाई जाती है, वो है खेजड़ी, संस्कृत में से शमी वृक्ष कहते हैं। एक श्रोता है जो कहते हैं गोमती माँ बहती है हमारे शहर में और रिवर फ्रंट पर बहुत अच्छा लगता है। इसके अलावा एक और श्रोता है जो कहते हैं कि हम तो बनारस के हैं और 80 घाट के किनारे बैठकर गंगा नदी की लहरों को देखना बड़ा सुकून देह होता है। शगुन फिल्म की जो हीरोइन है उनके बारे में हमारे श्रोताओं ने लिख दिया है भाई कि वो वहीदा रहमान हैं। और इसके अलावा एक श्रोता हैं जो लिखती हैं कि फ्लैट में रहती हूँ और सोसाइटी में बहुत सारे पेड़ पौधे लगे हैं, लोगों की बालकनी में भी बहुत सारे पौधे हैं, मैंने बहुत से अपने फ्लैट में गमले में पौधे लगाने की कोशिश की है। इसके अलावा एक श्रोता हैं जो सूरत से हैं और कहते हैं कि तापी नदी है लेकिन अफसोस है कि उस नदी में थोड़ी गंदगी हो गई है। एक और श्रोता हैं जो कहते हैं कि अहिल्या नगर में रहते हैं और यहाँ बहुत गुलमोहर के पेड़ हैं। एक और श्रोता के शहर के पास गक्कर नदी बहती है। एक श्रोता ऐसी हैं जो गंगा नदी के किनारे रहती हैं और मायके गई तो सोन नदी के किनारे और पटना शहर में गंगा नदी के किनारे घूमना बड़ा सुखद होता है, ये कह रही हैं। एक और श्रोता हैं जो कहते हैं कि मैं नागपुर में रहता हूं और कन्हान नदी चूंकि 15 किलोमीटर दूर है इसलिए बहुत दूर लगती है और वहां जाना मुश्किल होता है। एक श्रोता ऐसे हैं जिनकी घर से 100 मीटर की दूरी पर महानदी है और बैराज से शाम का नज़ारा बहुत ही सुंदर लगता है। एक और श्रोता हैं माधुमालती गुड़हल और बारामसी के पेड़ इन्होंने लगा रखे हैं। एक श्रोता ऐसे हैं जो कहते हैं कि अमलतास का पेड़ उनके घर के सामने वाले गार्डन में है और चाहे कितनी भी धूप हो इस पेड़ के नीचे खड़े हो जाएं तो बहुत ही ठंडी हवा मिलती है और राहगीर अक्सर इस पेड़ के नीचे गर्मी से राह पाने के लिए निजात पा लेने के लिए खड़े हो जाते हैं। एक और श्रोता हैं जो लिखती हैं कि गुलमोहर को फ्लेम ऑफ द फॉरेस्ट कहा जाता है और शानदार है। तो ये तमाम चीज़ें हैं और बहुत इतने कमेंट्स हैं कि मुझे लग रहा है कि ये सारे कमेंट्स पढ़ने में तो बहुत देर लग जाएगी। बात नदी के गाने की हो रही थी, कितने सारे श्रोताओं ने नदी के गानों की बात की, तो मैंने सोचा कि एक मोंटाज कर लेते हैं।

लेकिन लेकिन नदी का ये गाना भी क्या है, प्यारा है। और नदी के गानों का सरताज ये भी तो है, लेकिन इन तमाम गानों के बावजूद आज इस कार्यक्रम के लिए मैंने चुना है ये गाना जो नदी के किनारे की बात करता है। किसी नदी के किनारे सबसे यादगार पिकनिक आपका कौन सा था ये जरूर बताइएगा, हमें पढ़कर अच्छा लगेगा और कमेंट शामिल किया जाएगा।

0: हवा ये नदी का किनारा,
1: चांद तारों का रंगीन इशारा,
2: कह रहा है बेखबर हो सके तो प्यार कर, ये समा मिलेगा फिर न दोबारा, ये हवा ये नदी का किनारा।
3: क्या शानदार गाना है, नदी के किनारे पिकनिक की जो यादें हैं उसे ताज़ा कर देता है। बहुत सारे श्रोताओं के कमेंट्स आए हैं और कोशिश के सभी श्रोताओं के कमेंट शामिल किए जाएं। एक श्रोता लिखती हैं कि जीवन कभी बहुत धीरे धीरे अपने उत्साह वापस ले लेता है, तब उन धीमे दिनों में चटकती गर्मी में गुलमोहर को देखना और ऊँचे पहाड़ों को भी, और एक कदम बढ़ाकर उनको गले लगाकर अपने जिया की पीर कह देना, ये पर्वत ये पहाड़ ये पेड़ आपका सारा दर्द सोख लेंगे, कभी ये करें तो जीवन महक उठेगा। शानदार बात आपने लिखी है। बस यही तो आज हमारे इस कार्यक्रम के लिए टेक्स्ट पोस्ट करने का मकसद था, कुदरत से जुड़ें और उसके साथ अपने दुख दर्द साझा करें। एक श्रोता हैं जो लिखते हैं कि डबरा के पास धूमेश्वर महादेव का मंदिर, सिंध नदी अपने रौद्र रूप में थी, हम लोग गए थे पिकनिक पर, बेटा बैठा था, अचानक पानी बढ़ गया, तब पुलिस ने एकदम अलर्ट किया और हम लोग एकदम हड़बड़ा के वहां से भागे थे। एक और श्रोता लिखती हैं कि इतनी भीषण गर्मी में नदी के गानों का जो मोंटाज आपने प्रस्तुत किया उससे बहुत ही ठंडक महसूस हुई, शुक्रिया आपका, मकसद यही था। हरिद्वार और वाराणसी में गंगा नदी के किनारे वक्त गुजारने का मौका मिला था, बड़ा सुकून मिला था, ये एक श्रोता की बात है। एक और श्रोता है जो अमर प्रेम फिल्म के गाने को याद कर रहे हैं। एक श्रोता ऐसे हैं जो गुड़हल के बारे में अपनी बातें लिख रहे हैं कि ये बहुत ही फ़ायदेमंद पौधा है और इसके तमाम तरह के फ़ायदे के बारे में उन्होंने लिखा है। इसके अलावा एक श्रोता हैं जो लिखते हैं कि नागपुर से करीब 50 किलोमीटर दूर पींच नदी है, वहाँ हम पिकनिक मनाने गए थे, खाना पकाया था और बहुत मौज मस्ती की थी। इसके अलावा एक और श्रोता हैं जो लिख रहे हैं कि बहुत ही यादगार पिकनिक हमने ओंकारेश्वर में नर्मदा नदी के तट पर मनाई थी। और इसके अलावा एक और श्रोता हैं जो ये लिख रही हैं कि अभी थोड़े दिन पहले अयोध्या में सरयू नदी के किनारे, बनारस में गंगा और प्रयागराज में गंगा नदी के किनारे जाने का मौका मिला था, बहुत अच्छा लगा। एक और श्रोता हैं जो कहते हैं कि आपका अंदाज निराला है, बहुत ही प्यारा मोंटाज और नदी शब्द पर आपने एक साथ 5 गाने सुनाए, कितना अच्छा लगा, शायद ऐसा पहली बार हुआ है। एक और श्रोता हैं जो कहती हैं कि हमारे विशाखापट्टनम में नदी तो नहीं है लेकिन सागर का किनारा है, जहाँ जाकर अच्छा लगता है। आप में से कौन कौन से ऐसे श्रोता हैं जिन्हें समंदर का किनारा बहुत पसंद है? अगर समंदर नहीं देखा तो वो भी बताइए। कौन कौन से ऐसे श्रोता हैं जो जिंदगी में अभी समंदर देखने का इंतजार कर रहे हैं? कौन कौन से ऐसे श्रोता हैं जो समंदर के किनारे जा चुके हैं या रहते हैं?

0: बहुत सारे श्रोताओं के कमेंट आए हैं। एक श्रोता लिखते हैं कि मुंबई में जुहू बीच और अक्सा बीच बहुत बार देखने का मौका मिला है और चेन्नई में मरीना बीच भी देखा है और लहरों के बीच जाकर आनंद लिया है। एक और श्रोता है जिन्होंने मुंबई में जुहू चौपाटी कई बार देखी है और शाम के समय डूबते सूरज को देखना दिल खुश कर देता है। इसके अलावा एक और श्रोता है जिन्होंने पुरी, गोपालपुर, चांदीपुर और पारादीप के समुद्र तट देखे हैं और बंगाल की खाड़ी के पास के इलाके में वो रहते हैं। एक और श्रोता जिन्होंने लिखा है कि मुंबई, पणजी, रामेश्वरम और कन्याकुमारी, इन तमाम जगहों पर जाकर देखा है समुंदर का किनारा। एक और श्रोता कहते हैं कि 2003 के आसपास वो मुंबई में रहते थे और जुहू और हाजी अली के किनारों पर जाने का मौका उन्हें मिला है। और इसके अलावा एक श्रोता लिखते हैं कि भारत में बंगाल की खाड़ी से जुड़े हुए कई राज्य हैं और कुछ इलाका अरब सागर से जुड़ा है, कुछ हिंद महासागर से जुड़ा हुआ इलाका भी है। फूलों के बारे में भी लगातार कमेंट आ रहे हैं। लाल गुलमोहर के अलावा जामुनी रंग के गुलमोहर, जिसे जकरांडा एवं नीला गुलमोहर कहते हैं, वसंत ऋतु में मार्च अप्रैल के महीने में इस पेड़ में बहुत फूल आते हैं। महाराष्ट्र के अमरावती के मेल घाट में तो बहुत ही आकर्षक गुलमोहर होते हैं। एक श्रोता है जो कहते हैं कि कन्हान नदी हमारे शहर के पास बहती है। और इसके अलावा एक और श्रोता है जो कहते हैं कि हम तो भोपाल के हैं, चारों तरफ तालाब, जंगल और पहाड़ हैं, गुलमोहर के गोल्डन शावर की बहार है। और दिल्ली के एक श्रोता कहते हैं कि यमुना नदी है तो सही, लेकिन प्रयागराज जाते हैं और संगम में स्नान करते हैं। एक और श्रोता भेड़ाघाट को याद कर रहे हैं। आप सभी का बहुत शुक्रिया, इतने प्यार से आप नदियों को, सागर को, सबको याद कर रहे हैं। और अब चूंकि टेक्स्ट में हमने बहुत अलग अलग तरह के गानों का जिक्र किया था, तो अब ये गाना,
1: ओ अपने,
0: इस गायिका का नाम बताइए ये कौन है।

मुबारक बेगम की आवाज सभी श्रोताओं ने पहचान ली। एक श्रोता का बड़ा प्यारा कमेंट आया है जिन्होंने लिखा है कि उन्होंने जिंदगी में अभी तक समंदर नहीं देखा और उन्हें समंदर देखने का इंतजार है। इसके अलावा कई श्रोता ऐसे हैं जिन्होंने समंदर देखा। जरा सोचिए कि ये पेड़ पौधे, ये नदियाँ, ये समंदर, ये खाड़ियाँ, ये गुलमोहर, ये अमलतास, ये तमाम फूल पौधे नहीं होते, कुदरत के नज़ारे नहीं होते तो ये दुनिया कितनी सूनी होती और हम कितने उदास होते। और अब जगजीत सिंह की आवाज में ये गाना बज रहा है, इसे लिखा किसने है ये बताइएगा। और साथ में ये भी बताइए कि अब तक इस कार्यक्रम में जो भी गाने बजे उसमें सबसे सबसे सबसे ज्यादा प्रिय गाना आपका कौन सा था।

जिंदगी में कौन है जिससे आप अपना सारा सुख दुख बांटते हैं? वो कौन शख्स है जिससे आप जिंदगी का हर सुख हर दुख बांटते हैं?

अर्थ फिल्म का ये गीत कैफी आजमी का लिखा हुआ था। बहुत सारे श्रोताओं ने जवाब दिया। कई ऐसे श्रोता हैं जिन्होंने कहा कि वो अपनी जिंदगी के सारे सुख दुख ईश्वर से साझा करते हैं। कुछ श्रोता ऐसे हैं जो विविध भारती से अपने सुख दुख साझा करते हैं। कुछ श्रोता अपनी शरीर की हयात से अपने सुख दुख साझा करते हैं। एक श्रोता ऐसी हैं जिन्होंने लिखा कि बहनें होती हैं जिससे अपना सारा सुख दुख बांटा जा सकता है। बहुत ही कमाल के जवाब आप सभी ने दिए हैं। सुख दुख बांटने के लिए कभी विविध भारती, कभी बहन, कभी परिवार, सुंदर बात। और इसके अलावा नदी और समुद्र से जुड़ी आपकी यादों की तो इतनी बौछार है कि स्टूडियो में एक अलग ही ठंडक महसूस हो रही है।

बहुत ही प्यारा और बहुत पसंदीदा गाना इस वक्त आ रहा है। इस फिल्म की हीरोइन कौन थी ये बताइएगा।

आपको पता है विविध भारती का जो कंपाउंड है वहां सबसे ज्यादा आते हैं पैराकीट्स यानी तोते। आपके इलाके में कौन से पंछी ज्यादा नजर आते हैं?

क्या बात है, इतना सुंदर ये पंछी का गाना, बंदिनी फिल्म का गीत, और इस फिल्म में नूतन ने क्या गजब अभिनय किया था। इतने सारे श्रोताओं के समंदर और नदी पर कमेंट आ रहे हैं कि आज मुझे अलग से बैठकर ये सारे कमेंट्स पढ़ने होंगे। एक श्रोता लिखते हैं कि उड़ीसा में जो कटक शहर है दो नदियों के बीच बसा है, महानदी, और महानदी से एक शाखा निकलती है जिसे काठजोड़ी नदी कहते हैं। इन दोनों नदियों के बीच में कटक बसा है। शहर के चारों तरफ पुल हैं और कटक को पानी का शहर भी कहा जाता है। बहुत शुक्रिया इस जानकारी के लिए। बहुत सारे श्रोताओं के कमेंट्स, सोमनाथ, मुंबई, गोवा, तिरुवनंतपुरम, रामेश्वरम, विशाखापट्टनम और बंगाल का समुद्र देखा। कितने सौभाग्यशाली हैं हमारे ये श्रोता कि इन्होंने चारों तरफ जो भारत में समुद्र हैं वो सभी देख रखे हैं। इसके अलावा एक श्रोता है जो कहते हैं कि विविध भारती परिवार है और हम अपना सुख दुख यहीं से साझा करते हैं। इसके अलावा एक श्रोता है जो कहती है मैं अपने पति से, एक श्रोता है जो अपने बेटियों से अपने सुख दुख साझा करती हैं। बहुत शुक्रिया इन तमाम बातों के लिए। और इतनी सारी बातें हुई फूलों की, पंछियों की, मैंने बताया कि विविध भारती के कंपाउंड में बहुत सारे तोते आते हैं। आपके आसपास, आपके घर, आपकी खिड़कियों पर कौन से पंछी आते हैं जरूर बताइए। और अब आ रहा है फूलों का गाना, वो गाना जिससे सभी को बहुत प्यार है, पर आपको ये बताना है कि आपको किस फूल से सबसे ज्यादा प्यार है। किसी एक फूल का नाम लो।

कितनी सुंदर बात है, आपका साथ साथ फूलों का, आपकी बात बात फूलों की। कितने सारे श्रोता हैं जिन्होंने अपने पसंदीदा फूलों के नाम लिए हैं। किसी को गुलाब पसंद है, किसी को हरसिंगार बहुत पसंद आते हैं। एक श्रोता लिख रहे हैं कि हरसिंगार के फूल जब झड़ते हैं तो लगता है मानो जमीन पर तारे निकल आए हैं। इसके अलावा एक श्रोता लिखते हैं कि हमारे घर के आसपास गोरैया बहुत नजर आती है, और इसके अलावा बहुत सारे तोते और चिड़ियाएं आती हैं, कबूतर बहुत ज़्यादा आते हैं, आजकल हम दाना पानी रखते हैं। एक श्रोता लिखती हैं कि एक बहुत छोटी सी प्यारी सी चिड़िया इनके घर में बहुत बार आती है। एक और श्रोता हैं जो लिखते हैं कि तोते, काबर, कोयल, कबूतर और कुछ अज्ञात पंछी नज़र आते हैं। और इसके अलावा एक और श्रोता हैं जो लिख रही हैं कि इतने सारे पंछी नज़र आते हैं, सबको नाम से नहीं जानती पर मैना को पहचानती हूँ। सभी श्रोताओं ने बहुत सारे अलग अलग पंछियों के नाम लिए हैं, और अब चूंकि कार्यक्रम से जाने का वक्त आ गया है, लेकिन एक गाने का सुराग मैंने अपनी आज की इबारत में रख छोड़ा था, वो आज का आखिरी गाना है। आज का सुरीला सफर कार्यक्रम आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा।

दोस्तों, ये आज का सुरीला सफर कार्यक्रम था और ये कार्यक्रम आज हमने कुदरत और अपने दिल की बहुत प्यारी और नाजुक बातों से सजाया था। उम्मीद है आपको ये कार्यक्रम पसंद आया होगा। चलते चलते एक दरखास्त है। जैसे कि आप जानते हैं, विविध भारती हर महीने करता है अपनी एक महफिल सृजन भारती। इस बार सृजन भारती लेकर आ रहा है लोक संगीत की भीनी खुशबू और कुछ दिलचस्प बातों का गुलदस्ता। और ये कार्यक्रम होगा एक मुक्ताकाशी रंगमंच पर। 21 मई शाम 6:30 पर लोक संगीत और कुछ दिलचस्प बातों से सजा रंगारंग कार्यक्रम। आयोजन स्थल है ज्ञान सागर मुक्ताकाशी ऑडिटोरियम रघुनाथ टावर के सामने, देवीदास लेन, बोरीवली पश्चिम, मुंबई। प्रवेश बिल्कुल मुफ्त। आप सभी खुद आएं और अपने दोस्तों को लेकर आएं। बहुत बहुत शुक्रिया। आज का कार्यक्रम आपने यूनुस खान के संग सुना। अब दीजिए इजाजत। नमस्कार।

आज बुधवार का दिन है और तारीख है 20 मई। कैलेंडर की तरफ आप देखेंगे तो सोचेंगे ये कौन सा खास दिन है, लेकिन आज का दिन पूरी दुनिया में विश्व मधुमक्खी दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। अब आप सोच रहे होंगे कि मधुमक्खियों का दिन, मतलब इसका क्या मतलब है? तो मैं आपको बताता हूं कि मधुमक्खियां हमारी जिंदगी के लिए और

इस दुनिया की सलामती के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि मधुमक्खियां परागण करती हैं और ये मधुमक्खियां हमारे इकोसिस्टम को बनाए रखने की कोशिश करती हैं। सन 2017 में संयुक्त राष्ट्र ने 20 मई को मधुमक्खी दिवस के रूप में घोषित किया था और ये दिन मनाया जाता है मधुमक्खी पालन के जन्मदाता एंटोन जांसा की जयंती के मौके पर। मधुमक्खियों को बड़ी तेजी से खत्म किया जा रहा है और इससे उनके अस्तित्व पर खतरा मंडरा रहा है। जाहिर है मधुमक्खियां नहीं होंगी तो फूल पौधे और फसलें नहीं होंगी। खैर, मधुमक्खियों के बारे में सोचिए, साथ में सोचिए मीठा बोलने के बारे में।

बचपन में हम सबको किताबों में ये पढ़ाया जाता है कि मधुमक्खियां फूलों का रस लेती हैं और पराग के कणों को यहां वहां बिखेर देती हैं। इस तरह से नए पौधे पैदा होते हैं और इसी तरह से दुनिया में हरियाली बढ़ रही है, फूल बढ़ रहे हैं, पौधे बढ़ रहे हैं। पर आजकल जिस तरह से ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है, कीटनाशकों का इस्तेमाल बढ़ रहा है, उससे मधुमक्खियों के अस्तित्व पर खतरा मंडराता चला जा रहा है और इसका सीधा सीधा असर हमारे यहाँ फूलों और पौधों की विविधता पर भी पड़ रहा है।

छत्ते बना रही हैं। वो कहां जाएंगी, इसके बारे में किसी ने सोचा? खैर, मधुमक्खियों के बारे में सोचिए और सोचिए फूलों को बचाने के बारे में, जो मधुमक्खियों की जीवन रेखा है।

20 मई का दिन विश्व मधुमक्खी दिवस के रूप में मनाया जाता है और त्रिवेणी के जरिए हम आपको रोज किसी न किसी मुद्दे पर जागरूक करते हैं। आज मधुमक्खी के बारे में हम आपको बता रहे हैं। जरा सोचिए कि मधुमक्खियां फूलों का रस ग्रहण करती हैं और उसे शहद में बदल देती हैं। यानी मधुमक्खियों का जीवन संसार में मिठास बढ़ाने को समर्पित है। हम मधुमक्खियों से मीठा बोलना सीख सकते हैं। हम मधुमक्खियों से संसार का भला करना सीख सकते हैं। हम मधुमक्खियों से ये सीख सकते हैं कि दुनिया में बोलों की मिठास बढ़े। लेकिन ये जो मीठे बोल है ना, कई बार इनके पीछे भी कुछ बदमाशियां और चालाकियां छिपी होती हैं। और बड़े बुजुर्ग कह गए हैं

शाबाश।

0: शाबाश मीठी मीठी बातों से मीठी मीठी बातों से बचना जरा, दुनिया के लोगों में है जादू भरा।
1: आज की त्रिवेणी थी विश्व मधुमक्खी दिवस पर। ये त्रिवेणी आपने अपने दोस्त यूनुस खान के संग सुनी। अब दीजिए इजाजत, नमस्कार।
2: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। थोड़ी देर में आप सुनेंगे हिंदी में समाचार, जिन्हें हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे।
3: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब से कुछ देर में रोम में इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी से वार्ता करेंगे। आर्थिक सहयोग को बढ़ावा देने पर चर्चा होगी। प्रधानमंत्री मोदी और जॉर्जिया मेलोनी ने एक साझा लेख में भारत इटली महत्वपूर्ण रणनीतिक साझेदारी और आर्थिक पहलों का उल्लेख किया। डीआरडीओ ने मानव रहित ड्रोन मिसाइल UL-PGM-MV3 का सफल परीक्षण किया। रक्षा मंत्री ने इसे महत्वपूर्ण उपलब्धि बताया। सर्वोच्च न्यायालय ने जाति आधारित जनगणना करने के केंद्र के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका खारिज की। उत्तर और मध्य भारत में लू का प्रकोप जारी, कई स्थानों पर तापमान 44 डिग्री के पार। और आईपीएल क्रिकेट में आज शाम कोलकाता नाइट राइडर्स का मुकाबला मुंबई इंडियंस से। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब से कुछ देर में रोम में इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी के साथ द्विपक्षीय वार्ता के साथ साथ मौजूदा वैश्विक परिदृश्य पर भी व्यापक बातचीत करेंगे। दोनों देशों के बीच आज कई महत्वपूर्ण समझौते होने की संभावना है। दोनों नेता कई विषयों पर अपने विचार साझा करेंगे। आज की बातचीत से भारत इटली की मित्रता को और बढ़ावा देने पर चर्चा की जाएगी। हमारे संवाददाता ने बताया है कि दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय संबंधों के महत्व को दर्शाने के लिए रोम में कई कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे।
4: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज क्विरिनल पैलेस में इटली के राष्ट्रपति सर्जियो मत्तारेला से मुलाकात करेंगे, जहां उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर प्रदान किया जाएगा। आज के कार्यक्रमों में प्रतिनिधि मंडल स्तरीय वार्ताएं, प्रेस वक्तव्य, समझौता ज्ञापनों का आदान प्रदान, द्विपक्षीय बैठकें और खाद्य एवं कृषि संगठन का दौरा शामिल है। प्रधानमंत्री मोदी मोरस निग्रा ब्लैक मलबरी का पौधा भी लगाएंगे। ये एक ऐसी प्रजाति है जो अपने पाक, औषधीय और सांस्कृतिक महत्व के कारण भारत और इटली को प्रतीकात्मक रूप से जोड़ती है। रोम से सुपर्णा भाटिया।
3: प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि वे इटली के प्रधानमंत्री के साथ होने वाली बैठक को लेकर उत्सुक हैं। उन्होंने आशा व्यक्त की कि दोनों के बीच बातचीत में मुख्य रूप से भारत इटली संबंधों को मजबूत करने पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। हाल के वर्षों में भारत इटली संबंधों में अभूतपूर्व प्रगति हुई है और अब ये संबंध निर्णायक मोड़ पर पहुंच गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इटली के प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने संयुक्त लेख में कहा कि दोनों देशों के बीच संबंध सौहार्दपूर्ण मित्रता से विकसित होकर एक विशेष रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक पहुंच गए हैं। दोनों नेताओं ने कहा कि ऐसे समय में जब वैश्विक व्यवस्था में गहन परिवर्तन हो रहे हैं, भारत इटली साझेदारी उच्चतम राजनीतिक और संस्थागत स्तरों पर नियमित आदान प्रदान से निर्देशित है। दोनों नेताओं ने कहा कि उनका सहयोग इस साझा समझ को दर्शाता है कि 21वीं सदी में समृद्धि और सुरक्षा राष्ट्रों के नवाचार करने, ऊर्जा परिवर्तन का प्रबंधन करने और कूटनीतिक संप्रभुता को मजबूत करने की क्षमता पर निर्भर करेगी। दोनों नेताओं ने कहा कि भारत और यूरोपीय संघ के बीच प्रस्तावित मुक्त व्यापार समझौता दोनों दिशाओं में व्यापार और निवेश के प्रवाह को बढ़ाने का मार्ग प्रशस्त करेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इटली के प्रसिद्ध चित्रकार जियाम पावलो टोमासिट्टी की भारतीय संस्कृति पर किए गए कार्यों की सराहना की है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि कलाकार ने इटली के रोम दौरे में वाराणसी पर बनी अपनी विशेष पेंटिंग प्रस्तुत की। प्रधानमंत्री ने कहा कि श्री टोमासिट्टी का भारतीय संस्कृति के प्रति प्रेम 4 दशक से अधिक पुराना है। एक अन्य पोस्ट में श्री मोदी ने भारतीय नृत्य शैलियों के प्रति 5 इतालवी कलाकारों के प्रेम की भी प्रशंसा की। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज सियोल में दक्षिण कोरिया के रक्षा मंत्री आन ग्यूबैक से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने क्षेत्रीय शांति, स्थिरता और तकनीकी सहयोग में साझा प्रतिबद्धता व्यक्त की। उन्होंने भारत दक्षिण कोरिया रक्षा, रक्षा उद्योग और रणनीतिक सहयोग को और मजबूत करने पर चर्चा की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री सिंह ने कहा कि इस अत्यंत उपयोगी बैठक में दोनों देशों ने रक्षा साइबर सहयोग को बढ़ावा देने के लिए समझौतों का आदान प्रदान किया। ये समझौता ज्ञापन भारत के राष्ट्रीय रक्षा महाविद्यालय, कोरिया राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय और संयुक्त राष्ट्र शांति स्थापना सहयोग के बीच हुआ। रक्षा मंत्री ने कहा कि वे दोनों देशों के बीच विशेष रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करने के लिए उत्सुक हैं। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsoneir.gov.in और हमारे न्यूज ऑन EIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। देश ने आत्मनिर्भर भारत पहल के अंतर्गत स्वदेशी रक्षा क्षमताओं को मजबूत करने की दिशा में एक और महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO ने अनमैन्ड एरियल व्हीकल लॉन्च प्रिसीजन गाइडेड मिसाइल ULPGM-V3 के अंतिम विकास परीक्षण को सफलतापूर्वक किया है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि ये देश के रक्षा क्षेत्र के लिए महत्वपूर्ण उपलब्धि है।
5: ये परीक्षण आंध्र प्रदेश में कुरनूल के पास DRDO की टेस्ट रेंज में एयर टू ग्राउंड और एयर टू एयर दोनों तरह से किए गए। इस दौरान मिसाइल प्रणाली को एक एडवांस्ड इंटीग्रेटेड ग्राउंड कंट्रोल सिस्टम के माध्यम से संचालित किया गया। इन परीक्षणों से विभिन्न परिस्थितियों में मिसाइल की सटीक मारक क्षमता, विश्वसनीयता और प्रभावशीलता प्रदर्शित होती है। इस मिसाइल को हैदराबाद के रिसर्च सेंटर इमारत ने DRDO के साथ मिलकर विकसित किया है। पूरी तरह से स्वदेशी रूप से निर्मित ये मिसाइल आत्मनिर्भर भारत पहल की बढ़ती उपयोगिता को दर्शाती है। इससे देश के भीतर रक्षा प्रणाली को और सुदृढ़ करने में सहायता मिलेगी। विजयवाड़ा से अल्लू मुरली की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार बल।
3: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ULPGM-V3 मिसाइल के सफल विकास परीक्षणों के लिए रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, रक्षा सह उत्पादन भागीदारों और उद्योग जगत की सराहना की है। उन्होंने टैंक रोधी भूमिका के लिए हवा से जमीन मोड और ड्रोन, हेलीकॉप्टर तथा अन्य हवाई लक्ष्यों के लिए हवा से हवा मोड में इसकी प्रभावशीलता के बारे में जानकारी दी। श्री सिंह ने इसे रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की दिशा में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि बताया। सर्वोच्च न्यायालय ने जनगणना 2027 के तहत जाति आधारित जनगणना कराने के केंद्र सरकार के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका आज खारिज कर दी। अदालत ने कहा है कि ये मुद्दा सरकार के नीतिगत अधिकार क्षेत्र में आता है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा है कि पिछड़े वर्गों के कल्याणकारी उपाय तैयार करने के लिए सरकार को उनकी संख्या जानना जरूरी है। पीठ ने कहा कि इस तरह के आंकड़े एकत्र करने में कोई बुराई नहीं है और मामले में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया। सर्वोच्च न्यायालय ने आज केंद्र तथा सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से एक जनहित याचिका पर जवाब मांगा है। इसमें सरकारी कानूनी पैनलों और विधि अधिकारियों की नियुक्तियों में महिला वकीलों के लिए 30% आरक्षण की मांग की गई है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ ने एक ट्रस्ट की याचिका पर नोटिस जारी किया। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कहा है कि भाजपा सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता उत्तर बंगाल का सर्वांगीण विकास है। उन्होंने कहा कि वो विकास परियोजनाओं की समीक्षा और सरकारी योजनाओं के प्रभावों की निगरानी के लिए हर महीने एक बार उत्तर बंगाल का दौरा करेंगे। उन्होंने कहा कि उत्तर बंगाल विकास मंत्री, उत्तर बंगाल सचिवालय, उत्तर कन्या सिलीगुड़ी में सुबह 9 बजे से 11 बजे तक जनता दरबार का आयोजन करेंगे। उन्होंने ये भी कहा कि जनता दरबार के बाद दिन में 11 बजे से दोपहर 1 बजे तक अधिकारियों के साथ प्रशासनिक समीक्षा बैठक होगी और उसके बाद उसी दिन दोपहर 2 बजे से 4 बजे तक विकास मंत्री क्षेत्र के सभी सांसदों और विधायकों के साथ विकास कार्यों को गति देने के लिए समीक्षा बैठक करेंगे। केंद्रीय उपभोक्ता मामलों के मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा है कि सरकार स्मार्ट विनियमन और उत्तरदायी शासन के माध्यम से बाजार में निष्पक्षता बढ़ाकर नियामक बोझ को कम करने के लिए प्रतिबद्ध है। विश्व मापन दिवस 2026 के अवसर पर वर्चुअल रूप से आयोजित एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए श्री जोशी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये परिकल्पना की है कि भारतीय उत्पादों की गुणवत्ता वैश्विक मानकों और पर्यावरण के अनुकूल होनी चाहिए। राष्ट्रीय महत्वपूर्ण सूचना अवसंरचना संरक्षण केंद्र के महानिदेशक नवीन कुमार सिंह ने आज कहा कि देश के डिजिटल अर्थव्यवस्था से वर्ष 2030 तक देश के सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी में लगभग 20% के योगदान देने की उम्मीद है। वे नई दिल्ली में फिक्की के साइबरकॉम के 7वें संस्करण के उद्घाटन सत्र को संबोधित कर रहे थे। राष्ट्रीय महिला आयोग ने मध्य प्रदेश के भोपाल में नोएडा की 33 वर्षीय महिला की संदिग्ध मौत का स्वतः संज्ञान लिया है। आयोग की अध्यक्ष विजया राहटकर ने मध्य प्रदेश के मुख्य सचिव और पुलिस महानिदेशक को पत्र लिखकर त्वरित निष्पक्ष और समयबद्ध जांच सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है। महिला आयोग ने 7 दिन में विस्तृत कार्रवाई रिपोर्ट भी मांगी है। पंजाब पुलिस ने दुबई स्थित एक अंतर्राष्ट्रीय मादक पदार्थ तस्करी मॉड्यूल का भंडाफोड़ किया है, जो सीमावर्ती राज्य पंजाब और राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में मादक पदार्थों की तस्करी के लिए अबुधाबी से काम कर रहा था। पुलिस ने 14 किलोग्राम मादक पदार्थों के साथ 2 तस्करों को गिरफ्तार किया है। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री मेजर जनरल भुवन चंद्र खंडूरी का अंतिम संस्कार आज हरिद्वार में पूरे राजकीय सम्मान के साथ किया गया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उनके निधन को राज्य के लिए अपूर्णीय क्षति बताया।
6: मेजर जनरल भुवन चंद खंडूरी जी का जाना पूरे राज्य के लिए और देश के लिए बहुत अपूर्णीय क्षति है, और उन्होंने सेना के अधिकारी के रूप में देश की रक्षा के लिए अपनी सेवाएं दी, अभूतपूर्व योगदान दिया। उसके बाद भारत सरकार में मंत्री के नाते और राज्य में मुख्यमंत्री के नाते उन्होंने शुचिता, पारदर्शिता और अनुशासन और समय की पाबंदी, ऐसे बहुत सारे अनुकरणीय जो कार्य हैं अपने समय में किए, वो हम सभी के लिए प्रेरणा के स्रोत रहेंगे।
3: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @TIRNews हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। उत्तर पश्चिमी और मध्य भारत में लू का प्रकोप जारी है। मौसम विभाग ने अगले 4 दिन तक दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, ओडिशा, छत्तीसगढ़, राजस्थान, तेलंगाना और उत्तराखंड में लू की स्थिति बने रहने का अनुमान व्यक्त किया है। राजस्थान के अधिकांश जिले भी इस समय भीषण लू की चपेट में हैं। मौसम विभाग ने आज राज्य के 2 जिलों में लू की स्थिति को देखते हुए ऑरेंज अलर्ट जबकि 14 जिलों में येलो अलर्ट जारी किया है। हमारे संवाददाता की ये रिपोर्ट।
7: प्रदेश में भीषण गर्मी और गर्म हवाएं लोगों को परेशान कर रही हैं। ज्यादातर जिलों में दिन का

0: पारा 42 से 46 डिग्री, वहीं रात का तापमान 46 से 31 डिग्री सेल्सियस के बीच दर्ज किया जा रहा है। इस बीच चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर ने अस्पतालों में हीट वेव प्रबंधन को लेकर सभी जरूरी इंतजाम करने के निर्देश दिए हैं। अस्पतालों में हीट स्ट्रोक के मरीजों के लिए अलग से बेड आरक्षित रखने, जरूरी दवाइयां उपलब्ध कराने के साथ छाया और पेयजल का प्रबंध करने को कहा गया है। जितेंद्र द्विवेदी, आकाशवाणी समाचार, जयपुर।
1: पंजाब और हरियाणा में भी भीषण गर्मी जारी है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि मौसम विभाग ने दोनों राज्यों में गर्मी का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है।
2: चंडीगढ़ स्थित मौसम विभाग के डायरेक्टर सुरेंद्र पाल ने आकाशवाणी को बताया कि आने वाले 3-4 दिनों में मौसम शुष्क रहेगा और तापमान बढ़ेगा। दोनों राज्यों के पश्चिमी जिलों में लू की स्थिति रहेगी। पंजाब में ये जिले अमृतसर, फिरोजपुर, तरनतारन, मानसा, संगरूर, बठिंडा और मुक्तसर होंगे और हरियाणा में हिसार, रोहतक, झज्जर, भिवानी, गुरुग्राम और फरीदाबाद में सबसे ज्यादा गर्मी महसूस होगी। पिछले 24 घंटों में पंजाब में फरीदकोट 47.3 डिग्री सेल्सियस और हरियाणा में रोहतक 46.9 डिग्री सेल्सियस तापमान के साथ सबसे गर्म जिले रहे। राजेश बाली, आकाशवाणी समाचार, जलंधर।
1: चीन के राष्ट्रपति शी जिनफिंग और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने आज बीजिंग में द्विपक्षीय संबंधों, ईरान यूक्रेन संघर्ष और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार सहित प्रमुख वैश्विक मुद्दों पर बातचीत की। चीन के विदेश मंत्रालय ने कहा है कि वार्ता से बीजिंग और मॉस्को के बीच रणनीतिक साझेदारी को मजबूती मिलेगी और संयुक्त राष्ट्र, दक्षिण अफ्रीका परिषद और ब्रिक्स जैसे मंचों के माध्यम से समन्वय बढ़ेगा। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अगले महीने फ्रांस में आयोजित होने वाले G7 शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। पश्चिम एशिया संघर्ष को लेकर अमेरिका और कई यूरोपीय सहयोगियों में बढ़ते तनाव के बीच ट्रंप इस सम्मेलन में भाग ले रहे हैं। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में आज मामूली गिरावट दर्ज की गई। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 101 अंक गिरकर 75,100 जबकि निफ्टी 24 अंक की गिरावट के साथ 23,594 पर कारोबार कर रहा था। आईपीएल क्रिकेट में आज कोलकाता नाइट राइडर्स का मुकाबला मुंबई इंडियंस से होगा। ये मैच कोलकाता में शाम 7:30 बजे शुरू होगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब से कुछ देर में रोम में इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी से वार्ता करेंगे। आर्थिक सहयोग को बढ़ावा देने पर चर्चा होगी। प्रधानमंत्री मोदी और जॉर्जिया मेलोनी ने एक साझा लेख में भारत इटली महत्वपूर्ण रणनीतिक साझेदारी और आर्थिक पहलों का उल्लेख किया। डीआरडीओ ने मानव रहित ड्रोन मिसाइल ULPGM V3 का सफल परीक्षण किया। रक्षा मंत्री ने इसे महत्वपूर्ण उपलब्धि बताया। सर्वोच्च न्यायालय ने जाति आधारित जनगणना करने के केंद्र के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका खारिज की। उत्तर और मध्य भारत में लू का प्रकोप जारी। और आईपीएल क्रिकेट में आज शाम कोलकाता नाइट राइडर्स का मुकाबला मुंबई इंडियंस से। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। प्रस्तुत है कार्यक्रम सदाबहार नगमे। सभी सुनने वालों को राजेश का प्यार भरा नमस्कार। प्रोग्राम की शुरुआत कर रहे हैं मुकेश की आवाज़ में संगम फिल्म के गाने के साथ। बोल हैं हसरत जयपुरी के और तर्ज शंकर जयकिशन की।

हमारी अगली पेशकश मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में। गीतकार हैं SH बिहारी और संगीतकार हैं OP नैयर। फिल्म का नाम कश्मीर की कली।

अगला गाना हमने लिया है वक्त फिल्म से, इसे गाया है आशा भोसले और महेंद्र कपूर ने। गीतकार हैं साहिर लुधियानवी और संगीतकार हैं रवि।

0: दिन की भागदौड़ के बाद सुकून का एक कोना,
1: मैं और मेरी तन्हाई,
0: सुनहरे गानों का बिछौना, यादों का मीठा राग, जज्बात की नरम छांव, प्यार की चुवन, अपनेपन का गांव, छाया गीत, रोज रात 10 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: आलस भरी सुबह जैसे चाय में घुल जाए चीनी,
3: देखो जी बहार आई, बाहों में खिली कलियां,
2: आपके जीवन में घोलते हैं संगीत, भूले बिसरे गीत,
4: मैं तेरा राग तू मेरी रागनी,
2: गुजरे दौर की आवाजें, धुनों की अनूठी परवाज, सुनहरे गानों का अंदाज, आपकी सुबह को बनाए खास, भूले बिसरे गीत
5: तुम्हारी याद सताते हैं,
2: हर रोज सुबह 7 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
6: आपने ट्यून किया है भारत का नंबर 1 मनोरंजन चैनल विविध भारती और कार्यक्रम चल रहा है सदाबहार नगमे। लीजिए अब सुनिए लता मंगेशकर की आवाज़ में भावी फिल्म का गाना। गीतकार हैं राजेंद्र कृष्ण और संगीतकार हैं चित्रगुप्त।

सुनहरे दौर के सदाबहार गानों की महफिल। सोमवार से शनिवार दिन में 2:30 बजे सिर्फ विविध भारती पर। सदाबहार नगमे।

0: जैसे कि आप जानते हैं विविध भारती हर महीने करता है अपनी एक महफिल सृजन भारती। इस बार सृजन भारती लेकर आ रहा है लोक संगीत की भीनी खुशबू और कुछ दिलचस्प बातों का गुलदस्ता। और ये कार्यक्रम होगा एक मुक्ताकाशी रंगमंच पर 21 मई शाम 6:30 पर। लोक संगीत और कुछ दिलचस्प बातों से सजा रंगारंग कार्यक्रम। आयोजन स्थल है ज्ञान सागर मुक्ताकाशी ऑडिटोरियम रघुनाथ टावर के सामने देवीदास लेन बोरीवली पश्चिम मुंबई। प्रवेश बिल्कुल मुफ्त। आप सभी खुद आएं और अपने दोस्तों को लेकर आएं।
1: विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन से अभी आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सदाबहार नगमे। लीजिए अब सुनिए शकील बदायनी का लिखा और नौशाद का संगीतबद्ध किया गाना। आवाज़ है लता मंगेशकर की, फिल्म का नाम कोहिनूर।

अब आज के इस प्रोग्राम की आखिरी पेशकश मुकेश की आवाज़ में कटी पतंग फिल्म से। गीतकार हैं आनंद बख्शी और संगीतकार हैं आरडी बर्मन। श्रोताओं, आप सुनिए ये गीत और अपने दोस्त राजेश को आज्ञा दीजिए। नमस्कार।

0: नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप प्रभा शर्मा से प्रादेशिक समाचार सुनिए। प्रदेश में जनगणना 2027 का पहला चरण 1 जून से शुरू हो रहा है, जो 15 जुलाई तक चलेगा। पहली से 15 जून तक लोग स्वगणना के जरिए ऑनलाइन माध्यम से अपनी जानकारी भर सकेंगे। जनगणना के सफल कार्यान्वयन को लेकर आज जनगणना कार्यालय निदेशालय शिमला में एक बैठक हुई, जिसमें आकाशवाणी, दूरदर्शन, सीबीसी और पत्र सूचना ब्यूरो के अधिकारियों ने भाग लिया। इस दौरान जनगणना को लेकर लोगों को जागरूक करने को लेकर रणनीति बनाई गई। जनगणना कार्य निदेशालय की निदेशक दीप शिखा शर्मा ने बताया कि 16 जून से 15 जुलाई तक मकानों की गणना और सूचीकरण कार्य किया जाएगा। उन्होंने प्रदेश के सभी नागरिकों से जनगणना कार्य में सहयोग की अपील की है।
1: हिमाचल प्रदेश में जो जनगणना 2027 उसका प्रथम चरण जो कि मकानों की गणना एवं मकान सूचीकरण है, वह 16 जून से 15 जुलाई के भीतर कंडक्ट हो रहा है। और इस बार हमारा जो सेंसस है वो डिजिटल माध्यम से किया जा रहा है। इसके लिए जनगणना में स्वगणना का जो प्रावधान है उसे भी रखा गया है। जो हमारे हिमाचल प्रदेश के नागरिक हैं वो स्वगणना पोर्टल पर जाकर अपनी जानकारी 1 जून से 15 जून के भीतर उसको

0: दर्ज कर सकते हैं। प्लीज आप स्वगणना पोर्टल पर जाकर अपनी जानकारी दर्ज करें। जनगणना की जानकारी जो है वो कॉन्फिडेंशियल है। यदि कोई स्वगणना के विकल्प को भी नहीं चुनता है तो भी जो हमारा प्रगणक है वो हर जगह जाएगा, हर कोने में जाएगा प्रदेश के, हर एक घर को जो है वो कवर किया जाएगा।
1: केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय की महत्वाकांक्षी पहल एक भारत श्रेष्ठ भारत के तहत शुरू किए गए युवा संगम कार्यक्रम के तहत हिमाचल और पुडुचेरी के बीच सांस्कृतिक और शैक्षणिक आदान प्रदान की एक अनूठी पहल चलाई जा रही है। इसी सिलसिले में एनआईटी पुडुचेरी के 48 छात्रों और फैकल्टी समन्वयकों का एक दल केंद्रीय विश्वविद्यालय धर्मशाला पहुंचा है। राज्यपाल कविंद्र गुप्ता ने आज कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में भाग लिया और कहा कि केंद्र सरकार द्वारा शुरू किए गए एक भारत श्रेष्ठ भारत कार्यक्रम से देश की एकता व अखंडता को मजबूती मिलेगी और इसके माध्यम से युवाओं को देश के सभी राज्यों की संस्कृति से रूबरू होने का मौका मिल रहा है।
2: मुझे लगता है कि इस प्रकार के जो कार्यक्रम रहते हैं वो देश की एकता और अखंडता को उसको मजबूत बनाते हैं। पुडुचेरी से जो छात्र आए हैं एनआईटी के माध्यम से, वो इस कार्यक्रम के दौरान पूरे हिमाचल को जानेंगे, यहाँ की सभ्यता संस्कृति, यहाँ का जो देवत्व है उसको अभी जानेंगे। प्रधानमंत्री जी की ये जो पहल है ये निश्चय ही भारत को मजबूत करने में एक नया मील पत्थर साबित है। विविधता में एकता, ये भारत की खूबसूरती है। उसी के आधार पर भारत हजारों वर्षों से दुनिया में एक अलग तरह से है।
1: सांसद सुरेश कश्यप ने डीएपी और एनपीके खाद पर दी जा रही 50 रुपए प्रति बोरी सब्सिडी बंद करने पर राज्य सरकार की आलोचना की है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार के इस निर्णय से एक बार फिर साबित हो गया है कि उसे किसानों, बागवानों और ग्रामीण अर्थव्यवस्था की कोई चिंता नहीं है। सुरेश कश्यप ने इस कदम को किसानों के साथ विश्वासघात करार दिया है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में लगभग 9 लाख से अधिक किसान परिवार खेती व बागवानी से जुड़े हैं और खाद पर सब्सिडी बंद करने से उन पर आर्थिक बोझ पड़ेगा। सुरेश कश्यप ने आरोप लगाया कि कांग्रेस सरकार हर मोर्चे पर विफल रही है और वित्तीय कुप्रबंधन और गलत नीतियों के कारण सरकार प्रदेश को भारी कर्ज में धकेल चुकी है। ई फार्मेसी के विरोध में दवा विक्रेताओं के राष्ट्रव्यापी बंद के आह्वान का आज प्रदेश में भी असर देखने को मिला। सोलन जिले की लगभग 1500 दवा दुकानें आज पूरी तरह बंद रहीं। दवा व्यापारियों ने सरकार से ऑनलाइन दवा की खरीद पर रोक लगाने की मांग की है। सोलन जिला केमिस्ट एसोसिएशन के सह सचिव विपुल शर्मा ने बताया कि ऑनलाइन दवा खरीद से दवा व्यापारियों का व्यापार खत्म हो रहा है और लोगों को नकली दवाएं ही मिल रही हैं। इस दौरान एसोसिएशन ने उपायुक्त के माध्यम से सरकार को एक ज्ञापन भी सौंपा।
3: हमारे इस बंद में सभी प्रकार की दवाई की दुकानें, सभी प्रकार की होलसेल की एजेंसियां सभी आज पूर्ण रूप से बंद है। हमारी स्ट्राइक 19 तारीख रात 12 बजे से 20 तारीख रात 12 बजे तक जारी रहेगी। ई फार्मेसी जो है वो ऑनलाइन दवाइयों का जो व्यापार है उसके विरोध में हमने काफी टाइम से सरकार से हमारी बातचीत चल रही थी, मगर वो कोई अभी तक संज्ञान नहीं निकला है। और दूसरा हमारा है जो हमारी स्पूरियस मेडिसिन भी ऑनलाइन फार्मेसी से आती है, नकली दवाएं जो ऑनलाइन में मिलती है उसका भी विरोध हम करते हैं।
1: इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं शाम 6 बजे। नमस्कार।
4: प्रादेशिक समाचारों के बाद आइए अब सुनते हैं सामयिक चर्चा। आज का विषय है बांध पुनर्वास, नीति और प्रौद्योगिकी के जरिए बुनियादी ढांचे को सुदृढ़ करना। वाचक स्वर प्रभा शर्मा का है।
0: भारत के बांध, सिंचाई, जल विद्युत उत्पादन, बाढ़ नियंत्रण, पेयजल आपूर्ति और समग्र जल सुरक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। दशकों से बांधों ने देश भर में कृषि विकास, औद्योगिक विकास और सामाजिक आर्थिक प्रगति में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। जैसे जैसे बड़ी संख्या में बांध पुराने पड़ जाते हैं और जलवायु परिवर्तनशीलता बढ़ती है, उनके पुनर्वास, परिचालन, सुरक्षा और दीर्घकालिक सुदृढ़ता का मुद्दा महत्वपूर्ण हो जाता है। भारत सरकार संरचनात्मक पुनर्वास, संस्थागत सुधारों, डिजिटल निगरानी प्रणालियों और जोखिम आधारित सुरक्षा प्रबंधन के संयोजन के माध्यम से इस मुद्दे पर काम करती है। भारत आज विश्व स्तर पर सबसे बड़े बांध श्रेणियों में से एक का प्रबंधन करता है। ये 6628 निर्दिष्ट बांधों के साथ दुनिया में तीसरे स्थान पर है, जिनमें से 6545 चालू हैं और 83 बांध निर्माणाधीन हैं। इन बांधों की सकल जल भंडारण क्षमता लगभग 330 अरब क्यूबिक मीटर है।

0: 48 बांध हैं जो राज्य सरकारों के स्वामित्व में हैं। केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में 49 बांध या 0.7% हैं। निजी संस्थाओं के पास 0.6% या 36 बांध हैं और केंद्र सरकार के पास 0.2% या 12 बांध हैं। महाराष्ट्र में सबसे अधिक निर्दिष्ट बांध हैं, इसके बाद मध्य प्रदेश, गुजरात, छत्तीसगढ़, राजस्थान, कर्नाटक और ओडिशा का स्थान आता है। पुराने बुनियादी ढांचे, अवसादन, बदलते हाइड्रोलॉजिकल पैटर्न और बढ़ती जलवायु परिवर्तनशीलता को देखते हुए व्यवस्थित पुनर्वास और सुरक्षा प्रबंधन की आवश्यकता है। भारत में 439 जलाशयों के विश्लेषण से पता चलता है कि औसतन 42 वर्ष पुराने जलाशय के साथ सकल भंडारण क्षमता का औसतन 19% नुकसान होता है। भंडारण की औसत वार्षिक हानि 0.74% अनुमानित है, जो प्रतिवर्ष लगभग 1.81 MCM प्रति जलाशय के बराबर है। बांध पुनर्वास और सुधार परियोजना जैसी प्रमुख पहल को संरचनात्मक मरम्मत, स्पिलवे और गेटों के आधुनिकीकरण और उन्नत निगरानी प्रणालियों की स्थापना के माध्यम से मौजूदा बांधों की सुरक्षा और परिचालन प्रदर्शन में सुधार करने के लिए 3 चरणों में कार्यान्वित किया जा रहा है। DRIP विश्व स्तर पर सबसे बड़े बांध पुनर्वास कार्यक्रमों में से एक है, जो बांध सुरक्षा प्रबंधन के लिए एक व्यवस्थित और जोखिम आधारित दृष्टिकोण की ओर भारत के बदलाव को दर्शाता है। बांध पुनर्वास व सुधार कार्यक्रम चरण एक को विश्व बैंक की मदद से अप्रैल 2012 में शुरू किया गया था। इस कार्यक्रम में 7 राज्यों, झारखंड, कर्नाटक, केरलम, मध्य प्रदेश, ओडिशा, तमिलनाडु और उत्तराखंड के 223 बांधों को शामिल किया गया। इस कार्यक्रम ने इसमें शामिल राज्यों और एजेंसियों में बांध सुरक्षा प्रथाओं और संस्थागत क्षमता को मजबूत करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। इसमें 144 बांधों के पुनर्वास कार्यों के साथ 223 बांधों के लिए बाढ़ की समीक्षा की डिजाइन, बांध स्वास्थ्य निरीक्षण और पुनर्वास प्रस्तावों को अंतिम रूप दिया गया और 223 बांधों के लिए इसका कार्यान्वयन पूरा किया गया है। ये कार्यक्रम केंद्रित था जिसमें बांध संरचनाओं का पुनर्वास और आधुनिकीकरण, बांध सुरक्षा निरीक्षण और मूल्यांकन, आपातकालीन कार्य योजनाओं का विकास, क्षमता निर्माण और प्रशिक्षण कार्यक्रम, बांध स्वास्थ्य और पुनर्वास निगरानी अनुप्रयोग का परिचय शामिल है। बांध पुनर्वास और सुधार कार्यक्रम चरण 2 और 3 अक्टूबर 2021 में शुरू हुआ। सामयिक चर्चा समाप्त हुई। नमस्कार।
1: FM बैंड 103.4 MHz पर ये आकाशवाणी का धर्मशाला केंद्र है। दोपहर के 3:10 हुए हैं। अब आप सुनेंगे विविध भारती के कार्यक्रम आकाशवाणी के मुंबई केंद्र से।
2: बहुत ही जरूरी है हमारे लिए मधुमक्खियां।
3: बिल्कुल।
2: और हम बात करेंगे,
3: काटते बहुत बुरा है।
2: अरे काट चुकी है मुझे, इसलिए मुझे पूरा उसका एहसास है, पूरा एक्सपीरियंस है उसका। और हम बात करेंगे भाषाओं से किस तरह से जुड़ा हुआ है संस्कार।
3: अच्छा,
2: तो इसके बारे में तो चर्चा करेंगे, साथ ही हम चाहेंगे हमारे जो जितने भी श्रोता हैं वो सब अपने अपने विचार, अपने अपने जो भी वो सोचते हैं उसके बारे में वो लिख के भेजा, ये बताएं कि वो उनको कितनी भाषाएं आती हैं बोलनी।
3: अच्छा ठीक है, यानी शब्द हमारा विचार आपके जो आप सेगमेंट लाई हैं
2: उसके अंदर हम बात करेंगे सद्भावना।
3: अच्छा, भाषाओं से जुड़े संस्कार में आप बताना चाहती हैं कि भी अपनी अपनी भाषाओं के बारे में हमारे श्रोता हमसे बात करें कि वो किस भाषा को जानते हैं या कितनी भाषाओं के ज्ञाता हैं। तो फटाफट लिखिए, हमारे सखा और सखियों से हम अनुरोध करते हैं कि जो भाषाओं से जुड़ा संस्कार है इस पर लिखने के साथ साथ ये भी बताइए आपने अब तक कितनी भाषाएं सीखी हैं।
2: जी बिल्कुल, है ना। और हम बात करेंगे आज साड़ियों का संसार, जो साड़ियों का जो विषय है उसमें हम आज हम लेकर आए हैं तनचोई साड़ी।
3: क्या बात है। तो आज मुझे पूरी उम्मीद है कि इस बार आप मेरे लिए तनचोई साड़ी लेकर आई हैं।
2: साड़ी तो मैं खैर नहीं लेकर आ पाई हूँ, लेकिन आपके लिए बहुत सारी मिठाइयाँ मैं लेकर आई हूँ।
3: बिल्कुल, वो हमें मिल भी गए हैं, है ना जी। और शब्द हमारा विचार आपके में आज सद्भावना पर हम बात करने वाले हैं। देखिए, सद्भावना कहने को एक बहुत सामान्य शब्द लगता है, सद्भावना होनी चाहिए, लेकिन इसके गहरे अर्थ है। बहुत गहराई में जाकर आप इस पर अपने विचार लिखिएगा और ये भी बताइएगा कि आपके भीतर कितनी सद्भावना है दूसरों के प्रति, है ना। हम लिख तो देते हैं आरती बड़ी बड़ी बातें कि सद्भावना होनी चाहिए, बहुत जरूरी है जीवन में, लेकिन जब हमारा मौका मिलता है तो पता चलता है कि हमारे अंदर तो सद्भावना है ही नहीं, वो भावना ही नहीं।
2: अपने विचार लिखे, जो चीजें लिखी हुई पहले से उसमें
3: उस पर मत जाइए कि सद्भावना के विषय में क्या लिखा गया। ये बताइएगा कि

0: आप सद्भावना को लेकर
1: जी
0: क्या सोचते हैं, आपके जीवन में, आपके विचारों में, आपके व्यवहार में कितनी सद्भावना है, या सामने जो आपके लोग आते हैं उनसे आपको क्या सद्भावना रूपी विचार मिलते हैं?
1: बिल्कुल, तो हम बात एक चीज और भूल रहे हैं,
0: व्यंजन, आपका बहुत ही पॉपुलर सेगमेंट
1: जो मुझे बहुत पसंद है। आज हम बात करेंगे ठेकुआ की और दाल पीठा की। दाल पीठा मेरा इतना फेवरेट है ना, मैं बनाती भी हूँ, मैं खाती भी हूँ बहुत मजे।
0: चलिए तो अगली बार जब आप आएंगी तो लेकर भी आएंगी दाल पीठा और हमें खिलाएंगी भी।
1: हाँ जी,
0: ठीक है। तो भाई हम बात कर रहे थे विश्व मधुमक्खी दिवस की, जिसका हमें डर भी लगता है जब मधुमक्खी पास में छत्ता बना लेती है हमारे घर के आजू बाजू में कहीं, तो हम बड़े डर जाते हैं। एकाध मधुमक्खी उड़ती भी नजर आती है तो बड़ा डर लगता है कि कब काट खाएगी।
1: अरे भगाओ भगाओ जल्दी।
0: लेकिन देखिए कितनी बड़ी बात है कि ये दुनिया में अगर मधुमक्खी नहीं रही तो दुनिया के लोग सिर्फ 4 साल तक जीवित रह सकते हैं, और अनाज होगा कि नहीं, इस पर काफी मतलब शोध भी किए गए हैं।
1: बिल्कुल, क्योंकि बहुत ज्यादा जरूरी है अपने हमारे इकोसिस्टम, इस जो हमारे सिस्टम है पूरा पृथ्वी का, उसको चलाने के लिए। और हमारे जो एक श्रोता है वो लिखते हैं कि विश्व मधुमक्खी दिवस पर मधुमक्खियों के बारे में खास बातें कुछ बता रहे हैं वो, कि दुनिया की 1/3 खाद्य फसलें पूरी तरह से मधुमक्खियों जैसे पराग जो परागणकों पर निर्भर है, यानी कि वो जो मधुमक्खियां हैं वो उसको पराग को जब लेती हैं और बिखेरती हैं उस पर ही निर्भर करता है। यदि ये ना हो तो हमारे भोजन की प्लेट से अधिकांश फल सब्जियां और मेवे गायब हो जाएंगे। मधुमक्खियां आपस में बात करने या भोजन के स्रोत का पता लगाने के लिए एक विशेष प्रकार का वेगल डांस यानी कि नृत्य करती हैं। 1 पाउंड लगभग 1/2 किलो शहद बनाने के लिए मधुमक्खियों के पूरे झुंड को लगभग 20 लाख फूलों का दौरा करना पड़ता है, और अंत में मधुमक्खी की 5 आंखें होती हैं, 2 बड़ी मुख्य आंखें और सिर के ठीक बीच में 3 छोटी आंखें। सच में 20 लाख,
0: बताइए तब जाके हमें शुद्ध जो शहद है वो मिलता है।
1: एक बूंद भी नहीं गिराना चाहिए।
0: बिल्कुल नहीं गिराना चाहिए। और हम सभी को ये भी पता होना चाहिए आरती कि मधुमक्खियां उन पौधों के परागण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं जिन पर हम भोजन के लिए निर्भर हैं। जैसे कि सदियों से मधुमक्खियां जो पृथ्वी पर सबसे मेहनती जीवों में गिनी जाती है, और वो मनुष्य को, पौधों को, जैसा कि अभी तुमने बताया हमारे श्रोता ने, पर्यावरण को लाभ भी पहुंचाती रही है, और एक फूल से दूसरे फूल तक वो पराग को ले जाती हैं, और प्रचुर मात्रा में फल, मेवा और बीज भी वो पैदा करती हैं।
1: जी, हमारी ये श्रोता जो है कितने जानकार हैं, मतलब कितने अच्छी तरीके से उन्होंने इस बात को लिखा हुआ है।
0: बिल्कुल सही कहा है इन्होंने, और बल्कि उनकी जो विविधता है और गुणवत्ता में भी सुधार लाते हैं, जिससे खाद्य सुरक्षा और पोषण में योगदान होता है, वो पृथ्वी पर जीवन चलते रहने के लिए जरूरी भी होता है। और शहद के बारे में जब हम बात कर रहे थे, तो शहद तो उत्पादक होने के अलावा मधुमक्खियां पौधों के निषेचन में मदद करती हैं, और अनगिनत प्रजातियों के प्रजनन को वो सुनिश्चित भी करती हैं। फलों की और सब्जियों से लेकर फूलों और पेड़ों तक हमारे द्वारा जो खाए जाने वाले कितने ही खाद्य पदार्थ हैं वो परागण के लिए मधुमक्खियों पर ही निर्भर हैं, जैसा भी तुमने शुरू में बताया भी था।
1: जी, और मधुमक्खियों के बिना हमारे पारिस्थितिकी तंत्र को नुकसान होगा, जिससे जैव विविधता में कमी आएगी, और मनुष्यों और वन्य जीवों दोनों के लिए खाद्य सुरक्षा जो है वो खतरे में पड़ सकती है। और विश्व मधुमक्खी दिवस की स्थापना हुई थी संयुक्त राष्ट्र द्वारा 2017 में मधुमक्खियों और परागकर्ताओं के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए।
0: बिल्कुल, और हमारे एक श्रोता लिखते हैं कि काफ़ी अच्छी जानकारी इन्होंने दी है कि विश्व मधुमक्खी दिवस 20 मई को मनाया जाता है, और इस दिन मधुमक्खी पालन के अग्रणी एंटोन जानसा को 1734 में 32वां दिया गया था। अंतर्राष्ट्रीय दिवस का उद्देश्य जो है पारिस्थितिकी तंत्र के लिए मधुमक्खियों और अन्य परागकणों की भूमिका को स्वीकार भी करना है। तो अमेरिका में ये पहली बार दिवस मनाया गया, और ये पहल मधुमक्खी पालकों, शिक्षकों और शहद प्रेमियों द्वारा मधुमक्खियों की महत्वपूर्ण भूमिका को उजागर करने के उद्देश्य से शुरू की गई थी, और उनका लक्ष्य मधुमक्खियों की दुर्दशा के बारे में जागरूकता पैदा करना था, और उनके संरक्षण को, उनके महत्व पर जोर देना भी था।
1: बिल्कुल, और एक और श्रोता है हमारे जो लिखते हैं कि 20 मई विश्व मधुमक्खी दिवस संयुक्त राष्ट्र के खाद्य एवं कृषि संगठन के अनुसार दुनिया की लगभग 33% खाद्य फसलें और 90% जंगली फूलों वाले पौधे पूरी तरह या आंशिक रूप से परागणकों पर निर्भर करते हैं। मधुमक्खियां इस पारिस्थितिकी तंत्र को स्वस्थ रखने का सबसे बड़ा जरिया है।
0: बिल्कुल सही कहा। और देखिए बहुत सारी जानकारी जो हम जुटा के लाए थे वही हमारे श्रोता भी बता रहे हैं, काफी अच्छा मधुमक्खियों के बारे में। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो आज दिवस हम मना रहे हैं ना आरती, ये मधुमक्खियों की सुरक्षा के लिए जागरूकता बढ़ाने का एक शानदार अवसर है, और मधुमक्खियों को प्रचुर मात्रा में पराग उपलब्ध कराने के लिए मधुमक्खी अनुकूल फूल और जड़ी बूटियां हमें लगानी चाहिए, ताकि ज्यादा से ज्यादा वो अपना कार्य कर सकें। अपने बगीचों की अगर हम बात करें, उन पर पौधों पर कीटनाशकों और रसायनों का उपयोग करने से हमें बचना भी चाहिए, क्योंकि मधुमक्खी और अन्य जो लाभकारी कीड़े हैं उनको नुकसान पहुंच सकता है। और साथ ही मधुमक्खी उत्पाद खरीदकर स्थानीय मधुमक्खी पालकों को हम बढ़ावा दे सकते हैं। और इस बार का जो मुख्य विषय रखा गया है वो है प्रकृति से प्रेरित मधुमक्खियाँ हम सभी का पोषण करती हैं।
1: बिल्कुल, हर बार एक नया विषय के साथ में आते हैं, तो इस बार का विषय ये है। और हमारे एक श्रोता है जो लिखते हैं कि फूल और फलों के फलीकरण के लिए मधुमक्खी वाहक का काम करती है, इसलिए मधुमक्खी का अस्तित्व बना रहना इस सृष्टि के लिए बेहद ज़रूरी है। पेड़ों की डाली के अलावा किसी घर की छत के नीचे छाता बना रही मधुमक्खियों से डरने की जरूरत नहीं है, सिर्फ सावधानी बरतनी चाहिए। हाँ। बिल्कुल, जब तक आप उसे छेड़ेंगे नहीं तब तक वो काटी
0: करेगी, बिल्कुल,
1: और कि वो आपको डस ना लें, हम मतलब उसको डंक ना लगा दें आपको। हम भी यही कह रहे हैं, अगर उसे आप छेड़ेंगे नहीं तो वो, अगर आप उसे छेड़ेंगे तो हमें छोड़ेगी नहीं। इसलिए जिस पेड़ की डाली पर तेरा छता हो उस डाली के पास से गुजरना नहीं। उन्होंने बड़े मजाकी तरीके से इस चीज को लिखा है।
0: बिल्कुल सही कहा है।
1: और कहते हैं कि 3 साल पहले हमारे घर के ओटीएस के सालियों पर छाता बनाया था, अब इस साल हमारे घर अमरूद के पेड़ के नीचे कपड़े सुखाने के तार पर एक कोने में एक महीन पहले छता बनाना शुरू किया, जो आज काफी बड़ा हो गया है और कुछ दिनों बाद बरसात की ऋतु में अपने आप उड़ जाएंगी, ना हम उसे छेड़ते ना वो हमें छेड़ती।
0: बिल्कुल सही कहा। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि विश्व मधुमक्खी दिवस पर ये जरूर बताना चाहूंगी कि हमारी स्कूल बिल्डिंग में अभी अप्रैल में काफी बड़ा सा छत्ता है जिसे बुलवाकर हटवाया गया था। पहले तो हमको बहुत स्थानों पर दिखाई देती थी मधुमक्खी, आप कम दिखती हैं। बचपन में माँ बताती थी कि उस पर बिल्कुल भी पत्थर नहीं फेंकना है, नहीं तो पानी के अंदर जाकर भी वो डंक मार देती है। वो हमेशा बात हमें याद रहती है। और मधुमक्खी शहद सी मिठास देती है, ऐसे ही सभी के जीवन में मधुरता बनी रहे।
1: बिल्कुल,
0: तो चलिए अब एक गीत सुन लेते हैं।
1: बिल्कुल सुनते हैं।

0: तो आरती
1: नाम नहीं बताने वाली हूँ चित्तौड़ का
0: भाई, नाम तो हमारे पता ही है हमारे श्रोताओं को
1: बिल्कुल
0: तो हम बात कर रहे थे आज की, भाई विश्व मधुमक्खी दिवस है और हमने बात की उनकी मिठास पर और मधुमक्खियों को किस तरह से हमें बचाना है इस पर। और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं हमारे देश में, हमारी संस्कृतियों से जुड़ी चीज़ें हैं जहाँ पर हम बहुत सारी बातों से, बहुत सारी चीज़ों से, गुणों से जुड़ पाते हैं और उनमें एक है हमारा साड़ियों का संसार।
1: अरे बहुत
0: है ना, और हम महिलाओं को सबसे ज़्यादा अच्छी लगती हैं ये साड़ियाँ। और आज हम बात करने वाले हैं तंचोई साड़ी के बारे में।
1: तो तंचोई के बारे में बात करते हैं। तो तंचोई की कहानी 19वीं शताब्दी ईस्वी के मध्य से शुरू होती है और ऐसा माना जाता है कि लगभग 1856 ईस्वी में पारसी व्यापारी सर जमशेद जी जेजी भाई ने सूरत के जोशी परिवार के 3 बुनकरों को चीन भेजा ताकि वो इस विशेष ब्रोकेट रेशम की बुनाई की कला को सीख सकें।
0: हाँ बिल्कुल सही कहा आरती। और वापस लौटने पर भाइयों ने अपने चीनी शिक्षक छोई का नाम अपना लिया और उन्होंने रेशम बुनाई की कला जो सिखाई थी। तन शब्द गुजराती शब्द त्रान से मिलता जुलता है जिसका अर्थ 3 होता है और इसी से तीनों भाइयों का नाम लिया जाता है। इस प्रकार जिस रेशम को उन्होंने बनाना सीखा उसे तंचोई के नाम से जाना अच्छा। जाने लगा है
1: जी, तो उनके शिक्षक का नाम और उनका जो नाम भाई थे। और बम्बई में 1950 के दशक तक तंचोई साड़ियों का उत्पादन जारी रहा और जब बनारस के बुनकरों ने इन ब्रोकेट को बनाने की कला सीख ली तो उसी कपड़े का उत्पादन बहुत कम कीमत पर शुरू कर दिया गया और इसी तरह कुछ जटिल बनारसी डिजाइन तंचोई रेशम पर भी दिखाई देने लगे।
0: बिल्कुल सही कहा। और तंचोई बुनाई की एक ऐसी तकनीक है जिसमें एक या दो ताने और बाने में 2 से 5 रंग के होते हैं, मतलब जो अक्सर एक ही रंग के होते हैं। और तंचोई साड़ियों की एक और खास बात यह है आरती कि इनके कपड़े की सतह साटन जैसी होती है और एक जटिल और तकनीकी बुनाई तकनीक है, बहुत मतलब थोड़ा जटिल है ये तकनीक
1: जी, इसको टाइम लगता है सीखने में, बनाने में
0: बहुत मुश्किल है।
1: तो इसमें 1 या 2 ताने और 2 से 5 बाने के रंगों का उपयोग होता है। ये साड़ियाँ बेहद हल्की और पहनने में मुलायम होती हैं। तंचोई की कई अलग अलग किस्में होती हैं, जैसे कि सैटन तंचोई जो कि एक ही रंग के सैटन कपड़े पर, जो साटन का कपड़ा होता है उस पर आधारित होती हैं और इसमें 1 या अधिक रंगों के ताने के धागे इस्तेमाल किए जाते हैं।
0: हाँ, और अतिरिक्त ताने के रंगों को भी मुख्य ताने के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा सैटिन जरी तंचोई, सैटिन तंचोई का ही एक विस्तारित रूप है जिसमें ताना या तो एक रेशम और एक सोने के धागे का या 2 रेशम के धागे और एक सोने के धागे का, इस तरह से इसको बनाया जाता है
1: जी। और इसके साथ एटलस या गिल्ट कपड़े की सतह शुद्ध साटन की होती है। अन्य कपड़ों की तुलना में एटलस या गिल्ट भारी होता है और जरी के अतिरिक्त उपयोग के कारण इसमें अधिक चमक भी होती है। और मुशब्बर का डिज़ाइन अपनी जालीदार बुनाई के कारण, ये डिज़ाइन अपनी जालीदार बुनाई के कारण थोड़ा अलग सा दिखता है।
0: हाँ बिल्कुल अलग लगती है तंचोई साड़ी, और ये झाड़ियों या पेड़ की शाखाओं जैसा भी प्रतीत होता है। मुशब्बर डिज़ाइन जो है अक्सर जंगल या प्रकृति की हरियाली से जुड़ी है। तो तंचोई जो वस्त्र है वो चटक रंगों से बुने जाते हैं और बुनाई की तकनीक में कई रेशमी धागों का उपयोग होता है। ब्रोकेट की साड़ियां होती है ना, उसी तरह ब्रोकेट की तरह तांचोई भी साटन बेस को ढकने वाले रंगीन बाने के रेशमी धागों के एक अतिरिक्त सेट का उपयोग करके बनाया जाता है जिससे विशिष्ट और अनूठे पैटर्न भी बनते हैं।
1: बिल्कुल, और तांचोई साड़ियों में डिजाइन हमेशा उड़ते हुए पक्षियों, फूलों की मालाओं के बीच बैठे मुर्गों की आकृतियों से सजे होते हैं जो पूरी साड़ी पर फूलों और फूलों से भरी टोकरियों से घिरे रहते हैं। कभी कभी पल्लू पर मोर, टोकरियां, फूलों के गुच्छे या शिकार के दृश्य अधिक सघनता से बनाए जाते हैं। तंचोई रेशमी साड़ियों को कुछ मोहक मनमोहक पुष्प, ज्यामितीय और पैसले डिजाइन से भी सजाया जाता है।
0: हाँ, बहुत ही अजीब सी एक क्लासिक डिजाइन होती है तंचोई साड़ियों में, और अधिकतर डिजाइन जो है चीनी मूल की होती है, लेकिन बुनकर जो है अनूठी कलाकृतियां बनाने के लिए भारतीय रूपांकनों को इसमें शामिल कर लेते हैं। और तंचोई साड़ियों पूरे देश में औपचारिक अवसर जो हैं या विवाह समारोह के अवसर हैं या त्योहार हैं हमारे, उसमें बहुत ही प्यार से, बहुत ही खुशियों के साथ पहनी जाती है, शौक के साथ पहनी जाती है। और तंचोई रेशम की साड़ियाँ अपने कपड़े की वजह से शरद ऋतु यानी सर्दी की ऋतु में और सर्दियों के ठंडे महीनों में पहनने के लिए एक अच्छी साड़ी हो सकती है। तो आरती, मैं तो अपनी सखियों से भी कहना चाहूंगी अगर उनके पास तंचोई साड़ी है तो हमें बताइए किस रंग की तंचोई है और उन्होंने इसे कब और कहाँ पहना, और नहीं तो उनके पति देव बता दे कि उनकी पत्नी ने तंचोई साड़ी खरीदने के लिए कितना दिमाग खराब किया होगा।
1: बिल्कुल बिल्कुल,
0: तो लिखिए हमें फटाफट और बताइए तंचोई साड़ी से जुड़ा कोई आपका अनुभव है हमारी सखियों और सखाओं का। हाँ, तो हमसे शामिल करें।
1: बिल्कुल, तब तक हम गीत सुनते हैं।
0: गीत सुनते हैं।

0: तो इस अंतराल के बाद हमारे सभी सखियों और सखाओं का स्वागत है।
1: स्वागत है
0: हार्दिक
1: जी। और अब हम क्या बात करने जा रहे हैं?
0: अब भाई बात तो हम करने वाले हैं कि भाषाओं से जुड़े संस्कार क्या हैं।
1: जी
0: है ना। तो सबसे पहले हमें जानना होगा आरती कि भाषा क्या है।
1: भाषा क्या है?
0: तो भाषा एक साधन है जिसके माध्यम से मनुष्य बोलकर लिखकर या संकेतों के द्वारा अपने मन के भावों को अपने विचारों का आदान प्रदान करता है। या दूसरे शब्दों में अगर हम कहें तो ये समाज में एक दूसरे की बात समझने और समझाने का सबसे मुख्य माध्यम है भाषा।
1: बिल्कुल। और हम लोगों ने कहा था कि अपने श्रोताओं से कि आप बताइए कितनी भाषाएं जानते हैं। तो एक हमारे श्रोता हैं जो लिखते हैं कि मुझे कम से कम 25 भाषाएं आती हैं। इससे मैं इससे अधिक भाषाओं को भी जानता हूं। मुझे 25 भाषा आती है लेकिन सबसे जो भाषा अच्छी लगती है, जो सबसे खूबसूरत है, तो वो प्यारी भाषा है हिंदी भाषा। और हिंदी भाषा के बराबर उनको

0: मतलब वो उनको बहुत अच्छी लगती है इसे हिंदी बोलना, वैसे वो 25 भाषाओं को जानते हैं।
1: हाँ, लेकिन आपने 25 भाषाओं के नाम नहीं लिखे, आप बताइए हमें कि आपको कौन सी 25 भाषाएं आती हैं, और उसके
0: बिल्कुल
1: थोड़ा सा बताइए कैसे आपने सीखी। इतनी भाषाएं सीखना आसान नहीं होता है,
0: बिल्कुल
1: क्योंकि आप जब अपने विचार हम तक भेजेंगे, अपना अनुभव हमसे साझा करेंगे, तो हो सकता है हम भी आज भी कोई भाषा सीखने के लिए चाहत हमारे मन में आ जाए, जिसका हमें
0: बिल्कुल,
1: डर होता है कि अरे भाई
0: और कोई आसान तरीका भी हो
1: हमें
0: उसका।
1: मिल जाए। तो
0: जी
1: आप थोड़ा सा बताइए कि आपने कौन कौन सी 25 भाषाएं सीखी हैं, और किस तरह से सीखी हैं, और उनका आपके जीवन में कहाँ कैसे उपयोग हो रहा है, इस पर थोड़ा सा बताइए।
0: बिल्कुल
1: तो सबसे बड़ी बात थी आज हम बात करने वाले हैं कि भाई भाषाओं से जो जुड़े संस्कार हैं वो क्या हैं।
0: जी
1: तो आरती, क्या कभी हमने सोचा है कि दुनिया के अलग अलग हिस्सों में बोले जाने वाली जो भाषाएं, हजारों भाषाएं, एक दूसरे से इतनी भिन्न क्यों हैं, है
0: जी
1: ना? देखने और सुनने में भले ही बिल्कुल अलग लगे, लेकिन हाल ही में एक अध्ययन हुआ, शोध हुआ, उसमें चौंकाने वाला खुलासा सामने आया कि चाहे भाषा कोई भी हो, उनकी बुनियादी संरचना और उन्हें गढ़ने वाले जो नियम हैं वो आश्चर्यजनक रूप से एक समान है।
0: जी बिल्कुल। और साथ ही ये समानता इसलिए है क्योंकि इन सभी भाषाओं की उत्पत्ति हमारे मस्तिष्क की एक ही प्राकृतिक कार्यप्रणाली से हुई है, और यानी हम मनुष्य चाहे पृथ्वी के किसी भी कोने में क्यों न रहें, हमारे सोचने और अपनी भावनाओं को व्यक्त करने का मूल तरीका एक ही गहरे सांचे में ढला हुआ है। यानी अगर हमें दुख होगा तो हम रोएंगे, हमारे आंसू निकलेंगे, चाहे वो कोई अमेरिका
1: बिल्कुल
0: में रहने वाला हो, चाहे वो
1: हाँ
0: हिंदुस्तान में रहने वाला
1: बिल्कुल
0: हो। ये खोज साबित करती है कि हमारी बोलियां भले ही अलग हों, लेकिन हम सभी भीतर से एक ही मानवीय सूत्र से जुड़े हुए
1: जुड़े
0: हैं।
1: हैं। बहुत गहरी बात है आरती, ये
0: जी
1: अगर हम इसे समझ पाएं तो
0: जी
1: कितनी बड़ी बात है कि हम भीतर से एक मानवीय सूत्र से जुड़े हुए हैं, है
0: जी
1: ना?
0: बिल्कुल
1: और भाषा का जो सीधा संबंध है वो संस्कार और सभ्यता से होता है। हम अपनी भाषा के संस्कार भूलते अगर जा रहे हैं तो वो गलत बात है। इसी संदर्भ में भारत के पूर्व राष्ट्रपति और वैज्ञानिक डॉक्टर अब्दुल कलाम साहब के शब्दों का अगर हम यहाँ उल्लेख करते हैं, तो वो कहते हैं कि मैं अच्छा वैज्ञानिक इसलिए बना क्योंकि मैंने गणित और विज्ञान की शिक्षा मातृभाषा में प्राप्त की।
0: बिल्कुल, जो वो भाषा जानते थे उसमें
1: हाँ
0: समझते समझ आता है ना, जिस तरीके से जिस भाषा को हम
1: हाँ
0: जानते हैं।
1: कितनी बड़ी बात है। और
0: जी
1: हमारे मन में क्या रहता है कि अगर हमने अंग्रेजी भाषा नहीं सीखी तो हमने कुछ भी नहीं सीखा,
0: जी
1: है ना?
0: अक्सर
1: हम
0: लोगों का
1: मॉडर्न नहीं कहलाएंगे, हमें सम्मान नहीं मिलेगा, या
0: जी
1: हम विकास नहीं कर पाएंगे।
0: जी
1: लेकिन इतने बड़े वैज्ञानिक और राष्ट्रपति कह रहे हैं कि मैंने अपनी मातृभाषा में गणित और विज्ञान की
0: बिल्कुल
1: शिक्षा ली।
0: सीखिए, आप जितनी भाषाएं हो सकते हैं उतनी
1: हाँ
0: सीखिए, क्योंकि इससे क्या होता है ना, जब हम सीखना शुरू करते हैं भाषाओं को अलग अलग, तो हमारा जो मस्तिष्क का वो हिस्सा है ना, एकदम से वो एक्टिव हो जाता है,
1: बिल्कुल
0: और उसके बाद ना वो हमारा जो दिमाग है बहुत शार्प हो जाता है, जिसकी वजह से हम अच्छे से और भाषाओं को सीख पाते हैं, हम और चीज़ों को अपने अच्छे तरीके से कर पाते हैं।
1: बिल्कुल, आपने
0: तो
1: देखा होगा
0: सीखना कभी
1: कई
0: मत
1: लोग
0: बंद करिए।
1: शौक या फ्रेंच भाषा सीखते हैं, उनका
0: हाँ
1: जीवन में उपयोग नहीं होता है, लेकिन शौक होता है कि मैं भाषा सीखता हूँ।
0: बिल्कुल
1: तो आप किसी भी भाषा के ज्ञाता हो, किसी भी भाषा को सीखते हो, लेकिन मन में हीन भावना नहीं रखनी
0: बिल्कुल
1: चाहिए कि मुझे वो भाषा नहीं आती है तो मुझे कुछ नहीं आता है।
0: जी बिल्कुल। और भाषाएं केवल संवाद का माध्यम ही नहीं है, बल्कि हमारी संस्कृति, संस्कारों, जीवन मूल्यों और पहचान की सच्ची संवाहक हैं। मातृभाषा हमें अपनी जड़ों से जोड़ती है और अगली पीढ़ी तक पारंपरिक ज्ञान और संस्कार पहुंचाने का काम करती है।
1: बिल्कुल। और आज के दौर की अगर हम बात करें, हमारी युवा पीढ़ी की बात करें, तो सोशल मीडिया के प्रचलन के कारण भाषा का प्रयोग थोड़ा शॉर्टकट में
0: बिल्कुल
1: होने लगा है,
0: जी
1: जो कि गलत भी है ना, बिल्कुल सही नहीं है, क्योंकि शुद्ध भाषा ही समाज के संस्कार के विकास की रीढ़ होती है। और ऐसे में युवा पीढ़ी को भाषा का सही प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि शॉर्टकट भाषा की आदत जो है सोशल मीडिया में काम तो आ जाती है, लेकिन जब ये आदत जीवन में आ जाती है आरती, तो इसका नुकसान परीक्षाओं से लेकर कई मंचों पर आपको झेलना पड़ता है, क्योंकि वहां आपके पास अच्छे शब्द और व्याकरण का अकाल पड़ जाता है।
0: बिल्कुल। और एक शोध बताता है कि जो ब्रेन की न्यूरोप्लास्टिसिटी यानी सीखने की जो क्षमता होती है वो जीवन भर बनी रहती है। जरूरी नहीं कि अब हम इस साल इतने साल के हो गए अब हम क्या सीखेंगे, ये
1: हाँ
0: कभी मत मन में
1: बिल्कुल,
0: लेकर आइए।
1: आप जब तक आपकी अंतिम सांस है आप सीख सकते हैं,
0: बिल्कुल
1: चाहत आपके अंदर होनी चाहिए।
0: जी। और साथ ही जो वयस्क सीखना जारी रखते हैं उनमें डेमेंशिया जो होता है, मनोभ्रंश, वो उसका जोखिम जो होता है वो 46% तक कम होता है। और सीखना केवल शिक्षा नहीं है, ये मन की औषधि है। यानी पढ़ना सिर्फ डिग्री के लिए नहीं, पढ़ना जिंदगी को जीवित जिंदा रहने के लिए जरूरी
1: क्या
0: है।
1: बात है, कितनी बड़ी बात है कि केवल डिग्रियां हम धारण कर लेते हैं, मैं डबल एमए हूँ, ट्रिपल एमए हूँ, मैं
0: जी
1: पीएचडी हूँ, है ना,
0: जी
1: मैं एमफिल हूँ, ये अच्छी बात है,
0: जी
1: डिग्रियां लेते हैं, आप पढ़ते हैं, विद्वान बनते हैं, बड़ी बड़ी
0: बिल्कुल
1: नौकरियों पर हम जाते हैं, वो तो है ही जिंदगी का, लेकिन इसके अलावा पढ़ना जो है वो जिंदगी को जीवित रखने के लिए कितना जरूरी। इसलिए आपने देखा होगा बहुत जो साहित्यकार है ना, वो लिखते रहते हैं अंत तक, उनके लिए कहानी लिखना, उपन्यास लिखना, कविता लिखना
0: जी
1: जिंदा रहने का माध्यम होता है।
0: बिल्कुल। आप कुछ नहीं तो डायरी लिखना शुरू कर दीजिए। आप खुद ही अपने आप को आपको लगेगा कि यार ये कितना अच्छा लिखने लगा हूं मैं।
1: जो भीतर बदलाव आता है वो कितना सुंदर होता है ना, ये सबसे बड़ी बात है। तो देखते तो हम सभी चीजें हैं आरती
0: जी,
1: प्रकृति को आप भी देखती हैं, मैं भी देखती हूँ, लेकिन आप प्रकृति को किस अंदाज में देखकर क्या लिखती हैं,
0: सबका नजरिया मायने
1: रखता है ना। तो भाषाओं को सीखना जारी रखना चाहिए, एक ऐसा निर्णय हमें लेना चाहिए कि हम भाषाएं सीखेंगे, क्योंकि ये हमारे संवाद कौशल को भी बढ़ाता है और मानसिक क्षमता में वृद्धि भी करता है, और एक से अधिक भाषाएं जानना रोमांचक यात्रा अवसरों के द्वारा द्वार आपको खोल सकता है। आप कहीं भी जाएंगे अगर आपको वहां की भाषा आती है तो आपको उस यात्रा के मजे दोगुने हो जाएंगे।
0: बिल्कुल, वहां से आप लोगों से बातचीत कर सकते हैं आराम से, जैसे कि हम गए थे तो हमने बात करी वहां ब्रिज भाषा में,
1: कितना अच्छा लगा,
0: बिल्कुल बहुत अच्छा लगता है। फिर अगर आप जब उनसे उनकी भाषा में बात करते हैं ना तो और जुड़ जाते हैं आपसे कि अच्छा ये तो हमारी भाषा बोल रहे
1: हैं, तो अपने करीब पाते हैं ना आपको,
0: बिल्कुल
1: ये हमारे ही लोग हैं, और भाषा एक दूसरे को जोड़ती है,
0: बिल्कुल जोड़ती है। और इन संवादों से स्थानीय संस्कृति और परंपराओं के बारे में ज्ञान और समझ गहरी होती है। भाषा सीखने से लोगों को अन्य संस्कृतियों से परिचित होने का अवसर मिलता है। इससे किसी संस्कृति के अनूठे दृष्टिकोण, बारीकियों और इतिहास, उनके जो इतिहास की जो समझ है वो बढ़ती है, और हम विभिन्न संस्कृतियों को पहचानते हैं और उनका सम्मान करना सीखते हैं।
1: क्या बात है। तो यानी कि भाषा हर कीमत पर हमें सीखनी चाहिए, अपनी मातृभाषा के अलावा हमें जितनी भाषाएं हम सीख सकते हो
0: बिल्कुल
1: हमें सीखनी चाहिए। इसके लिए प्रेशराइज नहीं होना, प्रेशर नहीं पालना,
0: बिल्कुल,
1: लेकिन शौक रखना चाहिए,
0: बिल्कुल अपने मन से सीखिए। हाँ। आपको खुद अच्छा लगेगा कि मैं कितने अच्छी तरह से नए नए शब्द मुझे पता चल रहे हैं, नई नई चीजें,
1: आपकी वोकैबुलरी बढ़ती है, आपका व्याकरण सुधरता है, आप कॉन्फिडेंस के साथ अपनी बात कहने का दम रखते हैं। किसी मंच से जब आप अपनी बात रखते हैं तो वो भाषा ही आपके काम आती है, वो शब्द ही आपके काम आते हैं और आपकी पर्सनैलिटी को दोगुना कर देते हैं।
0: जी, जब कोई जब कहता है ना कि मुझे इतनी भाषा आती तो हम सच में एकदम से कहने लगते कैसे इतनी भाषाएं बोल लेते हैं,
1: चौंक जाते हैं, और हमारी दृष्टि में उसके प्रति सम्मान और बढ़ जाता है,
0: बढ़ जाता
1: देखने
0: है।
1: का जो नजरिया है वो एकदम बदल जाता है जब हमें कोई बताता है कि वो इतनी भाषाओं का ज्ञाता है। तो भाषा इतना मायने रखती है जिंदगी में, और इस भाषा को शॉर्टकट मत अपनाइए, इस भाषा को विकृत मत कीजिए, है ना, भाषा को शुद्ध तरीके से जानिए। हाँ, कभी कभार मजाक में हमने कोई शॉर्टकट इस्तेमाल कर लिया वो एक अलग बात है, लेकिन भाषा से तोड़ मरोड़ अच्छी नहीं होती।
0: बिल्कुल।
1: तो ये गीत सुन ले।
0: बिल्कुल सुनते हैं।

पेट की घटा लाई क्या छुपा के, घटा लाई क्या छुपा के, बिन पारे बदरा के कैसी बरस गई बरसात, ये तो बतला।

0: हाँ तो मंदाकिनी जी, जब हम जब बात कर रहे थे मधुमक्खियों की, तो उस पर एक शोधा जो है उन्होंने हमें लिख कर भेजा है अपने उनके साथ में जो घटना हुई वो लिख के भेजी है उन्होंने। तो वो लिखती हैं कि जब मैं प्राइमरी स्कूल में पढ़ती थी तब मेरा छोटा भाई जो मुझे लगभग 6 साल छोटा है मेरे साथ स्कूल में खेल रहा था। हमारे गाँव के स्कूल में पीपल के बड़े बड़े पेड़ थे और उन पेड़ों पर मधुमक्खियों के विशाल छत्ते लगे रहते थे। खेलते समय किसी ने शरारत में एक छत्ते पर पत्थर मार दिया, इसके बाद मधुमक्खियों ने अचानक हमला कर दिया और मेरे छोटे भाई को कई मधुमक्खियों ने काट लिया और उसके बाद उसके पूरे चेहरे हाथ पैर में बहुत ज़्यादा सूजन आ गई। हालत इतनी ख़राब हो गई कि उसे उल्टियाँ भी होने लगीं। उस दिन का दृश्य आज भी मेरी आंखों के सामने आ जाता है और मैं अंदर से डर जाती हूँ।
1: बिल्कुल सही कहा आपने, और क्योंकि आपने उनको छेड़ दिया है ना, जब आप किसी को छेड़ोगे तो वो भी तो अपना कुछ ना
0: वो
1: कुछ
0: तो उनको तो लगेगा ना कि हम पे हमला हो रहा है, तो
1: वो भी तो सुरक्षा महसूस

0: प्यारी शरारत करिए, मीठी शरारत जैसे हम करते हैं, लेकिन गलत तरीके से जब हम काम करते हैं तो उसके थोड़े से दुष्परिणाम
1: और ये बहुत खतरनाक भी हो जाता है, क्योंकि अगर बहुत ज्यादा काट लिया आते तो बहुत ज्यादा अगर जहर फैल जाता है ना तो जान भी बनाती है।
0: बिल्कुल सही कहा आपने, ततैया होता है, मधुमक्खी होती है, सांप है, इन सब अपना रास्ते जा रहे हैं, अगर आपने इनको छेड़ दिया
1: बिल्कुल मत छेड़िए।
0: ऐसे ही ततैया भी बहुत बुरा काटता है, जो पीले रंग का होता है ना, वो भी कहीं ना कहीं बैठ जाता है और अचानक आकर आप पर हमला कर देता है।
1: बिल्कुल
0: है ना। तो चलिए भाषा पर हम बात कर रहे थे, तो हमारे श्रोता लिखते हैं कि भाषा केवल विचारों के आदान प्रदान का माध्यम नहीं बल्कि हमारी संस्कृति, जीवन मूल्यों और संस्कारों की संवाहक है। हम जिस परिवेश और भाषा में बड़े होते हैं उसी से हमारे आचरण, शिष्टाचार और सोच का निर्माण होता है। मातृभाषा हमें अपनी जड़ों से जुड़े रखती है, सिखाती है कि बड़ों से बात करते समय आदर सूचक शब्दों का प्रयोग कैसे किया जाता है।
1: जी, और एक श्रोता जैसे हमने पूछा था ना कि कितनी भाषा आती है, तो एक हमारे श्रोता है जो लिखते हैं कि मुझे इंग्लिश, हिंदी और प्यार की भाषा बोलनी, लिखनी और पढ़नी आती है, और सिंधी भाषा सिर्फ बोलनी आती है, संस्कृत भाषा लिखनी और पढ़नी आती है, और सखी सहेली की सखी यानी कि मेरी धर्मपत्नी मेरे से एक कदम आगे हैं, उन्हें इंग्लिश, हिंदी, सिंधी और प्यार की भाषा पढ़नी, लिखनी और बोलनी आती है, और संस्कृत भाषा लिखनी और पढ़नी आती है। बहुत बहुत ही ज्यादा भाई ज्ञानी है फिर आपकी पत्नी तो।
0: चलिए अच्छी बात है, लेकिन सबसे बड़ी बात है आपने कहा प्यार की भाषा, जो मोहब्बत है ना,
1: बहुत बड़ी भाषा है,
0: सबसे बड़ी बात है। भाषाएं तो आपने सीख ली, लेकिन अगर आपके भीतर प्यार नहीं है, मोहब्बत नहीं है, प्रेम नहीं है, तो वो सब भाषाएं भी रूखी हो जाती है।
1: बिल्कुल,
0: है ना। एक श्रोता लिखते हैं कि भाषा सिर्फ संवाद का माध्यम नहीं बल्कि संस्कार, संस्कृति और आचरण का आईना है। यह हमारे विचारों को आकार देती है, हमारे परिवेश और जीवन मूल्यों को दर्शाती है। एक सभ्य और मर्यादित भाषा का प्रयोग ही वास्तव में भाषा से जुड़े संस्कार को दर्शाता है, जो व्यक्ति के व्यक्तित्व का निर्माण करता है।
1: जी, और एक और श्रोता है जो लिखते हैं कि मुझे हिंदी के अलावा गुजराती और इंग्लिश आती है और गुजराती सीखना आसान रहा। और एक और श्रोता है जो लिखते हैं कि मुझे गुजराती, मराठी, हिंदी, इंग्लिश आती है, थोड़ी बहुत पंजाबी और सिंधी आती है, वैसे दो तीन और भाषा थोड़ी थोड़ी समझ भी सकती हूँ। बहुत अच्छी बात है, कितने देखिए तभी कहे ना श्रोताओं के जो विचार है ना, वो विचार इस वजह से भी है कि उनको तरह तरह की भाषाओं का, शब्दों का, व्याकरण का ज्ञान है, तो वो जो उनके अंदर चीजें ना वो विचार सामने आते हैं।
0: बिल्कुल, देखिए यही हम जानना भी तो चाहते हैं कि हमारे श्रोता क्या विचार अपने रखते हैं अपनी भाषाओं को लेकर, अपने विचारों को, जो उनके विचार हैं जिंदगी में। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि भाषाओं का संसार अत्यंत विशाल है, विविधतापूर्ण और जीवंत है। वर्तमान में दुनिया भर में लगभग 7,000 से अधिक जीवित भाषाएं बोली जाती हैं और ये न केवल संवाद का साधन है बल्कि संस्कृतियों, इतिहास और मानव पहचान को जीवित भी रखती हैं। और बाकी जैसा आपने लिखा कि वो लिखते हैं गुजराती, मराठी, हिंदी, इंग्लिश, पंजाबी, सिंधी, दो तीन भाषाएं थोड़ी थोड़ी समझती भी हैं और बोलती भी हैं, तो बहुत अच्छी बात है। बिल्कुल। और
1: एक और हमारे श्रोता हैं जो लिखते हैं कि भाषा किसी भी समाज की संस्कृति का दर्पण होती है, हमारी मातृभाषा ही हमें बड़ों का आदर करना सिखाती है, जैसे कि आप कहकर बुलाना, छोटों को प्यार देना और अतिथि देवो भव जैसे सामाजिक मूल्य सिखाती है, और साथ ही क्षेत्रीय भाषाओं और मातृभाषा में जो अपनापन और आत्मीयता होती है वो किसी अन्य विदेशी भाषा में संभव नहीं है। यही जुड़ाव हमें अपनी पारिवारिक जड़ों से बांध कर रखता है और हमारी भाषाएं विशेष रूप से संस्कृत और हिंदी वेदों, उपनिषदों और पुराणों का ज्ञान समेटे हुए हैं। ये ग्रंथ हमें जीवन जीने की सही कला, नैतिकता और कर्म के सिद्धांत भी सिखाते हैं।
0: हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने, लेकिन हमें किसी भी भाषा के बारे में कोई भी नकारात्मक टिप्पणी नहीं करनी।
1: भाषा भाषा है,
0: विदेशी भाषा ऐसी है या देशी भाषा,
1: अगर आपको वो भाषा नहीं आएंगी तो, अगर आपको कहीं बाहर जाना है या कोई बाहर से कोई हमारे अतिथि आता है तो हम उससे बात कैसे कर पाएंगे।
0: चलिए, आपको भाषा नहीं भी आती, आप नहीं भी सीख पाए, लेकिन भाषा भाषा है, हमें हर भाषा का,
1: भाषा कभी बुरी नहीं,
0: हमें वैश्विक भाषाएं जितनी भी हैं उन सभी का सम्मान करना चाहिए।
1: जी,
0: एक गाना सुन लेते हैं।
1: बिल्कुल सुनते हैं।

0: हाँ तो आरती भाई, हमारे श्रोताओं ने तो बहुत ही अच्छे तरीके से अपनी बात कही कि किस तरह से भाषाओं से जुड़े संस्कार हमारे काम आते हैं, और इसी के साथ हमने एक और सेगमेंट रखा उनके लिए कि शब्द हमारा और विचार आपके, और आज का विषय था सद्भावना।
1: तो उस पर भी बहुत सारे हमें कमेंट्स में आए हैं। तो एक श्रोता है जो लिखते हैं कि सद्भावना का अर्थ है अच्छी भावना, शुभ विचार या भलाई की चाह, और इसका मतलब किसी व्यक्ति या समाज के प्रति प्रेम, सहानुभूति, सहयोग और निष्पक्ष रहने का सच्चा इरादा रखना है जिसमें कोई द्वेष या स्वार्थ ना हो।
0: बिल्कुल सही लिखा। और वहीं एक श्रोता ने लिखा है कि सद्भावना यानी अच्छी नीयत, दूसरों के प्रति शुभ भावना और परोपकार। जब किसी व्यक्ति के मन में दूसरों के लिए प्रेम, दया, सहानुभूति और सहयोग की भावना होती है तो वो किसी का बुरा नहीं सोचकर उसकी भलाई चाहता है तो उसे सद्भावना कहते हैं। और साधारण बोलचाल में किसी के साथ निष्पक्ष और मैत्रीपूर्ण व्यवहार रखना जिसमें कोई छल, कपट या द्वेष न हो, सच्चाई और ईमानदारी का इरादा, बिना किसी को धोखा देने के भाव से कोई कार्य करना इसमें आता है।
1: बिल्कुल। और श्रोता है जो लिखते हैं कि सद्भावना का अर्थ है अच्छी भावना, अच्छे और उच्च विचार। मन में बसने वाली वो सुंदर भावना है जो प्रेम, सम्मान और अपनापन बढ़ाती है। जहाँ सद्भावना होती है वहाँ रिश्तों में मिठास, समाज में शांति और जीवन में खुशी बनी रहती है।
0: बिल्कुल सही कहा। और एक श्रोता लिखते हैं कि सद्भावना जीवन को सरल और रिश्तों को मधुर बनाने का एक महत्वपूर्ण मानवीय गुण है। और वहीं एक श्रोता ने लिखा है कि आज के समय में जहां समाज में विभाजन और असहिष्णुता बढ़ रही है वहां सद्भावना की प्रासंगिकता बहुत अधिक है। ये विभिन्न संस्कृतियों और विचारधाराओं को आपस में जोड़ने का काम करती है। वसुधैव कुटुंबकम, पूरी धरती ही परिवार है, इस भारतीय सोच सद्भावना पर ही टिकी है। ये जो भारतीय सोच है इसी सद्भावना पर टिकी है, और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर युद्ध और विवादों को सुलझाने के लिए देशों के बीच में भी सद्भावना का होना अनिवार्य है।
1: बिल्कुल। और एक श्रोता है जो लिखते हैं कि एक ऐसी मानसिक अवस्था है जो ईर्ष्या, द्वेष और स्वार्थ से मुक्त होती है और मानवता, प्रेम, करुणा और भाईचारे को बढ़ावा देती है। सद्भावना केवल एक नैतिक गुण नहीं है बल्कि एक शांतिपूर्ण और प्रगतिशील समाज के निर्माण की बुनियादी जरूरत है। जब हमारे विचार शुद्ध होंगे तभी समाज का कल्याण संभव है।
0: बिल्कुल सही कहा आपने। और अभी तो हमने ये भी जानना चाहा था कि आपके अंदर सद्भावना कितनी है, ये भी बताइएगा। लिखा है हमारे श्रोताओं ने कुछ आरती, ऐसा कोई विचार आया है किसी का?
1: अभी तो सबने यही चीज लिखी है कि सद्भावना के जो अर्थ है
0: वो क्या है। हाँ, वही एक श्रोता लिखते हैं कि सद्भावना अच्छे विचार, दूसरों के प्रति भलाई की भावना, प्रेमपूर्ण व्यवहार, और ये किसी के मन में दूसरों के लिए

0: या द्वेष या बैर का भाव नहीं रखकर आपसी भाईचारा और सहयोग बनाए रखने की एक स्थिति है और सद्भावना जीवन को सरल और रिश्तों को मधुर बनाने का एक बहुत ही महत्वपूर्ण मानवीय गुण है।
1: बिल्कुल, और एक हमारे जो श्रोता है वो लिखते हैं कि जहाँ सद्भावना होती है वहाँ झगड़े कम और प्रेम अधिक होता है, इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को अपने जीवन में सद्भावना अपनानी चाहिए। और उन्होंने उदाहरण भी दिया है कि यदि हमारे पड़ोसी पर कठिन समय आए तो हमें उसकी सहायता करनी चाहिए।
0: ये तो आपने बिल्कुल सही कहा, पर आपने ये नहीं लिखा कि क्या ऐसा कोई कठिन समय आपके पड़ोसी पर आया था और आपने कोई उनकी सेवा की थी, है ना, ध्यान दिया था उनका। ये भी लिखते तो हमें अच्छा लगता। वही एक श्रोता लिखते हैं कि दूसरों के प्रति मन में स्नेह, आदर और सहानुभूति रखना ही सद्भावना है। इसमें जाति, धर्म या वर्ग के भेदभाव के बिना सभी के कल्याण की कामना होती है और समाज में आपसी भाईचारे और शांति को बनाए रखने के लिए ये बहुत मूल्यवान है।
1: जी बिल्कुल। और आप हमें गीत सुन लेते हैं।
0: अब मूल्यवान तो एक गीत ही है
1: जी।

0: हाँ तो आरती, अब हम कार्यक्रम के बिल्कुल आखिरी सोपान तक पहुंच चुके हैं और अब हमारे श्रोता या क्या कर रहे हैं, व्यंजन की
1: बिल्कुल, और हम बता देते हैं उनको दाल पीठा की रेसिपी क्या है। तो दाल पीठा बिहार और उत्तर प्रदेश का व्यंजन है, जिसमें जो चावल के आटे और दाल आमतौर पर चना, मूंग और उड़द से बनाया जाता है। भाप में पके होने के कारण ये बेहद स्वास्थ्यवर्धक और स्वादिष्ट होता है, उन्होंने बताया इसके बारे में। और इसमें उन्होंने कहा है कि इसे भाप में पकाया जाता है, जिसमें तेल या घी का उपयोग ना के बराबर होता है। सर्दियों के मौसम में, विशेषकर पौष के महीने में, बिहार के घरों में बड़े चाव से बनाया जाता है। पुजही पीठा सिर्फ दाल से ही नहीं, तरह तरह के भरावन, भुनी मूंगफली, तेल, मावा, गुड़, नारियल, इन सब चीजों से बनाया जाता है। और इन्होंने जो ठेकुआ है उसकी भेजी है रेसिपी। तो उसमें गेहूं का आटा चाहिए 2 कप, गुड़ 1 कप, और बारीक कटा हुआ कद्दूकस किया हुआ होना चाहिए गुड़, घी मोयन के लिए 3-4 बड़े चम्मच सूखी नारियल, 2-3 बड़े चम्मच बारीक कटा या कद्दूकस किया हुआ होना चाहिए, और सौंफ 1 छोटा चम्मच, इलायची पाउडर छोटा चम्मच एक होना चाहिए, आधा छोटा चम्मच, और पानी और आधा कप गुड़ पिघलाने के लिए, और फिर तेल या घी तलने के लिए, और आवश्यकता अनुसार बनाने की विधि है। एक गुड़, पहले आप गुड़ का पानी तैयार करें। एक बर्तन में गुड़ और आधा कप पानी डालकर धीमी आंच पर पिघला लीजिए उसको, गुड़ को, और चाशनी नहीं बननी चाहिए उसकी, सिर्फ गुड़ को पानी में घुलने देना है और इसे ठंडा होने दीजिए, और फिर छलनी में इसे छान लीजिए, जो भी गंदा होगा वो निकल जाएगा। आटे का मिश्रण बनाएं। एक बड़े कटोरे में गेहूं का आटा लें, उसमें सूजी कुरकुरेपन के लिए सौंफ, इलायची पाउडर और कसा हुआ नारियल डालें, मोयन डालें। अब आटे में 3-4 चम्मच पिघला हुआ घी डालें, आटे को दोनों हाथों से अच्छी तरह से रगड़ें। जब आटा मुट्ठी में बंधने लगे तो समझ लीजिए मोयन जो है वो एकदम सही है। अब आटा गूंथ लीजिए और छने हुए गुड़ के पानी को थोड़ा थोड़ा डालकर सख्त आटा गूंदना है इसका, मुलायम नहीं होना चाहिए, इसे ज्यादा मुलायम नहीं करना है। और आटे की छोटी छोटी लोइयां बनाइए और सांचे पर थोड़ा सा तेल लगाकर लोई को दबाएं और मनचाहा डिजाइन बना लीजिए। अगर सांचा ना हो तो हाथ से भी आप कांटे की मदद से भी बना सकते हैं, और धीमी आंच पर तल लीजिए आपका जो तेल में या घी में, तो सुनहरा होने तक तल लीजिए, फिर आराम से निकाल के खाइए।
0: तो आपने इतनी जल्दी में बताया है मुझे, तो भाई आरती बनाना आया ही नहीं है। मुझे लगता है हमारे श्रोता जिनको ठेकू और दाल पीठा बनाना आता है वो आराम से बनाएंगे।
1: बिल्कुल, और रेसिपी आपको वहाँ फेसबुक पेज पे मिल जाएगी।
0: तो बनाने की मैं भी
1: समय की कमी की वजह से हमें थोड़ा सा जल्दी
0: बताना पड़ा। तो चलिए अब सखी सहेली कार्यक्रम से मंदाकिनी जोशी
1: और आरती श्रीवास्तव को दीजिए इजाजत। नमस्कार। सखी सहेली की प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक।
2: सखी सहेली।

एफएम बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का धर्मशाला केंद्र है। शाम के 4 बजे हैं और इस समय आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मुंबई से विविध भारती के कार्यक्रम।

0: आज के मेहमान कार्यक्रम में श्रोताओं, आज लीजिए सुनिए जाने माने शायर और विविध भारती के भूतपूर्व केंद्र निदेशक राजेश रेड्डी से यूनुस खान की बातचीत का दूसरा और अंतिम भाग।
1: राजेश रेड्डी एक जाने माने शायर जिनकी गजलों का हर शेर खरा होता है। वो लिखते हैं, शाम को जिस वक्त खाली हाथ घर जाता हूं मैं, मुस्कुरा देते हैं बच्चे और मर जाता हूं मैं। राजेश रेड्डी अपने समय और समाज की आवाज भी बन जाते हैं। जुबां खामोश है डर बोलते हैं, अब इस बस्ती में खंजर बोलते हैं। राजेश रेड्डी की शायरी में जिंदगी का फलसफा छलक छलक पड़ता है। वो लिखते हैं, ये जो जिंदगी की किताब है, ये किताब भी क्या किताब है, कहीं एक हसीन सा ख्वाब है, कहीं जानलेवा अजाब है। जिंदगी के डर, जिंदगी की उदासी और जुल्मतों को वो अपनी लेखनी में पिरो देते हैं। घर से निकले थे हौसला करके, लौट आए खुदा खुदा करके। जिंदगी की नाकामियां, उदासियां और विडंबनाएं भी राजेश रेड्डी की लेखनी में नजर आती हैं। जिंदगी तूने लहू लेके दिया कुछ भी नहीं, तेरे दामन में मेरे वास्ते क्या कुछ भी नहीं। राजेश रेड्डी वो शायर हैं जिन्होंने बड़ी ही मशहूर गजल लिखी जिसे पंकज उधास ने गाया, यहां हर शख्स हर पल हादसा होने से डरता है, खिलौना है जो मिट्टी का फना होने से डरता है। कई वर्षों तक राजेश रेड्डी विविध भारती के हेड रहे। उन्होंने विविध भारती को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया। जाने माने शायर और विविध भारती के हमारे पुराने साथी राजेश रेड्डी विविध भारती के स्टूडियो में मौजूद हैं और मैं उनका बहुत बहुत स्वागत कर रहा हूं।
2: बहुत बहुत शुक्रिया यूनुस और विविध भारती पूरे परिवार को। इस पूरे परिवार से बरसों बाद, 13-14 साल बाद एक मुलाकात हो रही है, बहुत अच्छा लग रहा है। और विविध भारती के श्रोताओं से भी इस बहाने मिलना होगा। बहुत बहुत शुक्रिया यूनुस विविध भारती परिवार को।
3: मुझे ऐसा लग रहा है जैसे अभी वो जमाना लौट आया जब आप विविध भारती के मुखिया हुआ करते थे और ढेर सारे काम हम लोग मिलकर एक साथ किया करते थे।
2: जो वो बहुत प्यारा जमाना था और एकदम तुमसे मिलके और विविध भारती में आने के बाद वो जमाना फिर एकदम तरोताज़ा हो गया। और वो ऊर्जा, वो उत्साह, वो उमंग और श्रोताओं के साथ वो लगाव एकदम आंखों के सामने आ गया। जी, खुश हुआ जी।
3: क्या बात है सर, बातें हो रही हैं जयपुर के ज़माने की और आपने बताया कि न केवल आपने नाटक किए बल्कि वहाँ एक कंपोजिशन वाला मामला भी लगातार चलता रहा और अलग अलग कार्यक्रमों की अपनी योजना भी चलती रही, तो एक तरह से आपका वो रचनात्मक उत्कर्ष का पूरा दौर था। जयपुर के बाद आप यात्रा जीवन की आपको कहाँ ले गई?
2: नहीं, जयपुर के बाद मेरा ट्रांसफर जो है 5 साल पूरे हो जाने के बाद
3: जी
2: अल्मोड़ा हुआ।
3: अरे गजब, पहाड़ों पर।
2: पहाड़ों पर। और मेरे जीवन का वो सबसे कष्टप्रद, मतलब यूं नहीं
3: जी,
2: मतलब मुझे अल्मोड़ा स्टेशन शुरू होने वाला था उस वक्त।
3: अच्छा।
2: तब तक शुरू नहीं हुआ था
3: जी।
2: तो जो शुरुआती स्टाफ भेजा जाता है ना, तो उनमें से मैं प्रोग्राम की तरफ से मैं था, फिर इंजीनियर्स थे, तो सेंटर तब तक शुरू नहीं हुआ था, हमको जाना था। तो लेकिन मैं मैदान पे रह इतना आदि था और होमसिक तो मैंने बताया था शुरू से था
3: जी, जी।
2: तो वो पहाड़ों की जिंदगी मेरे लिए बहुत कठिन थी, मतलब और परिवार भी था, बच्चे बच्ची छोटी थी तब, तो अब लगता है कि यार मूर्खता की, तुम जल्दी चले आए वहां से। अच्छा था वो
3: जी,
2: वो एक अलग अनुभव था
3: जी।
2: तो एक तो यह कि स्टेशन शुरू नहीं हुआ था, काम भी उतना नहीं था, आपको सिर्फ जाना है और प्लानिंग करनी है और तो कब होगा ये सब तय होना है सारा कुछ। लेकिन वो वहाँ चलते चले जाओ, चलते चले जाओ, उतरते जाओ, चढ़ते जाओ, तो ये सब था। और जो आदमी पहली बार गया हो तो उसके लिए बहुत मुश्किल है, मतलब घूमने जाओ तो अलग बात है
3: जी।
2: लेकिन आपको रहना हो और जो कभी रहा ना हो, कभी रहा ना हो, तो वो उसके लिए हो, तो वो कठिन दौर था। लेकिन वो गुजरा और मैं एक साल के बाद ही वापस आ गया वहाँ से, और उसके बाद फिर बॉम्बे आया।
3: अच्छा,
2: 86 में।
3: क्या बात है। तो ये तो पंत जी का शहर था, पंत जी का इलाका था, तो वो तमाम चीजें
2: और वो सब भी देखा हमने। वो पंत जी, अग्गे जी वहाँ पे रहे और रविशंकर जी का वहाँ पे वो था,
3: बिल्कुल
2: ना? तो ये सब भी
3: उदय शंकर जी का
2: तो वो सब भी देखा, घुमा फिरा भी, सब अच्छा भी लगा वो सब
3: जी।
2: कि ये सब कुछ, लेकिन मैं तो हैरान होता था कि यहाँ ये लोग कैसे
3: रहते कैसे।
2: उस वक्त वाकई हैरान होता था मैं
3: जी।
2: जो लगता था कि जिंदगी तो मैदान में ही है,
3: पहाड़ों
2: में कैसे।
3: बिल्कुल।
2: तो ये था
3: मुंबई, 80 के दशक की मुंबई, बहुत ही अलग तरह का मामला था। आप जैसे जयपुर शहर से आ रहे थे, क्योंकि वहां के पले बढ़े हैं, पैदाइश नागपुर के, तो मुंबई आपके लिए एक बहुत बड़ा दायरा था, बहुत बड़ा क्षितिज था। पहला अनुभव क्या था मुंबई का?
2: नहीं, पहला अनुभव तो यही था कि एक तो ये तो सपनों की नगरी थी
3: जी,
2: फिल्मों में देखा ही देखा था और सब कुछ था। आज तो खैर हालत ही ख़राब है, उस वक्त 86 में जब हम आए थे तो अच्छी खासी भीड़ तो मुंबई में हमेशा रही है।
3: बिल्कुल बिल्कुल,
2: ये भीड़ भाड़ वाला शहर है तो हर सपना देखने वाला यहाँ आता है और काम ढूंढने वाला यहाँ आता है। तो फिर यहाँ आने के बाद वो बसों का सफ़र, लोकल ट्रेनों का सफ़र, एक अलग ही दुनिया थी। लेकिन था कि कुछ लगा था कि मुंबई में कुछ होगा और अच्छा लगेगा, और धीरे धीरे जिंदगी ढलती चली गई उस हिसाब से। हम शुरू में टॉपिल में रहे, गवर्नमेंट कॉलोनी वहाँ पे थे, तो 11-11 महीने का जो किराया होता है उस पर वो उस पैटर्न पे रहे, और अलॉट होने का तो सॉल्यूट था, हम तो फ्रेश थे एकदम।
3: बिल्कुल। और तब तो लंबी लाइनें हुआ करती थी।
2: लंबी लाइनें हुआ करती थी। तो जीजस कॉलोनी जो टॉपिल की थी वहाँ रहे, और फिर वहाँ से बस पकड़ना, फिर इधर आना, टॉपिल से किंग सर्कल आना वहाँ से पैदल
3: जी,
2: फिर ट्रेन पकड़ना, फिर चर्च गेट,

0: को मिला। और जाहिर है कि उस समय तक तो कवि सम्मेलन भी हो रहे थे, रेडियो भी चल रहा था, तो जिंदगी किस तरह से बदली और यहाँ लिखने पढ़ने का दौर किस तरह से आगे बढ़ा?
1: यहाँ जो जिंदगी बदली वो मेरी उस वक्त गजल गायकी पीक
0: चरम
1: पर
0: पर
1: थी,
0: थी
1: चरम
0: जी।
1: पर। फिल्म संगीत जितनी पॉपुलर थी,
0: जी
1: मतलब जगजीत सिंह, पंकज दास, मेहंदी हसन, गुलाम अली, ये सब सुपर हीरो हुआ करते थे। मतलब अनूप जलोटा, इनके कैसेट जो हैं घरों घरों में चलते थे, बजाए जाते थे, मोहल्लों में मतलब चलते थे, शादियों फंक्शनों में भी ये उस वक्त चीज़ें
0: बजाया करते थे
1: बजाया
0: इसको।
1: करते थे लोग। तो इतनी पॉपुलर, नॉन फिल्म म्यूज़िक कहना चाहिए। तो वो दौर था जिस वक्त मैं बॉम्बे में एंटर हुआ था, और नेचुरली जो गज़ल का शायर होगा उसकी पहली ख्वाहिश होगी कि जगजीत सिंह तक किस तरह से पहुँचो और
0: बिल्कुल
1: वो उन तक मेरे शब्द भी पहुँचे। तो यहाँ आने के बाद तो ये सिलसिला चलता रहा। और लेकिन जगजीत सिंह साहब से पहले मेरी भूपेंद्र जी से बात हुई।
0: अच्छा, अरे वाह वाह, मुझे ये पता है क्योंकि अब हमने साथ में काम किया है और मैं आपके करीब भी रहा हूं कि भूपिंदर सिंह की आवाज से आपको बेपनाह प्यार रहा है,
1: बहुत प्यार रहा,
0: बल्कि
1: बहुत
0: हमने उनको
1: प्यार।
0: बुलाने की बहुत भरसक कोशिश की थी। आपकी इच्छा ये थी कि वो इंटरव्यू मैं लूं,
1: जी,
0: तब
1: सही
0: मैं था
1: सही।
0: नहीं शहर में।
1: तो भूपी जी मतलब पहले थे जिन्होंने मेरी एल्बम में जो कोई चीज़, और जैसे मैं जयपुर में आकाशवाणी में, युवाणी में जो अपनी आवाज़ पहली बार मैंने रिकॉर्ड की,
0: जी
1: तो घर में जिस ढंग से मैंने खुशी का इजहार किया था और अपने आप की आवाज़ को आकाशवाणी में सुनकर जो
0: जी
1: खुशी हुई थी, तो वो खुशी मुझे यहाँ पे भूपेंद्र सिंह की आवाज़ में अपनी गज़ल सुन के हुई थी।
0: क्या
1: हाँ ना,
0: बात है,
1: तो वो
0: क्या
1: किसी गज़ल सिंगर ने, और मेरे फेवरेट गज़ल सिंगर ने या गायक ने जो इतना बड़ा सिंगर है, तो ये हुआ। नहीं, उसके बाद फिर जगजीत जी से बात हुई तो मैं मिलना चाहता हूँ, तो उन्होंने कहा आ जाओ। वो
0: पेडरोड
1: हाँ, पुष्प मिलन 25 उनका एड्रेस था, तो
0: जी।
1: मैं गया। और उस समय का वक्त था, तो मैं बताना चाहूँगा अपने श्रोताओं को, अपने सुनने वालों को, कि बड़ा आदमी ऐसे ही नहीं बनता है।
0: जी
1: जगजीत सिंह साहब रोज़ सुबह उनका वो रियाज का वक्त होता था। इतने बड़े आर्टिस्ट जो थे वो ऐसे ही नहीं थे, वो
0: जी
1: रोज़ रियाज करना उनका काम था। जब बॉम्बे में होते थे
0: जी
1: तो वो तानपुरा चल रहा है और वो सब कुछ है, और मिलने जुलने वाले भी अगर आते हैं तो बीच में आते हैं और बातचीत होती है, और वो उनका सिलसिला फिर रियाज पे, फिर रियाज पे। तो ये
0: जी
1: तो मैं पहली बार गया तो वो तानपुरा चल ही रहा था, वो अपने बैठे हुए थे और फिर उन्होंने वो गज़ल देखी। मेरी खुशकिस्मती कि वरना अक्सर होता है कि इतने बड़े लोग, आपका मिलना ही बड़ी बात है उनसे,
0: जी
1: हाँ वो उनका मिल जाना। फिर उन्होंने कहा कि गज़ल देखे, तो सरसरी निगाह से जब उन्होंने देखी तो ये मेरा सौभाग्य था कि उन्होंने पहली ही उसमें कहा ये मैं कर रहा हूँ।
0: वाह
1: वरना
0: वाह
1: अक्सर होता है
0: वाह
1: कि रख के जाओ, देखता हूँ, मैं करता हूँ, सोचता हूँ, बताता हूँ,
0: जी जी
1: है
0: जी
1: ना।
0: जी
1: लेकिन उस वक्त उन्होंने उसी वक्त कह दिया ये मैं कर रहा हूँ।
0: वो कौन सी गजल थी? घर से निकले थे, ये
1: नहीं, ये जो जिंदगी की किताब
0: जो
1: है,
0: जिंदगी की किताब है। वाह वाह
1: तो
0: वाह
1: ये
0: वाह।
1: वो पहली गजल थी जो जगजीत जी ने गाई।
0: और भूपी जी ने क्या गाया था?
1: वो हैरानी होगी कि उस वक्त पंकज जी वगैरह सब, ये शराब और हल्की फुल्की गजलों का दौर था। भूपी जी ने कहा कि यार मुझे गजलें बहुत हैं, मुझे हल्की फुल्की गजल चाहिए। हाँ,
0: अच्छा
1: तो मैंने पहली गजल जो डिमांड पे लिखी, डिमांड पे,
0: हाँ
1: वो ये गज़ल थी, और जिसको मैं न कहीं पढ़ता हूँ न सुनाता हूँ, और
0: जी
1: वो गज़ल जो मैंने कभी आज तक छू ही नहीं,
0: अच्छा,
1: वो गज़ल शराब पड़ती। तो वो
0: गजब।
1: गज़ल लेकिन उनको पसंद आई, उन्होंने गाई और
0: जी जी
1: चलिए।
0: जी ये जो जिंदगी की किताब है ये भी आपकी पहचान के साथ
1: हाँ,
0: पूरी तरह से जुड़ गई है, और
1: जी,
0: ये कहना चाहिए कि एक तरह से आपकी प्रतिनिधि गजल है। तो
1: हाँ
0: जगजीत साहब ने तो सुनाई, वो भी हम सुनेंगे, लेकिन हम आपसे भी सुनना चाहते हैं इसको।
1: ये गज़ल है जिसकी धुन मैंने खुद ने नहीं बनाई,
0: जी
1: तो मैं जगजीत जी की आवाज़ में जो धुन है, कंपोज है, मैं
0: वही
1: उसको,
0: आप
1: हाँ वो पढ़ देता हूँ एक।
0: जरूर जरूर।
1: ये जो जिंदगी की किताब है।

सा ख्वाब है, कहीं एक हसीन सा ख्वाब है, कहीं जानलेवा अजाब है, ये जो जिंदगी की

0: क्या बात है। जगजीत जी ने जब इसे गाया और ये कैसेट रिलीज हुआ तो जाहिर है कि एक बहुत ही ख्वाब पूरा होने जैसी बात
1: बिल्कुल
0: थी
1: सही,
0: और
1: बिल्कुल
0: ये
1: सही।
0: बहुत लोकप्रिय हुआ। आपके जहन में क्या चल रहा था?
1: नहीं, मेरे लिए तो एक सपना सच होना जैसा तो वही बात है। और फिर जिस ढंग से इन्होंने गाया,
0: जी
1: और
0: जी
1: ये कंसर्ट्स में भी अक्सर गाया करते थे,
0: खूब।
1: और सोशल मीडिया तो अब आया है, लेकिन कभी कभी मैं देख लेता हूँ और लोग बताते हैं इस गज़ल की जो लिसनिंग हुई है, जो व्यूअरशिप है, और वो नहीं है कि पूछ, मतलब मतलब खूब है।
0: बिल्कुल
1: और उस पर जो
0: बिल्कुल
1: कमेंट्स हैं लोगों के, ये गज़ल वो गज़ल, और ये जगजीत जी ने बहुत अच्छी गाई है, और ये वो शायरी बहुत अच्छी है, सब कुछ है, और पूरे दुनिया से, पाकिस्तान, लंदन, अमेरिका, यहाँ यहाँ से कमेंट्स हैं उस गज़ल पे। तो ये गज़ल जिसने मुझे दुनिया भर में पहुँचा दिया, यूँ कह लीजिए मुझे।
0: बिल्कुल बिल्कुल। और जब आपको फोन करें तो आपकी
1: जी
0: रिंगटोन में भी ये गजल
1: जी जी
0: बजती
1: जी
0: है।
1: जी
0: जगजीत जी ने गा लिया, भूपी जी ने गा लिया, पंकज जी ने भी उस दौर में गा लिया था
1: पंकज जी, उसके बाद
0: जी।
1: ये गज़ल जगजीत जी ने गाई, उससे पहले पंकज जी, हाँ नहीं, पंकज जी पहले ये गज़ल थी, वो जो यहाँ हर शख्स हर पल हादसा होना सर, तो पंकज जी से भी जब मिला तो खुश हुए। और ये गज़ल पहली नज़र में सबको ही अलग लग जाती है कि ये होने से डरता है ना। तो इस गज़ल से जुड़ा एक और भी किस्सा कि ये गज़ल जब आई तो मतलब उस पूरे एल्बम में ये अलग सी गज़ल थी, लोगों ने बहुत पसंद की सब
0: नबील
1: जगह।
0: था,
1: हाँ,
0: नबील था।
1: नबील, नबील,
0: जी।
1: तो इसकी खूब लोगों ने प्रशंसा की, पसंद किया, सब कुछ किया। तो इससे जुड़े दो किस्से हैं। तो
0: जी
1: एक तो ये कि उन दिनों दूरदर्शन पर भी, जब ये पूरा कमर्शियल नहीं हुआ था, तो बड़ा अच्छा सुबह कार्यक्रम आता था वो गज़ल का, जिसमें सुरेश वाडकर, हरिहरन, पंकज जी, कभी कभी जगजीत जी, छाया जी, बहुत अच्छा नाम था, दूरदर्शन पर आता था गज़ल का, आरोही। हाँ,
0: आरोही
1: तो ये गज़ल पंकज जी ने गाई उसमें, आरोही में।
0: जी।
1: अच्छा, उन दिनों पता नहीं क्यों या नहीं हुआ, तो इसमें राइटर का नाम, शायर का नाम नहीं था,
0: अरे
1: नीचे
0: बाप रे।
1: नहीं था, तो उन्होंने गा दी गज़ल। तो ये गज़ल घर घर में सुनी, मतलब उस वक्त दूरदर्शन ही था।
0: तो आपके संपर्क से गाई या उन्हें यह गजल कहीं मिली?
1: नहीं, ये तो रिकॉर्ड होने के बाद की बात है,
0: अच्छा है, ओके।
1: एल्बम आने के बाद में, उसके बाद इन
0: आरोही
1: दोनों
0: में
1: ने गाया था।
0: गाया।
1: हाँ, तो ये एल्बम तो हो गया था, लोग पसंद भी कर चुके सब कुछ, तो ये दूरदर्शन पे ये गज़ल दिखाई जा रही थी, सुनाई जा रही थी। और उस वक्त दूरदर्शन ही था जिसमें लोग अच्छे सीरियल देखते थे, अच्छे प्रोग्राम देखते थे, आरोही बहुत पॉपुलर था, तो ये चल रहा था और लोग सुन रहे। तो मेरा एक जयपुर का दोस्त है, तो अपने परिवार में बैठ के जैसे सुनता है, तो ये जब गज़ल आई तो उसने कहा, यार ये पाकिस्तानी शायर क्या खा के गज़ल लिखते हैं।
0: आपके अपने दोस्त ने
1: हाँ,
0: ये बात
1: ये मेरे
0: कही।
1: उस, और तब तक हमारा संपर्क भी नहीं था, वो है बॉम्बे में वो, लेकिन हम
0: जी
1: बहुत अरसे से नहीं मिले थे। तो
0: जी जी
1: ये पाकिस्तानी शायर क्या खा के गज़ल लिखते हैं, है ना।
0: ओहो
1: तो वो कल्पना नहीं कर सकता था कि ये हिंदुस्तान का शायर है और
0: जी।
1: ये यही की गज़ल है। तो बोल, ये उसने मुझे बाद में बताया जब हम मिले और सब कुछ। तो उसका नाम है अजय कार्तिक, जो ये जो है जिंदगी का राइटर था,
0: हाँ,
1: सीरियल
0: बिल्कुल
1: है ना,
0: बिल्कुल,
1: और
0: बड़ा
1: मतलब
0: नाम है अजय
1: हाँ।
0: कार्तिक जी।
1: तो वो तो जब बाद में मिले तो उसने कहा कि ये यार ये गज़ल तो हम सुन रहे थे और हमने, मेरा ये कमेंट था।
0: जी
1: अच्छा, दूसरी बात ये कि ये गज़ल पंकज दास साहब ने सूरत, उनमें एक शेख अबू आदम आदम वाला को, एक शायर रहे हैं गुजराती के, बड़े
0: जी
1: शायर रहे हैं, तो उनकी पुण्यतिथि पर सूरत में कंसर्ट था। हाँ, तो वो पंकज जी वहाँ पे, उन्होंने कंसर्ट किया वहाँ, गाने गए। मजरू सुल्तानपुरी वहाँ पे चीफ गेस्ट थे, तो मजरू साहब बैठे थे सामने, तो पंकज जी ने ये गज़ल सुनाई, तो फिर ये जब शेर सुनाया तो फिर मजरू साहब ऑडियंस में बोलते हैं, हाँ पंकज फिर सुनाओ। तो जब जो कहते हैं ना, फिर सुनाओ फिर सुनाओ, तो शायद मुशायरा हो या म्यूज़िक का हो, तो ये लगता है कि कुछ गलत तो नहीं हो गया,
0: हाँ बिल्कुल।
1: कुछ तलफ़ुज़ गलत हो गया, या कुछ मिसरा गलत हो गया, या कुछ मेरा कुछ कमज़ारा तो नहीं कर बोल दिया या सुना दिया। हाँ, ये सुर का इधर उधर नहीं, फिर सुनाओ, फिर एक बार फिर। उन्होंने 3 बार ये सुना और हाँ वाह, तो ये होगा। फिर जब ग्रीन रूम में आए, मजरू साहब उनसे मिले, तो बोले कि ये किसकी गज़ल थी ये। तो उन्होंने बताया कि ये उस वक्त मैं नौजवान हुआ करता था,
0: जी
1: तो नौजवान शायर बॉम्बे के राजेश रेड्डी, तो ये बहुत अच्छी गज़ल है, अलग गज़ल है, उसको मेरी तरफ से मुबारकबाद देना।
0: वाह वाह वाह
1: तो ये
0: वाह,
1: मजरू
0: मजरूह जैसे
1: सुल्तानपुरी साहब का
0: बड़े
1: आशीर्वाद था,
0: शायर की बात
1: है
0: है
1: ना।
0: ये।
1: तो इस गज़ल से जुड़ी एक दो बातें हैं, तो ये मैं शेयर करना चाह रहा था।
0: क्या बात है, पंकज जी की आवाज में ये गजल सुनते हैं हम।
1: जी।

0: मुंबई के अपने सफर के बारे में कुछ और बातें बताइए।
1: मुंबई में फिर सफर तो मेरा ज़्यादातर तो शायरी का ही रहा,
0: जी
1: और जगजीत जी वाला मैं सिलसिला एक और बहुत महत्वपूर्ण इंसिडेंट है वो सुनाता हूँ। उससे पहले एक मेरी शायरी और मुशायरों में कैसी वो एक सिलसिला शुरू हुआ, बड़ा सिलसिला जो है
0: जी।
1: तो नेहरू सेंटर का एक ऑल इंडिया मुशायरा होता है सालाना,
0: बिल्कुल बहुत ही मशहूर
1: मशहूर
0: जी।
1: आज तो वो दौर नहीं है
0: जी,
1: लेकिन एक जमाना था मतलब उसके सुनने वालों में। और जब मैंने ये पहला मुशायरा पढ़ा तो उस वक्त स्टेज पे अली सरदार जाफरी
0: जी,
1: मजरू सुल्तानपुरी,
0: कैफी आजमी,
1: कैफी आजमी, मुमताज राशिद और ये सब बड़े बड़े नाम है ना, बशीर बद्र, निदा साहब, निदा साहब उसके संचालन कर रहे थे,
0: जी
1: अली सरदार जाफरी उसके वो थे सदारत कर रहे थे। और सुनने वालों में दिलीप कुमार,
0: बाप रे,
1: अजीत एक्टर
0: जी,
1: और भी और कई थे फिल्म इंडस्ट्री के काफी लोग थे। तो वो दौर था जब बिहार जो नेहरू सेंटर के अलग ही हुआ करता था
0: जी,
1: हॉल खचाखच भरा हुआ। तो और मेरा पहला बड़ा मुशायरा मुंबई का,
0: क्या बात है,
1: मेरा पहला मुशायरा तो बड़ा मुशायरा है। तो निदा साहब ने मुझे उसकी ओपनिंग के लिए, बल्कि यूं कह लीजिए
0: अरे बाप
1: तो
0: रे,
1: शुरुआत के एक दो मुशायरों में।
0: और निदा साहब की अपनी अदा थी, वो बहुत रेफरेंसेस के साथ बुलाया करते थे।
1: तो उन्होंने मुझे माइक पे बुला कि मेरा पहला मुशायरा और ये ऑडियंस, ये लोग
0: जी
1: है ना, भरपूर ऑडियंस, पूरा हॉल। तो मैंने गज़ल पढ़ी, तो वो गज़ल जब पढ़ता गया तो सब हर शेर को दोबारा पढ़ना पड़ रहा, ये सब कुछ हुआ। और जब मैं पढ़ के आया हूँ तो मुमताज़ राशिद और जफ़र गोरखपुरी, तो उस वक्त दाद देने का एक ये भी होता था, ये बड़े लोग जो दाद देते थे, जफ़र गोरखपुरी साहब मेरे बराबर में बैठे थे मैं होता, तो मतलब अगर किसी को बहुत अच्छा लगा, ये प्यार हुआ ना, तो मुशायरा तो हो गया।
0: अरे आप तो शुरुआत कर रहे थे जब,
1: हाँ,
0: जी
1: मुशायरा तो हो गया।
0: अरे बाप रे, बहुत बड़ी बात है,
1: तो ये बड़ी बात थी
0: जी।
1: तो ये मैंने कहा था कि उधर नीरज जी का वो हार पहनाना, माला पहनाना
0: जी,
1: तो ये तो हो गया, मुशायरा तो हो गया। और ये ऐसे सुने, फिर अजीत साहब ने मुझे हैदराबाद बुलाया,
0: गजब,
1: अपने घर पर
0: जी
1: उनसे वहां से मिलना हुआ, सुनना सुनाना हुआ। तो ये हुआ, ये गजल मैं सुन जो बता रहा हूँ जिसके बारे में
0: जी,
1: ये गजल जगजीत सिंह साहब को बहुत पसंद थी।
0: हाँ हाँ,
1: और जगजीत सिंह साहब ने इसको धुन भी बनाई, रिकॉर्ड भी किया, उनका
0: हाँ,
1: आखिरी एल्बम था ये।
0: ओहो हो,
1: और वो एल्बम रिलीज होने से पहले वो नहीं रहे दुनिया में,
0: जी जी
1: वो चले गए
0: जी।
1: वो एल्बम रिलीज नहीं हुआ, चित्रा जी पता नहीं कब करेंगे नहीं करेंगे
0: जी।
1: तो ये गजल उन्होंने गाई भी और सुनाई भी। लेकिन इस गजल से मैं एक और जो जगजीत जी के साथ जुड़ा मैं बता रहा हूँ कि मेरी दूसरी किताब पहली उड़ान
0: जी,
1: और दूसरी आसमान से आगे,
0: बिल्कुल।
1: तो जब आसमान से आगे की किताब के लोकार्पण की बात हुई और मैं चाह रहा था, तो मैं उनको अपने चाह रहा था कि जगजीत जी इसका इसका वो करें, हाँ, तो मैं उनको इनवाइट करने गया और बोला कि मैं चाह रहा हूँ कि आप करें, तो इसके लिए अलग से प्रोग्राम क्यों करते हो, मेरा कंसर्ट है केयर का जो है नेहरू सेंटर में, तो उसमें कर देते हैं, तुम उसको किताब लेके आ जाना फिर अपन कर लेंगे। तो मैं चला गया, मुझे उम्मीद नहीं थी कि जो हुआ वो ऐसा होगा।
0: जी जी जी
1: तो किताब लेके रैपर वैपर सबके रिबन में सब लेके चला गया। तो मैं मिला वहाँ पे, तो उन्होंने कहा कि ठीक है तुम ऑडियंस में बैठो, मैं तुम्हें बुलाऊँगा और वहाँ उसको कर देंगे सब ठीक है। तो मैं बैठ गया, फिर उन्होंने वो गज़ल गाई दूसरी गज़ल, जिंदगी तूने लहू लेके दिया कुछ भी नहीं, तेरे दामन में मेरे वास्ते क्या कुछ भी नहीं। तो जगजीत जी ने ये गज़ल गाई और उसके बाद श्रोताओं से कहा कि ये गज़ल जो मैंने अभी गाई ये हमारे प्यारे शायर राजेश रेड्डी की लिखी हुई है, और आज इत्तेफाक है कि वो हमारे ऑडियंस में मौजूद हैं, तो मैं चाहता हूँ कि वो ऊपर आएँ और आज उनकी किताब का भी वो है, वो लेके आए किताब। तो फिर मैं ऊपर गया और वो नमस्ते और तक क्लैपिंग वगैरह सब कुछ हुआ, फिर जगजीत जी ने वो उसका रिबन खोला, ऑडियंस के सामने ये सब हो गया और तालियां वालियाँ सब हो गई और मैं स्टेज से उतरने लगा
0: जी।
1: तो बोले नहीं राजेश रुकिए। तो मैं आया तो उनका कंसर्ट है, देखिए स्टेज
0: हाँ,
1: है पूरा,
0: और पूरा
1: हाँ,
0: हॉल भरा हुआ
1: है, म्यूजिक का पूरा सेटिंग है, गा रहे हैं वो, बीच में उन्होंने बुलाया हुआ है। फिर वो उन्होंने कहा कि भाई एक माइक इधर लगाइए, स्टैंडिंग माइक दीजिए, हाँ, तो ये इसकी म्यूजिक कोई उम्मीद नहीं, कल्पना नहीं, और तो वो दिया उन्होंने कि तो अब वो गजल पढ़िए जाने कितनी उड़ान बाकी है।
0: अरे बाप रे,
1: वो उससे पहले महफिलों में गा चुके थे, मतलब
0: जी,
1: उनको
0: जी।
1: पसंद थी गजल, तो सारे तो वो गजल पढ़ी जाने कितनी उड़ान बाकी, तो बात वहीं ख़त्म भी हुई। मैंने पढ़ा जाने कितनी उड़ान बाकी, इस परिंदे में जान बाकी,
0: जी
1: हो ये रहा है कि मैं मतलब मैंने पढ़ा शुरुआत की और जगजीत जी म्यूजिक के साथ शुरू हो गए।
0: अरे गजब
1: ये किसी शायर के साथ नहीं हुआ,
0: जी जी
1: आज
0: जी
1: तक किसी शायर के साथ नहीं हुआ
0: गजब गजब
1: ऐसा विमोचन और ऐसी ऐसा सम्मान, ऐसा प्यार। तो मैं पढ़ रहा हूँ और वो उसे गा रहे हैं, मैं पढ़ रहा हूँ वो उसे गा रहे हैं,
0: अद्भुत
1: ये
0: अद्भुत
1: अद्भुत अद्भुत। और जब घर पे मैंने श्रीमती जी को बताया कि ऐसा हुआ, तो वो मुझे क्यों नहीं लगे आप, मुझे
0: अरे
1: क्यों नहीं
0: बाप
1: लगे,
0: रे यार ये तो
1: और
0: बड़ा मिस
1: आपको मालूम
0: हुआ
1: था कि ऐसा होगा वैसा होगा। तो मैंने कहा नहीं ऐसा नहीं, तो मुझे बता दी। तो ये था उनका प्यार,
0: वाह
1: ये था उनका शायर को सम्मान देने का तरीका। तो इस गजल के साथ ये जुड़ाव है, इसलिए मैंने बताया।
0: क्या बात है, ये आपसे सुनेंगे
1: हाँ, जाने के

0: जाने कितनी उड़ान। और ये शेर खास तौर से यूनुस,
1: स्वागत है।
0: जितनी बटनी थी बट चुकी ये जमीन,
1: वाह वाह,
0: जितनी बटनी थी बट चुकी ये जमीन, अब तो बस

0: फजल का एक और शेर खास मैं सुनाना चाह रहा हूँ।
1: स्वागत है।
0: सर कलम होंगे कल यहाँ उनके,
1: वाह,
0: सर कलम होंगे कल यहाँ उनके, जिनके मुंह में
1: जबान
0: बाकी है, जाने कितनी उड़ान बाकी है।
1: क्या बात है, क्या बात है, शानदार शानदार। विविध भारती के आपके इस दौर की बात करनी बहुत जरूरी है, क्योंकि एक बहुत प्यारा वक्त आपने विविध भारती में दो बार गुजारा है, और मुझे याद है कि आपके जमाने में जो कार्यक्रम आपने शुरू किए उसमें सरगम के सितारे उजाले
0: उनकी
1: यादों के मंथन जैसे कार्यक्रम थे। मुझे लगता है कुछ और भी कार्यक्रम, गुलदस्ता एक कार्यक्रम था जो आपने शुरू किया है, सखी सहेली आपके दौर में शुरू हुआ है, तो ये तमाम चीजें हैं, इस दौर को याद कीजिए।
0: नहीं, वो मेरे पूरे करियर का पीक भी था और स्वर्णिम दौर था हर तरह से, मतलब ये नहीं कि मेरी आखिरी वो पोस्टिंग थी कहना चाहिए, या मेरा करियर का आखिरी पीरियड था, उस लिहाज से नहीं, मेरे क्रिएटिव एक्सप्रेशन का भी और लोगों से जुड़ाव का भी और चीज़ों को एक्सप्लोर करने का भी वो बेस्ट पीरियड था, और उस टीम का जवाब नहीं जिसने मुझे इतने चढ़ंग से इन चीज़ों को संवारने और उसको साकार करने का अवसर दिया, जिसमें मैं बार बार नाम लूँगा, तो सबसे पहले यूनुस,
1: अरे राकेश जोशी,
0: राकेश जोशी, उस वक्त हमारे जो साथी लोग थे लोकेंद्र जी, महेंद्र मोदी, ममता, कांचन प्रकाश संगीत, कमलेश और शेट्टी जी जो हमारे मैनेजर हुआ करते थे, एक तरह
1: सब
0: से
1: चीजों को संभालते
0: सबको संभालते थे, तो एक अच्छी टीम थी जो हर तरह से जो जिस चीज का एक्सपर्ट था वो था, और वो अपने को भरपूर सहयोग के साथ, भरपूर इन्वॉल्वमेंट के साथ, भरपूर पोटेंशियलिटी के साथ
1: जी,
0: मतलब हर आदमी ने अपना बेस्ट दिया
1: बिल्कुल, और हर रोज आप एक नई चुनौती सामने रखते
0: थे, ऐसा कम होता है
1: जी।
0: तो हमने तो ऐसे ऐसे वो दौर देखा और किया है कि कोई बड़ी हस्ती है, खयाम साहब आ गए, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी आए
1: जी,
0: आनंद जी आए
1: बिल्कुल,
0: है ना, अनु मलिक भी आए, कौन कौन नहीं आए यहाँ पे, तो सारे, और संगीतकारों में भी बड़े बड़े लोग,
1: रवि जी आए,
0: हाँ
1: बिल्कुल,
0: खयाम साहब
1: आए, हाँ? और बातों का सिलसिला खत्म ही नहीं हो रहा है
0: तो बड़े बड़े लोगों के बड़े बड़े इंटरव्यूज,
1: मुझे याद है कि खयाम साहब, नौशाद साहब आए हैं, और हम उनको छोड़ने नीचे गाड़ी तक गए हैं, और वहीं एक घंटे बात हो रही है
0: उनको, वो नौशाद साहब तो ऐसे थे कि वो उनको बोलने का बहुत वो था
1: जी,
0: वो अच्छा भी बोलते थे और इतना था उनके पास बोलने का
1: बिल्कुल,
0: और उनको शौक भी था, तो बहुत अच्छी बातें करते थे, देर तक बातें करते थे, कैफी आजमी साहब, तो मतलब ऐसे ऐसे बड़ी बड़ी हस्तियों के, फिर हमने ये भी किया कि इनको हमको ज़ाया नहीं करना है कि एक घंटे में बांध लिया, दो घंटे में बांध लिया, उनको कभी सरगम के सितारे, कभी हमारे मेहमान, कभी इसमें उसमें, जितना हम उनके
1: ले सकते हैं
0: उनका श्रोताओं के लिए, क्योंकि ये लोग बार बार नहीं मिलते हैं, ये लोग कहाँ आएंगे अब इस दुनिया में, तो इनका जो है वो है, जो विविध भारती के पास है वो किसी के पास नहीं,
1: किसी के पास नहीं है,
0: वो आर्काइवल रिकॉर्डिंग और स्टेशन पे है
1: जी,
0: लेकिन इस तरह की जो रिकॉर्डिंग्स जो है, इतनी लाइवली रिकॉर्डिंग्स जो है, वो संस्मरणात्मक रिकॉर्डिंग है सारी की सारी, या गानों पे बातें हो रही हैं, या गाने कैसे बने उस पर बातें हो रही हैं
1: जी,
0: है ना, आपका फेवरेट क्या है, आप वो सारा कुछ, मतलब पूरी उनकी यात्रा
1: एक से बढ़कर एक
0: प्रोग्राम जो है वो हुए, प्लस कहीं कहीं कोई चला गया अचानक, तो उसके लिए छुट्टी भी हो तो सब लोग एक फोन पर, पूरी टीम विविध भारती की स्टूडियो में हाजिर,
1: और
0: पूरा प्रोग्राम शुरू हो गया, तो ये सब वो एक अनुभव जो है वो विविध भारती में हुआ और कहीं नहीं हो सका।
1: बिल्कुल बिल्कुल, तो विविध भारती में वो जोश, वो जुनून, वो जज्बा हमेशा रहा कि चाहे मौजूदा कलाकार हों चाहे ट्रिब्यूट्स हों, जी जान के साथ लोगों ने काम किया। एक चीज जो क्रिकेट का आपका शौक, उसकी भी मैं बात करना चाहूंगा, एक बहुत जुनून रहा है आपको क्रिकेट का, मुझे याद है कि वर्ल्ड कप हो रहा है तो आपने स्पेशल प्रोग्राम शुरू कर दिया था, और मैंने वो चुनौती निभाई थी कि रोज सुबह एक बुलेटिन देना है।
0: नहीं, क्रिकेट का शौक बहुत अरसे से रहा, और शायद ये हमारा राष्ट्रीय खेल शुरू से रहा है
1: जी,
0: तो थोड़ा बहुत खेला भी, लेकिन देखने का शौक जो है वो, ये तो वो जमाना था, वो दीवानगी का वो आलम था, कि इसके लिए मैंने ऑफिस से छुट्टी तक ली है मैच देखने के लिए,
1: जी जी
0: तो ये भी हुआ है। और खास तौर से जब हम वर्ल्ड कप जीते 83 में,
1: बिल्कुल,
0: तो उसके बाद तो कोई कमाल ही हो गया मतलब। और जब जयपुर में आकाशवाणी में प्रोग्राम एग्जीक्यूट था, स्पोर्ट्स भी था, देखता था
1: जी,
0: तो पाकिस्तान इंडिया का मैच, इंडिया इंग्लैंड का मैच, ये सब देखा और आनंद आया।
1: बिल्कुल, विविध भारती के दौर में भी क्रिकेट पर हमने बहुत कार्यक्रम किए आपके दौर में, और मंथन किया जब पाकिस्तान गई थी इंडिया की टीम, और ऐतिहासिक दौरा था, दिलीप साहब को रिकॉर्ड किया उस जमाने में, और उन्होंने शुभकामनाएं भेजी इंडिया की टीम को, तो एक जुनून उससे मैं वाकिफ हूँ।

0: एक जरूरी बात रह गई है और वो है रेखा जी से आपकी मुलाकात की बात।
1: रेखा से, रेखा का यूं है कि वो हम लोग एमए में साथ थे, एमए
0: जी,
1: हिंदी लिटरेचर में राजस्थान यूनिवर्सिटी में, तो एक ही क्लास में थे और हम दोनों का बैकग्राउंड बिल्कुल अलग था। मैं जैसे मैंने बताया, हमारे पिताजी पीएनटी डिपार्टमेंट में काम करते थे, तो एक लोअर मिडिल क्लास फैमिली, सरकारी मुलाजिम के बेटे बेटा, वो उस तरह से परिवार में पला बड़ा, लेकिन सांस्कृतिक रूप से हम लोग बहुत समृद्ध थे। लेकिन जो रेखा की जो फैमिली है वो सिंधी कम्युनिटी है, वो लालवानी रहे हैं
0: जी
1: मतलब, तो वो बिजनेस में थे जापान में, हमारे फादर इन लॉ, दोनों ब्रदर इन लॉ हांगकॉन्ग मनीला, तो वो उनका बैकग्राउंड ही अलग था, मतलब उनका आर्थिक स्तर भी बहुत अलग था,
0: जी
1: तो कोई संभावना नहीं थी उसकी, लेकिन वो जो होता है वो होता है। तो जब उस वक्त मेरी थोड़ी बहुत पहचान गीतकार के रूप में, थोड़े पत्रकार के रूप में सब होने लगी थी, लिखने वाले के, तो और अट्रैक्शन भी हो ही गया था, और हम लोगों में मिलना जुलना सब कुछ है। लेकिन शादी तक की बात, ये उनका साहस था,
0: जी
1: प्रपोज तो नेचुरली मैंने ही किया था, लेकिन मैं, हमारा बैकग्राउंड बिल्कुल अलग था और विलोम था एक तरह से, तो उसके बावजूद उन्होंने हिम्मत दिखाई, उनका ठीक है। और ये कहानी बड़ी दिलचस्प है,
0: जी
1: तो घर में बता के तो उन्होंने कहा कि संभव नहीं है
0: ओके
1: घर में, तो वहाँ तो राजी होने का सवाल ही नहीं उठता कि वो मान जाए। तो अच्छा, उस वक्त हमारे इन लॉ, फादर इन लॉ जापान में रह रहे थे, ये हमारी जो सास है मदर इन लॉ जो है वो उनके साथ ये रह रही थी, सब कुछ, दोनों भाई बाहर थे, तो घर का कोई पुरुष यहाँ मौजूद नहीं था, और माँ को भी ये बताने की और इस हालत में वो उम्मीद नहीं थी कि हो जाएगा। तो ठीक है, तो हमने कहा कि हमारे समाज में शादी करते हैं।
0: अरे बाप रे।
1: तो आर्य समाज में तय हुआ शादी, हम मेरे को निकट के मित्र 5-7, और उस वक्त भी मतलब मैं, क्योंकि अपने कॉलेज के ज़माने से अपनी एक्टिविटीज़ की वजह से, लिखने पढ़ने और थिएटर का जो माहौल था, तो अपने लेक्चरर्स का चहेता बन गया था, मतलब ये था, तो
0: जी
1: वो सब
0: जी
1: आगे आगे करते थे, तो मेरे 2-3 जो लेक्चरर्स थे वो शादी में आए,
0: अरे वाह,
1: आर्य समाज की शादी में,
0: क्या बात है।
1: तो वो उन्होंने संभाला और सब कुछ हुआ। अच्छा हुआ ये कि मैं शादी के बाद वो अपने घर चली गई, मैं अपने
0: अरे
1: घर चला आया,
0: जी,
1: तो उन्होंने कहा कि अब मैं बता सकती हूँ
0: हाँ
1: कि हम, मैंने शादी कर ली है,
0: हाँ
1: और तो अब तो
0: कुछ हो नहीं
1: वकील ही
0: सकता
1: होंगी
0: था।
1: नहीं कि सबकी, तो हमारे जो लेक्चरर्स थे तो
0: हाँ
1: नेचुरली वहाँ से रेजिस्टेंस होना था कि नहीं, तुम्हारे पिताजी को बुलाते हैं, वो करते हैं, तो उन्होंने वो दौड़े दौड़े जापान से लौट के आए,
0: हाँ
1: फिर उन्होंने सब बता दिया सब कुछ, तो बोले हाँ हाँ क्यों नहीं, हम उनसे बात करेंगे, उनको बुलाते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, ये मुझे लग नहीं रहा कि मानेंगे,
0: हाँ
1: तो मुझे यहाँ से ले जाओ,
0: अरे बाप रे,
1: ये इनकी हिम्मत बता रहा हूँ मैं अब, तो
0: हाँ।
1: मुझे ले जाओ यहाँ से। तो मैं अपने 2 लेक्चरर्स के साथ घर गया उनके, और
0: गजब।
1: हाँ, और हमारे इन फादर इन लॉ जो मौजूद थे, तो
0: हाँ
1: हाँ हाँ ये बैठी चाय वाय पी सब कुछ, तो उन्होंने वही कहा कि थोड़ा हमें वक्त दीजिए ना,
0: हाँ
1: हम इसको ढंग से करते हैं, इसको करेंगे,
0: हाँ
1: उसको पूछे, लेकिन ये फिर मुझे अलग ले गई, बोले नहीं
0: ये नहीं हो रहा
1: ये नहीं
0: है।
1: होने देंगे,
0: हाँ
1: मैं भी चलूंगी,
0: गजब,
1: मैं भी चलूंगी। तो
0: बाप रे।
1: फिर उन्हीं के साथ हम लोग बाहर आ गए और हम लोग निकल आए, और फिर मैंने अपने घर वालों को भी तब बताया जब
0: जी,
1: उनको लेके आया कि मेरी शादी हो गई है फादर
0: और ये
1: के
0: है
1: यहाँ। तो इस तरह से ये पूरी कहानी हुई, और इसके पीछे मेरी तो जो है सो है,
0: हाँ,
1: सारा साहस इनका है,
0: क्या बात है
1: ये उस जमाने में।
0: जी, शानदार शानदार। तो ये अद्भुत कहानी रही है और ये हमारे सुनने वालों के साथ शेयर हुई, तो ये भी एक दिलचस्प है। सबसे अच्छी मुलाकातें वो होती हैं जिनमें आगे की गुंजाइश छूट जाए। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी बातें हैं, 2 एपिसोड में उनको समेटना बड़ा मुश्किल था। आगे फिर मिलेंगे और कुछ बहुत सारी बातें आपके साथ की जाएंगी।
1: जरूर।
0: चलते चलते आपसे कुछ सुनना चाहेंगे।
1: मैं 2-3 शेर सुनाता हूं,
0: जी जरूर इरशाद।
1: ये रोजमर्रा का सच हम सबके साथ। किसी दिन जिंदगानी में
0: किसी दिन
1: करिश्मा
0: जिंदगा,
1: क्यों नहीं होता,
0: वाह
1: किसी दिन जिंदगानी में करिश्मा क्यों नहीं होता, मैं हर दिन जाग तो जाता हूं, जिंदा क्यों नहीं होता,
0: वाह वाह वाह वाह वाह,
1: किसी दिन जिंदगानी में करिश्मा क्यों नहीं होता, मैं हर दिन जाग तो जाता हूं, जिंदा क्यों नहीं होता।
0: वाह वाह,
1: मेरी एक जिंदगी के कितने हिस्सेदार हैं लेकिन, मेरी एक जिंदगी के
0: कितने
1: हिस्सेदार हैं लेकिन किसी की जिंदगी में मेरा हिस्सा क्यों नहीं होता।
0: वाह वाह वाह,
1: मेरी एक जिंदगी के कितने हिस्सेदार हैं लेकिन किसी की जिंदगी में मेरा हिस्सा क्यों नहीं होता। और दो छोटी छोटी बहर के शेर
0: इरशाद,
1: एक तो ये शेर के एक आंसू कोरे कागज पर गिरा।
0: वाह,
1: एक आंसू
0: कोरे कागज पर गिरा
1: और अधूरा खत मुकम्मल हो गया।
0: वाह वाह वाह वाह वाह वाह, क्या
1: एक आंसू कोरे कागज पर गिरा और अधूरा खत मुकम्मल हो गया,
0: क्या बात है।
1: और ये शेर आखिर में, गम छुपाना कोई मजाक नहीं, गम छुपाना कोई मजाक नहीं, देर तक मुस्कुराना पड़ता है।
0: वाह वाह वाह वाह वाह वाह वाह वाह वाह, क्या बात क्या बात।
1: गम छुपाना कोई मजाक नहीं, देर तक मुस्कुराना पड़ता है,
0: क्या बात है क्या बात है। सर इतनी सारी बातें हुई, मैं चाहता हूं कि एक ऐसी गजल सुनाएं जो आपके इस पूरे रचनात्मक सफर की रिप्रेजेंटेटिव हो, जो आपके मन की हो, जिसे आप जरूर सुनाना चाहें।
1: यूनुस, ये गजल मैं इसलिए खास महसूस करता हूँ अपने क्रिएटिव सफर की, कि रामपुर की एक बहुत मशहूर लाइब्रेरी है, रजा लाइब्रेरी।
0: जी जी बिल्कुल।
1: तो उसमें रिसर्च का नामी गिरामी लोग तो आए, बहुत अच्छी महफिल थी, तो उसमें ये गजल जो मैंने पढ़ी
0: जी,
1: तो इतना प्यार मिला, तरह मुशायरा था जो मेरा पहला अनुभव था।
0: जी जी,
1: मतलब किसी लाइन
0: होता है। हाँ,
1: लेकिन ये गजल मुझे वहां दो बार पढ़नी पड़ी।
0: क्या बात है,
1: इतना प्यार मिला, तो वो हासिल मुशायरा साबित हो गई।
0: वाह,
1: तो इसलिए मेरे लिए वो जो है बड़ी यादगार गजल रही, तो मैं वो उसके कुछ शेर पढ़ देता हूँ।
0: इरशाद, इरशाद।
1: अब क्या बताएं

0: और ये शेर में जो खास सुनाना चाह रहा हूँ,
1: इरशाद
0: इसमें एक लफ्ज है, शब्द है शराब।
1: जी,
0: एक होता है शराब और
1: और
0: एक
1: ये
0: होता
1: होता है
0: शराब, जिसे
1: शराब।
0: मृग मरीची का
1: जी
0: मिराज जिसे उर्दू इंग्लिश में
1: यस,
0: बोलते हैं कि रेगिस्तान में पानी जैसा होता है, दिखता है, होता नहीं
1: होता नहीं,
0: है ना मरुस्थल में।
1: आग का धोखा है।
0: हाँ, पानी का धोखा, आँख का धोखा, वो सब रहे। तो ये जो इस्तेमाल किया उस पर पूरी जो महफिल थी उसने प्यार दिया। अब क्या बताएं टूटे हैं कितने कहाँ से हम, अब तो शराब ही से बुझाने लगे हैं प्यार,
1: वाह वाह, अब तो शराब
0: अब
1: से
0: तो
1: ही।

0: से हम।
1: क्या बात है, क्या बात है।
0: थैंक यू
1: तो आगे की बातचीत के लिए प्यास बाकी है। बहुत बहुत शुक्रिया आप विविध भारती के स्टूडियो में आए और इतनी बातें की।
0: बहुत बहुत शुक्रिया यूनुस, और पूरे विविध भारती परिवार को मेरी तरफ से धन्यवाद, आभार, और अपने पूरे परिवार में फिर एक बार अपने पुराने दोस्तों से मिलने के लिए और पुराने श्रोताओं से मिलने के लिए, मिलाने के लिए मैं आभारी हूँ। बहुत बहुत शुभकामनाएं, धन्यवाद।
1: शुक्रिया सर, शुक्रिया। ये था जाने माने शायर और विविध भारती के भूतपूर्व केंद्र निदेशक राजेश रेड्डी से यूनुस खान की बातचीत का दूसरा और अंतिम भाग। रिकॉर्डिंग इंजीनियर भावना सिंदल, संपादन सहयोग रीमा जोशी का। विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता जुबैर खान। अब आज के मेहमान कार्यक्रम समाप्त होता है। आज के मेहमान।

0: एफएम बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का धर्मशाला केंद्र है। शाम के 5 बजने को है। अब से कुछ ही देर में आकाशवाणी दिल्ली से पहले हिंदी में समाचार और 5:05 पर अंग्रेजी में समाचार रिले किए जाएंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं शक्ति सिंह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत और इटली द्विपक्षीय व्यापार को 20 बिलियन यूरो तक पहुंचाने के लिए काम कर रहे हैं। इटली के रोम में प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता के बाद संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में श्री मोदी ने कहा कि दोनों देशों के बीच साझेदारी में तकनीक और नवाचार मुख्य केंद्र हैं।
2: हमने हमारी भावी साझेदारी को और सशक्त बनाने के लिए विस्तृत रूप से चर्चा की। भारत इटली जॉइंट स्ट्रेटेजिक एक्शन प्लान 2025-2029 हमारी साझेदारी को एक प्रैक्टिकल और फ्यूचरिस्टिक ढांचा प्रदान करता है। हम इस पर समयबद्ध तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। हमारे साझा प्रयासों में द्विपक्षीय व्यापार 20 बिलियन यूरो के लक्ष्य की ओर तेजी से बढ़ रहा है।
1: प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि दोनों देशों के बीच रक्षा सहयोग बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि श्री मेलोनी के नेतृत्व में दोनों देशों के संबंधों को नई दिशा और ऊर्जा मिली है। प्रधानमंत्री ने कहा कि दोनों देशों की सभ्यता बहुत पुरानी है।
2: रोम को विश्व में इटर्नल सिटी के रूप में जाना जाता है। भारत में मेरी लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी काशी उसको भी अनादि और शाश्वत नगर माना जाता है। जब दो सभ्यताएं मिलती हैं तो बातचीत केवल एजेंडा तक सीमित नहीं होती। इसमें इतिहास की गहराई, भविष्य की दृष्टि और मित्रता की सहजता तीनों साथ दिखाई देते हैं।
1: हाल के वर्षों में भारत इटली संबंधों में अभूतपूर्व प्रगति हुई है और अब ये संबंध निर्णायक मोड़ पर पहुंच गए हैं। प्रधानमंत्री मोदी और प्रधानमंत्री मेलोनी ने संयुक्त लेख में कहा कि दोनों देशों के बीच संबंध सौहार्दपूर्ण मित्रता से विकसित होकर एक विशेष रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक पहुंच गए हैं। ये संबंध स्वतंत्रता, लोकतंत्र और भविष्य के लिए साझा दृष्टिकोण के मूल्यों पर आधारित हैं। दोनों नेताओं ने कहा कि ऐसे समय में जब वैश्विक व्यवस्था में गहन परिवर्तन हो रहे हैं, भारत इटली साझेदारी उच्चतम राजनीतिक और संस्थागत स्तर पर नियमित आदान प्रदान से निर्देशित है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सियोल में दक्षिण कोरिया के रक्षा अधिग्रहण कार्यक्रम प्रशासन के मंत्री ली जोंग चुल से मुलाकात की। बैठक के दौरान दोनों पक्ष संयुक्त विकास, संयुक्त उत्पादन और संयुक्त निर्यात के अवसर पैदा करने के लिए आपसी प्रयासों का लाभ उठाने पर सहमत हुए। दोनों देशों के नवाचार इकोसिस्टम को आपस में जोड़ने वाली महत्वाकांक्षी काइंड एक्स पहल की क्षमता को पूरी तरह से इस्तेमाल करने के लिए एक रूपरेखा पर भी चर्चा की गई। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन ने अनमैन्ड एरियल व्हीकल लॉन्च्ड प्रिसिजन गाइडेड मिसाइल के अंतिम विकास परीक्षण को

0: सफलतापूर्वक पूरा किया। यह आत्मनिर्भर भारत की पहल के अंतर्गत स्वदेशी रक्षा क्षमताओं को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सफल परीक्षण के लिए रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, रक्षा सह उत्पादन भागीदारों और उद्योग जगत की सराहना की। उन्होंने इसे रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की दिशा में एक रणनीतिक उपलब्धि बताया। सर्वोच्च न्यायालय ने जनगणना 2027 के अंतर्गत जाति गणना कराने के केंद्र सरकार के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका को खारिज कर दिया है। अदालत ने कहा कि ये मुद्दा सरकार के नीतिगत अधिकार क्षेत्र में आता है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि पिछड़े वर्गों के लिए कल्याणकारी उपाय तैयार करने के लिए सरकार को उनकी संख्या जानना जरूरी है। सर्वोच्च न्यायालय ने केंद्र तथा सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश में एक जनहित याचिका का जवाब मांगा है। इसमें सरकारी कानूनी पैनलों और विधि अधिकारियों की नियुक्ति में महिला वकीलों के लिए 30% आरक्षण की मांग की गई है। सरकार ने जम्मू कश्मीर के गांदरबल में कश्मीरी लड़ाकों द्वारा सेना के वाहन पर हमले के बाद सैनिकों के मारे जाने की सोशल मीडिया की खबरों का खंडन किया है। पत्र सूचना कार्यालय की तंत्र जाँच इकाई ने बताया कि क्षेत्र में ऐसी कोई घटना नहीं हुई है। आईपीएल क्रिकेट में आज शाम 7:30 बजे कोलकाता में कोलकाता नाइट राइडर्स का मुकाबला मुंबई इंडियंस से होगा। मुंबई प्लेऑफ की दौड़ से बाहर हो चुकी है, जबकि कोलकाता प्लेऑफ में जाने के लिए अगले दोनों मैचों में जीत के साथ साथ दूसरे टीम के परिणाम पर निर्भर है। मौसम विभाग ने इस सप्ताह उत्तर पश्चिमी और मध्य क्षेत्र में लू की आशंका व्यक्त की है। अगले 4 दिन तक दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, ओडिशा, छत्तीसगढ़, राजस्थान, तेलंगाना, उत्तराखंड में लू चल सकती है, जबकि असम, मेघालय, केरल, माहे, पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्र, सिक्किम, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कराईकल तथा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में कल तेज बारिश की संभावना है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashwani, the news read by V.C. Pramod. Prime Minister Narendra Modi held delegation-level talks with Italian Prime Minister Giorgia Meloni in Rome today, aiming to further strengthen India-Italy bilateral relations across key sectors. The meeting focused on boosting cooperation in trade, investment, technology, defence, clean energy and strategic partnerships. Both leaders also discussed regional and global developments of mutual interest. The talks reflected the growing strategic partnership between India and Italy, with an emphasis on expanding economic collaboration and people-to-people ties. Following the delegation-level talks, both leaders delivered a joint press statement. Prime Minister Modi announced that India and Italy have decided to upgrade their bilateral relationship to a special strategic partnership.
2: पिछले लगभग 3.5 वर्षों में मुझे कई बार प्राइम मिनिस्टर मेलोनी से मिलने का अवसर मिला है। यह भारत और इटली के बीच करीबी सहयोग और सामंजस्य को दर्शाता है। उनके नेतृत्व में हमारे संबंधों को नई गति, नई दिशा और नया आत्मविश्वास मिला है। मुझे खुशी है कि हम अपने संबंधों को अपग्रेड करते हुए स्पेशल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की घोषणा कर रहे हैं।
1: He said the India-Italy Joint Strategic Action Plan 2025-2029 provides a practical and futuristic framework for bilateral ties. Mr. Modi said both sides held extensive discussions on enhancing cooperation and are working on establishing an India-Italy Innovation Center. He said the India-Italy Defence Industrial Roadmap has paved the way for co-development and co-production of military hardware. The Prime Minister added that both countries will also work together in shipping, port modernization, logistics and the blue economy. Prime Minister Modi reached Italy on the fifth and final leg of his five-nation tour after concluding his visits to Norway, Sweden, the Netherlands and the UAE. Ties between India and Italy have expanded with unprecedented momentum in recent years and have now reached a decisive stage. In a joint article written by Prime Minister Modi and his Italian counterpart Meloni, the two leaders highlighted that relations between the two countries have evolved from a cordial friendship into a special strategic partnership, rooted in the values of freedom, democracy, and a shared vision for the future. President Draupadi Murmu today said that to achieve the goal of a Vikasit Bharat,

इस भजन में यह वर्णन है कि भगवान का नाम लिए बगैर हमारा जीवन अंत में व्यर्थ सिद्ध हो जाता है, और यही समझाने के लिए कुछ बड़े सुंदर उदाहरण दिए हैं जिससे ये बात स्पष्ट होती है, समझ में आती है।

इसी भजन के साथ आज का ये कार्यक्रम यहीं पर संपन्न होता है। आकाशवाणी का ये धर्मशाला केंद्र है FM बैंड 103.4 MHz पर। 5:30 हुए हैं और ये समय है युवाओं के पसंदीदा कार्यक्रम युवा मंच का।

युवा मंच सुनने वाले सभी श्रोताओं को मेरा यानी सीमा का नमस्कार, गुड इवनिंग। जानकारी और मस्ती भरे गीतों के इस कार्यक्रम में स्वागत हमारे सभी श्रोताओं का। श्रोताओं, बुधवार के इस कार्यक्रम में आज बात करेंगे स्पोर्ट्स बीट्स पर। जी हाँ, क्या कुछ चल रहा है इन दिनों खेल जगत की दुनिया में, कौन सी टीम है विनर की ट्रॉफी के सबसे नजदीक और कौन रह गया पीछे जीत की इस दौड़ में, जी हाँ जानेंगे सब। लेकिन पहले लेते हैं ये म्यूजिकल ब्रेक।

जी हाँ दोस्तों, सबसे पहले बात आईपीएल की, जो इन दिनों सबकी पहली पसंद बना हुआ है। आईपीएल 2026 में इस समय प्लेऑफ की रेस सबसे बड़ी चर्चा बनी हुई है। राजस्थान रॉयल्स, पंजाब किंग्स, चेन्नई सुपर किंग्स, दिल्ली कैपिटल्स और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच चौथे प्लेऑफ स्थान के लिए कड़ी टक्कर चल रही है। आईपीएल 2026 में युवा बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी ने शानदार प्रदर्शन करते हुए सीजन में 50 छक्के लगाने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी बनने का रिकॉर्ड बनाया। राजस्थान रॉयल्स ने लखनऊ सुपर जॉइंट्स के खिलाफ 221 रन का बड़ा लक्ष्य हासिल कर प्लेऑफ की उम्मीदें मजबूत की। तो ये तो थी कुछ, हम ये कह सकते हैं, खबरें, खेल जगत से जुड़ी हुई बातें और जानकारियां खेल से जुड़ी हुई। आगे भी हैं कार्यक्रम में, लेकिन पहले सुन लेते हैं ये गीत।

0: जाए निखार।
1: इफको नैनो उर्वरकों का कमाल, हर खेत किसान बने खुशहाल।
2: अब घर लाइए मारुति सुजुकी ऑल्टो K10, सिर्फ 1999 डाउन पेमेंट और 1999 रुपए EMI के साथ।
3: न्यू ऑल्टो K10 अब 6 एयरबैग स्टैंडर्ड के साथ, साथ ही ESP हिल होल्ड असिस्ट और रिवर्स पार्किंग सेंसर जैसी एडवांस सेफ्टी फीचर्स।
2: और अब पाइए स्पेशल ऑफर्स अप टू ₹72,100 के बेनिफिट्स, साथ ही 3 साल या 1,00,000 किलोमीटर की वारंटी।
3: ऑल्टो K10 विद बेस्ट इन क्लास माइलेज, बुक नाउ एट योर नियरेस्ट मारुति सुजुकी अरेना शोरूम।
2: Inspiration built into every arrival. This May, drive home your favorite Nexa car and unlock new possibilities.
3: Meet the Maruti Suzuki Grand Vitara, where strong hybrid technology meets premium comfort and safety. Now at an effective price starting from just ₹9.72 lakhs.
2: Yes, ₹9.72 lakhs. Offer valid till 31st May. Own this style icon at an EMI of just ₹8,999 per month.
3: Experience luxury with a panoramic sunroof, ventilated seats, 360-degree view camera, heads-up display, and 6 airbags as standard.
2: Hurry, limited stock available. Visit your nearest Nexa showroom. PNC apply.
4: Nexa.
3: Inspiration built into every arrival. This May, drive home your favorite Nexa car and unlock new possibilities.
2: Meet the Maruti Suzuki Fronx, the SUV that's big on style and smart on value. With its bold design and spacious comfort, it's built to impress every single day.
3: And now, it's yours at an effective price of just ₹6.70 lakh.
2: Yes, ₹6.70 lakh. Valid till 31st May. Don't miss out. Visit your nearest Nexa showroom and bring home your Fronx today.
3: Hurry, offers for a limited time only. TNC apply.
4: Nexa.
5: आप सुन रहे हैं कार्यक्रम युवा मंच आकाशवाणी धर्मशाला के संग, और आज के इस कार्यक्रम में बात हो रही है स्पोर्ट्स बीट्स की। तो अब बात कर लेते हैं फुटबॉल की। रोनाल्डो, जी हाँ, बहुत ही फेमस खिलाड़ी रोनाल्डो को 2026 फीफा वर्ल्ड कप के लिए पुर्तगाल की टीम में शामिल किया गया है। ये उनका आखिरी वर्ल्ड कप माना जा रहा है। बात करें भारतीय जूनियर महिला हैंडबॉल टीम की, तो विश्व चैंपियनशिप में भागीदारी पर अभी भी इनकी अनिश्चितता बनी हुई है। भारतीय पुरुष बैडमिंटन टीम ने थॉमस कप 2026 में शानदार प्रदर्शन करते हुए सेमीफाइनल तक का सफर तय किया है। और वेट लिफ्टिंग की बात करें तो भारत ने एशियन वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप 2026 में कुल 10 पदक जीतकर शानदार प्रदर्शन किया। बात करें शतरंज की, भारतीय ग्रैंड मास्टर आर प्रज्ञान नंदा ने सुपर बेट शतरंज क्लासिक रोमानिया 2026 में शानदार जीत दर्ज की।

0: आकाशवाणी धर्मशाला के विशेष कार्यक्रम आप और हम आपके विचारों, सुझावों और शिकायतों के लिए समर्पित है।
1: यदि आप आकाशवाणी धर्मशाला के कार्यक्रमों के संबंध में अपनी राय, सुझाव या शिकायत हमें भेजना चाहते हैं तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं या पत्र भी लिख सकते हैं।
0: ईमेल का पता है dharmshala@gmail.com। पत्र भेजने का पता है आकाशवाणी धर्मशाला, कार्यक्रम अनुभाग, धर्मशाला, हिमाचल प्रदेश।
1: आपके सुझाव हमारे लिए बहुमूल्य हैं और हमें अपने कार्यक्रमों को और भी बेहतर बनाने की प्रेरणा देते हैं।
0: तो देर किस बात की, अपने विचार हम तक अवश्य पहुंचाइए,
1: क्योंकि आप और हम में आपकी आवाज़, आपके विचार हैं सबसे महत्वपूर्ण।

तो आज के इस कार्यक्रम में बस इतना ही। बता दें, इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता हैं जितेंद्र पाल सिंह, और अब मुझे अनिसीमा को ये कार्यक्रम संपन्न करने की अनुमति दीजिए। टेक केयर, बाय बाय।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम युवा मंच। आकाशवाणी का ये धर्मशाला केंद्र है FM बैंड 103.4 MHz पर। शाम के 5:55 हुए हैं। अब प्रस्तुत है हमारे केंद्र से शेष प्रसारित व रिले होने वाले कार्यक्रमों की विस्तृत जानकारी, साथ ही कल प्रसारित होने वाले कुछ मुख्य कार्यक्रमों की जानकारी भी।

अब से थोड़ी ही देर बाद यानी शाम 6:06 पर सदाबहार संगीत प्रसारित किया जाएगा। 6:30 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम मौजां ग्राइंडियां। कार्यक्रम में आज जानकारी का विषय होगा पशुओं के लिए चारा प्रबंधन। शाम 7:10 पर सुनिएगा कार्यक्रम किसान वाणी। आज के इस कार्यक्रम में बातचीत होगी फसल विविधीकरण और मृदा परीक्षण की। रात्रि 8:00 समय है विविध संगीत के कार्यक्रम सबरस का। 8:30 पर देशगान सुनवाया जाएगा। रात्रि 9:15 पर कार्यक्रम एक ही कलाकार पेश किया जाएगा। आज के इस कार्यक्रम में आप सुनेंगे गीतकार वायु श्रीवास्तव के लिखे कुछ गीत। रात्रि 9:30 पर चर्चा का विषय कार्यक्रम आकाशवाणी दिल्ली से रिले किया जाएगा। रात्रि 10:00 उपशास्त्रीय संगीत आप सुनेंगे। रात्रि 10:30 पर चित्रपट संगीत कार्यक्रम प्रसारित किया जाएगा। आकाशवाणी शिमला से शाम 6:00 7:45 पर प्रादेशिक समाचार रिले किए जाएंगे। शाम 7:05 पर अंग्रेजी समाचार आकाशवाणी दिल्ली से ही रिले किए जाएंगे। 8:45 पर समाचार संध्या और 9:00 News@9। रात्रि 11:00 हिंदी में समाचार और 11:05 पर अंग्रेजी में समाचार आकाशवाणी दिल्ली से ही रिले किए जाएंगे। अब प्रस्तुत है हमारे केंद्र से कल प्रसारित होने वाले कुछ मुख्य कार्यक्रमों की जानकारी। सुबह कल 7:10 पर कार्यक्रम सुप्रभात में सांस्कृतिक विविधता संवाद और विकास के लिए विश्व दिवस पर जानकारी दी जाएगी। पर्यावरण में गुंजन पक्षी और रमणीक स्थल किलाड़ के बारे में जानकारी दी जाएगी। महिलाओं के कार्यक्रम घर परिवार में विषय रहेगा स्मार्टफोन का इस्तेमाल करें सोच समझ कर, और खानपान में नींबू के अचार को बनाने की विधि साझा की जाएगी। तो ये तो थी विस्तृत जानकारी हमारे केंद्र से आज शाम प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की। FM बैंड 103.4 MHz पर यह आकाशवाणी का धर्मशाला केंद्र है। शाम के 5:58 हुए हैं। थोड़ी ही देर में आकाशवाणी शिमला से प्रादेशिक समाचार रिले किए जाएंगे।

0: नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप प्रभा शर्मा से प्रादेशिक समाचार सुनिए। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय द्वारा जारी परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स रिपोर्ट में विद्यार्थियों को गुणात्मक शिक्षा प्रदान करने में हिमाचल को देश भर में छठा स्थान प्राप्त होने पर प्रसन्नता व्यक्त की है। इस रिपोर्ट के अनुसार हिमाचल प्रदेश 7 अंकों की छलांग लगाकर 13वें से 6ठे स्थान पर पहुंच गया है, जबकि राज्यों की श्रेणी में हिमाचल 3रे नंबर पर है। मुख्यमंत्री ने इस उपलब्धि के लिए शिक्षा विभाग के सभी अध्यापकों, अधिकारियों और कर्मचारियों के अलावा विद्यार्थियों को बधाई दी है। उन्होंने कहा कि वर्तमान राज्य सरकार ने गुणात्मक शिक्षा के क्षेत्र में अनेक सुधारात्मक कदम उठाए हैं और सभी स्कूलों में पहली कक्षा से अंग्रेजी माध्यम शुरू कर दिया गया है। सुखविंदर सिंह सुक्खू ने बताया कि सरकार द्वारा अध्यापकों को एक्सपोजर विजिट के लिए विदेश भेजा जा रहा है और उत्कृष्ट विद्यार्थियों को भी विदेश भ्रमण करवाया जा रहा है। हिमाचल प्रदेश में जनगणना 2027 का पहला चरण 16 जून से शुरू हो रहा है, जो 15 जुलाई तक चलेगा। जनगणना के सफल कार्यान्वयन को लेकर आज जनगणना कार्य निदेशालय शिमला में एक बैठक हुई, जिसमें आकाशवाणी, दूरदर्शन, सीबीसी और पत्र सूचना ब्यूरो के अधिकारियों ने भाग लिया। इस दौरान जनगणना को लेकर लोगों को जागरूक करने के लिए रणनीति बनाई गई। जनगणना कार्य निदेशालय के निदेशक दीप शिखा शर्मा ने बताया कि जनगणना 2027 में पहली बार परिवार को स्वगणना का विकल्प भी उपलब्ध होगा और लोग पहली से 15 जून तक ऑनलाइन माध्यम से वेब पोर्टल पर अपनी जानकारी दर्ज कर सकेंगे। उन्होंने प्रदेश के सभी नागरिकों से जनगणना में सहयोग की अपील की है।
1: हिमाचल प्रदेश में जो जनगणना 2027 उसका प्रथम चरण जो कि मकानों की गणना एवं मकान सूचीकरण है, वह 16 जून से 15 जुलाई के भीतर कंडक्ट हो रहा है और इस बार हमारा जो सेंसस है वो डिजिटल माध्यम से किया जा रहा है। इसके लिए जनगणना में स्वगणना का जो प्रावधान है उसे भी रखा गया है। जो हमारे हिमाचल प्रदेश के नागरिक हैं वो स्वगणना पोर्टल पर जाकर अपनी जानकारी 1 जून से 15 जून के भीतर उसको दर्ज कर सकते हैं। प्लीज आप स्वगणना पोर्टल पर जाकर अपनी जानकारी दर्ज करें। जनगणना की जानकारी जो है वो कॉन्फिडेंशियल है। यदि कोई स्वगणना के विकल्प को भी नहीं चुनता है तो भी जो हमारा प्रगणक है वो हर जगह जाएगा, हर कोने में जाएगा, प्रदेश के हर एक घर को जो है वो कवर किया जाएगा।
0: प्रदेश में 26, 28 और 30 मई को होने वाले पंचायती राज संस्थाओं के चुनावों को लेकर निर्वाचन आयोग द्वारा तैयारियां की जा रही हैं। राज्य में 131 पंचायतें निर्विरोध चुनी गई हैं, जिनमें से सबसे अधिक 42 पंचायतें शिमला जिले की हैं। प्रदेश भर में 176 पंचायत प्रधानों का चुनाव निर्विरोध हुआ है और इनमें से सबसे अधिक 51 पंचायत प्रधान शिमला जिले के हैं। चुनाव से जुड़े अधिकारियों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है। चुनाव आयोग के निर्देशों के मुताबिक इस बार बैलेट बॉक्स पर लगे QR कोड को स्कैन करने के बाद ही पोलिंग पार्टियां अपने अपने गंतव्य स्थानों के लिए रवाना की जाएंगी। नाहन में भी आज मतदान अधिकारियों को दूसरे चरण का प्रशिक्षण दिया गया। खंड विकास अधिकारी अंजलि गर्ग ने बताया कि 23 मई को तीसरे चरण का प्रशिक्षण कार्यक्रम होगा।
2: हमारे जैसे कि पंचायती राज चुनाव है 26, 28 और 30 को 3 फेजेस में, उसके लिए हमारी पूरी तैयारियां चल रही हैं नाहन ब्लॉक में। और अभी हमारी जो ट्रेनिंग्स है वो प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स की और पोलिंग ऑफिसर्स की चल रही है। हमें जो स्टेट इलेक्शन कमीशन से गाइडलाइंस आई हैं, तो बैलेट बॉक्सेस पे QR कोड है जो कि प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स स्कैन करेंगे और फिर उनको जो मूवमेंट जो है ट्रैक होगी। तो उसकी स्पेशल ट्रेनिंग के लिए आज हमने केवल प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स को बुलाया है और हमारी अगली ट्रेनिंग, थर्ड ट्रेनिंग रहेगी 23 तारीख को, और 24 को हम सारी पोलिंग पार्टीज और प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स को रवाना कर देंगे।
0: शिमला के ऐतिहासिक रिज मैदान पर आज से 2 दिवसीय शिक्षा व करियर मार्गदर्शन मेला शुरू हुआ। शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने इसका शुभारंभ किया। इस दौरान विद्यार्थियों व अभिभावकों को उच्च शिक्षा, करियर विकल्पों और विभिन्न व्यावसायिक कोर्स के बारे में जानकारी दी जा रही है। रोहित ठाकुर ने कहा कि इस तरह के एजुकेशन एक्सपो बच्चों के लिए मददगार साबित होते हैं और उन्हें बेहतर करियर चुनने का मार्गदर्शन मिलता है। इस मौके पर शिक्षा मंत्री ने हाल ही में घोषित हुए 10वीं व जमा 2 कक्षा के परिणामों में 85% या इससे अधिक अंक प्राप्त करने वाले लगभग 150 विद्यार्थियों को सम्मानित किया। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज बेंगलुरु में आध्यात्मिक गुरु व आर्ट ऑफ लिविंग संस्था के संस्थापक श्री श्री रविशंकर से भेंट की। उन्होंने आश्रम में कार्यरत हिमाचल के लोगों से भेंट की और गौ सेवा भी की। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने श्री श्री रविशंकर को प्राकृतिक खेती व बेसहारा गौवंश के संरक्षण के लिए हिमाचल सरकार द्वारा उठाए जा रहे कदमों की जानकारी दी। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं शाम 7:45 पर। नमस्कार।
3: FM बैंड 103.4 MHz पर ये आकाशवाणी का धर्मशाला केंद्र है। शाम के 6:05 हो चुके हैं। आइए सुनते हैं सदाबहार संगीत।

किशोर कुमार का गाया ये गीत अभी आपने सुना। लीजिए अब सुनिए राम तेरी गंगा मैली फिल्म से ये गीत, जिसे गाया है लता मंगेशकर और साथियों ने। रविंद्र जैन का संगीत निर्देशन है और बोल हैं हसरत जयपुरी के।

0: लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के संगीत निर्देशन में सौदागर फिल्म का गीत अभी आपने सुना, लता मंगेशकर और सुरेश वाडेकर के युगल स्वरों में, और शब्द रचना थी इस गीत की आनंद बख्शी द्वारा।
1: Inspiration built into every arrival. This May, drive home your favorite Nexa car and unlock new possibilities.
2: Meet the Maruti Suzuki Fronx, the SUV that's big on style and smart on value, with its bold design and spacious comfort. It's built to impress every single day.
1: And now, it's yours at an effective price of just Rs. 6.70 lakh.
2: Yes, Rs. 6.70 lakh. Valid till 31st May. Don't miss out. Visit your nearest Nexa showroom and bring home your Fronx today.
1: Hurry, offers for a limited time only. TNC apply.
3: Nexa.
2: Inspiration built into every arrival. This May, drive home your favorite Nexa car and unlock new possibilities.
1: Meet the Maruti Suzuki Grand Vitara, where strong hybrid technology meets premium comfort and safety. Now at an effective price starting from just Rs. 9.72 lakhs.
2: Yes, Rs. 9.72 lakhs. Offer valid till 31st May. Own this style icon at an EMI of just Rs. 899 per month.
1: Experience luxury with a panoramic sunroof, ventilated seats, 360-degree view camera, heads-up display and 6 airbags as standard.
2: Hurry, limited stock available. Visit your nearest Nexa showroom. PNC apply.
3: Nexa.
4: डीजल क्यों चूज कर रहे हैं जब स्मार्टर ऑप्शन है यही। इंट्रोड्यूसिंग नई मारुति सुजुकी अरीना की विक्टोरियस SCNG सेगमेंट फर्स्ट अंडर बॉडी CNG टैंक के साथ 27.02 किलोमीटर पर किलोग्राम तक का माइलेज, मतलब ज्यादा सेविंग्स कम खर्चा। और अब विक्टोरियस खरीदने पर बाइक एक्सचेंज बोनस अप टू 50,000, तो देर किस बात की। आज ही अपने नियरेस्ट मारुति सुजुकी अरीना डीलरशिप विजिट कीजिए। मारुति सुजुकी SCNG, स्मार्टर फ्यूल स्मार्टर यू। टीएनसी अप्लाई। मई धमाका आ गया है, आप घर लाए बोल्ड और स्टाइलिश मारुति सुजुकी ब्रेजा। इफेक्टिव प्राइस सिर्फ 7.66 लाख से शुरू। पावरफुल परफॉर्मेंस, प्रीमियम फीचर्स और ट्रस्टेड सेफ्टी, सब कुछ स्टाइलिश मारुति सुजुकी ब्रेजा में। साथ ही पाइए टोटल बेनिफिट्स अप टू 60,000।
5: तो इंतजार कैसा, दिस में ड्राइव होम हैप्पीनेस। आज ही विजिट करें अपने नियरेस्ट मारुति सुजुकी एरिना शोरूम। TNC अप्लाई।
2: Inspiration built into every arrival. This May, drive home your favorite Nexa car and unlock new possibilities.
1: Meet the Maruti Suzuki Grand Vitara, where strong hybrid technology meets premium comfort and safety. Now at an effective price starting from just Rs. 9.72 lakhs.
2: Yes, Rs. 9.72 lakhs. Offer valid till 31st May. Own this style icon at an EMI of just Rs. 899 per month.
1: Experience luxury with a panoramic sunroof, ventilated seats, 360-degree view camera, heads-up display and 6 airbags as standard.
2: Hurry, limited stock available. Visit your nearest Nexa showroom. PNC apply.
3: Nexa.
0: सदाबहार संगीत आप सुन रहे हैं आकाशवाणी धर्मशाला के साथ, और ये रही कार्यक्रम की अंतिम पेशकश। फिल्म है यादों की बारात, आशा भोंसले और मोहम्मद रफ़ी ने इस गीत को गाया है, धुन बनाई है RD वर्मन ने और बोल हैं मजरूह सुल्तानपुरी के।

इसी गीत के साथ सदाबहार संगीत का ये कार्यक्रम यहीं पर संपन्न होता है। आकाशवाणी का ये धर्मशाला केंद्र है FM बैंड 103.4 MHz पर। शाम के 6:30 होने को है। आइए सुनते हैं कार्यक्रम मौजां ग्राएं दियां।

0: कार्यक्रम मौजां ग्राईं दियां सुनने वाले सारे ही श्रोतियां दा अहां अपने इस टियाले पर स्वागत करदे न। कने अज मैं तुहां दा लोका पाऊ, कने मिंजो कने न गुलाबो जी। गुलाबो जी आइया आइया
1: जी। बिल्कुल लोका पाऊ, देखा मैं आई रही टियाले पर, कने देखा छतरुए बंद करने लगी, यही कहे जी देखा बाहर धुप बड़ी भारी थी, कने देखा लोका पाऊ हांजो गर्मियां दा खास ध्यान रखना है, ताकि हांजो जड़ी गर्मी जड़ी है सैत दे कारण जड़े से कोई नुकसान ना हो सके, है ना।
0: ए ता तुहां ठीक गलाया, टियालियो पुछदे पुछदे ता मिंजो भी जड़ा से पसीने चुड़ी हुई है, जिखा अजकल अंबर दिया ना सूरज दिया ता प्या साड़े पहाड़ा च भी लगा दा बई लू लगा दी है ना।
1: बिल्कुल बिल्कुल ता, दे ते दे गर्मी पहले नहीं दिखी है ना।
0: हाँ ठीक गल गलाई तुहां, कने अगर हां अपने ग्राएं दी गल बात करिए, एक ता गर्मी है जड़ा सा तू दित्या है ना
1: जी,
0: अंबर जड़ा सा अजकल जालू बरखा चाहिदी होंदी तालू आउंदी नहीं पिछे दे जालू हां कणक गाणी है ता रोज जड़ा सा आई आदा हां अंबर है ना।
1: बिल्कुल खरी ठीक गल बोला है तुहां, जालू कणक दा खलार पिया ता दिखाई नहीं पिया अपना खलार पाया है ना, कने हुण जालू आहा जियां तियां बोलदे ना कि कम समेटी लिया है, ता हुण जड़ा सा इतनी धुप एकदम इतनी तेज धुप हो दी कि भई 9 बजे ते बाद तक घरे ते निकलना ही मुश्किल हो याद है ना। तहाड़ी यही टियाले ते सलाह रहनी कि भई अहां कोई भी कम करना, बाहरे दा कम करना, खेती बाड़ी दा कम करना है, ता तुसां भ्यागा भ्यागा जड़ा सा अपने कम्मे कर लैन, कने कम जड़ा रही आंदा तिस जो तुहां संझा दे वेले कर लैन, ताकि गर्मी दे कारण तुहां जो कोई नुकसान ना होए, कने इस दे सोगी ही अपने पशु धन दा भी इयां ही ध्यान रखना, जियां कि तुहां अपने अपना ध्यान रखदे ना, पशु धन भी हाड़ा एक ऐसा जियां बोलदे ना नजीबा माल है, अगलाई नहीं सकदा है ना
0: जी, जी।
1: इन्हां जो भी यहां प्यागा प्यागा बाहर बनी दिए प्यागा 5 बजे तक खरा रहा है, कने 9 बजे ते बाद फिर यहां इन्हां जो अंदर बनी देन, कने पानी दा जड़ा सा खास ध्यान रखना कि पानी टाइमे टाइमे दा पशु धन जो मिलना चाहिए अज दे दिन च जी।
0: बिल्कुल ठीक गलाया तुहां, देखा पशुआं दे बारे च भी जड़ा सा अहां तुहां सोचना पौना, उइयां तां किसान अहां दा सोचदा ही है ना, क्योंकि अजकल जड़ा सा पट्टियां हां दियां खाली हुई हैं, ता जड़ा सा पशु धन छड़ी भी देंदे, कने प्यागा ही छड़ी देते, कने फिर 9-10 बजे बन्नी भी पांदे है ना, कने फिर दुए टाइम संझा दिए बेला थोड़ा दे अचार ही लौंदे, कने इहदी कने इह भी होंदा कि अहां दा पशु धन जड़ा सा हरा चारा खाने ने जड़ा सा दुध भी खरा दिंदा है ना।
1: बिल्कुल
0: ता कने इह भी गल सुनी मैं गुलाबो जी की रोला पिया हा ग्राएं च, बोलिया गुलाबो होरां भी खड़ुते प्रधान नहीं हो क्या गल, ए पक्की है मैले टियाले पर जांगा तां ही पुछगा गुलाबो होरां की खड़ुते हो कि नहीं खड़ुते हो।
1: ना कुछ लोका बाऊ भई मैं खड़ुती ही ना, पर भई हुण मैं दिखा हिसाब किताब भई हरे ग्राएं च ना 5-6 जड़ियां जनानियां से खड़ोईयां।
0: अच्छा अच्छा
1: लक्ष्मीत ता मैं बोले जे मैं ता भई आंदी मैं दिखा हिसाब किताब दिखा मैले ना कहे जे दिखा 21 ग्राएं च दिखा जालू हां इतने माणू जालू खड़े हो जाते, तिना वोटा पाने वाले भी क्या करना, सभी परेशान हो जाते है ना।
0: हाँ
1: जो अपने गांव का विकास करना है ता ये सोची करी करना चाहिए कि एक हाँ जो ऐसा जड़ा माणू सह चयनित करना है जड़ा कि हाड़े ग्रां का विकास करी सके है ना।
0: हाँ जी।
1: ता ऐसा करके हाँ जो जड़ा सह काम कार करने कने अपना वोट जालू भी देना ता वोट देना जरूरी है, सत कम छड़ी के बोल देना सारे कम छड़ी करी अहां वोट देना जाना जड़ा सह जरूरी है।
0: पक्की गल गुलाबो जी तुहां गलाई अहां ता टियाले ते यही गलाना हा कि कई बार क्या लोग अहां दे करदे कि तिस दिन छुट्टी मनाई के घर भी जांदे कने बोल दे रहा अहां नहीं जांगे वोट पाना, तो 21 वोटे ने क्या हो जाना है ना।
1: बिल्कुल
0: ता लोकतंत्र दे इस पर जड़ा तुहां जड़ा सा साड़ी ताकत ही होंदा साड़ा वोट है ना।
1: बिल्कुल, बिल्कुल।
0: फिर बाद च नहीं कोसना होंदा कि यार ये प्रधान बनी है कने फलाना बनी है कने अहां तक ये ही नहीं है ना, कने मतलब ऐसा माणू चुनी के आई है कने जिसी तुहां पसंद नहीं करते है ना, तुहां जड़ा अधिकार मिले मतदान करने दा ते दा प्रयोग तुहां जड़ा सा जरूर करना है ना।
1: बिल्कुल ता ही अपना सहयोग अपना योगदान अहां देंगे ता ही अहां अगे अपने तिना जो पकड़ी सकदे ने कि भई अहां तुहां जो वोट दित्ते है ना।
0: जी जी जी ता पंचायती चुनाव दा रोला ग्राएं पिया कने अहां ता लोकां ने यही संदेश कने आग्रह करना है कि तुहां जड़ा ऐसा अजकल सारे ही लोग स्याणे ने है ना, कुसी को गलाने की जरूरत नहीं है, पढ़े लिखे नौजवान जड़ा ग्राएं दा विकास करे अच्छे ढंगे ने योजनाएं लियो है ना, ग्राएं दे बारे च सोचे तिसी यो चुनी के तुहां लियोना है ना
1: जी। बिल्कुल
0: ता उन टियाले पर शामिल करदे ने इक प्यारा दे लोक गीत कने बाकी गल्लां बातां उस ते बाद
1: जी।

0: inspiration built into every arrival. This May, drive home your favorite Nexa car and unlock new possibilities.
1: Meet the Maruti Suzuki Grand Vitara, where strong hybrid technology meets premium comfort and safety. Now at an effective price starting from just Rs. 9.72 lakhs.
0: Yes, Rs. 9.72 lakhs. Offer valid till 31st May. Own this style icon at an EMI of just Rs. 899 per month.
1: Experience luxury with a panoramic sunroof, ventilated seats, 360-degree view camera, heads-up display and 6 airbags as standard.
0: Hurry, limited stock available. Visit your nearest Nexa showroom. PNC apply.
2: Nexa.
3: डीजल क्यों चूज कर रहे हैं जब स्मार्टर ऑप्शन है यही। इंट्रोड्यूसिंग नई मारुति सुजुकी अरीना की विक्टोरियस एससीएनजी सेगमेंट फर्स्ट अंडर बॉडी सीएनजी टैंक के साथ 27.02 किलोमीटर पर किलोग्राम तक का माइलेज, मतलब ज्यादा सेविंग्स कम खर्चा। और अब विक्टोरियस खरीदने पर बाइक एक्सचेंज बोनस अप टू 50,000, तो देर किस बात की। आज ही अपने नियरेस्ट मारुति सुजुकी अरीना डीलरशिप विजिट कीजिए। मारुति सुजुकी एससीएनजी, स्मार्टर फ्यूल, स्मार्टर यू। पीएनसी अप्लाई।
4: जी श्रोताओं, तुहां तक ये कुछ एक स्नेह कने एक प्यारा दिया मिठा दिया लोक गीत पुजाया। आशा कर दें तुहें पसंद भी आया होना है ना। ता गुलाबो जी, दिखा मेरी जड़ी गा है ना, सह दूध नहीं दिया दी, समझ नहीं आता भी क्या करिए।
5: अच्छा लोका बाऊ, सिर्फ दाना खिलाने ते ही कम नहीं चलना है। दिखा हाँ जो पशुआ जो संतुलित कने हरा चारा, संतुलित आहार कने हरा चारा देना बड़ा जरूरी है।
4: संतुलित चारा है क्या, मैं तो पहली बारी सुनया तुहां ते।
5: अच्छा देख लो कबाऊआ, पशुआ जो सुखा चारा, हरा चारा कने दाना, तीनों जड़ा से सही मात्रा च देना जड़ा से जरूरी है। इस जो यहाँ बोल दे संतुलित चारा।
4: अच्छा
5: हाँ, कने जी यहाँ बरसीम हुई, जई हुई, हाथी गा हुई, मक्के दा हरा चारा हुई, ये हाड़े पशुओं ताई बड़ा ही फायदेमंद है।
4: मेरे पड़ोसी जड़ा दीदी, मैं खरा दूध दिंदी कने मेरी गा नहीं दिंदी, सह संतुलित चारा खिलांदा होना चाहे।
5: हाँ जो पता नहीं था तैं कुछ दिखवाना फिर है ना, देखना लोके बाबूआ।
4: हाँ जी
5: हाँ, जो हरे चारे जो बर्बाद भी नहीं होना देना चाहिए कोई भी। हाँ जो हल चारा है जी, तो जल भू है तो इस थोड़ा दिया गुड़ कने नमक मिलाए करी पशुआ जो खिलाए देन, तो है ना पशु भी मजे ने खा लेंदे कने हरा जो चारा से बर्बाद भी नहीं होंदा।
4: ये तो बड़ी वधिया कने बाकी गल तुहां दसी गुलाबो जी, तो मैं भी हुण इयां ही करना अपनी गाईओ ना, जड़ा तुहां दस्या गुड़ कने ये नमक कने दा मिश्रण जड़ा सै बनाई के देना है, तां जो सै जड़ा सै दूध खरा देंगी है ना।
5: हां कने सोगी हरा चारा भी है ना।
4: हां जी
5: हां, कने गर्मियां च पशुआं दा खास करी ध्यान रखना है कि साफ सुथरा पानी जड़ा सै पशुआं जो टाइम टाइम पर पिलाना जड़ा सै बड़ा जरूरी है, खास करी जड़ा हाड़ा दुधारू पशु होंदा है।
4: जी सै तो तुहां ठीक गल है ना। तो देखा गर्मी जिस हिसाब दी पोह दियाँ हाँ, तो अपने पशुओं जड़ा सै समय समय पर जड़ा सै पानी भी पियांदे कने अंदर बार भी तेने बनना जड़ा सै धुप्पा चीने रहना देना चाहिए ना, अंदर बार भी समय पर ही बनना चाहिए, कन्ने कन्ने आहां दी घराड़ां दी साफ सफाई भी जड़ा सै बड़ी ज्यादा जरूरी होंदी है ना, कि मक्खी मच्छर जड़ा सै बड़ा भारी परेशान करदा। हां माणुए नी डंगरिया भी जड़ा सै बड़ा परेशान करदा है ना।
5: जी बिल्कुल लोके बाऊ जी, हाड़े किसान भी समझदार हैं, तिन्हां जो भी पता है कि पशुआ जो स्वस्थ रखने ताई खास करी जड़े हाड़े दूध दुधारू जड़े पशु न तेने जो खास ध्यान रखने की जरूरत होती है। इस ताई हाँ जो दुध उत्पादन बढ़ाने ताई सही चारा प्रबंधन बड़ा जरूरी होता है। संतुलित कने पौष्टिक चारा देने ते पशु जड़ा से मजबूत रहते हैं, कने उन्हें जो बीमारियां भी कट लगदी हैं ना।
4: जी पक्की गल गुलाबो जी, तुहां गलाई कने अहां दा ट्याले ते ही गलांदे कि तुहां अपने पशुओं जड़ा से संतुलित चारा हरा चारा जड़ा से जरूर जड़ा से तिने देया है ना।
5: बिल्कुल जी हाँ, भू देना है तो भूए च तुहां बरसीम कुतरी करी मलाई करी तिना जो देंगे ता ऐसे एक संतुलित आहार बनी आंदा, सुखा गाव नहीं रहंदा कने बिल्कुल सैला भी नहीं रहंदा ना। ता इया इया करी करी आंजो अपने पशुओं जो जे तो हां सुखा गा पाना ता तिस च तो हां जड़ी सैला गा होंदा ना, सै मिलाई करी पशुओं जो पांगे ता तमी सै संतुलित आहार बनी आंदा है। इस दे सोगी ही तो जो अल पराली है ता सुखी पराली, खाली पराली नहीं तो हां पानी कने इस सोगी सैला गा जड़ा सैला बरसीम होई है या फिर हाथी गा हुई है या फिर और
4: चरी लगानी है, मक्की दा भी यहाँ हरे चारे च यूज कर सकते हैं ना।
5: जी बिल्कुल, ता सुखा कने जड़ा है सैला गाय मिलाई कर यहाँ खुआंगे ता एक संतुलित आहार बनता है, कने दाने दा भी हंजो जड़ा ध्यान देना चाहिए दा जड़ा की चारा दाना है। इस दी गल करिए ता चोकर खली कने मक्का दाना कने मिनरल मिक्सर जड़ा सै टाइमे टाइमे पर पशुओं जो देना जरूरी है ना। कने चारा प्रबंधन के तहत सांजो ये भी ध्यान रखना है कि पशुओं जो टाइमे टाइमे पर चारा कने साफ साफ पानी जड़ा से हरे कने सुखे चारे जड़ा सा संतुलित चारे जो सुखी कने साफ जगह जड़ा से रखना भी जरूरी है। जी तो हाँ चारा इकट्ठा करके रख दे ता से जगह जड़ी से सुखी होनी चाहिए, साफ सुथरी होनी चाहिए है ना।
4: जी जी
5: इन गल्ला दा हाँ जो ध्यान रखना है करे ताई हाँ जो कोई भी काम होंदा है कोई भी काम कर दे ना हाँ ते दे विच हाँ जो जड़ा से मुनाफा मिलता है ना।
4: जी ताई मैं देखा रौनकी जड़ा हसा तिनी फीडे दी बोरी ले आंदी ना।
5: अच्छा।
4: गुलाबो जी कने तिनी सह खोली कने ते दे बाद तिनी पता नहीं दर्ड मिलाया ते च फिर ते दे बाद नमक आईयां थैलियां पाईयां बड़ूए दी कने सरुआं दी खड़े मलाई रलाई मलाई कि तिनी सह तैयार कीता
5: कने सही मिनरल मिक्सर है ना।
4: हां फिर ही सह चुटका दे बुए च रलाई कि तिनी अपनी गाय दित्ता कने गा बड़े चाव कने सह खाए मैले ता ही होयरा है ना। मेहनत जड़ी है सह रंग ले उंदी है ना, चाहे तुहां दूध उत्पादन दी गल करा देन कई किसा करदा दूधे दा काम है ना।
5: अच्छा जी
4: ता तिन्नी रखियां दो तिन गाय कने बढ़िया काम कार चलिया तिदा है ना।
5: बिल्कुल हाँ, थोड़ियां थोड़ियां गल्लां होंदियां दिखा कृषि ने जुड़ियां गल्लां होंदियां दाना भी हंजवाल होंदा कने सौगी दियां दाली होईयां काले चने होई
4: काले चने होई
5: ए चीजां हां इस च पांदे न मिनरल मिक्सचर च कने ए हंजो सलाह लई करी ही देना चाहिए कि कोई दुधारू पशु है तिन्हां जो देना है या फिर तुसां कितनी मात्रा च देना है ता ए सारा हंजो पता होना चाहिए है ना। ता ए सारियां गल्लां हां ध्यान दे विच रखणियां ने कने अपने काम जो अगे बढ़ाना है ना कने जागरूक होना है कने कोई कम करना है तो जागरूक होई के करना है। तो इन्हों गलबात सोगी अहाँ गलबात अगे होर जड़ी से जारी रखनी है लेकिन पहले सुनने ने कुछ एक स्नेह कने फ्री लोकगीत।
4: जी
2: Inspiration built into every arrival. This May, drive home your favorite Nexa car and unlock new possibilities.
1: Meet the Maruti Suzuki Grand Vitara, where strong hybrid technology meets premium comfort and safety. Now at an effective price starting from just Rs. 9.72 lakhs.
2: Yes, Rs. 9.72 lakhs. Offer valid till 31st May. Own this style icon at an EMI of just Rs. 8999 per month.
1: Experience luxury with a panoramic sunroof, ventilated seats, 360-degree view camera, heads-up display and 6 airbags as standard.
2: Hurry, limited stock available. Visit your nearest Nexa showroom. PNC apply.
5: Nexa.

0: inspiration built into every arrival. This May, drive home your favorite Nexa car and unlock new possibilities.
1: Meet the Maruti Suzuki Grand Vitara, where strong hybrid technology meets premium comfort and safety. Now at an effective price starting from just Rs. 9.72 lakhs.
0: Yes, Rs. 9.72 lakhs. Offer valid till 31st May. Own this style icon at an EMI of just Rs. 899 per month.
1: Experience luxury with a panoramic sunroof, ventilated seats, 360-degree view camera, heads-up display and 6 airbags as standard.
0: Hurry, limited stock available. Visit your nearest Nexa showroom. PNC apply.
2: Nexa.
3: जी गुलाबो जी तो यह वर्षा कटोच का गाया एक लोक गीत हाँ अपने श्रोतें सुनाया कने एक संदेश भी जड़ा है तिना तक पहुँचाया है ना
2: जी बिल्कुल
3: कने हूँ जो गल करिए अहाँ तो देखा हूँ गर्मी आई है कने इन दिन च भी अहाँ के बणा च अग भी लगी लगने की जी घटना जी इतने आदि है ना
2: जी बिल्कुल
3: तो देखा ये अहाँ तो हाँ लोग ही जेडे सह अग लगाते हैं बणा च है ना
2: जी
3: तो यह जरा सह काम नहीं करना चाहिए क्योंकि ये बड़ा जरा सह पाप का काम है क्योंकि देखा अहाँ के बड़े सारे बन्ने प्राणी आई जीव जंतु आई है ना सह बणा च ही रेंदे है ना
2: बिल्कुल
3: तो चालू अग लग जाती है तो तिना का घर कोई बच्चे अंडे दिते हो बेचारे है ना तो असें सारिया चीजा सोचना चाहिए एक छोटे दे लालच कने या फिर कई बोलते कि घा खरा होंदा तां लगांदे है ना तो ऐसा कुछ भी नहीं है कने दूई गल यह है कि कुछ एक शरारती तत्व भी होंगे सह मजाके मजाके च ही मतलब तिना की गल परवाह नहीं मारते कने लगाते पर तिना सोचना चाहिए कि तिना की एक छोटी दी लापरवाही जी इस कितने जीव जंतुआं दे घरां जो जड़ा सा उजाड़ा करते है ना ता ए पाप तुहां नहीं कमाना है ना क्योंकि देखा बन अहां प्रकृति ने जितना तालमेल बनाई के रख के ता प्रकृति भी साड़ा उतना ही साथ दिंदी हुण बोला देखे जी पृथ्वी बड़ी बड़ी मगा दी है ना ता कयो मगा दी इहदे पिछे नहीं जा दे मतलब ये उपर नहीं सोचा दे कि कई मगा दी है कई कि अहां तुहां लोकां जड़ा सा बन उजाड़ी ते अपने है ना
2: बिल्कुल देखा कुतु कुतु ता सड़का गड़िया पुजाईया है ना चलो जितना कटूना उतना ता कटुआ पर उतने हां जो लाना भी चाहिए दे
3: लाना भी चाहिए हां जी हां जी पक्की गल है
2: कने देखा जो जड़े खास करी कई बारी होंदा है कि बन गया हाड़े घरे सोगी लगदे न ते ना जो खास ध्यान रखना है कि जी चिल्ला दे पेड़ होंदे ते दे पत्ते जालू गिरदे ता हां जो चिलापुआ जो टाई देना चाहिए अपने घरे ते दूर टाई देना चाहिए हाथे ने कर दिया तो हाँ या फिर कुछ ऐसे औजार बने होंगे ताएं दिन तो हाँ चिलापुआ जो इकट्ठा करी करी तो हाँ आपू ही की जगह इकट्ठा करके जो या फिर खड्डा करके दफनाई दे या फिर तो हाँ तीस जो इस्तेमाल भी कर सकते ना हाँ चिलापुआ जो इकट्ठा करके अहाँ बोरुआ जो भरी कर रख के ता तीस जो अहाँ आने वाले बरसाती दे टाइम में अहाँ बिछौना भी बनाई सकते अपने पशुआं ता है ना
3: जी
2: एक अच्छी खाद दे रूप ने भी बिछौना भी बनी आंदा कने एक खाद भी बनी आंदी है ना
3: जी
2: इस वक्त हाँ जो जरूरत है अपनी खास ध्यान रखने का जी हाँ कई बार नुकसान भी हो जाता घर जो अग चली आती तो जिन्हें घर वक्खे बनन तिना जो छेक देना जिसी गलांदे सह देना कने चिलापुआ जो इकट्ठा करके तो हाँ एक ही जगह रख दिया चाहे इस्तेमाल भी कर सकते ना है ना
3: जी जी जी तो हूँ फिर ते अपनी गल्ला बातें गुलाबो जी इत्थे विराम देना है कन सुनांदे एक प्यारा दे और लोक गीत
2: जी

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम मौजांग राइंदियां। आकाशवाणी का ये धर्मशाला केंद्र है FM बैंड 103.4 MHz पर। शाम के 7 बजने को है अब आकाशवाणी दिल्ली से पहले हिंदी में समाचार और 7:05 पर अंग्रेजी में समाचार रिले किए जाएंगे।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रोम में आज इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी के साथ शिष्टमंडल स्तर की वार्ता की। बैठक में व्यापार, निवेश, प्रौद्योगिकी, रक्षा, स्वच्छ ऊर्जा और रणनीतिक साझेदारियों में सहयोग बढ़ाने पर विशेष बल दिया गया। वार्ता के बाद संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में श्री मोदी ने घोषणा की कि भारत और इटली ने अपने द्विपक्षीय संबंधों को विशेष रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक ले जाने का फैसला किया है।
1: पिछले लगभग 3.5 वर्षों में मुझे कई बार प्राइम मिनिस्टर मेलोनी से मिलने का अवसर मिला है। यह भारत और इटली के बीच करीबी सहयोग और सामंजस्य को दर्शाता है। उनके नेतृत्व में हमारे संबंधों को नई गति, नई दिशा और नया आत्मविश्वास मिला है। मुझे खुशी है कि हम अपने संबंधों को अपग्रेड करते हुए स्पेशल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की घोषणा कर रहे हैं।
0: श्री मोदी ने कहा कि दोनों देश द्विपक्षीय व्यापार को 20 अरब यूरो तक पहुंचाने के लिए काम कर रहे हैं। श्री मोदी ने कहा कि दोनों देश भारत इटली नवाचार केंद्र स्थापित करने पर काम कर रहे हैं।
1: टेक्नोलॉजी और इनोवेशन हमारी पार्टनरशिप का इंजन है। AI, क्वांटम, स्पेस और सिविल न्यूक्लियर एनर्जी जैसे क्षेत्रों में हमारे सहयोग की अपार संभावनाएं हैं। दोनों देशों के स्टार्टअप्स, रिसर्च सेंटर्स और उद्योगों को आपस में जोड़ने के लिए हम इंडिया इटली इनोवेशन सेंटर पर काम कर रहे हैं।
0: श्री मोदी ने कहा कि दोनों देश आतंकवाद को मानवता के लिए गंभीर खतरा मानते हैं। सुश्री जॉर्जिया मेलोनी ने कहा कि दोनों देशों के बीच की दोस्ती सम्मान और आपसी विश्वास पर आधारित है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दक्षिण कोरिया के रक्षा खरीद कार्यक्रम प्रशासन मंत्री ली जोंग चुल से सोल में मुलाकात की। बैठक के दौरान दोनों पक्ष संयुक्त विकास, उत्पादन और निर्यात के अवसर पैदा करने के लिए आपसी प्रयासों का लाभ उठाने पर सहमत हुए। दोनों देशों के नवाचार तंत्र को आपस में जोड़ने वाली महत्वाकांक्षी काइंड एक्स पहल की क्षमता का पूरा लाभ उठाने के लिए एक रूपरेखा पर भी चर्चा की गई। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने नीट UG पुनः परीक्षा के सुरक्षित, निष्पक्ष और सुचारू संचालन के लिए कड़ी निगरानी और पुख्ता सुरक्षा व्यवस्था की आवश्यकता पर बल दिया है। श्री प्रधान ने आज नई दिल्ली में केंद्रीय सुरक्षा और खुफिया एजेंसियों के साथ उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक में ये बात कही। इस दौरान गुमनाम ऑनलाइन समूहों के माध्यम से प्रतियोगी परीक्षाओं से संबंधित गलत सूचनाओं के बढ़ते प्रसार पर चिंता व्यक्त की गई। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन ने अनमैन्ड एरियल व्हीकल लॉन्च्ड प्रिसीजन गाइडेड मिसाइल का अंतिम परीक्षण सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है। ये आत्मनिर्भर भारत पहल के अंतर्गत स्वदेशी रक्षा क्षमताओं को मजबूत करने की दिशा में एक और महत्वपूर्ण उपलब्धि है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सफल परीक्षण के लिए रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, रक्षा और उत्पादन भागीदारों तथा उद्योग जगत की सराहना की है। गुजरात सरकार ने एक राष्ट्र एक चुनाव विधेयक का समर्थन किया है। एक राष्ट्र एक चुनाव पर बनी संयुक्त संसदीय समिति ने आज गुजरात के गांधीनगर में विभिन्न राजनीतिक दलों के शिष्टमंडल के साथ चर्चा की। उप मुख्यमंत्री हर्ष संघवी ने कहा कि प्रस्तुति में एक राष्ट्र एक चुनाव के फायदों के बारे में बताया गया। इस बीच कांग्रेस सहित अन्य राजनीतिक दलों ने एक राष्ट्र एक चुनाव का विरोध किया और समिति के सामने अपनी प्रतिक्रियाएं रखीं। मौसम विभाग ने इस सप्ताह उत्तर पश्चिमी और मध्य क्षेत्र में लू की आशंका व्यक्त की है। अगले 4 दिन तक दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, ओडिशा, छत्तीसगढ़, राजस्थान, तेलंगाना और उत्तराखंड में लू चल सकती है। असम, मेघालय, केरल, माहे, पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्र, सिक्किम, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कराईकाल तथा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में कल तेज बारिश हो सकती है। IPL क्रिकेट में कोलकाता नाइट राइडर्स ने मुंबई इंडियंस के खिलाफ मुकाबले में टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया है। मुंबई प्लेऑफ की दौड़ से बाहर हो चुकी है, जबकि कोलकाता प्लेऑफ में जाने के लिए अगले दोनों मैचों में जीत के साथ साथ दूसरे टीम के परिणाम पर निर्भर है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी द न्यूज रेड बाय साइरा मुज्तबा। India and Italy have decided to elevate their bilateral ties to a special strategic partnership and enhance cooperation in areas of trade, investment and new technologies. Prime Minister Narendra Modi made the announcement following delegation-level talks with his Italian counterpart Giorgia Meloni in Rome today. In a press statement after the talks, Prime Minister Modi said the two sides deliberated extensively on enhancing bilateral ties.
1: पिछले लगभग 3.5 वर्षों में मुझे कई बार प्राइम मिनिस्टर मेलोनी से मिलने का अवसर मिला है। यह भारत और इटली के बीच करीबी सहयोग और सामंजस्य को दर्शाता है। उनके नेतृत्व में हमारे संबंधों को नई गति, नई दिशा और नया आत्मविश्वास मिला है। मुझे खुशी है कि हम अपने संबंधों को अपग्रेड करते हुए स्पेशल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की घोषणा कर रहे हैं।
2: मिस्टर मोदी सेड इंडिया इटली जॉइंट स्ट्रेटेजिक एक्शन प्लान 2025-2029 प्रोवाइड्स अ प्रैक्टिकल एंड फ्यूचरिस्टिक फ्रेमवर्क फॉर बायलैटरल टाइज। He said both sides are working on establishing an India-Italy Innovation Center. He added that the India-Italy Defense Industrial Roadmap has paved the way for co-development and co-production of military hardware.
1: दोनों देशों के स्टार्टअप्स, रिसर्च सेंटर्स और उद्योगों को आपस में जोड़ने के लिए हम इंडिया इटली इनोवेशन सेंटर पर काम कर रहे हैं। हमारी सेनाओं के साथ साथ दोनों देशों के रक्षा उद्योगों के बीच भी सहयोग बढ़ रहा है। मैरिटाइम पावर्स के रूप में भारत और इटली के बीच करीबी सहयोग स्वाभाविक है। हम मिलकर शिपिंग, पोर्ट्स मॉडर्नाइजेशन, लॉजिस्टिक और ब्लू इकोनॉमी पर काम करेंगे।
2: Mr. Modi also said that both countries are united in viewing terrorism as a serious threat to humanity and noted that their joint efforts against terror financing have set an important global example. Speaking on the occasion, Italian Prime Minister stressed the importance of ensuring freedom of navigation in the Indo-Pacific region. Prime Minister Modi also called on Italian President Sergio Mattarella and held discussions on further expanding the bilateral partnership in areas such as trade, technology, clean energy and culture. Mr. Modi reached Italy yesterday on the fifth and final leg of his five-nation tour after concluding his visits to Norway, Sweden, the Netherlands and UAE. Union Education Minister Dharmendra Pradhan has stressed the need for heightened vigilance and foolproof security arrangements to ensure a safe, secure and fair conduct of the upcoming NEET UG re-examination. Mr. Pradhan said this while chairing a high-level review meeting with Central Security and Intelligence Agencies in New Delhi today. NEET UG re-examination for admission to undergraduate medical education will be held on the 21st of June. The Gujarat government has extended its support to One Nation, One Election Bill. State's Deputy Chief Minister Harsh Sanghvi stated this after a joint parliamentary committee on One Nation, One Election held discussions with a delegation of various political parties in Gandhinagar on the second day of its visit today. India is set to remain the world's fastest growing major economy as the United Nations projected a growth rate of 6.4% this year, despite global uncertainty caused by the Iran conflict. UN senior economist Ingo Peterle, briefing reporters on the mid-year update to the World Economic Situation and Prospects report yesterday, said that India's strong consumer demand, public investment and growth in services exports continue to support its economy. Severe heat wave gripped northern and central India with temperatures reaching 44 degrees.

एफएम बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का धर्मशाला केंद्र है। शाम के 7:10 हुए हैं। आइए सुनते हैं किसान और बागवान भाई बहनों का कार्यक्रम किसान वाणी।

0: कार्यक्रम किसानवाणी सुनने वाले सारे किसान बागवान भाई बहन करने होर जितने भी श्रोते ना सभी जो गुलाबो दी तरफा ते एक बारी फिर ते राम राम किसान साथियों जिया कि तुझे पता अज लोका भाऊ मेरे सोगी टाले पर आयो न लोका भाऊ तुझे भी एक बारी फिर ते राम राम
1: राम राम गुलाबो जी तुहायो भी कने जितने भी श्रोता टाले ने जुड़ी उन्होंने किसान बागवान उन्होंने भी जरा सह दो हथ जोड़ी ने मेरी राम राम कने गल करिए खेती किसानी की तो गुलाबो जी कद ही रही कणका की फसल
0: बड़ी चार रही लोका भाऊ पर जालू बटोलने का टाइम आया ना तालू अंबरे बड़ा बड़ी नाच नचाया
1: बड़ा नाच नचाया सुखी पाई ली की सेड़ी थी
0: सिजी भी गई थोड़ी दिखा हूँ काम इकट्ठा तो होता नहीं है ना हथे नहीं करना पौंदी हाड़े पहाड़ी इलाके ने मशीना तो कम नहीं कर दिया ज्यादा है ना कने दिखा जिया तिया तो बटोली ली फसल हूँ दिखा हाँ जो ध्यान रखना है कि हाड़ी जड़ी कणक की फसल अहाँ ले है ना जिंद अहाँ पूरा सह अगर तुम धोंद न तिजो तो धोई करी पूरा सुखना चाहिए बोलते ना पहले हाड़ स्याने बोलते कि दंदा हिट देनी तो कुड़क की आवाज जी होना चाहिए है
1: हाँ तो धुप्पा तो अजकल दही कुड़क सरे की करवाई लिया तो कणके की क्या है ना
0: हाँ इतनी सुखना चाहिए ता ही तुम भंडारण जरा कणका का करना है कने एकदम गर्म गर्म जी भांडे च नहीं पानी है तुम कणक सुखाई करी फिर सै ठंडी होने देनी पूरी तरीके ने एक दो दिन जड़े सै ठंडा होने देनी ता ही सै तुम भंडारित करनी है ताकि जरा बोलते ना तती तती अहाँ पाई देंगे तो सै खराब ही होने का डर रहा है ना
1: हाँ ठीक ला देता तो हाँ पाई ली पेड़ुओं च कि ड्रमा च कि नहीं पाई ली
0: पाई ली बिल्कुल पाई ली ड्रमा च पाई ली हाँ जी तीन तो पाई ली सुखाई दोई बनाई करी
1: बड़ी बड़ी तेज जो गुलाबो मेरी भैन ये नहीं बहनी बेहली है ना लगी हुई रही लगी हुई रही है
0: बेहले की बहना जो पता ग्रां च रहना कने खेती बाड़ी के कमां ने जुड़े हाँ तो कोई ना कोई कम जालू बेहला टाइम होंगे तालू भी नहीं बेही होंदा लोके बाबूआ
1: हूं भी लगी हुई होंगी मैं देखा था पता नहीं क्या लसन लसन पुटे है क्या लगी हुई
0: लसन पुटिया प्याज पुटिया सह रखिया बनाई करी सह भी रखना पौंदा ना हवादार कमरा होना चाहिए करी जगह सुखी जगह होना चाहिए इन्होंने चीजें भी जालू तक बिकी नहीं जाए इतना तो आपू ये तो लगता नहीं तो बिकी आंदा थोड़ा बहुत
1: फिर गुलाबो जी तुहां तां नहीं माणे ने कि कुछ और भी सोचा इस बारी
0: मैं तो सोचा ही दिखा हाड़ी दिखा हाँ सोचते ना कि भाई धान तो बाने पर सोगी धान की फसल थोड़ी कट करिए कने और कुछ जिथू धान बीजदे है ना तिथु और कुछ सब्जियां वगैरह लान हल्दी लान अदरक लान हाँ तो ज्यादा फायदा रहा है ना
1: हाँ बिल्कुल ठीक लाया तो हाँ दिखा फसल विविधीकरण जरा अहो किसान अपनाना चाहिए अहो अपन जड़िया पारंपरिक फसलां ने जियां आहांदे जड़े स्याणे करदे हे तिना कणक वाही लई धान वाही लई मक्कियां वाही लईयां है ना ए बांदे कने हुण जिहड़ी अज दी नवीं पीढ़ी जिहड़ी ओह आदी गां तां रौणकी रामे दा मुंडू तां बोला दा मैं थोड़े चोले मूंगफलियां लगाणियां बोलिया मैं लै रहे भी बड़ी वधिया कने मां की गल है मैं लै पुछी लिया पहले जमीन खरी है तीदी ताईयां की नहीं
0: है ना हाड़े वास्ते है ना
1: हां जी हां जी बोलिया मैं बोलिया हुण थोड़ी जिही चेह लगाणी कने मैं लै रहा ठीक गल है तां बोले इहदी नहीं भी हुंदा कि मिट्टी दी उपजाऊ क्षमता भी बणी रहिंदी है ना कने बोलिया इह भी नहीं रहिंदा कि इक्की फसला पर हाँ जे अगर निर्भर हो जाइए तो कई बार क्या होंगे फसल है प्राकृतिक जी तो हाँ बोलिया हूँ अंबर आई आता है कुछ भी प्राकृतिक आपदा कोई आई है ना तो अगर तुम दो तीन फसल लगाई होंगी तो इक्की पाहे तुम्हें नुकसान हो भी आएगा तो दुए पाहे तो तुम्हें उसकी भरपाई जरा हो जाती है ना
0: बिल्कुल कने देखा हाड़े खेत भी खराब नहीं होंगे कहे जे कुछ एक फसल होंगे जड़ी की गहरी जड़ वाली होंगी कुछ एक होंगी कि छब्बा वाली जड़ होंगी तिच है ना उपर छब बनी आती हाँ लंबे टाइम तकर चलो हाँ एक ही फसल एक ही खेते च बांधे रेंदे तो हाड़े जी खेत मिट्टी ऐसे भी खराब हो जाती जड़ी हो जाती थला तकर जड़ी से जड़ जड़ी से बसी आती एक ही फसल बनता।

0: जो गेरी फेरी करी जड़ा सा जियां हुन मक्की दा खेत है ते तो हां हल्दी लगाई दिया अदरक लगाई दिया या फिर सब्जियां लाई दिया आलू लाई देन ता गेरी फेरी करी जित्थू आज इस साल मक्की दी फसल वाई हो तो अगले साल तो हां और कुछ वाई देन ता जड़ा हाड़ा खेत है सभी बढ़िया रहंदा पानी दी जड़ी सै सभी किल्लत नहीं होंदी पानी भी जमीना च नमी बनी रहंदी कने कीट भी जड़े सै रोग जड़े कीट हैं रोग हैं सभी कट लगते हैं ना
1: जी गुलाबू जी, तुहां ठीक गल गलाई। अगर दिखा अहां दे हिमाचल दी जलवायु तो इतनी बढ़िया कने वाकई है ना। इत्थों अगर अहां ऑफ सीजन वाली जिहड़ी सब्जियां होंदी जियां मटर होई या शिमला मिर्च होई या टमाटर होई या गोभी होई या, इहदा उत्पादन अहां बड़े वधिया कने वाका ले सकदे हां ना।
0: जी
1: कने जालू पंजाब कने हरियाणा दे मैदानी इलाकियां च गर्मी पौंदी है, तालू अहां दी सब्जियां च जिहड़ा सा खरे दाम किसानां ने जिहड़ा सा वधिया कने वाके जिहड़े से मिली
0: मिली
1: जांदे
0: आंदे
1: हां ना।
0: जी बिल्कुल
1: कने अगर दिखा गुलाबू जी, एक गल इह भी है कि अगर अहां एक मक्की दी फसल जो बीजदे ने हां ना, तो उत्थी सूखा पई या फिर कीड़ा लगी है तो पूरी मेहनत जी से बेकार हो
0: बेकार हो
1: जाती है।
0: जाती जी
1: अगर तिथु ही तुह अद्धे खेते च मक्की लगाते हैं, थोड़े दे खेतरे तुह अपने च लहसुन लगा लेंदे, थोड़े च अदरक या थोड़े च मशरूम लगा लेंदे, तो एक फसल खराब हो जाती है तो तुह दूई जरा सहारा बनती है किसाने
0: बिल्कुल
1: का, कहने
0: बिल्कुल
1: मुनाफा भी जरा सा चोखा होंगे है ना।
0: बिल्कुल सोगी तो हाँ राजमा लगाई दिया दाल लगाई दिया कोई भी ता इदी ने क्या होंदा कि भरपाई जड़ी जियां तो हाँ गलागर दे कि भरपाई जड़ी ऐसे हुई आंदी है
1: कन्नै इहदी कन्नै ही जियां गलाया गुलाबो जी, विज्ञानिक भी गलांदे कि जमीना दी सेहत भी बची हो रहिंदी, कन्नै एक ही फसल बार बार लगाने ने मिट्टी दी ताकत भी जेहड़ा सा घटदी है। जालू वहाँ बदली बदली ने जेहड़ा सा फसल लगांदे तां अहां दी धरती माता भी खुश रहिंदी, कन्नै पैदावार भी जेहड़ा सा वधिया कन्नै वांकी जेहड़ा सा हुंदी है
0: होंदी है
1: ना।
0: बिल्कुल
1: तां टियाले ते तां अहां इह ही गलांगे अहां दे किसान भाइयों सारे कि तुहां भी जेहड़ा सा फसल विविधीकरण जो जरूर अपना है ना। कन्नै
0: जी
1: इहदी कन्नै ही गुलाबो जी दिखा हुण जेहड़ा सा अहां दे खेत भी खुले हुई हो है ना,
0: जी बिल्कुल
1: पट्टियां
0: खाली
1: जो
0: है जी
1: खाली हुई हैं, तां
0: जी
1: हुण जेहड़ा सा मृदा परीक्षण करवाने दा भी जेहड़ा सा समय है ना।
0: जी बिल्कुल ता जिन्हें जिन्हें मृदा परीक्षण नहीं कराया कभी तो इतना जरूर कराना है ताकि हाँ जो पता लगी है कि हाड़ी मिट्टी च कौन कौन पोषक तत्व घट है कौन कौन बद है जी हाड़ा शरीर होंगे हाँ जो दवाई की जरूरत होंगी है तो तीन ही हाड़ी मिट्टिया जो भी जरूरत रही टाइमे टाइमे पर तो हाँ जरूर मिट्टी परीक्षण इस वेले जड़ा सा खेत खाली है तो हाँ कराना है कने हाड़े किसान जो पता भी है कने नहीं पता है तो सा जरूर जड़ा सा कुछ एक मोटिया मोटिया गल्ला होनी है कि जड़ी मिट्टी परीक्षण कराने ताई जड़ी मिट्टी है सै बी आकार दा जड़ा सै साफ सुथरा फाव जड़ा फोड़ा फोड़ा जिसी गलांदे ते दिने बी आकार दी मिट्टी जड़ा सै आकार च कटनी है कने मिट्टी त्री चौं जगह ते तुहां लैनी है अपना खेत एक खेत है तो चौं जगह च तुहां लैनी है ते तू लैनी है जित्थू पानी ना रुकदा होए या फिर छां ना होए है ना
1: हाँ जी हाँ
0: ता
1: जी
0: ऐसी ऐसी गल्लां तुहां ध्यान रखनी है कने मिट्टी जो तुहां फिरी मिलाई करी चौं जगह ते मिट्टी ले करी ते जो मिलाना हुंदा है कने मिलाई करी सुखाई करी फिर इक्की पैकेट दे विच पाई करी फिर तुसां अपने जड़ा ब्लॉक स्तर पर दिंदे ने या फिर कुछ भी दिंदे ने तुहां दा तित्थू परीक्षण ताएं जड़े प्रयोगशाला च तुहां देना है
1: बिल्कुल भेजी सकते। कन्नै एह्दा एह ही होंदा कि मेहनत अगर तुहां करदे न, अगर मिट्टी दा स्वास्थ्य ठीक होगा तां ही उत्पादन तुहें बधिया कन्नै बांका मिलना है। किसान साथियों, तां तुहां जरूर जेहड़ा सा अपने मृदा परीक्षण जेहड़ा सा करवाना है ना, तां
0: जी
1: जो तुहें पता चली जाए कि तुहां खाद कितनी के पानी है ना। इ'यां नहीं पाई जान कई नहीं भी हो जाता कि कई बार अहां ज़्यादा खाद पाई दें है ना,
0: जी बिल्कुल
1: क्या पता होंदा है कि अहां दी मिट्टी च हुण कुछ दे पोषक तत्व घट है
0: बिल्कुल
1: ना। जालू
0: बिल्कुल
1: अहां रिपोर्ट अपनी मृदा दा परीक्षण करवांगे तालू ही पता लगदा है
0: बिल्कुल
1: ना। तां
0: बिल्कुल
1: जरूर ये बड़ी जरूरी है मृदा परीक्षण, क्योंकि मेहनत अगर तुहां करगे कने अगर तुहां मृदा परीक्षण करवाई के मेहनत करगे तो उत्पादन तुहां दा जेहड़ा सा और भी दुगना कने बांका निकलना है ना।
0: बिल्कुल जियां
1: तां
0: हुण हाड़ी टियाले दी सदस्य बोला ही बोलिया कि मैं मिट्टी परीक्षण कराया कने मेरे खेतर च पोटाश बिल्कुल घट मात्रा च मिल जड़ा सा निकलिया
1: निकले अच्छा
0: तो तिन्हां
1: अच्छा
0: जो पता है कि हुण मैं पोटाश ही जड़ा सा अपने खेतर दे विच पाणा कने बाकी जड़ा सा सारे तत्व जड़ा सा ठीक
1: मौजूद है ना
0: हैं
1: ना। हाँ
0: जी
1: ठीक है ना।
0: बिल्कुल तो इयां जो पता लगदा है कने दिखा कार्यक्रम है किसान वाणी कने किसान वाणी कार्यक्रम दे विच अगे वधना है कने चलना प्यारे दे लोक गीत दी तरफ
1: जी।

0: किसान साथियों, तुम्हें प्यारा दया मिठा दया लोक गीत सुनाया कने आशा कर देन गणाबू जी ने पसंद भी आया होना है ना।
1: जी बिल्कुल।
0: ता कार्यक्रम च गां बद्दे होए हुण बेला ओदा भेंट वार्ता दे अंक दी जानकारी सांझा करने दा है ना।
1: जी
0: ता अज जेड़ा अंश है उन्नत किसान आहां दे जेड़े अंश टियाले पर पूजी उन ता क्या गला दे ने कने सुनदे ने कने सुणांदे ने ए भेंट वार्ता दा अंक।
1: जी
2: किसान साथियों, कार्यक्रम किसान वाणी च अहां दा प्रयास रहंदा कि हर दिन एक नित नई जानकारी अहां तुहां तक पुजाइए। उसी कड़ी विच अज एक उन्नत युवा जेड़े किसान हैं सह टियाले पर आए हुए हैं, ओह करदे ने इन्हां कन्नै गलबात, कन्नै जानदे ने इन्हां दा नां, कन्नै पता। राम राम जी।
3: राम राम जी।
2: तो सारे दे पहले जी अहां दे सुनने वाले अपना नां दसा, ये दसा भी तुहां कुतों दे रहने वाले ने।
3: जी मेरा नाम दीपक है
2: जी,
3: मेरे घर चीरवल्ला ने, चीरवल्ले ते आया जी।
2: अच्छा, ये चीरवल्ला कोदी है दीपक जी?
3: ए रात ते थल्ले है जी, 7-8 किलोमीटर।
2: अच्छा, ब्लॉक कौन है तोहा दा?
3: रात है ब्लॉक।
2: अच्छा, ब्लॉक रात है। ता दीपक जी तोहा क्या कारोबार तोहा जेड़ा सा करदे ने?
3: ई साडा पोल्ट्री दा कारोबार है।
2: अच्छा, पोल्ट्री दा। ता देखा वे जियां इतने तोहा अली युवा ने, ता तोहा दी पढ़ाई लिखाई तोहा बड़ी कर ली है भाई?
3: हां जी जी, मेरी बीएससी कंप्लीट है।
2: अच्छा,
3: मैं आगे एमएससी कर रहा था, प्राइवेट ही कर रहा था बस।
2: अच्छा, देखा दीपक जी बड़ी खुशी होंदी जेलु की एक युवा पढ़े लिखे किसान भी जेलु वहां कने जुड़दे ने, कितनी खुशी होंदी की
3: छोटा था ना।
2: हां जी हां जी।
3: फिर 2018-19 बड़ा फार्म बनाया
2: जी। हाँ जी,
3: दो फार्म ने इस वक्त साढ़े
2: जी। हाँ जी। तो दीपक जी जी तो दसिया कि दो फार्म तो हवाल इस टाइम है ना पोल्ट्री दे, तो दोनों फार्म च इस टाइम मुर्गे पाए हो?
3: हाँ जी, दोनों फुल ने इस टाइम, एक 40-42 दिन का कन्ने, एक कल 15 दिन देना।
2: अच्छा, तो दीपक जी जी सबसे पहले गल आती ना कि यहाँ कोई भी जलू काम अहां शुरू करना है, तो उस ताई हाँ जी एक सिखलाई की जरूरत पौंदी।
3: हाँ जी।
2: तो तुहां सिखलाई जिन की कर रहे अपने पापे ते ले या तुहां कुछ होर थी भी कोई ट्रेनिंग वगैरह ले हो?
3: नहीं नहीं, मैं पापे ते सीखे सब कुछ ना।
2: अच्छा।
3: ए टू जेड पापे ते पूरा।
2: अच्छा।
3: हाँ जी।
2: तो इस वक्त भी यानी कि ए गलाए सकदे कि तुहां जेड़े तुहां दे दोनों फार्म हैं तुहां उन्हां दा काम संभाल लंदे हैं?
3: हाँ जी हाँ जी, संभाल लंदे, नहीं लगा पता कुछ ते पापे ते पूछ लंदे
2: जी। हाँ जी। अच्छा दीपक जी जियां दस्या ना कि दोनों फार्म विच तुहां मुर्गे पाए हुए ना, तो इन्हां च जेड़े सा कट्ठे पाइंदे या थोड़ा गैप दे के?
3: 15-20 दिन गैप हुंदा।
2: अच्छा।
3: 20 दिन ज्यादा, 15-20 दिन दे विच गैप पाणा है।
2: अच्छा।
3: हाँ जी।
2: तो एक ही फार्म विच कितना के मुर्गा आई जांदा? कोई
3: 21 आई जांदा, 3 कने 21 आई जांदा 5000।
2: अच्छा, तकरीबन पे कोई 8000
3: चूजा? हां 7-8000 आई जांदा।
2: इस तरह तो हां लगाया हुंदा फार्मा च?
3: हां जी।
2: अच्छा जी, हां ए चूजे हुंदे, ए कुत्ते तो हम मंगवांदे हन या
3: ए हैचरियां ते हुंदे?
2: अच्छा।
3: ए ज्यादातर या पंजाब ते?
2: हां जी।
3: या हरियाणा ते?
2: अच्छा। तो है घर द्वार छड्डी जांदे?
3: हां जी, घर द्वार छड्डी जांदे से, चूचे पुजाई दे चिक्स छोटे छोटे से।
2: अच्छा, ए किन्ने के दिन दे हुंदे?
3: एक दिन तो होंगे ला, उतो तो मशीना तो निकले होंगे सर।
2: अच्छा,
3: अंडे तो निकले होंगे ना।
2: हाँ जी,
3: एक दिन दे होंगे, एक दो दिन दे।
2: अच्छा, तां दा बड़ा ध्यान रखना।
3: हाँ जी बिल्कुल,
2: डब्बियां च भेज दे है?
3: हाँ जी, एक डब्बे चीज पैकिंग होंगी 70 चूचियां दी।
2: अच्छा।
3: हाँ जी,
2: तो कई तो बेचारे दरडोई भी आंदे होने डब्बे?
3: हाँ, इतनी दूर तो होना, तो 5-6 तो ही मरी जाते बिच।
2: अच्छा अच्छा, यानी चलो एक दिन का चलो तुहां चूजा या दो दिन का तुहां वाले पुज्जा आई के?
3: हाँ जी।
2: तो इस ते बाद जड़ा सा क्या इन्हां दी दिनचर्या क्या शुरू कर दे तुहां, क्या क्या इन्हें देना खाने हो, याने दवाई कुछ आप देना शुरू कर दे?
3: जी सबसे पहले तो ना होना है, ता सबसे पहले ये होंदा कि अंदर टेंपरेचर बनाना।
2: हाँ जी,
3: उन्हें गर्मी चाहिए होंदी ज्यादा।
2: अच्छा।
3: 90 टेंपरेचर भी रखना पौंदा ने।
2: हाँ जी,
3: सर्दियां दिना च।
2: अच्छा,
3: बड़ा मुश्किल होंदा सा है।
2: हाँ जी,
3: बारे दिखा तो 7-8 टेंपरेचर, 35-40 लीना अंदर।
2: जी जी हाँ जी,
3: तो मुश्किल हो जाता अंदर, हीटर लगाए होंदे ब्लोअर।
2: हाँ जी,
3: बुखारियां बड़ियां बड़ियां।
2: हाँ जी,
3: तो फिर इसे होना होना पहले उन्दी दवा दू पियानी होनी, फिर छड़ देने दवा दू पिया पी की, फिर शामी 2-3 घंटे फीड पाई देनी, कहना फिर इं चली रहना पूरा प्रोसेस।
2: अच्छा, यानी ये जड़ियाँ दवाइयाँ हैं ना, ये दवाइयाँ कुत्ते लैंदे तो? हाँ,
3: ये दवाइयाँ उत्थे साड़ियाँ पंजाब ते होनियाँ, हरियाणा ते होनियाँ।
2: अच्छा, इसे मुर्गियाँ कन्ने भेजदे या ये अलग?
3: ना, ये अलग ते लैना पौंदी।
2: अच्छा, अलग ते लैना पौंदी। ये कौन कौन दवाई होंदी ना दस सके तो? हाँ,
3: दवाइयाँ तो बड़ी होंदियाँ, लीवर कफ केयर हो गई, एनरोसिन हो गई।
2: अच्छा,
3: बिरासिट, बड़ी दवाइयाँ होंदियाँ इन्हां दियाँ।
2: अच्छा, यानी कि ये तो जो मुर्गियाँ देना पौनी है टाइम?
3: हाँ जी, देना पौंदी, 15-20 दिन देना पौंदे ने।
2: अच्छा, इस ते बाद गल करदे दाणा, इन्हें दाणा के दिंदे तो? हाँ, फीड पाउंदे या कुछ कुछ घर तैयार करते
3: नहीं फीड पांदे फीड कंपनी दी फीड है सर गोदरेज दी फीड है
2: अच्छा ये कुत्ते मंगवांदे
3: ए पंजाब खन्ने ते हुंदी है
2: अच्छा फीड दी गल हां करदे दा इस टाइम जियां 8000 चलो मुर्गा फार्म विच तैयार करना तो 30 ताईयां दा फीड काफी लगदी होनी
3: हां जी महीने 3-4 गड्डियां लगी जांदियां
2: अच्छा
3: हां जी कोई 800-9000 बोरी लगी जांदी
2: अच्छा तो ये बोरी कितने किलो दी हुंदी है
3: 50 किलो दी पैकिंग हुंदी
2: अच्छा यानी कि ये गलाई सकते कि महीने च कम से कम कोई 800-900 बोरी जड़ी से लगी जांदी
3: है हां जी हां जी
2: अच्छा एक फीड दी अगर बोरी दी कीमत दी गल करिए ते कितने दी हुंदी है
3: अलग अलग हिसाब हुंदे तीन किस्म दी फीड हुंदी ना एक पहले बच्चे हुंदे आनी
2: हां जी
3: फिर इन ते इक थोड़े बच्चे बड़े हो जाने दूई फीड दे देनी
2: हां जी
3: तां जे लास्ट 25 दिन बाद या दूई फीड चलदी ते एवरेज है कि एक जे ट्रक हुंदा 250 बोरी हुंदी एक ट्रक के 250 बोरी जड़ी है 7 लाख दी गड्डी हुंदी सर
2: अच्छा
3: हां जी ता महीने दी 25 लाख लगी जांदा खर्चा 25 लाख पालने दा
2: अच्छा यानी कि 8000 मुर्गे दी अगर परवरिश सही ढंग ना करनी है ता इतना के पैसा चाहिए
3: 20-25 लाख लग जाता
2: तो जिया के तुहां ये मुर्गा मंगांदे हन चूजे मंगांदे हन या जिसके बाद जिया फीड मंगानी है दवाइयां मंगानियां ये जिया तुहां दस्सिया कि तुहां जो घर द्वार पुजी जांदियां
3: हन जी
2: तो तेरा जो पैसे वगैरह दा भुगतान पहला करना पौंदा
3: हां ऑनलाइन पाए देइए खाते च या चेक कटके दे देना उन्हें
2: हां जी हां जी कहना दिखा भी परमानेंट चल तुहां इतने दे सामान लेंदे हन ता थोड़ा है उधार सुधार भी कर लेंदे या
3: नहीं उधार नहीं उधार भी चल पौंदा
2: अच्छा
3: पर हुन असा ता पुराने कस्टमर ने ता उधार नो या नहीं
2: अच्छा अच्छा
3: आजकल तो उधार बांधी है सारे
2: हां जी हां जी दीपक पटियाल जी इस ते बाद हां गल करदे हन कि जेड़े तुहां ए चूजे जिहे तुहां पाले होए ने पोल्ट्री दा काम करदे हन इस सारे ए मांस वाले चूजे हन या तुहां अंडे वाले भी रखे
3: नहीं नहीं ए मांस वाले ना अंडे वाले अलग हुंदे सर
2: अच्छा
3: हां जी ए मांस वाले ना अंडे वाले ए बॉयलर हुंदा जेड़े असा पालदे
2: हां जी
3: अंडे वाले हुंदे लेयर फार्म जिसे बोलदे लेयर फार्मिंग करदे बंदे
2: हां जी
3: सर लेयर हुंदे कने कि जेड़ा से चूचा हुंदा उसे पेरेंट बोलदे
2: अच्छा पेरेंट
3: हां जी
2: अच्छा जियां ए जल तुहां दे तैयार हो जाना ए ते कितने क दिन च तैयार हो जांदा ए
3: 40-42 दिन च असा सेल करिंदे ने मार्केट
2: च अच्छा कितने किलो हो जाना फिर ये
3: एवरेज लेके चला थोड़ा 2.5-3 किलो एवरेज आई जांदी मतलब एक मुर्गा हो जांदा 2.5-3 किलो दे विच
2: विच अच्छा यानी कि तकरीबन खरा दाना पानी दिसी अगर मिल गया तो 2.5-3 किलो
3: हो जांदा
2: है ना ते जल तुहां ए बेचना ता ए ते फिर थोक दे भाव च जांदा
3: होणा हां जेड़ा मंडी दा रेट खुलदा रोज साडा मंडी है ना पठानकोट उन्ना हरियाणा गन पंजाब जे रेट खुलना पियागा
2: हां जी
3: फिर साहे पंजाब दा रेट सामी खुलदा
2: हां जी
3: उस हिसाबे फिर रेट पर हुंदा पूरा सब कुछ
2: ते तुहां बेचदे को तुसी नहीं के फिर
3: जे साडे हैन इक उने दिंदे असा पहले ते
2: अच्छा
3: मटोरे ते ना
2: अच्छा अच्छा यानी कि जेड़ा मंडी च जेड़ा रेट होगा उस तरीके ने जेड़ा सा घर द्वार ही बिकी जाना
3: उसी तरीके ने लेना होना
2: अच्छा
3: जेड़ा मंडी दा रेट खुलगा
2: जियां एक बैच तुहां पाई लिया है तैयार होई है उस हिसाब ने पोल्ट्री फार्म च जियां जगह चलो खाली होई है ते तीस थोड़ा गैप देना पौंदा जियां जिस तुहां चूजे रखे
3: हां जी हां जी हफ्ते दा गैप रेस्ट देना पौंदी ना अंदर फार्म साफ सफाई स्प्रे होनियां 5-6 किस्म दियां
2: अच्छा
3: जेड़ा पुराना कुछ बैक्टीरिया वायरस है जे मरियां भी
2: अच्छा
3: हां जी
2: अच्छा तीसरे बाद भी
3: अगला बैच पा देना कोई हफ्ते की रेस्ट 4-5 दिन रेस्ट देगी फिर बैच पा देना
2: अच्छा दीपक जी जियां तुहां ए पोल्ट्री दा काम करदे हन ता इस ताईयां कितने की आदमी हन जेड़े सा कुल मिलाई के तुहां और भी अगर कम में पर तुहां रखे हुए हन कितने की
3: जे टोटल ता 7-8 वर्कर ने साडे
2: आज अच्छा
3: हां जी
2: तो सै दिना करदे अपनी ड्यूटी या राती पर भी रखे
3: नहीं उत्थे ही रहंदे सै
2: अच्छा
3: हां जी
2: दिना जो किया हिसाब किताब दिंदे तुहां
3: यही है तनख्वाह 13-15 हज़ार ते लेके 20-25 हज़ार दे विच
2: अच्छा
3: हां जी 20 हज़ार दे उपर जेड़ा जिन्नी मेन बंदा सै उसे 18-20 कने बाकी जेड़े लेबर है
2: हां जी
3: उसे 12-13 हज़ार भी है
2: जी दीपक जी जी एक गल और जो ध्यान च आई कि जियां कि हां सुनया भी है कने विज्ञानिक भी गलांदे हन कि जल्लू पोल्ट्री फार्म च काम करना अंदर जाना है ना या कुछ भी करना है ता बड़ी कुछ एक सावधानियां जेड़ी सै बरतना पौंदियां सै दसने वाला सै क्या क्या करना
3: तुसी ठीक गला दे सावधानियां तां बरतना पौंदियां कि बीमारी नहीं लगियां ने
2: जी
3: पहली गल की कोई तीन बाहर का बंदा उसे अंदर नहीं जाने दिंदे असा
2: हाँ जी
3: साढ़े फार्मेसी बस सही बंदे काम करते जेडे इथों लगे हो
2: जी
3: वह जाते असा जाते दिखना दिखना दुखना बस
2: हाँ जी
3: बाकी सब बाहर किसी नहीं आने देंगे
2: हाँ जी
3: बीमारियां क्योंकि अच्छा सर्दियों ही होंगे कि सर्दियों बीमारी ज्यादा लगी जाती
2: हाँ जी
3: कभी जुकाम हो जाना कभी CRD लगी आनी कभी क्या कुछ भी हो सकता
2: हाँ जी
3: उस वजह सावधानी तुम आपू बरतना पौनी ना
2: जी जी
3: हाँ जी
2: अच्छा यानी कि जल फार्मे च जाना था कपड़े वगैरह
3: हाँ जी बिल्कुल
2: फार्मे आले होने
3: पाए जुत्ते सह पाने कपड़े पूरे चेंज करने
2: अच्छा।
3: दुए फार्मे अलग जुत्ते होने अलग कपड़े होने अच्छा। पूरा ध्यान देना तो बड़ा पौंदा
2: अच्छा दीपक जी दिखा बड़ा अच्छा लगता जल्लू कि अहां दे नौजवान जेड़े साथी हैं सब भी दिखा भाई अपने व्यवसाय है तेसी जल्लू करदे हैं कहिंदे दिखा तो हां जो जल्लू अहां दे और इतने युवा साथी अहां दे जल्लू सोना करदे होणे ते इन्हां विच भी प्रेरणा होवा करदी होणी है कि अहां भी जेड़ा सा कुछ यो दिया काम जेड़ा सा करिए इहदे अलावा अगर गल करिए ते जी खेतीबाड़ी भी करदे तुहां
3: हां जी खेतीबाड़ी या सब्जी वगैरह अपने दियां
2: अच्छा
3: गोभी फूलगोभी जो खाने लायक अंदी बोसाई
2: अच्छा सब्जी तुहां घर दी लगा लंदे
3: हां जी घर दी जेड़ी
2: है कहिंदे दिखा अगर देसी खाद ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਸਹਿਤ ਦੋਹਾਂ ਵਾਲ ਆਪਣਾ ਫਾਰਮ ਹੈ ਨਾ ਹਾਂਜੀ
3: ਫਾਰਮ ਦੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ
2: ਸਹਿਤ ਤਾਂ ਕਾਫੀ ਨਿਕਲਦੀ ਹੋਣੀ
3: ਬੜੀ ਗਰਮ ਹੁੰਦੀ ਸਹਿਤ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦੀ
2: ਬਸ ਅੱਛਾ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਕਰਦੇ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਖਾਦ ਇਤਨੀ ਭਰੀ ਜੇ ਦੋਹਾਂ ਵਾਲ ਵੱਡਾ ਫਾਰਮ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਖਾਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬਿੱਠ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਮੁਰਗੇ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਪਾਉਂਦੇ ਵੀਰੇ
3: ਸਹਿਤ ਵਿਕੀ ਜਾਂਦੀ ਪੂਰੀ ਪੂਰੀ ਜੀ
2: ਅੱਛਾ ਵਿਕੀ ਜਾਂਦੀ
3: ਪਹਿਲੇ ਸਹਿ ਬੁਕਿੰਗ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਉਹਨਾਂ ਪਹਿਲੇ ਬੋਲ ਦਿੱਤੇ ਹੁੰਦਾ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਨਾ ਸਬਜ਼ੀ ਵਗੈਰਾ ਲਗਾਉਂਦੇ ਵੱਡੀ ਵੱਡੀ ਗੱਗਲ ਵਗੈਰਾ ਜਮਾਨਾ ਬਾਅਦ
2: ਅੱਛਾ
3: ਇਹਨਾਂ ਪਹਿਲੇ ਗਲਾਈ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਅੰਜ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਮੈਲ ਚਾਹੀਦਾ
2: ਅੱਛਾ ਤਾਂ ਸਹਿ ਕਿਆ ਤੋਲੀ ਕਿਤੇ ਵੇਚਦੇ
3: ਆ ਨਾ ਸਰ ਗੱਡੀ ਹਿਸਾਬ ਹੁੰਦਾ ਐਨਸੀ ਦਾ 2000 ਦੀ ਇੱਕ ਗੱਡੀ ਸਹਿ
2: ਐਨਸੀ
3: ਹਾਂਜੀ
2: ਅੱਛਾ ਯਾਨੀ ਕਿ 2000 ਰੁਪਈਆ ਸਹਿ ਵੀ ਵਿਕੀ ਜਾਣੇ
3: ਹਾਂ ਸਭ ਕੁਝ ਵਿਕੀ
2: ਜਾਣਾ ਗਲਾਈ ਸਕਦੇ ਕਿ ਆਮ ਔਰ ਗੁਠਲੀਆਂ ਕੀ ਵੀ ਦਾਮ ਹੈ ਨਾ
3: ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ
2: ਜੀ ਅੱਛਾ ਦੀਪਕ ਜੀ ਇਸੇ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਜਿਹੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਬਜ਼ੀ ਤੋਂ ਹਾਂ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੀ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹਨ ਇਹਦੇ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੀਆਂ ਹੋਰ ਕਣਕ ਧਾਨ ਛੱਲੀ
3: ਸਹਿ ਵੀ ਹੈ ਕਣਕ ਕਹਿੰਦੇ ਛੱਲੀ ਲਗਾਉਂਦੇ ਬਸ ਧਾਨ ਨਹੀਂ ਲਗਾਉਂਦੇ ਅਸੀਂ
2: ਅੱਛਾ
3: ਹਾਂਜੀ
2: ਅੱਛਾ ਜਿਹੀਆਂ ਹੋਰ ਦੁੱਧ ਦਹੀਂ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਡੰਗਰ ਵੀ ਰੱਖਿਆ
3: ਕਰ ਗਾਂ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਇੱਕ
2: ਅੱਛਾ
3: ਹਾਂਜੀ
2: ਇੱਕੋ ਹੀ ਗਾਂ ਹੈ
3: ਇੱਕ ਹੀ ਗਾਂ ਹੈ ਜੀ
2: ਦੋ ਦਿੰਦੀ ਹੋਣੀ
3: ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ
2: ਅੱਛਾ
3: ਦੁੱਧ ਛੋਟਾ ਕਰਾ ਛੋਟੇ ਤੇ ਫਿਰ ਹਲਕੇ ਹਲਕੇ ਵਧਣਾ ਪੂਰਾ
2: ਹਾਂਜੀ
3: ਸਟਾਰਟਅਪ ਖੋਲਾ ਕੋਈ ਵੀ ਛੋਟਾ ਮੋਟਾ ਕਾਰੋਬਾਰ
2: ਜੀ
3: ਆਪਣੇ ਕੰਮੇ ਜੀ ਕੁਛ ਮਜ਼ਾ ਹੈ ਕੁਛ ਅਲੱਗ ਹੈ
2: ਜੀ
3: ਹਾਂਜੀ
2: ਤਾਂ ਦੀਪਕ ਪਟਿਆਲ ਜੀ ਦਿਖਾ ਤੁਹਾਂ ਆਪਣਾ ਕੀਮਤੀ ਸਮੇਂ ਨਿਕਾਲੀ ਕੇ ਆਹਾਂ ਦੇ ਟਿਆਲੇ ਪਰ ਇੱਥੋਂ ਆਏ ਆਪਣੇ ਤੁਹਾਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਆਪਣਾ ਪੋਲਟਰੀ ਫਾਰਮ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ ਉਹਦੇ ਅਨੁਭਵ ਆਹਾਂ ਕੰਨੇ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤੇ ਤੁਹਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ
0: ਭੇਟ ਵਾਰਤਾ ਦੇ ਆਪਣੇ ਸੰਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨ ਸਾਥੀ ਤੁਹਾਂ ਲਈ ਚਲਦੇ ਨੇ ਸਥਾਨੀ ਸਬਜ਼ੀ ਮੰਡੀ ਕਾਂਗੜਾ ਦੇ ਥੋਕ ਮੋਲ ਭਾਪਾ ਹੈ ਨਾ ਤਾਂ ਗੁਲਾਬੋ ਜੀ ਆਲੂ ਅੱਜ ਮੰਡੀ 'ਚ ਰਿਹਾ 8-10 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋ ਪਿਆਜ਼ ਤੁਹਾਂ ਦਾ ਰਿਹਾ 18-22 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋ ਕਨੇ ਟਮਾਟਰ ਜਿਹੜਾ ਸਹਿ ਅੱਜ ਰਿਹਾ 12-16 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋ ਲਸਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਲਸਣ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨ ਸਾਥੀ 100-120 ਸ਼ਿਮਲਾ ਮਿਰਚ 12-13 ਅਰਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸਹਿ 32-34 ਖੀਰਾ 10-12 ਮਟਰ ਜਿਹੜਾ ਸਹਿ 45-50 ਕਹਿੰਦੇ ਫੁੱਲ ਗੋਭੀ ਜਿਹੜਾ ਸਹਿ 30-35 ਬੰਦ ਗੋਭੀ ਜਿਹੜਾ ਸਹਿ 13-24 ਬੈਂਗਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਬੈਂਗਣ 20-25 ਕਹਿੰਦੇ ਕੱਦੂ ਤੁਹਾਂ ਦਾ 12-14 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋ ਮੂਲੀ ਜਿਹੜੀ ਸਹਿ ਕਿਸਾਨ ਸਾਥੀ 20-25 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋ ਰਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਟਿੰਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸਹਿ 18-20 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋ ਪਾਲਕ ਤੁਹਾਂ ਦਾ ਰਿਹਾ 24-25 ਰੁਪਏ ਹਰੀ ਮਿਰਚ ਜਿਹੜਾ ਸਹਿ 30-40 ਧਨੀਆ 40-45 ਰਿਹਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕਰੇਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸਹਿ ਮੰਡੀਆਂ 'ਚ ਕਰੇਲੇ ਭਾਅ ਮਿਲਾ ਤੁਹਾਂ ਦਾ 20-30 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋ ਫਰਾਸਵੀਨ ਜਿਹੜਾ ਸਹਿ ਵਧੀਆ ਭਾਅ ਮਿਲਾ ਇਹ 80-110 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋ ਗਾਜਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਤੁਹਾਂ ਦੀ ਸਹਿ 20-22 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁਣ ਫਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਸੇਬ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਿਸਾਨ ਸਾਥੀ ਉਹ 29 ਜਿਹੜਾ ਸਹਿ 110-140 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋ ਕੇਲਾ ਤੁਹਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਹਿ 40-50 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਦਰਜਨ ਅਨਾਰ ਜਿਹੜਾ ਸਹਿ 120-140 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋ ਅਨਾਰ ਇਹਦਾ ਭਾਅ ਜਿਹੜਾ ਸਹਿ ਠੀਕ ਮਿਲਾ ਤਾਂ ਗੁਲਾਬੋ ਜੀ ਹੈ ਨਾ ਅਨਾਨਾਸ ਜਿਹੜਾ ਸਹਿ 40-50 ਕਹਿੰਦੇ ਅਮਰੂਦ 70-80 ਕਹਿੰਦੇ ਮੌਸਮੀ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸਹਿ ਇਹ ਹੀ ਭਾਅ ਰਹੀ 70-80 ਪਪੀਤਾ ਤੁਹਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਹਿ 35-40 ਰਿਹਾ ਕਹਿੰਦੇ ਖਰਬੂਜਾ ਜਿਹੜਾ ਸਹਿ 20-45 ਤਰਬੂਜ 10-15 ਕਹਿੰਦੇ ਅੰਗੂਰ ਤੁਹਾਂ ਦਾ 100-130 ਕਹਿੰਦੇ ਅੰਬ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸਹਿ ਆਈ ਹੈ ਕਹਿੰਦੇ ਅੰਬ ਜਿਹੜਾ ਭਾਅ ਮਿਲਾ 60-70 ਕਹਿੰਦਾ ਇਸ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਅੰਬ ਤੋਤਾ ਆਉਂਦਾ ਤੋਤੇ ਅੰਬ ਜੋ ਮਿਲਾ 45-55 ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਹਾਂ ਦਾ ਨਿੰਬੂ ਜਿਹੜਾ ਸਹਿ 85-90 ਰਿਹਾ ਕਹਿੰਦਾ ਖੁਮਾਨੀ 100-150 ਕੀਵੀ ਪਰ ਪੀਸ ਤੁਹਾਂ ਦਾ 30-35 ਕਹਿੰਦਾ ਮਾਲਟਾ ਜਿਹੜਾ ਸਹਿ 130-140
1: ਹੈ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਲੋਕਾਂ ਭਾਅ ਹੋਏ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਕਾਂਗੜਾ ਸਬਜ਼ੀ ਮੰਡੀ 'ਤੇ ਥੋਕ ਭਾਅ ਨਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁਣ ਕਾਰਜਕ੍ਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ ਕਹਿੰਦੇ ਚੱਲਣਾ ਮੌਸਮ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਤਰਫਾ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕਾਂਗੜੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਕਾਂਗੜਾ ਦਾ ਅੱਜ ਦਾ ਅਧਿਕਤਮ ਤਾਪਮਾਨ ਜਿਹੜਾ ਸਹਿ 38 ਡਿਗਰੀ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਹਿੰਦੇ ਨਿਊਨਤਮ 24 ਡਿਗਰੀ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਾਲਮਪੁਰ ਦਾ ਅਧਿਕਤਮ ਤਾਪਮਾਨ 31 ਡਿਗਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਿਊਨਤਮ 21 ਡਿਗਰੀ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਿਸਾਨ ਸਾਥੀਓ ਤਾਂ ਅੱਜ ਦਾ ਅਧਿਕਤਮ ਤਾਪਮਾਨ 42 ਡਿਗਰੀ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਹਿੰਦੇ ਨਿਊਨਤਮ 24 ਡਿਗਰੀ ਚੰਬਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਅਧਿਕਤਮ ਤਾਪਮਾਨ 29 ਡਿਗਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਿਊਨਤਮ ਜਿਹੜਾ ਸਹਿ 18 ਡਿਗਰੀ ਰਿਹਾ ਹੈ ਮੰਡੀ ਦਾ ਅਧਿਕਤਮ ਤਾਪਮਾਨ 34 ਡਿਗਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਿਊਨਤਮ ਜਿਹੜਾ ਸਹਿ 21 ਡਿਗਰੀ ਰਿਹਾ ਦੇਖਾ ਲੋਕਾਂ ਬਾਊਆ ਡਿਗਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਤਾਪਮਾਨ ਇਹਦੀ ਬੜੀ ਬੜੀ ਵਧੀ ਹੈ ਨਾ
0: ਵਧਦੀ ਹੈ ਕਹਿੰਦੇ ਦੇਖਾ ਇਹਦੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਸਹਿ ਮੌਸਮ ਜਿਹੜਾ ਸਹਿ ਤਾਪਮਾਨ ਜਿਹੜਾ ਸਹਿ ਵਧਦਾ ਤਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਕਿਸਾਨ ਸਾਥੀਆਂ ਹਾਂ ਇਹ ਹੀ ਗਲਾਉਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਕੰਮ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸਹਿ ਸੰਝਾ ਭਿਆਗਾ ਚੀ ਜਿਹੜਾ ਸਹਿ ਨਿਪਟਾਉਣੇ ਹੈ ਨਾ
1: ਬਿਲਕੁਲ
0: ਕਿਉਂਕਿ ਦਿਨ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਹਿ ਬੜੀ ਬੜੀ ਧੁੱਪ ਪਵਾ ਦੀ ਕਹਿੰਦੇ ਧੁੱਪ ਦੇ ਹੀ ਪਵਾ ਦੀ ਹਰੀਆ ਬੋਲਾ ਦਾ ਬੋਲੇ ਕਿੱਥੇ ਬੋਲਿਆ ਫਲਾਣੇ ਦਾ ਮੁੰਡੂ ਬੋਲਾ ਦਾ ਬੋਲੇ ਹੀਟ ਸਟਰੋਕ ਹੋਆ ਦਾ ਬੋਲਿਆ
1: ਬਿਲਕੁਲ
0: ਬੋਲਿਆ ਸਹਿ ਕਿਆ ਬੋਲੇ ਪਾਣੀ ਪੂਣੀ ਘਟਿਆ ਦਾ ਬੋਲੇ ਸੂਰਜ ਪੀ ਲਿਆ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਹੀ ਪਾਣੀ ਬੋਲਿਆ ਹੈ ਨਾ
1: ਬਿਲਕੁਲ
0: ਤਾਂ ਬੋਲਿਆ ਲੂਹ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਣਾ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਬੋਲਿਆ ਕਹਿੰਦੇ ਕਮਾਉਣਾ ਬਤਾਉਣਾ ਆਪਣਾ ਸੰਝਾ ਪਿਆਗਾ ਜੀ ਹੈ ਨਾ
1: ਬਿਲਕੁਲ ਤਾਂ ਜੋ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਰਜਕ੍ਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ ਕਹਿੰਦੇ ਸੁਣਨਾ
0: ਕਤਾਂ ਤੇ ਸੁਣਨਾ ਟਿਆਲੇ ਦੀ ਘੜੀ ਆਪਾਂ ਹੈ ਦਿਖਾ ਵਾਲਾ ਤੁਹਾਂ ਟਿਆਲੇ ਦੀ ਘੜੀ ਬੋਲਾ ਦੀ ਭਈ ਜਹਾਂ ਦਾ ਜਾਣੇ ਦਾ ਵੇਲਾ ਵਾਦਾ ਹਨਾ
1: ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਦਿਖਾ ਤੇ ਬੋਲਦੇ ਬੋਲਦੇ ਪਤਾ ਥੋੜੀ ਚੱਲਦਾ ਲੋਕ ਪਾਊਗਾ ਜਲੂ ਆਹਾਂ ਗੱਲਾਂ ਲੱਗਦੇ ਨਾ ਗਲਾਣਾ
0: ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ
1: ਤਾਂ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਇਤਨੀ ਭਰੀ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਟਾਈਮ ਦਾ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ ਅਗਲੀ ਵਾਰੀ ਮੁਕੀ ਆਂਦਾ ਨਾ
0: ਅਗਲੀ ਵਾਰੀ ਤੁਹਾਂ ਤੇ ਸੁਣੀ ਲੈਣਾ ਗਾਣਾ ਹਨਾ
1: ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ
0: ਜਾਣੇ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਆਪਣੇ ਕਿਸਾਨ ਸਾਥੀਆਂ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਾਰਜਕ੍ਰਮ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਸਹਿ ਤਕਨੀਕੀ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੱਤਾ ਅੰਕਿਤ ਦੇ ਮਾਨ ਹੋਰਾਂ ਪ੍ਰਸਤੁਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਹਿ ਜਤਿੰਦਰ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਹਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਟਿਆਲੇ ਦੇ ਲੋਕੇ ਪਾਓ ਕਹਿੰਦੇ
1: ਗੁਲਾਬੋ ਜੋ ਦਿਆ ਅਨੁਮਤੀ
0: ਅੱਛਾ ਜੀ ਜੈ ਹਿੰਦ।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम किसान वाणी। आकाशवाणी का ये धर्मशाला केंद्र है FM बैंड 103.4 MHz पर। आइए सुनते हैं ये लोकगीत।

FM बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का धर्मशाला केंद्र है। शाम के 7:45 होने को हैं। अब से कुछ ही देर में आकाशवाणी शिमला से प्रादेशिक समाचार रिले किए जाएंगे।

0: हिमाचल के युवाओं, अब सिर्फ सोशल मीडिया पर ओपिनियन देने का नहीं, वोट देने का भी वक्त आ गया है।
1: इस पंचायत इलेक्शन में 50 लाख से ज्यादा वोटर्स अपने मत का अधिकार इस्तेमाल करेंगे और हजारों फर्स्ट टाइम वोटर्स भी बनेंगे इस बदलाव का हिस्सा। 26 मई, 28 मई और 30 मई, याद रखिए ये तारीखें।
0: आपकी एक वोट आपके गाँव

0: की सोच, विकास और लीडरशिप को तय करेगी। तो निकलिए घर से और बनिए जिम्मेदार नागरिक। पंचायत चुनाव 2026 वोट जरूर करें।
1: नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप प्रभा शर्मा से प्रादेशिक समाचार सुनिए। आज के मुख्य समाचार। प्रदेश में जनगणना 2027 का पहला चरण 16 जून से होगा शुरू। पहली से 15 जून तक ऑनलाइन माध्यम से दर्ज की जा सकती है जानकारी। राज्यपाल कविंद्र गुप्ता ने कहा, एक भारत श्रेष्ठ भारत कार्यक्रम से देश की एकता व अखंडता को मिल रही मजबूती। मुख्यमंत्री ने गुणात्मक शिक्षा प्रदान करने में हिमाचल को देश भर में छठा स्थान मिलने पर जताई प्रसन्नता। अध्यापकों व कर्मचारियों को दी बधाई। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने राज्य सरकार पर हर मोर्चे में विफल रहने का लगाया आरोप। कहा, अभी तक एक भी गारंटी नहीं हुई पूरी। और दवा विक्रेताओं की देशव्यापी हड़ताल का प्रदेश में भी दिखा असर। सोलन सहित अन्य जिलों में दवा दुकानें बंद रहने से मरीज परेशान। अब समाचार विस्तार से। हिमाचल प्रदेश में जनगणना 2027 का पहला चरण 16 जून से शुरू हो रहा है, जो 15 जुलाई तक चलेगा। जनगणना के सफल कार्यान्वयन को लेकर आज जनगणना कार्य निदेशालय शिमला में एक बैठक हुई, जिसमें आकाशवाणी, दूरदर्शन, सीबीसी और पत्र सूचना ब्यूरो के अधिकारियों ने भाग लिया। इस दौरान जनगणना को लेकर लोगों को जागरूक करने के लिए रणनीति बनाई गई। जनगणना कार्य निदेशालय की निदेशक दीपशिखा शर्मा ने बताया कि जनगणना 2027 में पहली बार परिवार को स्वगणना का विकल्प भी उपलब्ध होगा और लोग पहली से 15 जून तक ऑनलाइन माध्यम से वेब पोर्टल पर अपनी जानकारी दर्ज कर सकेंगे। उन्होंने प्रदेश के सभी नागरिकों से जनगणना में सहयोग की अपील की है।
2: हिमाचल प्रदेश में जो जनगणना 2027 उसका प्रथम चरण जो कि मकानों की गणना एवं मकान सूचीकरण है, वह 16 जून से 15 जुलाई के भीतर कंडक्ट हो रहा है। और इस बार हमारा जो सेंसस है वो डिजिटल माध्यम से किया जा रहा है। इसके लिए जनगणना में स्वगणना का जो प्रावधान है उसे भी रखा गया है। जो हमारे हिमाचल प्रदेश के नागरिक हैं वो स्वगणना पोर्टल पर जाकर अपनी जानकारी 1 जून से 15 जून के भीतर उसको दर्ज कर सकते हैं। प्लीज आप स्वगणना पोर्टल पर जाकर अपनी जानकारी दर्ज करें। जनगणना की जानकारी जो है वो कॉन्फिडेंशियल है। यदि कोई स्वगणना के विकल्प को भी नहीं चुनता है तो भी जो हमारा प्रगणक है वो हर जगह जाएगा, हर कोने में जाएगा, प्रदेश के हर एक घर को जो है वो कवर किया जाएगा।
1: केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय की महत्वाकांक्षी पहल एक भारत श्रेष्ठ भारत के तहत शुरू किए गए युवा संगम कार्यक्रम के तहत हिमाचल और पुडुचेरी के बीच सांस्कृतिक और शैक्षणिक आदान प्रदान की एक अनूठी पहल चलाई जा रही है। इसी सिलसिले में एनआईटी पुडुचेरी के 48 छात्रों और फैकल्टी समन्वयकों का एक दल केंद्रीय विश्वविद्यालय धर्मशाला पहुंचा है। राज्यपाल कविंद्र गुप्ता ने आज कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में भाग लिया और कहा कि केंद्र सरकार द्वारा शुरू किए गए एक भारत श्रेष्ठ भारत कार्यक्रम से देश की एकता व अखंडता को मजबूती मिलेगी और इसके माध्यम से युवाओं को देश के सभी राज्यों की संस्कृति से रूबरू होने का मौका मिल रहा है।
3: मुझे लगता है कि इस प्रकार के जो कार्यक्रम रहते हैं वो देश की एकता और अखंडता को उसको मजबूत बनाते हैं। पुडुचेरी से जो छात्र आए हैं एनआईटी के माध्यम से, वो इस कार्यक्रम के दौरान पूरे हिमाचल को जानेंगे, यहाँ की सभ्यता संस्कृति, यहाँ का जो देवत्व है उसको अभी जानेंगे। प्रधानमंत्री जी की ये जो पहल है ये निश्चय ही भारत को मजबूत करने में एक नया मील पत्थर साबित है। विविधता में एकता, ये भारत की खूबसूरती है। उसी के आधार पर भारत हजारों वर्षों से दुनिया में एक अलग तरह से है।
1: इस बीच राज्यपाल ने आज कांगड़ा जिले के राजकीय प्राथमिक स्कूल गुजरेड़ा का दौरा कर बच्चों, अध्यापकों और शिक्षा विभाग के अधिकारियों के साथ संवाद किया। उन्होंने विद्यार्थियों को दी जा रही सुविधाओं के बारे में जानकारी हासिल की। कविंद्र गुप्ता ने बच्चों को समर्पण व आत्मविश्वास के साथ शिक्षा हासिल करने के लिए प्रेरित किया। राज्यपाल ने बेहतर कक्षाओं, स्वच्छता सुविधाओं, डिजिटल शिक्षा संसाधनों और ग्रामीण विद्यालयों में अनुकूल शैक्षणिक वातावरण की आवश्यकता पर भी बल दिया। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय द्वारा जारी परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स रिपोर्ट में विद्यार्थियों को गुणात्मक शिक्षा प्रदान करने में हिमाचल को देश भर में छठा स्थान प्राप्त होने पर प्रसन्नता व्यक्त की है। इस रिपोर्ट के अनुसार हिमाचल प्रदेश 7 अंकों की छलांग लगाकर 13वें से 6ठे स्थान पर पहुंच गया है, जबकि राज्यों की श्रेणी में हिमाचल 3रे नंबर पर है। मुख्यमंत्री ने इस उपलब्धि के लिए शिक्षा विभाग के सभी अध्यापकों, अधिकारियों और कर्मचारियों के अलावा विद्यार्थियों को बधाई दी है। उन्होंने कहा कि वर्तमान राज्य सरकार ने गुणात्मक शिक्षा के क्षेत्र में अनेक सुधारात्मक कदम उठाए हैं और सभी स्कूलों में पहली कक्षा से अंग्रेजी माध्यम शुरू कर दिया गया है। सुखविंदर सिंह सुक्खू ने बताया कि सरकार द्वारा अध्यापकों को एक्सपोजर विजिट के लिए विदेश भेजा जा रहा है और उत्कृष्ट विद्यार्थियों को भी विदेश भ्रमण करवाया जा रहा है। ताज़ा समाचारों के लिए आप हमारे फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज शिमला, एक्स हैंडल @AIRNews_शिमला और यूट्यूब चैनल AIR शिमला न्यूज को फॉलो कर सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी शिमला से प्रसारित किए जा रहे हैं। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने राज्य सरकार पर हर मोर्चे में विफल रहने का आरोप लगाया है। उन्होंने आज मंडी जिले में सराज विधानसभा क्षेत्र के अनेक स्थानों पर जिला परिषद चुनाव के भाजपा समर्थित प्रत्याशियों के पक्ष में जनसभाओं को संबोधित किया। जयराम ठाकुर ने कहा कि कांग्रेस सरकार पिछले वर्ष आपदा के दौरान सड़कों पर गिरे मलबे को हटाने में भी नाकाम रही है और ग्रामीण रूटों पर चलने वाली बसें अभी भी बंद हैं। उन्होंने कहा कि नगर पंचायत व नगर परिषदों के चुनाव परिणामों से ये स्पष्ट हो गया है कि अगले वर्ष होने वाले विधानसभा चुनावों में भाजपा प्रचंड बहुमत से सत्ता में आएगी।
4: ये नगर परिषद नगर पंचायत के चुनाव का संदेश बड़ा साफ और स्पष्ट है, कोई कंफ्यूजन नहीं है इसमें। और हिमाचल प्रदेश में आने वाले समय में जब विधानसभा का चुनाव होगा, कांग्रेस का नाम लेने वाला आदमी नहीं होगा। ये आपको बताऊं, इस तरह की स्थिति है। सारे कामकाज, यहाँ के विकास कार्य सारे वो तो बंद पड़े हैं, लेकिन उसके बावजूद और भी चीजें ऐसी झूठी गारंटियां देकर के सत्ता में आए, अभी वो गारंटियां धरी की धरी पड़ी। इन सारी बातों का जवाब देने का वक्त आ गया है।
1: केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई की शिमला इकाई ने आज शिमला में भ्रष्टाचार निवारण को लेकर एक जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया। इस मौके पर सीबीआई के पुलिस अधीक्षक राजेश चहल ने विभिन्न विभागों के अधिकारियों, व्यापारिक संगठनों के प्रतिनिधियों और पत्रकारों को सीबीआई की कार्यप्रणाली से अवगत करवाया। उन्होंने बताया कि भ्रष्टाचार के मामले से केवल एक व्यक्ति नहीं बल्कि समाज के सभी लोग प्रभावित होते हैं। राजेश चहल ने भ्रष्टाचार मुक्त समाज के निर्माण में आम लोगों की भूमिका को अहम बताया और सभी से रिश्वतखोरी व भ्रष्टाचार के मामलों की सूचना तुरंत विभाग को देने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि छोटी रकम के लेन देन पर भी सीबीआई मामला दर्ज करेगी और सीबीआई के पास स्टाफ की कोई कमी नहीं है। राजेश चहल ने लोगों से अपील की कि यदि कोई अधिकारी व कर्मचारी दबाव में डालकर रिश्वत की मांग करे तो तुरंत उसकी शिकायत करें। शिमला के ऐतिहासिक रिज मैदान पर आज से 2 दिवसीय शिक्षा व करियर मार्गदर्शन मेला शुरू हुआ। शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने इसका शुभारंभ किया। इस दौरान विद्यार्थियों व अभिभावकों को उच्च शिक्षा, करियर विकल्पों और विभिन्न व्यावसायिक कोर्स के बारे में जानकारी दी जा रही है। रोहित ठाकुर ने कहा कि इस तरह के एजुकेशन एक्सपो बच्चों के लिए मददगार साबित होते हैं और उन्हें बेहतर करियर चुनने का मार्गदर्शन मिलता है। इस मौके पर शिक्षा मंत्री ने हाल ही में घोषित हुए 10वीं व जमा 2 कक्षा के परिणामों में 85% या इससे अधिक अंक प्राप्त करने वाले लगभग 150 विद्यार्थियों को सम्मानित किया। ई फार्मेसी के विरोध में दवा विक्रेताओं के राष्ट्रव्यापी बंद के आह्वान का आज प्रदेश में भी असर देखने को मिला। सोलन जिले की लगभग 1500 दवा दुकानें आज पूरी तरह बंद रही। दवा व्यापारियों ने सरकार से ऑनलाइन दवा की खरीद पर रोक लगाने की मांग की है। सोलन जिला केमिस्ट एसोसिएशन के सहसचिव विपुल शर्मा ने बताया कि ऑनलाइन दवा खरीद से दवा व्यापारियों का व्यापार खत्म हो रहा है और लोगों को नकली दवाएं ही मिल रही हैं।
5: हमारे इस बंद में सभी प्रकार की दवाई की दुकानें, सभी प्रकार की होलसेल की एजेंसियां सभी आज पूर्ण रूप से बंद है। हमारी स्ट्राइक 19 तारीख रात 12 बजे से 20 तारीख रात 12 बजे तक जारी रहेगी। ई फार्मेसी जो है वो ऑनलाइन दवाइयों का जो व्यापार है उसके विरोध में हमने काफी टाइम से सरकार से हमारी बातचीत चल रही थी, मगर वो कोई अभी तक संज्ञान नहीं निकला। और दूसरा हमारा है जो हमारी स्पूरियस मेडिसिन भी ऑनलाइन फार्मेसी से आती है, नकली दवाएं जो ऑनलाइन में मिलती है उसका भी विरोध हम करते हैं।
1: शिमला पुलिस ने नशा तस्करों के खिलाफ विशेष अभियान चलाया और बैकवर्ड लिंकेज स्थापित कर अलग अलग राज्यों से मुख्य आरोपियों को गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल की है। पुलिस मुख्यालय शिमला के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अभिषेक धीमान ने आज शिमला में बताया कि उत्तर प्रदेश और पंजाब से दो मुख्य चिट्टा तस्कर गिरफ्तार किए गए हैं। उन्होंने कहा कि नशा तस्करों के खिलाफ शिमला पुलिस की कार्रवाई जारी रहेगी। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रदेश में जनगणना 2027 का पहला चरण 16 जून से होगा शुरू। पहली से 15 जून तक ऑनलाइन माध्यम से दर्ज की जा सकती है जानकारी। राज्यपाल कविंद्र गुप्ता ने कहा, एक भारत श्रेष्ठ भारत कार्यक्रम से देश की एकता व अखंडता को मिल रही मजबूती। मुख्यमंत्री ने गुणात्मक शिक्षा प्रदान करने में हिमाचल को देश भर में 6ठा स्थान मिलने पर जताई प्रसन्नता। अध्यापकों व कर्मचारियों को दी बधाई। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने राज्य सरकार पर हर मोर्चे में विफल रहने का लगाया आरोप। कहा, अभी तक एक भी गारंटी नहीं हुई पूरी। और दवा विक्रेताओं की देशव्यापी हड़ताल का प्रदेश में भी दिखा असर। सोलन सहित अन्य जिलों में दवा दुकानें बंद रहने से मरीज परेशान। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं कल सुबह 9:20 पर। नमस्कार।
6: अभी आप प्रादेशिक समाचार सुन रहे थे। ये समाचार आकाशवाणी के हमीरपुर और धर्मशाला केंद्रों के साथ साथ एफएम शिमला पर भी प्रसारित किए जा रहे थे। मीडियम वेव 387.6 मीटर और एफएम बैंड 103.7 मेगाहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी शिमला से बोल रहे हैं। आइए सुनें देशगान।

एफएम बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का धर्मशाला केंद्र है। शाम के 8 बजे हैं, आइए सुनते हैं विविध संगीत का कार्यक्रम सबरस।

नुसरत फतेह अली खान को अभी आपने सुना। संगीत के विभिन्न रूपों के कार्यक्रम सबरस का आनंद आप ले रहे हैं एफएम धर्मशाला के संग। और ये रहा कार्यक्रम का अगला गीत, जिसे गाया है सतिंदर सरताज ने।

0: नमस्कार, ये आकाशवाणी है। 9 दशक यानी 90 साल जब टीवी का पर्दा कोरा था और इंटरनेट एक सपना, तब धुन की इस लहर ने भारत के हर घर में अपनी जगह बनाई। क्रिकेट के रोमांचक आंखों देखे हाल से लेकर मन की बात के संवाद तक,
1: आसमान में सिर उठाकर, घने बादलों को चीरकर रोशनी का संकल्प ले, अभी तो सूरज उगा है।
0: आकाशवाणी सिर्फ एक रेडियो स्टेशन नहीं, हर भारतीय के संघर्ष और सफलता का साक्षी है। सूचना, शिक्षा और मनोरंजन का सबसे भरोसेमंद साथी। आज भी पहाड़ों की चोटी से लेकर सुदूर गांव तक हमारी आवाज ही आपकी पहचान है।

इसी गीत के साथ विविध संगीत का ये कार्यक्रम सबरस यहीं पर संपन्न होता है। आकाशवाणी का ये धर्मशाला केंद्र है, एफएम बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। रात्रि के 8:30 हुए हैं। आइए सुनते हैं देशगान और कार्यक्रम का पहला देशभक्ति गीत महेंद्र कपूर की आवाज़ में।

एआर रहमान को अभी आपने सुना। आप सुन रहे हैं देशगान आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से, और ये रहा कार्यक्रम का अंतिम देशभक्ति गीत।

0: इसी गीत के साथ देशगान का ये कार्यक्रम यहीं पर संपन्न होता है। आकाशवाणी का ये धर्मशाला केंद्र है FM बैंड 103.4 MHz पर। रात्रि के 8:45 होने को है। अब आकाशवाणी दिल्ली से पहले समाचार संध्या और रात्रि 9 News@9 रिले की जाएगी।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं लवली निगम। भारत और इटली अपने संबंधों को विशेष रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाने पर सहमत। दोनों पक्षों ने दुर्लभ खनिजों, रक्षा, कृषि सहित प्रमुख क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग को बढ़ावा देने के लिए 15 समझौते किए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को संयुक्त राष्ट्र खाद्य कृषि संगठन का सर्वोच्च सम्मान एग्रीकोला मेडल दिया गया। उन्होंने ये पुरस्कार भारत के किसानों को समर्पित किया। पश्चिम बंगाल सरकार ने नागरिकता संशोधन अधिनियम के अंतर्गत अवैध बांग्लादेशी घुसपैठियों को तत्काल वापस भेजने की कार्यवाही शुरू करने की घोषणा की। संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट के अनुसार पश्चिम एशिया संघर्ष के बावजूद भारत इस वर्ष 6.4% की वृद्धि के साथ विश्व की सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था बना रहेगा। मौसम विभाग ने उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और विदर्भ में अगले 2 से 3 दिन में भीषण गर्मी का रेड अलर्ट जारी किया। और IPL क्रिकेट में मेजबान कोलकाता नाइट राइडर्स और मुंबई इंडियंस के बीच मैच जारी। अब समाचार विस्तार से। भारत और इटली ने आज कृषि, दुर्लभ खनिजों, आयुर्वेद, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, समुद्री परिवहन और बंदरगाह के क्षेत्र में सहयोग को और बढ़ाने के लिए 15 महत्वपूर्ण समझौते किए। इन समझौतों पर आज रोम में प्रधानमंत्री मोदी और इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी के बीच प्रतिनिधिमंडल स्तर की बातचीत के बाद हस्ताक्षर किए गए। दोनों देशों ने भारतीय नर्सों के इटली आने जाने को आसान बनाने के लिए भी एक समझौता किया। एक अन्य समझौता लोथल में राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर के विकास पर केंद्रित है। दोनों देशों ने कर से जुड़े अपराधों, धन शोधन और आतंकवाद के लिए पैसे जुटाने के खिलाफ तालमेल को मजबूत करने पर भी सहमति व्यक्त की। वार्ता के बाद संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में श्री मोदी ने घोषणा की कि भारत और इटली ने संबंधों को विशेष रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक ले जाने का फैसला किया है।
2: हमने हमारी भावी साझेदारी को और सशक्त बनाने के लिए विस्तृत रूप से चर्चा की। भारत इटली ज्वाइंट स्ट्रेटेजिक एक्शन प्लान 2025-2029 हमारी साझेदारी को एक प्रैक्टिकल और फ्यूचरिस्टिक ढांचा प्रदान करता है। हम इस पर समयबद्ध तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। हमारे साझा प्रयासों में द्विपक्षीय व्यापार 20 बिलियन यूरो के लक्ष्य की ओर तेजी से बढ़ रहा है।
1: श्री मोदी ने कहा कि दोनों देश भारत इटली नवाचार केंद्र स्थापित करने पर काम कर रहे हैं।
2: दोनों देशों के स्टार्टअप्स, रिसर्च सेंटर्स और उद्योगों को आपस में जोड़ने के लिए हम इंडिया इटली इनोवेशन सेंटर पर काम कर रहे हैं। हमारी सेनाओं के साथ साथ दोनों देशों के रक्षा उद्योगों के बीच भी सहयोग बढ़ रहा है। मैरिटाइम पावर्स के रूप में भारत और इटली के बीच करीबी सहयोग स्वाभाविक है। हम मिलकर शिपिंग, पोर्ट्स मॉडर्नाइजेशन, लॉजिस्टिक और ब्लू इकोनॉमी पर काम करेंगे।
1: प्रधानमंत्री ने बताया कि दोनों देश जहाजरानी, बंदरगाहों के आधुनिकीकरण, लॉजिस्टिक्स और समुद्री अर्थव्यवस्था के क्षेत्रों में भी मिलकर काम करेंगे। श्री मोदी ने कहा कि दोनों देश आतंकवाद को मानवता के लिए गंभीर खतरा मानते हैं।
2: भारत और इटली एकमत है कि आतंकवाद मानवता के लिए गंभीर चुनौती है। टेरर फाइनेंसिंग के खिलाफ हमारी साझा पहल ने पूरे विश्व के सामने एक महत्वपूर्ण उदाहरण प्रस्तुत किया है। यूक्रेन, पश्चिम एशिया तथा अन्य तनावों को लेकर हम लगातार संपर्क में रहे हैं। भारत का मत स्पष्ट है कि सभी समस्याओं का समाधान डायलॉग और डिप्लोमेसी के माध्यम से होना चाहिए।
1: सुश्री जॉर्जिया मेलोनी ने कहा कि दोनों देशों के बीच की दोस्ती सम्मान और आपसी विश्वास पर आधारित है। इसके बाद रोम में प्रधानमंत्री मोदी को संयुक्त राष्ट्र खाद्य और कृषि संगठन का सर्वोच्च सम्मान एग्रीकोला मेडल से सम्मानित किया गया। उन्होंने इस सम्मान को भारत के लाखों किसानों, पशुपालकों, मछली पालकों, कृषि वैज्ञानिकों और श्रमिकों को समर्पित किया।
2: ये भारत के करोड़ों किसानों, पशुपालकों, मत्स्य पालकों, कृषि वैज्ञानिकों और और हमारे श्रमिकों का सम्मान है। यह भारत की उस अटूट प्रतिबद्धता का भी सम्मान है जिसके केंद्र में मानव कल्याण, खाद्य सुरक्षा और सस्टेनेबल डेवलपमेंट है। मैं इस मेडल को अत्यंत विनम्रता के साथ स्वीकार करते हुए भारत के अन्नदाताओं को यह मेडल समर्पित करता हूँ।
1: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ऑपरेशन सिंदूर को भारत के एक मजबूत, आत्मविश्वासी और सक्षम राष्ट्र में परिवर्तन का प्रमाण बताया है। दक्षिण कोरिया में प्रवासी भारतीयों से बातचीत में रक्षा मंत्री ने कहा कि ऑपरेशन इस बात का प्रमाण है कि भारत किसी भी रूप में आतंकवाद को कतई बर्दाश्त नहीं करेगा। श्री सिंह ने रक्षा विनिर्माण में आत्मनिर्भरता हासिल करने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई।
3: 12 वर्षों के अंदर ही हम 40,000 करोड़ से ज्यादा का इस समय हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं, नहीं तो 2 साल के अंदर 50,000 करोड़ के एक्सपोर्ट, डिफेंस आइटम्स के एक्सपोर्ट की जानकारी आपको मिल जाएगी। और हमारी गवर्नमेंट के रहते डिफेंस सेक्टर में एक मेजर चेंज आया है। भारत की पॉलिसी आज रिएक्टिव नहीं बल्कि प्रोएक्टिव है। और मेरा भी यह व्यक्तिगत रूप से मानना है कि राष्ट्रीय सुरक्षा के किसी कीमत पर किसी भी सूरत में समझौता नहीं किया जाएगा। और इसी सोच के साथ भारत इंडिजिनस डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग को तेजी के साथ बढ़ावा दे रहा है।
1: रक्षा मंत्री ने सोल में भारत दक्षिण कोरिया रक्षा उद्योग व्यापार गोलमेज सम्मेलन की अध्यक्षता भी की। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

सुरक्षा स्कीम के टेलीलॉ न्याय बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेलीलॉ के टोल फ्री नंबर 1-4-4-5-4 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।

0: के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने नागरिकता संशोधन अधिनियम CAA के अंतर्गत अवैध बांग्लादेशी घुसपैठियों को देश से निकालने की प्रक्रिया तुरंत शुरू करने की घोषणा की है। सीमा पर बाड़ लगाने के लिए सीमा सुरक्षा बल को जमीन सौंपने के एक समारोह के दौरान नाबन्ना में उन्होंने कहा कि अब घुसपैठियों को सीधे सीमा सुरक्षा बल के हवाले कर दिया जाएगा, वहां से उन्हें देश से निकालने के लिए BDR के साथ इंतजाम किए जाएंगे। उन्होंने इसे नए तरीके को पहचानो हटाओ और देश से निकालो बताया। गुजरात सरकार ने एक राष्ट्र एक चुनाव विधेयक का समर्थन किया है। एक राष्ट्र एक चुनाव पर बनी संयुक्त संसदीय समिति ने आज गुजरात के गांधीनगर में विभिन्न राजनीतिक दलों के प्रतिनिधिमंडल के साथ चर्चा की। उप मुख्यमंत्री हर्ष संघवी ने कहा कि विधेयक को जल्द से जल्द लागू करना चाहिए।
2: हमने आज JPC को गुजरात सरकार की ओर से खास तौर पे ये नम्र निवेदन किया है कि वन नेशन वन इलेक्शन जल्द से पास हो, सभी राज्य के नागरिकों को एक समान हित मिले, सभी लोगों के काम जल्द हो पाए, मशीनरी सरकारी जो है उसका कम से कम समय बिगड़े, वही हित में आज हमने वन नेशन वन इलेक्शन को हमने हमारा सहयोग दिया है और हमने ये खास तौर पे विनती की है इसको जल्द से जल्द लागू किया जाए।
1: इस बीच कांग्रेस सहित अन्य राजनीतिक दलों ने एक राष्ट्र एक चुनाव का विरोध किया। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने NEET UG पुनर्परीक्षा के सुरक्षित निष्पक्ष और सुचारू संचालन के लिए कड़ी निगरानी और पुख्ता सुरक्षा व्यवस्था की आवश्यकता पर बल दिया है। श्री प्रधान ने आज नई दिल्ली में केंद्रीय सुरक्षा खुफिया एजेंसियों के साथ उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक में ये बात कही। इस दौरान गुमनाम ऑनलाइन समूहों के माध्यम से प्रतियोगी परीक्षाओं से संबंधित गलत सूचनाओं के बढ़ते प्रसार पर चिंता व्यक्त की गई। इस बीच दिल्ली की एक अदालत ने नीट परीक्षा के प्रश्न पत्र लीक मामले में 5 आरोपियों को 2 जून तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। अदालत ने एक अन्य आरोपी की CBI हिरासत भी बढ़ा दी है। नीति आयोग के अटल इनोवेशन मिशन ने जम्मू कश्मीर में एक सशक्त नवाचार इकोसिस्टम के निर्माण के लिए 500 नई अटल टिंकरिंग लैब स्थापित करने के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी है। नई लैब अटल नवाचार मिशन के व्यापक सीमावर्ती क्षेत्र कार्यक्रम का एक प्रमुख घटक है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे NewsOnAIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं।

0: के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: ये आकाशवाणी है। ईरान संघर्ष के कारण वैश्विक अनिश्चितता के बावजूद संयुक्त राष्ट्र ने इस वर्ष भारत की विकास दर 6.4% रहने का अनुमान लगाया है। इससे भारत विश्व की सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था बना रहेगा। संयुक्त राष्ट्र के वरिष्ठ अर्थशास्त्री इंगो पिटले ने कहा कि भारत की मजबूत उपभोक्ता मांग, सार्वजनिक निवेश और सेवा निर्यात में वृद्धि इसकी अर्थव्यवस्था को सहारा दे रही हैं। और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ हैं प्राची प्रिया।
2: बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स 118 अंक बढ़कर 75,318 पर बंद हुआ, जबकि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 41 अंक की बढ़त के साथ 23,659 पर आ गया। अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया $1 के मुकाबले 30 पैसे कमजोर होकर अपने सबसे निचले स्तर यानी 96.83 रुपए पर बंद हुआ।
1: और अब जानकारी मौसम की। मौसम विभाग ने अगले 2 से 3 दिन के लिए उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और विदर्भ में भीषण लू की स्थिति के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, पंजाब, बिहार, छत्तीसगढ़, तटीय आंध्र प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, ओडिशा, राजस्थान, तेलंगाना और उत्तराखंड में भी कल तक ऐसी ही स्थिति रहने की संभावना है। विभाग ने अगले 2 दिन के लिए पश्चिम बंगाल के गांगेय क्षेत्र, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकल में भी गर्म और उमस भरे मौसम का अनुमान व्यक्त किया है। विभाग ने कल राजधानी में लू की स्थिति के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। एक रिपोर्ट।
3: मौसम विभाग के अनुसार कल दिल्ली में अधिकतम तापमान 45 से 47 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है, जबकि न्यूनतम तापमान 29 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहेगा। पिछले 24 घंटों में राष्ट्रीय राजधानी में अधिकतम तापमान 44.5 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। मौसम विभाग ने बताया कि कल दिन के समय राष्ट्रीय राजधानी में 15 से 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दक्षिण पश्चिमी हवाएं चलने की संभावना है। सौम्या के साथ शिवांग मिश्रा, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: इस बीच विभाग ने कल अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, केरलम, माहे, दक्षिण आंतरिक कर्नाटक, पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्रों और सिक्किम में भारी वर्षा का पूर्वानुमान लगाया है। सर्वोच्च न्यायालय ने जनगणना 2027 के अंतर्गत जाति गणना कराने के केंद्र सरकार के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका को खारिज कर दिया है। अदालत ने कहा है कि ये मुद्दा सरकार के नीतिगत अधिकार क्षेत्र में आता है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा है कि पिछड़े वर्गों के लिए कल्याणकारी उपाय तैयार करने के लिए सरकार को उनकी संख्या जानना जरूरी है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने आज नई दिल्ली में मंत्रालय की हिंदी सलाहकार समिति की बैठक की अध्यक्षता की। श्री गडकरी ने कहा कि हिंदी केवल एक भाषा नहीं बल्कि ये राष्ट्र को एकजुट करने का सशक्त माध्यम है। आईपीएल क्रिकेट में कोलकाता के ईडन गार्डन्स में कोलकाता नाइट राइडर्स का मुकाबला मुंबई इंडियंस से हो रहा है। फिलहाल बारिश के कारण मैच रुका हुआ है। मैच रुकने तक मुंबई इंडियंस ने 8 ओवर में 4 विकेट पर 57 रन बना लिए थे। उधर मलेशिया मास्टर्स बैडमिंटन सुपर 500 में आज अश्मिता चलिहा, देविका सिहाग और मालविका बंसोड महिला सिंगल्स के प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं। संस्कृति मंत्रालय ने वंदे मातरम फ्रेम्स राष्ट्रीय फिल्म निर्माण प्रतियोगिता के लिए प्रविष्टियां जमा करने की अंतिम तिथि 7 मई से बढ़ाकर 31 मई कर दी है। प्रतियोगिता 3 श्रेणियों में आयोजित की जा रही है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत और इटली अपने संबंधों को विशेष रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाने पर सहमत। दोनों पक्षों ने महत्वपूर्ण खनिजों, रक्षा, कृषि सहित प्रमुख क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग को बढ़ावा देने के लिए 15 समझौते किए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को संयुक्त राष्ट्र खाद्य कृषि संगठन का सर्वोच्च सम्मान एग्रीकोला मेडल दिया गया। उन्होंने ये पुरस्कार भारत के किसानों को समर्पित किया। पश्चिम बंगाल सरकार ने नागरिकता संशोधन अधिनियम के अंतर्गत अवैध बांग्लादेशी घुसपैठियों को तत्काल वापस भेजने की कार्रवाई शुरू करने की घोषणा की। संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट के अनुसार पश्चिम एशिया संघर्ष के बावजूद भारत इस वर्ष 6.4% की वृद्धि के साथ विश्व की सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था बना रहेगा। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
4: गुड इवनिंग, दिस इज आकाशवाणी एंड आई एम वीसी प्रमोद विद द न्यूज एट 9। द हेडलाइंस। India and Italy agree to elevate ties to special strategic partnership. Both sides ink 15 agreements to boost bilateral cooperation in key areas including critical minerals, defense and agriculture. Prime Minister Narendra Modi receives FAO's highest honor, Agricola Medal, dedicates award to farmers of India. West Bengal government announces immediate start of deportation proceedings against illegal Bangladeshi infiltrators under Citizenship Amendment Act. India to remain world's first growing major economy with 6.4% growth this year despite West Asia conflict, says UN report. IMD issues red alert for severe heatwave conditions over Uttar Pradesh, Madhya Pradesh and Vidarbha for the next 2 to 3 days. And in IPL cricket, match between hosts Kolkata Knight Riders and Mumbai Indians underway at Eden Gardens. India and Italy today finalized 15 outcomes across diverse sectors. The agreements were signed following delegation-level talks between Prime Minister Narendra Modi and his Italian counterpart Giorgia Meloni in Rome today. The outcomes mark the elevation of bilateral relations to a special strategic partnership. Both sides also inked several memorandums of understanding to deepen cooperation in key areas including critical minerals, defense, agriculture, Ayurveda, science and technology, maritime transport and ports. India and Italy also agreed to strengthen coordination against tax crimes, money laundering and terror financing. In a press statement after the talks, Prime Minister Modi said the two sides deliberated extensively on enhancing bilateral ties.
5: पिछले लगभग 3.5 वर्षों में मुझे कई बार प्राइम मिनिस्टर मेलोनी से मिलने का अवसर मिला है। यह भारत और इटली के बीच करीबी सहयोग और सामंजस्य को दर्शाता है। उनके नेतृत्व में हमारे संबंधों को नई गति, नई दिशा और नया आत्मविश्वास मिला है। मुझे खुशी है कि हम अपने संबंधों को अपग्रेड करते हुए स्पेशल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की घोषणा कर रहे हैं।
4: Mr. Modi said India-Italy Joint Strategic Action Plan 2025-29 will provide a practical and futuristic framework for bilateral ties. He said both sides are working towards establishing an India-Italy Innovation Center and noted that the India-Italy Defense Industrial Roadmap has opened new avenues for co-development and co-production in the defense sector.
5: दोनों देशों के स्टार्टअप्स, रिसर्च सेंटर्स और उद्योगों को आपस में जोड़ने के लिए हम इंडिया इटली इनोवेशन सेंटर पर काम कर रहे हैं। हमारी सेनाओं के साथ साथ दोनों देशों के रक्षा उद्योगों के बीच भी सहयोग बढ़ रहा है। मैरिटाइम पावर्स के रूप में भारत और इटली के बीच करीबी सहयोग स्वाभाविक है। हम मिलकर शिपिंग, पोर्ट्स मॉडर्नाइजेशन, लॉजिस्टिक और ब्लू इकोनॉमी पर काम करेंगे।
4: Mr. Modi stressed that India and Italy are united in viewing terrorism as a serious threat to humanity and underlined the need for strong action against terror financing networks.
5: भारत और इटली एकमत है कि आतंकवाद मानवता के लिए गंभीर चुनौती है। टेरर फाइनेंसिंग के खिलाफ हमारी साझा पहल ने पूरे विश्व के सामने एक महत्वपूर्ण उदाहरण प्रस्तुत किया है। यूक्रेन, पश्चिम एशिया तथा अन्य तनावों को लेकर हम लगातार संपर्क में रहे हैं। भारत का मत स्पष्ट है कि सभी समस्याओं का समाधान डायलॉग और डिप्लोमेसी के माध्यम से होना चाहिए।
4: Speaking on the occasion, Italian Prime Minister Meloni emphasized the importance of ensuring freedom of navigation in the Indo-Pacific and strengthening cooperation across key sectors.
6: Italy and India share a joint vision on many of the huge challenges of our times, rules, economic security, the resilience of the value chains, the promotion of peace, inclusive development. It is extremely important to have freedom on navigation in the Indo-Pacific sector is where we share the same vision of a free, inclusive and open Indo-Pacific.
4: Prime Minister Modi also called on Italian President Sergio Mattarella and held discussions on further expanding the bilateral partnership in areas such as trade, technology, clean energy and culture. Later in the day, Prime Minister Modi was conferred the prestigious Agricola Medal by the Food and Agriculture Organization FAO at its headquarters in Rome. The medal was presented by FAO Director General Chu Dongyu. Receiving the award, Mr. Modi dedicated the honor to India's millions of farmers, livestock rearers, fish farmers, agricultural scientists and workers. Speaking on the occasion, the Prime Minister said the award reflects India's unwavering commitment

FM बैंड 103.4 MHz पर ये आकाशवाणी का धर्मशाला केंद्र है। रात्रि के 9:15 हुए हैं। पेश है कार्यक्रम एक ही कलाकार, और आज के इस कार्यक्रम के अंतर्गत आप सुनेंगे गीतकार वायु श्रीवास्तव के लिखे गीत।

श्रोता और गीतकार वायु श्रीवास्तव, जिनका असली नाम वैभव श्रीवास्तव है, एक प्रसिद्ध भारतीय गायक, गीतकार और संगीतकार हैं। हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में उन्हें वायु के नाम से जाना जाता है। उन्होंने तनु वेंट्स, मनु रिटर्न्स, मसान, बरेली की बर्फी, बधाई हो, सुल्तान, ड्राइव, हाउसफुल 4, शुभ मंगल ज्यादा सावधान और लुका छुपी ऐसी अनेक फिल्मों के गीत लिखे। तो आइए सुनते हैं उन्हीं का लिखा सुल्तान फिल्म से ये गीत।

एक ही कलाकार और इसमें गीतकार वायु श्रीवास्तव के लिखे गीत आप आज सुन रहे हैं आकाशवाणी धर्मशाला केंद्र से। और वायु श्रीवास्तव, जी हाँ, इनका जन्म मध्य प्रदेश में हुआ और इन्हें खास तौर पर युवाओं के बीच लोकप्रिय, मज़ेदार और आधुनिक शैली के गीत लिखने के लिए जाना जाता है। तो आइए सुनते हैं एक और गीत जिसे हमने लिया है फिल्म शुभ मंगल ज्यादा सावधान से।

इसी गीत के साथ एक ही गीतकार कार्यक्रम यहीं पर संपन्न होता है। आकाशवाणी का ये धर्मशाला केंद्र है एफएम बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज पर। रात्रि के 9:30 हुए हैं। अब आकाशवाणी दिल्ली से कार्यक्रम चर्चा का विषय रिले किया जाएगा।

0: अक्षरों में दर्ज हो गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नॉर्डिक देशों की यात्रा पर थे। तारीख थी 17 मई 2026 और जगह थी स्वीडन का गोथेनबर्ग शहर। स्वीडन के प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टर्सन की उपस्थिति में प्रधानमंत्री मोदी को स्वीडन के सर्वोच्च नागरिक सम्मान रॉयल ऑर्डर ऑफ द पोलर स्टार से नवाजा गया। साल 1748 में स्थापित हुआ ये ऐतिहासिक सम्मान किसी विदेशी शासनाध्यक्ष को मिलना ये दर्शाता है कि आज यूरोप की नजरों में भारत का स्थान क्या है। ये प्रधानमंत्री मोदी का 31वां अंतर्राष्ट्रीय सम्मान था।
1: कुछ समय पहले मुझे स्वीडन के रॉयल ऑर्डर ऑफ द पोलर स्टार के सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया गया। ये सिर्फ मेरा सम्मान नहीं है, यह 140 करोड़ भारतवासियों का सम्मान है। यह स्वीडन के हमारे उन सभी साथियों का भी सम्मान है जिन्होंने भारत स्वीडन संबंधों को समृद्ध किया, एक मजबूत आधार दिया।
0: कहानी यही नहीं रुकी। इसके ठीक अगले ही दिन यानी 18 मई 2026 को नॉर्वे की राजधानी ओस्लो का शाही महल एक और इतिहास का गवाह बना। नॉर्वे के राजा किंग हेराल्ड पंचम ने प्रधानमंत्री मोदी को नॉर्वे के सर्वोच्च सम्मान ग्रैंड क्रॉस ऑफ द रॉयल नॉर्वेजियन ऑर्डर ऑफ मेरिट से विभूषित किया। दो नॉर्डिक देशों से मिले इन सम्मानों ने साबित कर दिया कि भारत और नॉर्डिक देशों के बीच की साझेदारी अब एक नई रणनीतिक ऊंचाई पर पहुंच चुकी है। आइए समय के पहिए को थोड़ा पीछे ले चलते हैं। साल 2014 में शुरू हुआ ये कूटनीतिक सफर साल 2016 में सम्मानों की एक ऐसी श्रृंखला में बदल गया जो रुकने का नाम ही नहीं ले रही। साल 2016 में खाड़ी देशों के साथ भारत के रिश्तों में एक नया अध्याय जुड़ा। सऊदी अरब ने प्रधानमंत्री मोदी को अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ किंग अब्दुल अजीज सैश से नवाजा। इसी साल पड़ोसी देश अफगानिस्तान ने उन्हें स्टेट ऑर्डर ऑफ गाजी आमिर अमानुल्ला खान प्रदान किया। वर्ष 2018 में भारत की पर्यावरण नीतियों को वैश्विक पहचान मिली जब संयुक्त राष्ट्र संघ ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पर्यावरण के क्षेत्र के सबसे बड़े पुरस्कार चैंपियंस ऑफ द अर्थ से सम्मानित किया। इसी साल फिलिस्तीन ने उन्हें ग्रैंड कॉलर ऑफ द स्टेट ऑफ फिलिस्तीन दिया। दक्षिण कोरिया ने वैश्विक शांति और आर्थिक विकास के लिए सियोल शांति पुरस्कार भी प्रदान किया। वर्ष 2019 तो जैसे वैश्विक पुरस्कारों का वर्ष बन गया। दुनिया के नक्शे पर भारत की दोस्ती का दायरा कितना बड़ा था ये इन पुरस्कारों की सूची देखकर समझ आता है। संयुक्त अरब अमीरात का सर्वोच्च सम्मान ऑर्डर ऑफ जायद, रूस का सबसे प्रतिष्ठित ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयू द अपोस्टल, मालदीव का ऑर्डर ऑफ द डिस्टिंग्विश्ड रूल ऑफ इज्जुद्दीन और बहरीन का किंग हमद ऑर्डर ऑफ द रेनेसा शामिल रहा। 2019 में ही बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन ने स्वच्छ भारत अभियान की सफलता के लिए उन्हें ग्लोबल गोलकीपर अवार्ड से सम्मानित किया। जब साल 2020 में पूरी दुनिया सदी की सबसे बड़ी महामारी कोरोना से जूझ रही थी तब भारत की वैक्सीन मैत्री ने दुनिया का दिल जीता। इसी दौरान अमेरिका ने प्रधानमंत्री मोदी को अपने बेहद प्रतिष्ठित सैन्य सम्मान लीजन ऑफ मेरिट से सम्मानित किया। 2021 में हमारे पड़ोसी देश भूटान ने अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ द ड्रैगन किंग से भारत के प्रति अपनी अटूट निष्ठा व्यक्त की। साल 2023 में जब भारत G20 की मेजबानी कर रहा था और उसी वर्ष जब प्रधानमंत्री मोदी पापुआ न्यू गिनी पहुंचे तो वहां के प्रधानमंत्री ने प्रोटोकॉल तोड़कर पैर छूकर उनका स्वागत किया और उन्हें ऑर्डर ऑफ लोगोहू से नवाजा। इसी तरह फिजी ने कमियान ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी और मिस्र ने अपना ऐतिहासिक ऑर्डर ऑफ द नाइल प्रधानमंत्री मोदी को प्रदान किया। वर्ष 2023 में ही फ्रांस के राष्ट्रीय दिवस पर प्रधानमंत्री मोदी को फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक और सैन्य सम्मान ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया, जिसके बाद ग्रीस ने भी उन्हें ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑनर दिया। साल 2024 और 25 में तो ये फहरिस्त और लंबी हो गई। नाइजीरिया का ग्रैंड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द नाइजर, गयाना का ऑर्डर ऑफ एक्सीलेंस, डोमिनिका का सर्वोच्च सम्मान और कुवैत का ऑर्डर ऑफ मुबारक अल कबीर उन्हें प्रदान किया गया। इसके बाद साल 2025 में बार्बाडोस, श्रीलंका का मित्र विभूषण, मॉरिशस का सर्वोच्च राष्ट्रीय सम्मान ग्रैंड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टार एंड की ऑफ द इंडियन ओशियन उन्हें प्रदान किया गया। घाना ने द ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टार ऑफ घाना, साइप्रस का सर्वोच्च सम्मान ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ मकारियोस, नामीबिया का सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ द मोस्ट एनिशियंट वेलविचिया मिराबिलिस, ट्रिनिदाद और टोबैगो ने द ऑर्डर ऑफ द रिपब्लिक ऑफ ट्रिनिदाद एंड टोबैगो और ब्राजील ने द ग्रैंड कॉलर ऑफ द नेशनल अवार्ड ऑफ द सदर्न क्रॉस से भारत के बढ़ते कदमों का स्वागत किया। इसके अलावा ओमान की तरफ से फर्स्ट क्लास ऑफ द ऑर्डर ऑफ ओमान और इथियोपिया की तरफ से ग्रेट ऑनर निशान ऑफ इथियोपिया भी प्रधानमंत्री मोदी को प्रदान किया गया। साल 2026 की शुरुआत में ही इसराइल ने भी उन्हें मेडल ऑफ द नेसेट से सम्मानित किया। इन 32 अंतर्राष्ट्रीय सम्मानों की फहरिस्त सिर्फ कागजी आंकड़े नहीं है, ये इस बात का सीधा प्रमाण है कि आज का भारत सिर्फ अपनी सीमाओं की रक्षा नहीं कर रहा बल्कि दुनिया को वसुधैव कुटुंबकम यानी पूरी पृथ्वी ही मेरा परिवार है का संदेश दे रहा है। चाहे वो पर्यावरण संकट हो, वैश्विक शांति की बात हो या आपदा के समय मदद का हाथ बढ़ाना हो, दुनिया आज भारत के नेतृत्व की ओर उम्मीद भरी नजरों से देखती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को वर्ष दर वर्ष मिले ये सम्मान असल में भारत की 140 करोड़ जनता के कड़े परिश्रम, हमारी प्राचीन संस्कृति और हमारे बढ़ते आर्थिक और सामरिक सामर्थ्य का वैश्विक उत्सव है। विदेशी कूटनीति में क्या 2014 के बाद भारत ने विशेष हासिल किया है जिसे भारत अब दुनिया के मानचित्र में अब एक मजबूत स्तंभ बन गया है, इस पर खास चर्चा के लिए हमारे साथ हैं दो बेहद खास मेहमान, पूर्व राजदूत अशोक सज्जनहार और वरिष्ठ पत्रकार मदन जेड़ा। कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत
2: जी। धन्यवाद।
3: धन्यवाद आनंद जी।
0: अशोक जी, सबसे पहले आपसे शुरू करते हैं। प्रधानमंत्री मोदी की जो यात्रा चल रही है इसमें वो यूएई, नीदरलैंड, स्वीडन, नॉर्वे और इटली की 5 देशों की यात्रा पर हैं। नॉर्वे में हुए तीसरे इंडिया नॉर्डिक समिट में भारत और नॉर्डिक देशों के बीच ग्रीन टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप पर सहमति बनी है। आपको क्या लगता है कि इस यात्रा के चलते जो वैश्विक परिदृश्य है और वैश्विक परिदृश्य में भारत की जो नॉर्थ वर्ड टर्न है यानी उत्तर की ओर जो रुख है उस लिहाज से कितना अहम मानते हैं इस यात्रा को आप?
4: हम अभी देख रहे हैं जो ये जो यात्रा है वो उनकी नॉर्डिक देशों में है, तो इसमें कहा जाए जो ये नॉर्थवर्ड हम टर्न देख रहे हैं, परंतु ये तो हम जानते ही हैं जो भारत तो एक जिसे कहा जाए वॉइस ऑफ द ग्लोबल साउथ है। हमने वॉइस ऑफ द ग्लोबल साउथ समिट्स किए हैं जब भारत G20 की चेयर हमने संभाली थी 2023 में। परंतु इसको छोड़ते हुए मैं कहूंगा जो भारत की जो की कूटनीति है अगर हम 2014 के बाद से देखें तो हमारी कूटनीति पूरे विश्व के साथ अपने संबंधों को आगे ले जाने में लगी है और हम इसमें बहुत ही तीव्र गति से काम कर रहे हैं। परंतु जहां तक ये नॉर्डिक देशों का संबंध है, आपने ठीक कहा है, इसको अभी करीब 8 साल हुए हैं 2018 में जिसे कहा जाए पहला नॉर्डिक समिट हुआ था स्वीडन में, दूसरा डेनमार्क का हुआ 2022 में कोपेनहेगन में, और अब तीसरा पिछले साल होने वाला था परंतु पहलगाम के इंसिडेंट के होते हुए तो ये नहीं हुआ और अब हो रहा है। तो अभी जो हालात हैं पूरे विश्व में, विश्व की जो चुनौतियां हैं, जो चाहे हम जियोपॉलिटिकल स्तर पर देखें, रूस यूक्रेन का युद्ध चल रहा है, पश्चिम एशिया का युद्ध चल रहा है, तो उसमें रूल बेस्ड इंटरनेशनल ऑर्डर को आगे कैसे ले जाया जाए, और जो ग्रीन एनर्जी है, ग्रीन ट्रांजिशन है, इनोवेशन है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, रोबोटिक्स है, इन सभी जो नई टेक्नोलॉजीज आई हैं इनके साथ कैसे संबंध बनाया जाए और देशों के साथ मिलकर सहयोग किया जाए, ये बहुत महत्वपूर्ण इशू थे और इस पर बातचीत हुई। और जो बताता है जो प्रधानमंत्री मोदी की और भारत की विश्वसनीयता कितनी बढ़ रही है पूरे विश्व में।
0: चर्चा कर रहे हैं 2014 से लेकर अब तक भारत के विदेशी कूटनीति के आइकॉनिक मोमेंट्स की और उसमें जो सबसे

0: बड़ा मोमेंट्स था मदन जी, वो G20 का जो हमने मेजबानी की। साल 2023 में भारत की अध्यक्षता में हुआ G20 समिट नई दिल्ली डिक्लेरेशन की वजह से दुनिया भर में सराहा गया। आपको क्या लगता है कि भारत ने जिस तरह विकसित और विकासशील देशों के बीच एक पुल का काम किया, उसने वैश्विक कूटनीति में भारत का कद किस तरह बढ़ाया?
1: अगर हम G20 की बात करें, एक तो ये बहुत बड़ा सफल आयोजन था, ये तो निश्चित रूप से था। दूसरी सबसे बड़ी बात इसमें हुई कि ग्लोबल साउथ की आवाज़ को भारत ने मजबूती के साथ बुलंद किया, और जो अफ्रीका यूनियन है, अफ्रीकी देश हैं, उनको G20 की सदस्यता दिलाने में सफलता हासिल की। भारत लगातार ग्लोबल साउथ की आवाज़ को उठा रहा था। दुनिया में एकमात्र देश है जो भारत ग्लोबल साउथ की आवाज़ को उठा रहा था। इसमें करीब 100 से भी ज़्यादा देश आ जाते हैं, पूरा अफ्रीका रीजन इसमें आ जाता है, नॉर्थ अमेरिकी जो कंट्री हैं वो आ जाते हैं, इसके अलावा और भी कई छोटे छोटे कंट्री हैं जो ग्लोबल साउथ में आते हैं, जो न तो किसी समूह के हिस्से नहीं है, लेकिन उनकी आवाज़ कहीं नहीं सुनी जा रही थी। अगर मैं G20 के आयोजन की बात करूँ, भारत की कूटनीति की बात करें, तो ग्लोबल साउथ की आवाज़ को उठाना और अफ्रीकी यूनियन को G20 में सदस्यता दिलाना, तो मुझे लगता है कि भारत की सबसे बड़ी उपलब्धि थी, और इससे भारत की जो कूटनीति है उसको पूरी दुनिया ने स्वीकार किया। और पूरी दुनिया ने स्वीकार किया कि जो भारत एक ऐसे देशों की आवाज़ उठा रहा है जिसकी आवाज़ बहुत पहले उठाए जाने की ज़रूरत थी। और ये पहल कायदे से देखा जाए तो जो विकसित कंट्री है उनको इसकी शुरुआत करनी चाहिए थी, लेकिन भारत ने, एक बहुत तेज़ी से बढ़ती अर्थव्यवस्था है, उसने इन देशों की आवाज़ को उठाकर पूरी दुनिया को एक मैसेज दिया, जो वसुधैव कुटुंबकम, और इस G20 सम्मेलन की थीम भी यही थी, तो वसुधैव कुटुंबकम का जो संदेश दिया उसको पूरी दुनिया ने स्वीकार किया और एक भारत के नेतृत्व में विश्वास जताया।
2: Dr. Nkrumah had said, and I quote, I am not African because I was born in Africa, but because Africa was born in me. In the same way, India carries Africa in its heart. India and Africa share a dream where every child gets opportunities, where every voice is heard, where nations rise together, not apart. Let us build a partnership, not only for today, but for generations to come.
0: अशोक जी, अगर इस चर्चा को आगे बढ़ाएं तो भारतीय विदेशी कूटनीति का एक और अहम पड़ाव है आपदा और संकट में कूटनीति, चाहे वो ऑपरेशन संकट मोचन हो, ऑपरेशन गंगा हो, या फिर युद्ध और संकट के क्षेत्रों से अपने नागरिकों को वापस बुलाना, उसमें भी भारत ने एक अहम भूमिका निभाई। लेकिन एक और ऑपरेशन हुआ जिसे ऑपरेशन सिंदूर का नाम दिया गया, जिसमें भारत ने पूरी दुनिया को ये बताया कि अगर भारत की तरफ कोई आंखें दिखाएगा तो भारत युद्ध का जवाब और प्रबल युद्ध से देना जानता है। आतंकवाद को सिरे से ना करना, और ऑपरेशन सिंदूर के बाद दुनिया के अलग अलग देशों में अपने प्रतिनिधि को भेजकर ये बताना कि भारत की मंशा क्या है, कैसे देखते हैं, क्या वो भारतीय की विदेश कूटनीति का एक मील का पत्थर था ऑपरेशन सिंदूर?
3: भारत ने पूरे विश्व को संदेश दिया, वो यही था जो हम अपनी संप्रभुता के लिए, अपने जो नागरिक हैं उनकी सिक्योरिटी के लिए हम पूरी तरह से उनकी रक्षा करेंगे, और जो भी हद हो वो हम वहां तक जाएंगे। और यही बात हुई, जो हम युद्ध को पूरा युद्ध में नहीं वैसे परिवर्तित करना चाहते, हमें जब अपना लक्ष्य मिल जाता है तो फिर हमने युद्ध उसी समय रोक दिया। परंतु पाकिस्तान ने अपनी बेवकूफी में, उन्होंने सोचा जो वो भारत को ऊपर भी कुछ ऐसा नुकसान कर सकते हैं, परंतु 10 तारीख सुबह को तो उनके केवल बहुत सारे हवाई अड्डे थे, बहुत सारे ऐसे ठिकाने थे जिनको एकदम मिट्टी में मिला दिया गया, तो पाकिस्तान को अपने घुटने पर आना पड़ा। तो हमने तो उनको ये सिद्ध करके, और फिर उसके बाद हमने जब पाकिस्तान ने याचिका की जो ये युद्ध रोक दिया जाए, तो हम मान गए, क्योंकि हमने ये देखा है, भारत ने ये पूरे विश्व को बताया जो हम युद्ध शुरू कर सकते हैं अपनी संप्रभुता को बचाने के लिए, और जब हमारे अपने ऑब्जेक्टिव्स, लक्ष्य हम प्राप्त हो जाते हैं तो हम उसको बंद भी कर देंगे। तो हमने वहां पर से हमेशा से, पाकिस्तान ये कहता रहा था जो हमारे पास न्यूक्लियर वेपन्स है तो आप हमारे ऊपर हमला कन्वेंशनल वॉरफेयर से नहीं कर सकते हैं, तो हमने ये बता दिया जो ये उनका जो ब्लैकमेल है ये हमारे विरुद्ध नहीं चलेगा।
0: और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साफ शब्दों में कहा है कि बुद्ध की धरती युद्ध करना भी जानती है और ऑपरेशन सिंदूर लगातार जारी है। आइए सुनते हैं उन्होंने क्या कहा था।
4: आज पाकिस्तान भी भली भांति जान गया है कि भारत का हर जवाब पहले से ज्यादा तगड़ा होता है। उसे ये भी पता है कि अगर भविष्य में नौबत आई तो भारत आगे कुछ भी कर सकता है, और इसलिए मैं फिर से लोकतंत्र के इस मंदिर में दोहराना

0: आता हूं, ऑपरेशन सिंदूर जारी है। पाकिस्तान ने दुस्साहस की अगर कल्पना की तो उसे करारा जवाब दिया जाएगा।
1: अशोक जी, इंटरनेशनल सोलर अलायंस और वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड का विचार भारत की तरफ से दिया गया, क्या आपको लगता है कि भारत अब ग्लोबल वार्मिंग जैसी वैश्विक समस्याओं के समाधानकर्ता के रूप में दुनिया में देखा जा रहा है?
2: 2015 में जब ये कॉप हुआ था, कॉन्फ्रेंस ऑफ द पार्टीज हुआ था पेरिस में, तो तब भारत ने और फ्रांस के जो राष्ट्रपति हैं उस समय के, तो उन्होंने इसको लॉन्च किया था। और अब जैसे उन्होंने बताया 100 से ज्यादा देश इसमें मिल गए हैं। देखिए, आजकल एनर्जी सिक्योरिटी, क्लाइमेट चेंज दोनों ही बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे बनकर उभर गए हैं पूरे विश्व के सामने। और हम देख रहे हैं जब से ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज का मुद्दा सामने आया है, तब तो ऊर्जा, एनर्जी, फॉसिल फ्यूल्स बहुत देशों के लिए मुश्किल हो गई है, क्योंकि वहां से 20% एनर्जी पूरे विश्व में आती है वो मिल नहीं रही है। तो इसीलिए ये जो इंटरनेशनल सोलर अलायंस है जिसकी भारत ने शुरुआत की है, और भारत ने दिल्ली के निकटतम ही यहाँ पर इसका हेडक्वार्टर्स भी खोला है, तो ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण रोल अदा कर रहा है, बहुत ही महत्वपूर्ण काम कर रहा है। उसके अलावा अगर आप देखें, बायोफ्यूल्स अलायंस है, जो कि जब हम G20 की बात कर रहे थे तो G20 के साइडलाइंस पर दो बहुत ही महत्वपूर्ण इनिशिएटिव्स लॉन्च किए गए थे। एक तो था इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर, उसके अलावा एक CDRI है, दैट इज कोएलिशन फॉर डिजास्टर रेजिस्टेंस इंफ्रास्ट्रक्चर, जो कैसे जो विश्व में पर्यावरण का बदलाव हो रहा है उसके साथ कैसे जूझा जाए, और जो इंफ्रास्ट्रक्चर जो बना रहे हैं, जो बिल्डिंग्स बना रहे हैं, उनको कैसे जो आपदा आती है उनसे बचाया जाए। तो भारत ने विश्व पटल पर बहुत से ऐसे इनिशिएटिव्स लिए हैं और बहुत से वैश्विक देशों ने भारत के साथ सहयोग कर रहे हैं, तो इसी से भारत का कद विश्व में और भी इससे ऊंचा हुआ है।
0: दिस इज द इनॉग्रल डे ऑफ ए डिफाइनिंग ग्लोबल कॉन्फ्रेंस ऑन क्लाइमेट चेंज। वी वांट टू ब्रिंग सोलर एनर्जी इनटू आवर लाइव्स। वी विल शेयर नॉलेज एंड एक्सचेंज बेस्ट प्रैक्टिसेस। वी विल कोऑपरेट ऑन ट्रेनिंग एंड बिल्डिंग इंस्टीट्यूशंस। We will discuss regulatory issues and promote common standards. We will attract investment in the solar sector, encourage joint ventures, and develop innovative financing mechanisms. We will partner with other international initiatives on renewable energy. There is already a revolution in solar energy. Technology is evolving. Costs are coming down and grid connectivity is improving. It is making the dream of universal access to clean energy become more real.
1: मदन जी, अब बात थोड़ी वैक्सीन डिप्लोमेसी की भी कर लेते हैं। कोविड 19 और वैक्सीन मैत्री की भी चर्चा काफी रही। जब कोविड 19 महामारी के दौरान भारत ने वैक्सीन मैत्री के तहत दुनिया के 100 से अधिक देशों को मेड इन इंडिया वैक्सीन पहुंचाई, वो भी दौर था जब दुनिया के कई देश अपनी वैक्सीन जमा कर रहे थे, तब भारत की इस मानवतावादी कूटनीति ने वैश्विक स्तर पर भारत के प्रति जो विश्वास पैदा किया, उसका लॉन्ग टर्म लाभ आप कैसे देखते हैं?
3: जब कोविड काल चल रहा था तो 100 से ज़्यादा देशों को वैक्सीन की सप्लाई की थी, और उस समय वैक्सीन की हमारे पास भी कमी थी। हम दूसरे कंट्री से कुछ ग्लोबल इनिशिएटिव है उनसे हम वैक्सीन ले भी रहे थे, लेकिन इसके बावजूद हम वैक्सीन दूसरे कंट्री को भी दे रहे थे, और 100 से ज़्यादा देशों को हमने वैक्सीन की सप्लाई की थी, और उसमें से ज़्यादातर देश या तो हमारे पड़ोसी देश थे या फिर वो ग्लोबल साउथ के देश थे जिनको हमने वैक्सीन की आपूर्ति की थी। तो इस इनिशिएटिव से भारत का, जैसे मैंने माना कि एक डिप्लोमेसी है, ये भी एक डिप्लोमेसी है कि अगर आप अपने सहयोगी देशों को, अपने मित्र देशों को किसी प्रकार की मदद करते हैं, तो ये भी एक डिप्लोमेसी का ही मैं इसे एक पार्ट कहूँगा। और इससे एक जो लॉन्ग टर्म में भारत पर भरोसा बढ़ा है, चाहे वो छोटा कंट्री हो, चाहे वो एक अफ्रीका का कोई देश हो, भारत पर उन लोगों का भरोसा लगातार बढ़ा है। और लॉन्ग टर्म में अगर इसमें इसकी बात करें, जब एक बार भरोसा बढ़ता है और लगातार भारत उनके किसी न किसी रूप में मदद करता है या उनकी आवाज़ को बुलंद करता है, या जैसे मैंने बताया कि ग्लोबल साउथ की आवाज़ भारत ने उठाई, उसके बाद UN सुधारों में भारत लगातार बोल रहा है, तो इसका भी फायदा दूसरे देशों को होने वाला है। भारत को उतना फायदा नहीं होने वाला, दूसरे देशों को ज़्यादा होगा अगर UN में सुधार होते हैं। ऐसे में जो भारत पर दूसरे देशों का भरोसा है वो लगातार बढ़ रहा है, और जब ये भरोसा बढ़ता है, और जैसे हम कह रहे हैं कि जो दुनिया धीरे धीरे बढ़ रही है वो मल्टीपोलर दुनिया हो रही है, बहुध्रुवीय दुनिया हो रही है, तो भारत उसमें एक मजबूत ध्रुव के रूप में उभर रहा है, एक मजबूत पक्ष के रूप में उभर रहा है।
1: अशोक जी, एक और इम्पॉर्टेंट पहलू है, काफ़ी अहम पक्ष रहा है 2014 के बाद भारत की विदेश कूटनीति का, वो है मुक्त व्यापार समझौते। भारत ने हाल में यूएई, ऑस्ट्रेलिया और यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन देशों के साथ ऐतिहासिक मुक्त व्यापार समझौते किए, जिसे हम सब एफटीए के नाम से जानते हैं। आपको क्या लगता है कि ये समझौते भारत को एक ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग और ट्रेड हब बनाने में मददगार साबित हो रहे हैं?
2: जी, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। देखिए, पिछले कुछ वर्षों में भारत ने बहुत ही ये फ्री ट्रेड अग्रीमेंट या मुक्त व्यापार समझौते जो हैं वो किए हैं, और अपने महत्वपूर्ण जो साझेदार हैं, जो व्यापारिक साझेदार हैं जिनके साथ हमारे व्यापारिक सहयोग, आर्थिक सहयोग बड़ा अच्छा है, उनके साथ किए हैं। अगर यूनाइटेड अरब एमिरेट्स का देखा जाए तो वो हमारा दूसरा सबसे बड़ा ऐसा डेस्टिनेशन है जहां हमारे एक्सपोर्ट्स जाते हैं, जहां हमारे निर्यात जाते हैं। वो तीसरे नंबर पर है, जो कि सबसे बड़ा हमारा आर्थिक साझेदार है, सहयोगी है। और इसके अलावा हमने यूनाइटेड किंगडम के साथ भी किया है, वो भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण आर्थिक व्यवस्था है और आर्थिक सहयोग उनके साथ हमारा बहुत बड़ा है। यूरोपियन यूनियन, तो जिनके साथ 2007 में ये बातचीत शुरू हुई थी, मुझे याद है जब मैं ब्रसल्स में था तब हमने ये बातचीत शुरू की थी, नेगोशिएशन शुरू किए थे, और ये 17-18 साल के बाद हम देख रहे हैं, जो इस साल के शुरू में फरवरी में हमने देखा, 19 साल के बाद ये वाला समझौता हुआ है। और इसको वहां की जो यूरोपियन कमीशन की प्रेसिडेंट हैं उर्सुला वॉन डर लेन, उन्होंने इसको मदर ऑफ ऑल डील्स करार दिया था, इसका इतना व्यापक रूप है। ऐसे ही हमने एफ्टा के साथ जो चार देश हैं यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन के, जैसे मैं पहले बोल रहा था आइसलैंड और नॉर्वे तो उसके सदस्य नहीं है और ये एफ्टा के सदस्य हैं, और उसके अलावा स्विट्जरलैंड और लिख्टेनस्टाइन, उनके साथ भी बहुत महत्वपूर्ण ये एक सहयोग किया है, जिसमें $100 बिलियन भारत में वो निवेश करेंगे अगले 15 साल में, जिससे 10 लाख जॉब्स यहाँ पर क्रिएट होंगे। इसके अलावा हम देखें तो ऑस्ट्रेलिया के साथ, न्यूजीलैंड के साथ, ओमान के साथ, ये सब हमने फ्री ट्रेड अग्रीमेंट्स किए हैं, जो कि मेरे विचार से विन विन अग्रीमेंट्स होंगे, ये इन सभी देशों के लिए भी और भारत के लिए भी।
0: आज भारत ने अपने इतिहास का, अब तक का सबसे बड़ा फ्री ट्रेड एग्रीमेंट संपन्न किया है। यह एक ऐतिहासिक समझौता हमारे किसानों, हमारे छोटे उद्योगों, इसकी यूरोपियन मार्केट तक पहुंच आसान बनाएगा, मैन्युफैक्चरिंग में नए अवसर पैदा करेगा और हमारे सर्विसेज सेक्टर के बीच सहयोग को और प्रबल करेगा। इतना ही नहीं, यह एफटीए भारत और यूरोपियन यूनियन के बीच इन्वेस्टमेंट को बूस्ट करेगा, नई इनोवेशन पार्टनरशिप बनाएगा और वैश्विक स्तर पर सप्लाई चेन को मजबूत करेगा। यानी यह सिर्फ ट्रेड एग्रीमेंट नहीं है, यह साझा समृद्धि का नया ब्लूप्रिंट है।
1: अशोक जी, फॉरेन डिप्लोमेसी के क्षेत्र में रूस यूक्रेन युद्ध पर भारत का स्टैंड भी काफी चर्चा में रहा। रूस यूक्रेन युद्ध पर प्रधानमंत्री मोदी का ये बयान कि ये युद्ध का युग नहीं है, पूरी दुनिया में ये गूंजा। बिना किसी दबाव में आए भारत का अपनी स्वतंत्र विदेश नीति पर टिके रहना और दोनों पक्षों से बातचीत की वकालत करना, भारत की परिपक्व होती कूटनीति का कितना बड़ा प्रमाण रहा।
2: डिप्लोमेटिक पार्लेंस में कहें तो इसको हम स्ट्रेटेजिक अटोनमी कहते हैं, जो जिससे कि हम अपने हितों की रक्षा स्वयं करेंगे और हम किसी और को दखल अंदाजी नहीं करने देंगे, जो वो हमें बताए, भारत को बताए, जो आपके लिए क्या अच्छा है, आपके लिए क्या ठीक है, आप इसमें क्या करिए। तो इसीलिए जब रूस यूक्रेन का युद्ध हुआ तो बहुत दबाव पड़ा पहले भारत के ऊपर, जो आप तेल मत खरीदिए रूस से, परंतु भारत ने ये बता दिया, भारत करीब अपने जो जरूरतों का 80-85% तेल है वो आयात करता है, तो इसको हम जहां से भी हमारी कंपनियों को सभी ठीक दाम में तेल मिलेगा हम वहां से वो लेंगे। तो हमने अपने संबंध भी बनाए रखे और ये भी बनाए रखा, परंतु ऐसा नहीं किया जो हमने अपने संबंध और जो पश्चिमी देश हैं उनके साथ खराब कर दिए। और उन देशों को भी फिर बाद में समझ आ गया, जो अगर रूस का तेल वैश्विक बाजार में नहीं आता तो तेल के दाम बहुत ही ज्यादा बढ़ जाते हैं, जो कि सभी अर्थव्यवस्थाओं के लिए बहुत ही हानिकारक सिद्ध हो सकता था। तो इसीलिए भारत ने ये बता दिया है, भारत वैश्विक फायदे के लिए, ग्लोबल गुड के लिए काम करेगा सबके साथ, परंतु अपने हितों को वो सैक्रिफाइस नहीं करेगा। और हमारा जो स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी है वो केवल वो ट्रांजैक्शनल नहीं है, जो केवल अपने हितों की हम रक्षा करें, हम और देशों के हितों के लिए भी हम उनके साथ बराबर परस्पर सहयोग बनाते रहेंगे और काम करते रहेंगे।
0: विद द यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट, वॉर हैज रिटर्न टू यूरोप, इट इज कॉजिंग ग्रेट पेन इन द रीजन। Sintin involves major powers. The outcomes are severe. Countries of the global south have been particularly affected. The global order is based on the respect for the principle of the UN Charter. Peaceful resolution of disputes and respect for sovereignty and territorial integrity. As I have said directly and publicly, this is not an era of war, but it is one of dialogue and diplomacy. And we all must do what we can to stop the bloodshed and human suffering.
1: अशोक जी, कार्यक्रम के अंत में एक आखिरी सवाल आपसे जानना चाहेंगे कि 2047 तक भारत का लक्ष्य है विकसित भारत बनने का, हमारी विदेश नीति और विदेश कूटनीति इस लक्ष्य को हासिल करने में किस तरह की भूमिका निभा रही है, कैसे देखते हैं आप?
2: भारत की जो कूटनीति है बहुत ही एक महत्वपूर्ण इसमें योगदान कर रही है, भारत को अपने लक्ष्य की तरफ पहुंचाने में, विकसित भारत 2047 तक पहुंचाने में, क्योंकि सामने हमारे चुनौतियां बहुत ज्यादा हैं। तो इसीलिए हमको देखना है जो किन देशों के साथ हमको अपना परस्पर सहयोग बढ़ाना है, हमारे अपने संबंधों को और तेज करना है, और वही हम कर रहे हैं। चाहे पहले हमारे अमेरिका के साथ जिसे हम कहते हैं कॉम्प्रिहेंसिव ग्लोबल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप, परंतु अब हम देखते हैं जो अमेरिका का रवैया काफी ट्रांजैक्शनल हो गया है, परंतु फिर भी हमारे संबंध चाहे रक्षा क्षेत्र में हो, व्यापार क्षेत्र में हो, उनके साथ बड़े अच्छे रहेंगे, परंतु फिर भी हम डाइवर्सिफाई करेंगे। तो हर तरीके से लेकर अपनी आर्थिक समृद्धि को बढ़ाने के लिए और अपने सुरक्षा को बढ़ाने के लिए, जिससे कि अपनी संप्रभुता की हम रक्षा कर सके, इस मार्ग पर अग्रसर होते हुए भारत की कूटनीति उसमें एक बहुत ही अहम योगदान करेगी।
0: एक तो हमारा लक्ष्य है 2047, हिंदुस्तान विकसित होना ही चाहिए, नो कॉम्प्रोमाइज। आजादी के 100 साल हम ऐसे ही नहीं बिताएंगे, आजादी के 100 साल ऐसे मनाएंगे, ऐसे बनाएंगे कि दुनिया में विकसित भारत का झंडा फहरता होगा।
4: कभी दुनिया के मंच पर भारत को सिर्फ एक बड़ा देश माना जाता था, लेकिन आज भारत एक बड़ी सोच बन चुका है। चाहे G20 की मेज हो या संकट में फंसे देशों तक मदद पहुंचाने का संकल्प, भारत ने हर बार ये साबित किया है कि नई सदी की कूटनीति केवल ताकत से नहीं, विश्वास से चलती है। आज जब दुनिया नए संतुलन की तलाश में है, तो उसकी निगाहें हिंद महासागर के उस किनारे पर टिकती हैं जहां एक लोकतंत्र 140 करोड़ सपनों के साथ विश्व मंच पर आत्मविश्वास से कह रहा है, यह नया भारत है जो मित्रता भी निभाना जानता है और नेतृत्व करना भी जानता है। इसी विश्वास, इसी बढ़ते वैश्विक सम्मान और इसी नई कूटनीतिक यात्रा के साथ मदन जी आपका और अशोक जी आपका कार्यक्रम के साथ जुड़ने के लिए और विशेषज्ञ राय साझा करने के लिए आभार।
2: बहुत धन्यवाद मुझे आमंत्रित करने के लिए।
1: थैंक यू सर।
4: श्रोताओं, ये कार्यक्रम आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं।
5: चर्चा का विषय है।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं शक्ति सिंह।
1: एफएम बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का धर्मशाला केंद्र है। रात्रि के 10 बजे हैं, आइए सुनते हैं उपशास्त्रीय संगीत।

3.4 MHz पर। रात्रि के 10:30 हुए हैं। आइए सुनते हैं चित्रपट संगीत। कार्यक्रम का आगाज कर रहे हैं 14वीं का चांद फिल्म से इस गीत के साथ, जिसे गाया है मोहम्मद रफी और साथियों ने। रवि का संगीत निर्देशन और बोल हैं शकील वदायनी के।

कार्यक्रम का अगला गीत फिल्म गाइड से। इस गीत को गाया है मोहम्मद रफी और साथियों ने। एसडी वर्मन का संगीत निर्देशन और बोल है शैलेंद्र के।

आप सुन रहे हैं चित्रपट संगीत, आकाशवाणी का ये धर्मशाला केंद्र है। रात्रि के 10:38:19 और ये रहा कार्यक्रम का अगला गीत, जिसे हमने लिया है फिल्म हम दोनों से। इस गीत को गाया है किशोर कुमार और साथियों ने।

दिल अपना प्रीत पर आई। इस फिल्म का गीत अभी आपने सुना लता मंगेशकर की आवाज में। शंकर जयकिशन का संगीत निर्देशन और बोल थे शैलेंद्र के। लीजिए अब सुनिए अमर प्रेम फिल्म का गीत जिसे गाया है किशोर कुमार ने।

मोहम्मद रफ़ी और लता मंगेशकर के गाए इसी गीत के साथ आज का ये कार्यक्रम यहीं पर संपन्न होता है। आकाशवाणी का ये धर्मशाला केंद्र है, FM बैंड 103.4 MHz पर। रात्रि के 11 बजने को है, कुछ ही देर में आकाशवाणी दिल्ली से पहले हिंदी में समाचार और 11:05 पर अंग्रेजी में समाचार रिले किए जाएंगे।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सरफिरोजी। भारत और इटली ने आज कृषि, दुर्लभ खनिजों, आयुर्वेद, विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी, समुद्री परिवहन और बंदरगाह के क्षेत्र में सहयोग को और बढ़ाने के लिए 15 महत्वपूर्ण समझौते किए। इन समझौतों पर आज रोम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी के बीच प्रतिनिधि मंडल स्तर की बातचीत के बाद हस्ताक्षर किए गए। दोनों देशों ने भारतीय नर्सों के इटली आने जाने को आसान बनाने के लिए भी एक समझौता किया। एक अन्य समझौता लोथल में राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर के विकास पर केंद्रित है। दोनों देशों ने कर से जुड़े अपराधों, धन शोधन और आतंकवाद के लिए पैसे जुटाने के खिलाफ तालमेल को मजबूत करने पर भी सहमति व्यक्त की है। वार्ता के बाद संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में श्री मोदी ने घोषणा की कि भारत और इटली ने संबंधों को विशेष रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक ले जाने का फैसला किया है।
1: हमने हमारी भावी साझेदारी को और सशक्त बनाने के लिए विस्तृत रूप से चर्चा की। भारत इटली जॉइंट स्ट्रेटेजिक एक्शन प्लान 2025-2029 हमारी साझेदारी को एक प्रैक्टिकल और फ्यूचरिस्टिक ढांचा प्रदान करता है। हम इस पर समयबद्ध तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। हमारे साझा प्रयासों में द्विपक्षीय व्यापार 20 बिलियन यूरो के लक्ष्य की ओर तेजी से बढ़ रहा है।
0: श्री मोदी ने कहा कि दोनों देश भारत इटली नवाचार केंद्र स्थापित करने पर काम कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि दोनों देश जहाजरानी, बंदरगाहों के आधुनिकीकरण, लॉजिस्टिक्स और समुद्री अर्थव्यवस्था के क्षेत्रों में भी मिलकर काम करेंगे। श्री मोदी ने कहा कि दोनों देश आतंकवाद को मानवता के लिए गंभीर खतरा मानते हैं।
1: भारत और इटली एकमत है कि आतंकवाद मानवता के लिए गंभीर चुनौती है। टेरर फाइनेंसिंग के खिलाफ हमारी साझा पहल ने पूरे विश्व के सामने एक महत्वपूर्ण उदाहरण प्रस्तुत किया है। यूक्रेन, पश्चिम एशिया तथा अन्य तनावों को लेकर हम लगातार संपर्क में रहे हैं। भारत का मत स्पष्ट है कि सभी समस्याओं का समाधान डायलॉग और डिप्लोमेसी के माध्यम से होना चाहिए।
0: इटली की प्रधानमंत्री ने कहा कि दोनों देशों के बीच की दोस्ती सम्मान और आपसी विश्वास पर आधारित है। इसके बाद रोम में प्रधानमंत्री मोदी को संयुक्त राष्ट्र खाद्य और कृषि संगठन का सर्वोच्च सम्मान एग्रीकोला मेडल से सम्मानित किया गया। उन्होंने इस सम्मान को भारत के लाखों किसानों, पशुपालकों, मछली पालकों, कृषि वैज्ञानिकों और श्रमिकों को समर्पित किया। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल और वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एग्रीकोला पदक से सम्मानित किए जाने पर बधाई दी। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री गोयल ने कहा कि ये सम्मान भारत के किसानों, मछुआरों, वैज्ञानिकों और कृषि क्षेत्र से जुड़े अन्य कर्मियों के योगदान की पहचान है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा कि मोदी सरकार ने कृषि और इससे जुड़े क्षेत्रों के विकास के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ऑपरेशन सिंदूर को भारत के एक मजबूत, आत्मविश्वासी और सक्षम राष्ट्र में परिवर्तन का प्रमाण बताया है। दक्षिण कोरिया में प्रवासी भारतीयों से बातचीत में रक्षा मंत्री ने कहा कि ये ऑपरेशन इस बात का प्रमाण है कि भारत किसी भी रूप में आतंकवाद को कतई बर्दाश्त नहीं करेगा। रक्षा मंत्री ने सोल में भारत दक्षिण कोरिया रक्षा उद्योग व्यापार गोलमेज सम्मेलन की अध्यक्षता भी की। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने नागरिकता संशोधन अधिनियम के अंतर्गत अवैध बांग्लादेशी घुसपैठियों को देश से निकालने की प्रक्रिया तुरंत शुरू करने की घोषणा की है। सीमा पर बाड़ लगाने के लिए सीमा सुरक्षा बल को जमीन सौंपने के एक समारोह के दौरान नाबन्ना में उन्होंने कहा कि अब घुसपैठियों को सीधे सीमा सुरक्षा बल के हवाले कर दिया जाएगा। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने आज नई दिल्ली में असम में 4000 किलोमीटर से अधिक राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं की गुणवत्ता और रखरखाव कार्यों की समीक्षा की। आईपीएल क्रिकेट में आज कोलकाता नाइट राइडर्स और मुंबई इंडियंस के बीच मुकाबला जारी है। कोलकाता ने टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया था। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी द न्यूज रेड बाय अपराजिता नायर। India and Italy today finalized 15 outcomes across diverse sectors. The agreements were signed following delegation-level talks between Prime Minister Narendra Modi and his Italian counterpart Giorgia Meloni in Rome today. The outcomes mark the elevation of bilateral relations to a special strategic partnership. Both sides also inked several memorandums of understanding to deepen cooperation in key areas including critical minerals, defense, agriculture, Ayurveda, science and technology, maritime transport and ports. India and Italy also agreed to strengthen coordination against tax crimes, money laundering and terror financing. In a press statement after the talks, Prime Minister Modi said, India-Italy Joint Strategic Action Plan 2025 to 2029 will provide a practical and futuristic framework for bilateral ties. He said, both sides are working towards establishing an India-Italy Innovation Centre and noted that the India-Italy Defence Industrial Roadmap has opened new avenues for co-development and co-production in the defence sector. Later in the day, Prime Minister Modi was conferred the prestigious Agricola Medal by the Food and Agriculture Organization at its headquarters in Rome. The medal was presented by FAO Director General Ki Dong-gyu. Speaking on the occasion, the Prime Minister said the award reflects India's unwavering commitment to food security, sustainable development and human welfare.
1: ये भारत के करोड़ों किसानों, पशुपालकों, मत्स्य पालकों, कृषि वैज्ञानिकों और हमारे श्रमिकों का सम्मान है। यह भारत की उस अटूट प्रतिबद्धता का भी सम्मान है जिसके केंद्र में मानव कल्याण, खाद्य सुरक्षा और सस्टेनेबल डेवलपमेंट है। मैं इस मेडल को अत्यंत विनम्रता के साथ स्वीकार करते हुए भारत

मानव कल्याण, खाद्य सुरक्षा और सस्टेनेबल डेवलपमेंट है। मैं इस मेडल को अत्यंत विनम्रता के साथ स्वीकार करते हुए